मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। आज शनिवार है। शक संबत 1948 के ज्येष्ठ मास की तिथि 30, तदनुसार 20 जून सन 2026। इस समय स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 5:49

0: ये आकाशवाणी पटना है, लीजिए सुनिए चिंतन।
1: साहस इंसान का एक मानवीय गुण है जो हमें आपात स्थितियों में सही निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करता है। यह विशेष रूप से तब जब हम विपरीत परिस्थितियों में किसी मुश्किल कार्य को करने की ठान लेते हैं, तब यही साहस हमें बल प्रदान करता है। एक साहसी व्यक्ति कम अवसर, कम संसाधन होते हुए भी बड़ा से बड़ा निर्णय कर लेता है। साहस की भावना के साथ ही हम सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। साहस हमें अवसरों को पहचानने और उन्हें पकड़ने की क्षमता प्रदान करता है। साहस का मतलब यह है कि समझदारी और विवेक के संयोजन के साथ सही समय पर सही निर्णय लेने की क्षमता का निर्माण करना चाहिए। व्यक्तियों ने अपने साहस और संकल्प के बल पर ही सफलताएं अर्जित की। दुश्मनों के मुकाबले संख्या बल में कम होने के बावजूद पोरस, छत्रपति शिवाजी, रानी लक्ष्मीबाई अपने साहसिक गुणों के कारण ही इतिहास में अमर हो पाए। मनुष्य के सभी गुणों में साहस सर्वोत्तम गुण है, क्योंकि यह सभी गुणों की जननी है। इतिहास में उसी की गाथा दर्ज हो पाई है जिसने समय पर सही निर्णय लेते हुए साहस का परिचय दिया। संकट में साहस से काम लेना ही आधी सफलता प्राप्त कर लेना है। बिना निराश हुए पराजय को सह लेना साहस की सबसे बड़ी परीक्षा है। साहसी व्यक्ति को यदि कभी पराजित होना भी पड़ता है तो उसकी पराजय क्षणिक होती है, अंत में विजय भी उसी के हाथ लगती है। जीवन में आने वाले संकटों को वही आसानी से पार कर सकता है जिसमें साहस के साथ कठिन निर्णय लेने की क्षमता हो। जो पानी से डरते हैं उनके ही डूबने का खतरा ज्यादा रहता है। लहरों से खेलने का अभ्यास करने वालों को डूबने का खतरा नहीं होता। महान दार्शनिक सुकरात अपने सत्य और साहस के बल पर हमेशा सत्य ही स्वीकारते और बोलते थे, जिसे हम सत साहस कहते हैं। साहस शरीर की शक्ति का नाम है तो सत साहस आत्मा की शक्ति का नाम है। प्रबल विचार शक्ति के साथ निरंतर आगे बढ़ते रहना सत साहस है। इंसानियत, देश, समाज और सत्य के लिए मौत को हंसते हुए गले लगाने में भी साहस ही आलोकित होता है। जब हमारे अंदर संवेदना अपनी पूर्णता की राह पर बढ़ती जाती है, तब सत साहस हमारे अंदर इतना भर जाता है कि हम अज्ञान, अनाचार, हिंसा, अमानवीयता और क्रूरता को परास्त कर डालते हैं। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक डी मैकडॉनल्ड के अनुसार कौन क्या करता है और कितना सफल होता है, इस बात का महत्व नहीं। महत्व इस बात का है कि किसने कितना ऊंचा आदर्श अपनाने में सत्य निष्ठा और साहस को अपना आधार बनाया। जहां इस स्तर की मजबूती होगी वहीं अवरोधों से लड़ने और लंबे समय तक अविचल भाव से लक्ष्य तक

0: चलते ही रहने का साहस भरा विश्वास पाया जाएगा। हम कह सकते हैं कि साहस एक जीजी विषा है, संकटों से जूझते हुए सफलता प्राप्त करने की। भारत मुनि के नाट्य शास्त्र में लिखे श्लोक के अनुसार साहस अविषाद शक्ति शौर्य धैर्य आदि विभाओं से उत्पन्न होता है। इस प्रवृत्ति से समाज एवं मानवता को लाभ पहुंचता है। साहस का सकारात्मकता से गहरा रिश्ता है। सकारात्मकता नैतिक साहस को बढ़ाती है। गांधी, नेल्सन मंडेला, मार्टिन लूथर किंग जैसे नेताओं ने अन्याय के खिलाफ विशाल जनमत को खड़ा किया। यह साहस के बिना संभव नहीं था। दशरथ मांझी जैसे साधारण व्यक्ति का एक साहसिक फैसला ही उन्हें भीड़ से अलग एक नई पहचान देता है। इसलिए कहा जाता है कि कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं। जो मनुष्य साहस नहीं छोड़ता, वह कभी पराजित नहीं होता।
1: आकाशवाणी पटना से अभी आप चिंतन सुन रहे थे और अब प्रस्तुत है कृषि सूचनाएं।
2: किसान भाइयों नमस्कार। हमारे घरों के आसपास जो भी थोड़ी बहुत खाली जमीन उपलब्ध है, उसमें योजनाबद्ध तरीके से आप साग सब्जियां और फल उत्पादन कर सकते हैं, और इसे ही किचन गार्डन या पोषण वाटिका, गृह वाटिका हम कहते हैं। पोषण से संबंधित आवश्यकताओं की पूर्ति जिन फलों से, जिन सब्जियों से होती है और जहाँ पर उनको हम लगाते हैं, उसे ही पोषण वाटिका का नाम देते हैं। वैसे तो संतुलित आहार के लिए प्रत्येक सामान्य व्यक्ति को कुछ हरी सब्जियाँ, कुछ फल और कुछ अनाज, दूध दही का प्रयोग करना चाहिए। तो ये साग सब्जियाँ जो हैं और फल जो हैं, जो कि छोटे क्षेत्र में हो सकते हैं, उन्हें आप अपने पोषण वाटिका में लगा सकते हैं। पोषण वाटिका के कुछ लाभ और कुछ उद्देश्य भी होते हैं। परिवार को पोषण सुरक्षा प्रदान करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। परिवार के प्रत्येक सदस्य को उनकी आवश्यकता अनुसार, पसंद इच्छा अनुसार संतुलित भोजन इससे उपलब्ध होता है। फल और सब्जियां विटामिन ए और खनिज लवण के अच्छे स्रोत होते हैं। गृह वाटिका द्वारा हम भोजन में इनकी उपलब्धता सुनिश्चित कर सकते हैं। घर के समीप की खाली पड़ी भूमि का सदुपयोग हो पाता है। घर के उपयोग से प्राप्त व्यर्थ जल एवं भोजन अवशेषों का सदुपयोग हो पाता है। वर्ष भर स्वास्थ्यवर्धक गुणवत्ता युक्त सस्ते फल एवं सब्जियों की सुलभता बनी रहती है। रसायन सहित सब्जियों के उत्पादन एवं सेवन को बढ़ावा मिलता है। गृह वाटिका लगाकर महिलाएं परिवार की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने में अपना योगदान दे सकती हैं। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से स्वयं उगाई गई सब्जियां बाजार की फल और सब्जियों से अधिक स्वादिष्ट लगती हैं। अब बात आती है कि गृह वाटिका का निर्माण हम कैसे करें। तो गृह वाटिका हेतु ऐसी जगह का चयन करें जहां पर कम से कम 6 घंटे से अधिक सूर्य की रोशनी प्राप्त हो। जहां तक संभव हो गृह वाटिका का निर्माण घर के नजदीक किया जाए, ताकि इसका प्रबंधन भली भांति किया जा सके। गृह वाटिका हेतु ऐसी जगह का चुनाव करें जहां पानी का स्रोत बराबर बराबर बना रहे और जहां किसी भी प्रकार छाया का पड़ाव नहीं हो, यानी कि छाया वहां पर न पड़ती हो। गृह वाटिका हेतु चयनित भूमि की मृदा जांच प्रत्येक 3 साल के अंतराल पर भी करानी चाहिए। गृह वाटिका हेतु चयनित भूमि समतल होनी चाहिए, क्योंकि ढलवा होने पर पोषक तत्वों के क्षय होने की आशंका होती है। अब बात ये आती है कि इसमें किस किस तरह की सब्जियां लगा सकते हैं। तो खरीफ मौसम वाली सब्जियां जो हैं, जून जुलाई के महीने में आप लगावें। इसमें भिंडी, लौकी, करेला, तोरई, बैंगन, टमाटर, ग्वार, लोबिया, मिर्च, अरबी इत्यादि है। रबी मौसम में जो सब्जियां लगाएंगे वो सितंबर अक्टूबर माह में लगाते हैं। इस समय बैंगन, सरसों, मटर, चना, प्याज, लहसुन, आलू, टमाटर, शलजम, फूलगोभी, बंद गोभी आदि सब्जियां होती हैं। गृह वाटिका हेतु जो जमीन की तैयारी होती है, वो आप यदि क्षेत्र बड़ा है तो मिट्टी पलटने वाले हल से जुताई करें, नहीं तो कुदाल या खुरपी से उसका प्रबंधन आप कर सकते हैं। कंकड़ पत्थर उसमें से हटा दें। गोबर की खाद या बर्मी कंपोस्ट का ही प्रयोग करें। मिट्टी भुरभुरी रहती बना लें और उसमें कार्बनिक खाद और जीवांश तत्वों से भरपूर

0: मिट्टी है उस पे ही गृह वाटिका लगाने का आप प्रयास करें, और आवश्यकता अनुसार अपने क्षेत्र को छोटी छोटी क्यारियों में बांट लें। प्रत्येक क्यारियों में अलग अलग सब्जियां आप लगाएं, जैसे किसी में आपने प्याज लगाया, किसी में लहसुन लगाया, किसी में मटर लगा दिया, किसी में टमाटर लगा दिया, किसी में भिंडी लौकी, तो इससे ये होगा कि आपको जो है हर तरह की सब्जी उपलब्ध हो जाएगी। दूसरी बात यह है कि कुछ सब्जियां होती हैं जो एक साथ तैयार हो जाती हैं, जैसे कि गोभी है, तो आप एक ही दिन में पूरी क्यारी में गोभी की फसल अपनी नहीं लगावें, बल्कि दो चार पौधे दो तीन दिनों के अंतराल पर लगावें, ताकि लंबे समय तक आपको उससे गोभी की सब्जी मिलती रहे। तो इन सब बातों पर ध्यान दे करके यदि आप पोषण वाटिका किचन गार्डन बनाते हैं, अपने घर के अगल बगल जो खाली जमीन है उनका भी आप सदुपयोग कर पाएंगे। और
1: अभी आपने कृषि सूचनाएं सुनी। आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। इस समय सुबह के 6 बजने को है। अब हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार।
2: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल और ओडिशा के दौरे पर रहेंगे। ओडिशा में वे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के 68वें जन्मदिन के मौके पर उनसे मुलाकात करेंगे। इसके बाद दोनों नेता एक जनसभा को संबोधित करेंगे। ये जनसभा ओडिशा सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित की जा रही है। पश्चिम बंगाल की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री हुगली के तारकेश्वर में पश्चिम बंगाल दिवस के समारोह में भागीदारी करेंगे। कोलकाता के रेड रोड पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे और देश में निर्मित 3 युद्धपोत दुनागिरी, अग्रय और संशोधक राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री लगभग 590 करोड़ रुपए की लागत की रेल परियोजनाओं, हावड़ा में 300 बिस्तरों वाले नए रेलवे अस्पताल और पूर्वी मिदनापुर में एक रेल ओवर ब्रिज सहित कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री 315 किलोमीटर से अधिक दूरी की प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 49 ग्रामीण सड़क परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में एक समारोह में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। योजना का उद्देश्य रोजगार सृजन में तेजी लाना और सभी क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा का विस्तार करना है। श्री मोदी ने कहा कि इस योजना का लक्ष्य पहली बार रोजगार पाने वालों को सशक्त बनाना और युवाओं तथा उद्योग के बीच सेतु का निर्माण करना है।
3: दुनिया भारत के युवाओं की क्षमता को भली भांति पहचानने लगी है और ऐसे समय में हमारी कोशिश है कि भारत का हर युवा अपनी क्षमता को अवसर में बदल सके, और इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आरंभ हुआ।
2: देश में कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने का पहला वाणिज्यिक संयंत्र ओडिशा के झारसुगुड़ा जिले में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इस कोयला गैसीकरण परियोजना की आधारशिला रखेंगे। ये परियोजना BHEL की स्वदेशी रूप से विकसित कोयला गैसीकरण तकनीक का उपयोग करके प्रतिदिन 2,000 टन अमोनियम नाइट्रेट का उत्पादन करेगी। सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि तय फुटपाथ पर चलने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि किसी नागरिक का तय किए गए फुटपाथ पर चलने का मौलिक अधिकार प्राथमिक है और मोटर वाहनों की आवाजाही की तुलना में इसे प्राथमिकता दी जाएगी। न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि अनुच्छेद 21 जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार सहित अनुच्छेद 19 और अन्य मौलिक अधिकारों के अंतर्गत गारंटीकृत आवाजाही के अधिकार का हिस्सा है। एक दुखद मोटर दुर्घटना के क्षतिपूर्ति मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह फैसला सुनाया। अपने 5 वर्षीय पुत्र को पिता द्वारा स्कूल ले जाते समय कथित दुर्घटना में बच्चे की मौत हो गई थी। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने विश्व के मौजूदा अस्थिर दौर में राष्ट्रीय हितों, रणनीतिक स्वायत्तता और विविध मतों के साथ संतुलन बनाए रखते हुए सभी देशों के साथ बेहतर संबंधों पर बल दिया। कल शाम नई दिल्ली में भारत अमेरिका फोरम को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने जटिलताओं और चुनौतियों का सामना करते हुए विभिन्न क्षेत्रों में भारत और अमेरिका की साझेदारी मजबूत करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि प्रगति के साथ साथ भारत के हितों का भी विस्तार होगा और विविधता बढ़ेगी। वरिष्ठ नौकरशाह विवेक अग्रवाल को वर्ष 2026-27 के लिए वित्तीय कार्रवाई कार्यबल का उपाध्यक्ष चुना गया है। वे ब्रिटेन के गाइल्स थॉमसन का स्थान लेंगे। श्री अग्रवाल

0: वर्तमान में संस्कृति मंत्रालय में सचिव हैं। वे वित्तीय कार्रवाई कार्यबल में भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व कर चुके हैं तथा धन शोधन और आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने पर अंकुश रखने वाली वैश्विक संस्था के साथ महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके हैं। 17 से 19 जून के दौरान कार्यबल की पूर्ण बैठक में ये निर्णय लिया गया। विदेश मंत्रालय ने श्री अग्रवाल के चयन को भारत के लिए एक बड़ी विजय बताया है। मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस नियुक्ति से आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने और गैर कानूनी वित्तीय नेटवर्क के खिलाफ संघर्ष की बात की भारत की प्रतिबद्धता मजबूत होती है। श्री गाइल थॉम्सन को कार्यबल का अगला अध्यक्ष नियुक्त किए जाने का निर्णय हुआ है। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच आज दोपहर चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा। मेजबान टीम 2-0 की बढ़त के साथ पहले ही श्रृंखला अपने नाम कर चुकी है। दोहा डायमंड लीग में भारत के जेवलिन खिलाड़ी नीरज चोपड़ा कतर में चौथे स्थान पर रहे। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। सबसे पहले सुनिए संवेद स्वर में देश वंदना।

अभी आप ये देशभक्ति गीत सुन रहे थे। परमात्मा को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। परमात्मा का होना हम में से किसी का निर्णय भी नहीं है। परमात्मा का होना हमारे होने से पहले से है और परमात्मा का होना अभी इसी क्षण में भी है। इस क्षण में भी हमारे अपने भीतर वह ठीक उसी तरह से छिपे हैं जैसे प्रत्येक नहर में सागर छिपा रहता है।

जो भक्त इस सत्य की अनुभूति को पा लेता है वही श्रेष्ठ योगी है, वही श्रेष्ठ श्रद्धावान है। उसकी अनुभूति ही उसके लिए प्रमाण है। इस अनुभूति से अधिक और कुछ भी नहीं है।

0: इस भजन के साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना अब संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। लीजिए अब सुनिए रामचरितमानस से पाठ। मुख्य स्वर ए हरिहरण का है।
1: माइक और क्षणिक चीज में अगर आसक्त हो जाए तो इसको मूर्ख।

अयोध्या में श्री राम के अभिषेक की तैयारियां हो रही हैं। संध्या समय हर्षित मन से महाराज दशरथ कैकई के महल में पहुंचे, किंतु वहां रानी के कोप भवन में होने का समाचार सुनते ही सहम गए। आशंका ने उनके पांव बांध लिए। जिनकी भुजाओं में इंद्र का बल है, राजे जिनका मुंह जोहते रहते हैं, वही राजा पत्नी के क्रोध की कल्पना करके सूख से गए। आशंकित अवस्था में वो रानी के पास पहुंचे, जो मोटे मलिन वस्त्र धारण कर भूमि पर लेटी थीं, आभूषण शरीर से उतार फेंके थे। राजा ने रानी से रूठने का कारण पूछा। उसे रुष्ट करने वाले मनुष्य तो क्या देवताओं का भी विनाश कर देने का वचन देते हैं। अपना वचन निभाने के लिए श्री राम की सौगंध उठाते हैं। राजा के वचन तथा राम की सौगंध का विचार कर रानी उठकर गहने पहनने लगी, जैसे कोई वन्य कन्या मृग को देखकर उसके लिए फंदा तैयार करने लगी हो। राजा पुलकित हुए और अगले दिन राम को युवराज पद देने का शुभ समाचार सुनाया। यह सुनकर कैकई के कठोर हृदय में ऐसी टीस उठी जैसे किसी ने पका हुआ फोड़ा छू दिया हो।

0: आकाशवाणी पटना से अभी आप सुन रहे थे रामचरितमानस से पाठ, मुख्य स्वर ए हरिहरन का था। आकाशवाणी पटना से अब सुनिए कार्यक्रम स्वास्थ्य सूचनाएं।
1: श्रोताओं, स्वास्थ्य चर्चा में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ स्टूडियो में यहाँ पर उपस्थित हैं डॉक्टर पल्लव नारायण सिंह। आप पटना के जाने माने अस्पताल में मेडिसिन विभाग में वरिष्ठ चिकित्सक हैं।
2: जी नमस्कार।
1: आज का हमारा विषय है हृदय रोग, खान पान और जीवन शैली। तो डॉक्टर साहब, खान पान और जीवन शैली जो आजकल की चल रही है, उसके कारण से हृदय रोग पर क्या असर पड़ता है और क्या होने की संभावना रहती है, कृपया बताएं हमारे श्रोताओं को।
2: जी, आजकल का जो हृदय रोग है, जो आजकल बमूमन अभी युवाओं में और प्रौढ़ अवस्था और उसके बीच जो वयस्क हैं, इन सभी को जो सबसे ज़्यादा जो दिक्कत दे रही है, ये हमारा खान पान और रहन सहन ही है। हम लोग पहले इस बीमारी से इतनी नहीं ग्रसित थे, लेकिन जैसे जैसे हमने दूसरी बीमारियों को भी एक्वायर किया, जैसे कि डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, लेकिन सबका जड़ कहीं ना कहीं हमारा खान पान और रहन सहन ही है। जैसे कि पहले के ज़माने में क्या होता था कि लोग फिजिकल वर्क या फिर बोले हाथ से काम करना, दूर तक चलना, ये सब शारीरिक काम तो बहुत ज़्यादा करते थे, लेकिन जैसे जैसे जीवन शैली में बदलाव आया, हमारा काम अब टेबल पर बैठकर ज़्यादा हो रहा है, हम लोग उतने मूवमेंट नहीं कर रहे। इससे क्या हो रहा है कि हम लोग का वजन उतने अच्छे से मेंटेन नहीं कर रहे, जो हम लोग खा पा रहे हैं वो हम उतने वेस्ट नहीं कर रहे, और हमारा मोटापा और एक कहिए कि सेंट्रिपिटल ओपेसिटी, पेट के अराउंड जो फैट जमा होना, वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो ये बहुत बड़ा कारण है हमारे हृदय रोग के बढ़ावे का। दूसरा जो है जीवन शैली में, मैं कहूँगा कि खान पान। खान पान में भी अब क्या हुआ है कि हम लोग प्रोसेस्ड चीज़ें बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि आमतौर पे पहले जो होता था सिर्फ तेल यूज होता था, बहुत हुआ तो डालडा घी, अभी क्या है कि हम लोगों ने चीज़, बटर और बहुत सारी चीज़ें हैं, पिज्ज़ा नाम लीजिए और हाजिर हैं बाजार में, ऐसे ऐसे चीज़ों का उत्पादन भी बढ़ा है और कंजम्पशन भी बढ़ा है, खास करके बच्चों में बढ़ गया है। तो अभी देखते हैं कि पहले से बहुत ज़्यादा बच्चे मोटापा का शिकार हो रहे हैं, और वही मोटापा कहीं ना कहीं आगे बड़े में भी कन्वर्ट हो रहा है, उनका भी हो रहा है। तो अब क्या हो रहा है कि हम लोग को जो शरीर में है चर्बी की मात्रा और वसा की मात्रा बढ़ती जा रही है, और ये हृदय रोग का एक बहुत ही प्रमुख कारण है। जो दूसरा और जो हम कहना चाहेंगे आज के युवाओं को, जो कि नशे की आदत, उसमें सबसे जो

0: पर आता है, सिगरेट आता है। हालांकि शराब, गांजा ये सब भी कारण होते हैं, लेकिन जो हृदय रोग में जो सबसे ऊपर रखा गया है वो है सिगरेट। सिगरेट अगर आप अमूमन दिन में 2-3 भी पीते हैं या हफ्ते में 5-7 भी पीते हैं, तो वो इतना डैमेज कर देता है कि आपकी जो धमनियाँ धीरे धीरे ख़राब होने लगती है, उसमें खून के थक्के जमने चालू हो जाते हैं। तो ये सबसे बड़ी ज़रूरत है आज की, कि हम धूम्रपान से बचें, खास करके हर नशे से बचें, लेकिन धूम्रपान तो बिल्कुल ही ना करें। दूसरा है खान पान में जो होता है वो फैट की मात्रा को कम से कम, फैट मतलब जितना भी है चीज़, बटर, तेल, घी से बना या ज़्यादा छाना हुआ, उनको अपने खाने के प्रयोग कम से कम करें। तीसरा जो है ताजी फल सब्जियां, इनका प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें। इनमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो हमारे शरीर के खून के बहाव को बढ़ाने में मदद करता है और हमारे दिल को हेल्दी रखता है। कितना भी हेल्दी हार्ट ऑयल हो, कितना भी हो, प्रयोग कम से कम करें। ये मत चले जाए कि बाजार में ये बहुत हेल्दी ऑयल आया है, इसे हम जितना चाहे उतना यूज कर सकते हैं, ये भुलावे में कभी ना जाए। हमेशा कोशिश करें कि कम से कम तेल और घी का प्रयोग किया जाए।
1: एक बात और पूछना चाहेंगे कि आजकल की जो नगरी संस्कृति है
0: जी
1: उसमें ज़्यादा मतलब ऑफिस में तो बैठकर काम करना ही पड़
0: जी
1: जाता
0: जी
1: है,
0: जी
1: तो किस तरीके से उनकी जीवन शैली को सुधारा जाए, या कितना व्यायाम किया जाए, योग किया जाए, मतलब क्या किया जाए ताकि वो स्वस्थ रह सकें और हृदय रोग कम से कम होने की संभावना उनमें हो?
0: जी ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। आजकल की जो जीवन शैली, जो ऑफिस वाली गोइंग है, जो कि बैठ के काम कर रहे हैं, पर उनको अपने लिए समय निकालने की जरूरत है। दिमाग में ये बनाने की जरूरत है कि हम दिन भर तो बैठे रहते हैं, तो कभी न कभी तो चलना होगा, कुछ न कुछ शरीर को थकाना होगा, कुछ न कुछ फिजिकल। तो जो लोग, अगर जिन्हें सुबह मौका मिल जाता है या जो जिम जा सकते हैं, अगर जिम नहीं भी जा सकते तो आसपास खुली मैदान, खुली जगह हो जहाँ पे आप टहल सकते हैं, तो आप सुबह टहलिए, सुबह बहुत अच्छा होता है। लेकिन आपको अगर मौका मिलता है कि शाम में टहल सकते हैं तो शाम में टहलिए, रात में भी अगर मौका मिले खाने के बाद तो भी आप टहल सकते हैं। दूसरा जो आप कर सकते हैं कि मान लिया कि आप ऑफिस जाते हैं, आपके ऑफिस में लिफ्ट लगा है, एस्केलेटर लगा है और आपका 2 ही तल्ला पे है, आप उतनी दूर आराम से पैदल सीढ़ियों पर चढ़, तो सीढ़ियों का प्रयोग करें। मैं तो कहूँ कम से कम चढ़ने के लिए सीढ़ियों का प्रयोग करें, बहुत जल्दबाजी में ना हो तो हमेशा सीढ़ियों का प्रयोग करें, घर में भी सीढ़ियों का प्रयोग करें। हाँ, जिनको घुटनों का तकलीफ हो, बहुत वृद्ध हो, उनके लिए नहीं ये लागू होता है। तीसरा जो आप कर सकते हैं कि जब आप ऑफिस में बहुत लंबे समय तक के लिए बैठते हैं, तो बीच बीच में आपको चाहिए कि आप वाटर कूलर तक ही, अपने कॉफी मशीन तक ही, या फिर जो भी हो बाहर तक ही 10 मिनट के लिए या 5 मिनट के लिए बीच में ब्रेक लेके 5 मिनट टहल लीजिए, कहीं ना कहीं थोड़ी जगह रहती है। तो ये सब जीवन शैली में छोटे छोटे बदलाव करके आप अपने आप को थोड़ा मोबाइल कर सकते हैं। योग साधना हमेशा से बहुत अच्छा रहा है, हमारा देश ही योग के लिए जाना जाता है। तो जो लोग सुबह सुबह योगा कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं, वो जरूर करें, जितनी देर कर सकते हैं, 5 मिनट, 10 मिनट, वो उनके दिल के लिए बहुत अच्छा रहेगा और जरूर करें।
1: जी, तो हमें उम्मीद है आपकी इन बातों से और सलाहों से हमारे श्रोताओं को बहुत ही फायदा होगा और हृदय रोग से अपने आप को बचाव कर सकेंगे। डॉक्टर पल्लव नारायण सिंह, आप हमारे स्टूडियो में आए और इतनी अच्छी जानकारियों को बताया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जी धन्यवाद।
2: अभी आपने स्वास्थ्य सूचनाएं सुनी। मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। अब सुनिए हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 7:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम हाल चाल। 7:15 पर हम आपको सुनवाएंगे सूफी संगीत। सात बजकर 25 मिनट पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे पंडित भीमसेन जोशी का राग रामकली में ख्याल गायन। उर्दू कार्यक्रम अंजुमन हमेशा की तरह होगा 9:10 पर। फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रस मंजरी सुनिएगा सुबह 10 बजे। दस बजकर 30 मिनट पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे अजित कुमार लाभ के स्वर में गीत और भजन। फिल्म संगीत आप सुनेंगे 11 बजे से। बिहार का लोक संगीत ये कार्यक्रम होगा दिन में 12 बजे। महिलाओं का कार्यक्रम नारी जगत आप सुनेंगे 12:30 पर। किस लिए, ये कार्यक्रम होगा दिन में 1:05 पर। इसमें आज आप सुनेंगे

0: ये चंद्रभूषण कुमार की भेंट वार्ता, विषय होगा छात्र में ज्ञान और नैतिकता जगाने में विद्यालय की भूमिका कितनी अहम है। फिल्म संगीत हम आपको सुनवाएंगे दिन में 1:30 पर और दोपहर 2:30 पर। 2:10 पर रोजगार सूचना प्रसारित की जाएगी। युवाओं का कार्यक्रम युवाणी आप सुनेंगे। शाम 4:30 पर मगही कार्यक्रम मागधी का प्रसारण किया जाएगा। शाम 5:30 पर ग्रामीण भाइयों का कार्यक्रम चौपाल होगा। शाम 6:30 पर और हमारे किसान भाई खेती गृहस्थी कार्यक्रम सुनेंगे। शाम 7:52 पर होगा हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम सामयिक चर्चा। रात्रि 8:07 पर आप सुनेंगे सरकार के 12 साल पूरे होने पर विशेष कार्यक्रम, थीम होगा संस्कृति। रात्रि 9:30 पर होगा राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका कार्यक्रम चित्र भारती और रात्रि 10 होगा संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। अभी आप सुन रहे थे हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। इस समय 6:55 होने को है। अब हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार होंगे।
1: संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचिका निधिः झाः। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य ओडिशा पश्चिम बंगयोः प्रवासे भविष्यति। ओडिशायाः मयूरभंज मंडले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वर्यायाः 68वें जन्म दिवसोत्सवे प्रधानमंत्री तया सह पहाड़पुर ग्रामे सम्मिलितो भविष्यति। तदनन्तरं तौ नेतारौ ओडिशा राज्ये मोहन चरण माझी प्रशासनस्य वर्षद्वयस्य कार्यकाल पूर्त्यवसरे एकां विशाल जनसभां संबोधयिष्यतः, यत्र हि 47,000 कोटितोप्यधिक रूप्यकाणां विकासात्मक परियोजनानां शुभारम्भो भविष्यति। पश्चिमबंगे प्रधानमंत्री पश्चिमबंग दिवसावसरे भागं ग्रहीष्यति, यत्र हि अनेकासां प्रणालीनां शिलान्यासम् उद्घाटनं च विधास्यति। अस्मिन्नेव अवसरे प्रधानमंत्री पीएम कृषि सम्मान निधिं प्रसारयिष्यति, येन देशस्य 9.44 कोटि कृषकेभ्यः 80+8,18,000 रूप्यकाणि साक्षात् तेषां वित्तकोशेषु स्थानांतरितानि भविष्यन्ति। एनटीए इति राष्ट्रीय परीक्षा संघटनेन प्रख्यापितं यत् श्वः आयोज्यमानायाः नीट यूजी 20-26 पुनः परीक्षायाः निष्पक्षं पारदर्शं च संचालनाय वयं पूर्णरूपेण सज्जाः। परीक्षेयं भारतस्य 150+500 नगरेषु, विदेशस्य च 14 नगरेषु आयोज्यन्ते। इत्यन्तराले एनटीए संस्था परीक्षार्थीनां साहाय्यार्थं एकां आधिकारिक व्हाट्सएप वाहिनीमपि निरमात्। संघटनेन स्पष्टीकृतं यत् सर्वे आधिकारिकाः सन्देशाः केवलं तस्य प्रमाणीकृत संख्यातः एव प्रेषयिष्यन्ते। सा संख्या वर्तते 9178279802877 इति। विदेशमंत्री डॉक्टर एस जयशंकर प्रत्यपादीत यत् अशांत जगति भारतेन स्वकीय राष्ट्रहितस्य रणनीतिक स्वायत्ततायाः अथ बहुध्रुवीयतायाः रक्षणं कुर्वता, सहैव विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रैः सह स्वसंबंधाः इतोपि सुदृढाः करणीयाः। नवदिल्ल्यां भारत अमेरिका मञ्चस्य गोष्ठ्याः सत्रं संबोधयन् डॉक्टर जयशंकरः अवोचत् यत् अनेक जटिलतासु सत्सु अपि भारतामेरिका देशयोर सहभागित्वं विभिन्नेषु क्षेत्रेषु अविरतं वर्धमानमस्ति। तेन स विशेषं प्रकटीकृतं यत् यथा यथा भारतस्य वैश्विक उत्कर्षो भविष्यति तथा तथा तस्य राष्ट्रिय हितानि अपि विशालानि विविधानि च भविष्यति।

0: भविष्यन्ति। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ह्यः नवदिल्ल्याम् आयोजितस्य एकस्य कार्यक्रमस्यान्तर्गतं प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजनायां चतुःशताधिक द्विसहस्र कोटि रूप्यकाणां प्रोत्साहन राशिं वितरितवान्। एकस्मिन् महत्वपूर्णे निर्णये सर्वोच्च न्यायालयः उदघोषयत् यत् निर्धारिते पदपथि चलनस्य अधिकारः नागरिकस्य मौलिकाधिकारो वर्तते। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा अथ न्यायमूर्ति एएस चन्द्रूरकर इत्यनयोः प्रतिपादितं यत् निर्धारित पदपति चलनस्य नागरिकस्य अयं मौलिको अधिकारः प्राथमिकः अस्ति, सहैव यन्त्रीकृत वाहनानां गमनागमनस्य अपेक्षया अस्य प्राथमिकता भविष्यति। फीफा विश्वकप प्रतियोगितायां मैक्सिको दलेन दक्षिण कोरिया दलं 1-0 अंकान्तरालेन पराजितम्। क्रिकेट क्रीडायां भारत अफगानिस्तानयोर्मध्ये तृतीया अन्तिमा च एकदिवसीय स्पर्धा अद्य अपराह्णे चेन्नई नगरस्य एमए चितम्बरम क्रीडांगणे भविष्यति। अवधेयं यत् एषः द्वन्द्वः अपराह्णे 1:30 समारप्स्यते। इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से ओडिशा और पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। ओडिशा में वे आज मयूरभंज जिले के पहाड़पुर गांव में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से उनके 68वें जन्मदिन पर भेंट करेंगे। इसके बाद राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में मोहन चरण मांझी सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे। इस दौरान वे 47,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। पश्चिम बंगाल के 2 दिन के दौरे में आज प्रधानमंत्री हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंग दिवस समारोह में शामिल होंगे। वे राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। श्री मोदी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त भी जारी करेंगे। कल प्रधानमंत्री कोलकाता में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में भाग लेंगे। देश में कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने का पहला वाणिज्यिक संयंत्र ओडिशा के झारसुगुड़ा जिले में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इस कोयला गैसीकरण परियोजना की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में एक समारोह में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। योजना का उद्देश्य रोजगार सृजन में तेजी लाना और सभी क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा का विस्तार करना है। श्री मोदी ने कहा कि इस योजना का लक्ष्य पहली बार रोजगार पाने वालों को सशक्त बनाना और युवाओं तथा उद्योग के बीच सेतु का निर्माण करना है।
2: दुनिया भारत के युवाओं की क्षमता को भली भांति पहचानने लगी है और ऐसे समय में हमारी कोशिश है कि भारत का हर युवा अपनी क्षमता को अवसर में बदल सके। और इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आरंभ हुआ।
1: गृहमंत्री अमित शाह आज कोल्हापुर और इचलकरंजी के दौरे पर हैं। वे महालक्ष्मी मंदिर परिसर में विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन करेंगे और मंदिर क्षेत्र में पश्चिमी महाराष्ट्र मंदिर विकास योजना के तहत चल रही विकास परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। श्री शाह कोल्हापुर के पुलिस परेड ग्राउंड में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने विश्व के मौजूदा अस्थिर दौर में राष्ट्रीय हितों, रणनीतिक स्वायत्तता और विविध मतों के साथ संतुलन बनाए रखते हुए सभी देशों के साथ बेहतर संबंधों पर बल दिया है। कल शाम नई दिल्ली में भारत अमेरिका फोरम को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने जटिलताओं और चुनौतियों का सामना करते हुए विभिन्न क्षेत्रों में भारत और अमरीका की साझेदारी मजबूत करने पर जोर दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने बैंकों, परिसंपत्ति पुनर्गठन कंपनियों और ऋण लेने वालों के बीच साजिश पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। न्यायालय ने डूबे ऋण को निपटाने के तरीके पर भी सवाल उठाए। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति वी मोहन की पीठ ने कहा कि बैंक करदाताओं के पैसे ऋण के रूप में दे रहे हैं, लेकिन वसूलने के प्रभावी उपाय नहीं किए गए हैं। अदालत ने जनता के पैसे के दुरुपयोग पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि

0: राशि का उपयोग जन कल्याण में होना चाहिए। वरिष्ठ नौकरशाह विवेक अग्रवाल को वर्ष 2026-27 के लिए वित्तीय कार्रवाई कार्यबल का उपाध्यक्ष चुना गया है। वे ब्रिटेन के गाइल्स थॉमसन का स्थान लेंगे। श्री अग्रवाल वर्तमान में संस्कृति मंत्रालय में सचिव हैं। 17 से 19 जून के दौरान कार्यबल की पूर्ण बैठक में ये निर्णय लिया गया। विदेश मंत्रालय ने श्री अग्रवाल के चयन को भारत के लिए बड़ी जीत बताया है। उत्तर प्रदेश ब्रिक्स देशों के साथ व्यापार, प्रौद्योगिकी और निवेश संपर्क बढ़ा रहा है। राज्य सरकार ने बताया है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान ब्रिक्स देशों और साझेदार देशों को 5 अरब 36 करोड़ डॉलर मूल्य से अधिक का निर्यात किया गया। आगरा में ब्रिक्स एमएसएमई फोरम में ब्रिक्स देशों और सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम क्षेत्र के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम एकदिवसीय क्रिकेट मैच आज दोपहर चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा। मेजबान टीम 2-0 की बढ़त के साथ पहले ही श्रृंखला अपने नाम कर चुकी है। दोहा डायमंड लीग में भारत के जेवलिन खिलाड़ी नीरज चोपड़ा कल रात सीजन की पहली प्रतियोगिता में चौथे स्थान पर रहे। नीरज चोपड़ा ने अपने तीसरे प्रयास में 85.69 मीटर भाला फेंक कर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम हालचाल। श्रोताओं, इस कार्यक्रम में आज सबसे पहले जानेंगे इतिहास में आज का दिन के बारे में। आज है 20 जून। 20 जून को वैश्विक स्तर पर विश्व शरणार्थी दिवस, वर्ल्ड रिफ्यूजी डे मनाया जाता है। यह दिन युद्ध या उत्पीड़न के कारण अपना घर छोड़ने को मजबूर हुए लोगों के साहस को सम्मानित करने और उनके अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा समर्पित है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार यह दिन जबरन विस्थापित हुए लोगों की सुरक्षा और उनके पुनर्निर्माण में सहायता का संकल्प लेने का अवसर है। श्रोताओं, आज पश्चिम बंगाल स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। भारत में विशेष रूप से बंगाल क्षेत्र में इस दिन को पश्चिम बंगाल दिवस के रूप में भी मान्यता दी गई है। सन 1877 में आज ही के दिन मुंबई के ऐतिहासिक छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल्स को आम लोगों के लिए खोला गया था और सन 1756 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने कलकत्ता पर अंग्रेजों से जीत हासिल की थी। और आज के दिन महान भारतीय अभिनेता नसीरुद्दीन शाह का जन्मदिन है। श्रोताओं, बातों का सिलसिला जारी रहेगा। फिलहाल सुनते हैं इस गीत को।

श्रोताओं, अब बातें कुछ स्वास्थ्य संबंधी। महिलाओं के लिए योग बुढ़ापे को स्वस्थ, ऊर्जावान और दर्द मुक्त बनाने का एक प्राकृतिक और सबसे बेहतरीन माध्यम है। नियमित अभ्यास से जोड़ों के दर्द से राहत मिलती है, शरीर का संतुलन सुधरता है और मानसिक शांति बनी रहती है। महिलाओं के संपूर्ण स्वास्थ्य, चाहे शारीरिक हो या मानसिक, इसके लिए योग अत्यंत लाभकारी और प्रमाणित भी है। यह किशोरावस्था से लेकर मेनोपॉज तक जीवन के हर पड़ाव में हार्मोनल संतुलन, तनाव मुक्ति और लचीलापन बनाए रखने में मदद करता है। तो जीवन में योग अवश्य अपनाएं और स्वस्थ रहें।

अभी आप कार्यक्रम हालचाल सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। लीजिए अब सुनिए सूफी संगीत।

अभी आप कैलाश खेर की आवाज़ में सूफी संगीत सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलो हर्ट्स पर। अब प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में आज सुनिए पंडित भीमसेन जोशी का राग रामकली में ख्याल गायन। तबले पर इनकी संगति की है नाना मुले ने।

0: अभी आप पंडित भीमसेन जोशी का राग रामकली में ख्याल गायन सुन रहे थे। तबले पर इनकी संगति की थी नाना मुले ने। इसके साथ ही शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलो हर्ट्स पर।
1: आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें नया जोश है। देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: PIR at 90. एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। थोड़ी देर में हमारा अगला कार्यक्रम दिल्ली केंद्र से होगा। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: प्यारा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाएं, योग को जीवन का हिस्सा बनाएं। एक दिन नहीं, हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग।
0: करो योग, रहो
1: जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
2: लो फिर आ रहा 21 जून ला रहा नया संदेश, योग से जीवन बने विशेष, बढ़ती उम्र के साथ योग का साथ न्यारा, योग फॉर हेल्दी एजिंग, ये भरोसा हम सबका प्यारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाएं, योग को जीवन का हिस्सा बनाएं। एक दिन नहीं, हर दिन योग स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग। इस 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: का प्यारा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाएं, योग को जीवन का हिस्सा बनाएं। एक दिन नहीं, हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग।
0: करो योग, रहो निरोग।
1: इस 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
2: लो फिर आ रहा 21 जून ला रहा नया संदेश, योग से जीवन बने विशेष, बढ़ती उम्र के साथ योग का साथ न्यारा, योग फॉर हेल्दी एजिंग, ये भरोसा हम सबका प्यारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाएं, योग को जीवन का हिस्सा बनाएं। एक दिन नहीं, हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग। इस 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: लो फिर आ रहा।

0: सबका प्यारा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाएं, योग को जीवन का हिस्सा बनाएं। एक दिन नहीं, हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग।

0: 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
1: लो फिर आ रहा 21 जून ला रहा नया संदेश, योग से जीवन बने विशेष, बढ़ती उम्र के साथ योग का साथ न्यारा, योग फॉर हेल्दी एजिंग, ये भरोसा हम सबका प्यारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाएं, योग को जीवन का हिस्सा बनाएं, एक दिन नहीं हर दिन। योग स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग। इस 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
2: आया खुशियों का पैगाम टीम किसान, टीम किसान।
3: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 20 जून को हुगली पश्चिम बंगाल से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त जारी करेंगे। इसके तहत 9 करोड़ 44 लाख से अधिक किसानों के खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की सम्मान राशि सीधे हस्तांतरित की जाएगी। पीएम किसान की इस किश्त के साथ ही किसानों को हस्तांतरित कुल राशि 4,46,000 करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगी, जो करोड़ों किसान परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान कर रही है।
2: अन्नदाता का बढ़ता मान पीएम किसान।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ओडिशा के मयूरभंज में 47,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी पश्चिम बंगाल के हुगली से पीएम किसान योजना की 23वीं किस्त जारी करेंगे। 9 करोड़ से अधिक किसान होंगे लाभान्वित। वरिष्ठ नौकरशाह विवेक अग्रवाल वित्तीय कार्रवाई कार्यबल के उपाध्यक्ष नियुक्त। भारत ने आतंकवाद वित्त पोषण से निपटने की प्रतिबद्धता दोहराई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की कल होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले आज राष्ट्रव्यापी मॉक ड्रिल। सेबी ने मृत निवेशकों के शेयर उनके कानूनी उत्तराधिकारियों को हस्तांतरित करने की प्रक्रिया आसान बनाई। और भारत और अफगानिस्तान के बीच एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच आज चेन्नई में। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से ओडिशा और पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री आज ओडिशा के मयूरभंज जिले के पहाड़पुर गांव में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से उनके 68वें जन्मदिन पर भेंट करेंगे।
5: राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मिलकर पवित्र संथाली जोहरा और हो जोहरा स्थलों पर पूजा अर्चना करेंगे और स्थानीय शिक्षण और कौशल विकास संस्थानों का दौरा करेंगे। इससे आदिवासी समुदायों के सशक्तिकरण के प्रति देश की प्रतिबद्धता जाहिर होगी। इसके बाद दोनों नेता रायरंगपुर में एक बड़े सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री 47,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और ऊर्जा, परिवहन, स्वास्थ्य, शिक्षा, सिंचाई और औद्योगिक बुनियादी ढांचे जैसे प्रमुख क्षेत्रों में नई परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। राष्ट्रपति मुर्मू और प्रधानमंत्री मोदी एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। रायरंगपुर से प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार।
4: पश्चिम बंगाल के दौरे में आज प्रधानमंत्री हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंग दिवस समारोह में शामिल होंगे। वे राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। श्री मोदी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त भी जारी करेंगे। इसके तहत देश के 9 करोड़ 44 लाख किसानों के बैंक खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे अंतरित की जाएगी। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
6: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुगली के तारकेश्वर में पश्चिम बंगाल दिवस समारोह में शामिल होंगे और कलकत्ता में रेड रोड पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में नेतृत्व करेंगे। इसी अवसर पर वे 3 स्वदेशी युद्ध पोत INS दुनोगिरी, INS संशोधक और INS अग्रय राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री कई महत्वपूर्ण परियोजना का भी उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। कृषि क्षेत्र में श्री मोदी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत करेंगे। संदीपन दास गुप्त के साथ काशफिन नाहर, आकाशवाणी कोलकाता।
4: गृह मंत्री अमित शाह आज कोल्हापुर और इचलकरंजी के दौरे पर हैं। वे महालक्ष्मी मंदिर परिसर में विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन

0: करेंगे और मंदिर क्षेत्र में पश्चिमी महाराष्ट्र मंदिर विकास योजना के तहत चल रही विकास परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। श्री शाह कोल्हापुर के पुलिस परेड ग्राउंड में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। वरिष्ठ नौकरशाह विवेक अग्रवाल को वर्ष 2026-27 के लिए वित्तीय कार्रवाई कार्यबल का उपाध्यक्ष चुना गया है। वे ब्रिटेन के गाइल्स थॉमसन का स्थान लेंगे। कार्यबल की पूर्ण बैठक में ये निर्णय लिया गया। विदेश मंत्रालय ने श्री अग्रवाल के चयन को भारत के लिए बड़ी जीत बताया है। मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस नियुक्ति से आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने और गैर कानूनी वित्तीय नेटवर्क के खिलाफ संघर्ष की भारत की प्रतिबद्धता मजबूत होती है। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के तहत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव हुए हैं। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज जानकारी सशक्त भारत के संकल्प को साकार करने वाली सरकार की परिवर्तनकारी पहलों के बारे में।
1: पिछले 12 वर्षों में सरकार ने भारत के हाईटेक क्षेत्र में बड़ा बदलाव लाने का काम किया है। सशक्त भारत के दो महत्वपूर्ण आधार हैं सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का विकास और स्पेस स्टार्टअप्स की तेजी से बढ़ती संख्या। सरकार की नीतियों और फैसलों से सेमीकंडक्टर क्षेत्र में सिर्फ योजनाएं ही नहीं बनी बल्कि अब निर्माण और डिजाइन से जुड़े कई इकाई भी काम कर रहे हैं। दिसंबर 2021 में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन शुरू किया गया। इसके लिए 76,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया। इस योजना के तहत सिलिकॉन फैब कंपाउंड सेमीकंडक्टर इकाई असेंबली और टेस्टिंग सुविधाओं तथा चिप डिजाइन के लिए 50% तक वित्तीय सहायता दी गई। साल 2026 में सरकार ने सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 शुरू किया जिसके लिए 1,000 रुपए का प्रावधान किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य उद्योगों के सहयोग से शोध और प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करना नई तकनीकों का विकास करना और भविष्य के लिए कुशल मानव संसाधन तैयार करना है। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मिशन 1.0 ने इस जटिल उद्योग की मजबूत नींव रखी है।
2: हम अपने सेमीकंडक्टर मिशन के पहले चरण में ये हासिल कर पाए हैं। 75,000 से ज्यादा इंजीनियर इस क्षेत्र में प्रशिक्षित हो चुके हैं। 300 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज छात्रों को चिप डिजाइन करना सिखा रही हैं और भारत में 2 नैनोमीटर चिप्स डिजाइन की जा रही हैं जो दुनिया के सबसे एडवांस चिप्स हैं। इनमें एनवीडिया और इंटेल की चिप्स भी शामिल हैं और ये सभी अब भारत में ही डिजाइन की जाती हैं।
1: वहीं भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 ने निजी कंपनियों को अंतरिक्ष क्षेत्र में पूरी तरह काम करने की अनुमति दी है। अब निजी संस्थाएं रॉकेट लॉन्च उपग्रह निर्माण और संचालन डेटा संग्रह और वितरण तथा ग्राउंड स्टेशन जैसी गतिविधियां कर सकती हैं। इस नीति के बाद भारत में स्पेस स्टार्टअप्स की संख्या 2014 में केवल 1 से बढ़कर 400 से अधिक हो गई है। इससे देश की निजी अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को नई गति मिली है। भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था वर्तमान में लगभग $8 अरब से अधिक की है और अगले 8 से 10 वर्षों में इसके 4 से 5 गुना बढ़कर 40 से 45 अरब डॉलर तक पहुंचने की संभावना है। आकाशवाणी के साथ बातचीत में अनिल प्रकाश स्पेस इंडस्ट्री एसोसिएशन ऑफ इंडिया के महानिदेशक ने बताया कि भारत में अब 400 से अधिक स्पेस टेक स्टार्टअप्स हैं।
3: नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में स्पेस सेक्टर रिफॉर्म स्पेस की स्थापना और प्राइवेट पार्टिसिपेशन में को बढ़ावा देने वाली नीतियों ने एक नई क्रांति की शुरुआत की है। आज भारत में 400 से अधिक स्पेस टेक स्टार्टअप कार्यरत है जो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल अर्थ ऑब्जर्वेशन और डाटा सर्विस जैसे क्षेत्रों में इनोवेशन कर रहे हैं।
1: सेमीकंडक्टर मिशन की उपलब्धियों और तेजी से बढ़ती निजी अंतरिक्ष क्षेत्र के माध्यम से भारत विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA कल होने वाली नीट UG पुनः परीक्षा से पहले आज राष्ट्रव्यापी अभ्यास संचालित करेगा। परीक्षा से पहले मानक तैयारी के निरीक्षण के लिए ये मॉक ड्रिल की जा रही है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड SEBI ने मृत निवेशकों के शेयरों के आसानी से हस्तांतरण के उद्देश्य से कानूनी उत्तराधिकारी और दावेदारों को प्रतिभूति अंतरित किए जाने के तरीके को सरल बनाया है। कल मुंबई में बोर्ड की 214वीं बैठक में SEBI ने बाजार क्षमता बढ़ाने, अनुपालन में आसानी और नियामक व्यवस्था में मजबूती के लिए कई सुधारों को मंजूरी दी। और अब खेल खबरें। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच आज दोपहर चेन्नई के एम ए चिदम्बरम स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा। भारत 2-0 की बढ़त के साथ पहले ही श्रृंखला अपने नाम कर चुका है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
4: धन्यवाद विश्वास। टेलीग्राम पर केंद्र सरकार की रोक पर दिल्ली उच्च न्यायालय का फैसला आज के सभी अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। दैनिक जागरण की सुर्खी है, टेलीग्राम पर प्रतिबंध सही। फुटपाथ पर पैदल चलना लोगों का मौलिक

0: a database of over 1.3 crore suspects, and Connex reports The Hindu. And with that, it's back to you, Naresh.
1: Thank you, Subhadra. But now, before we end the bulletin, the headlines once again. President Draupadi Murmu and Prime Minister Narendra Modi to inaugurate and lay foundation stone of development projects worth over 47,000 crore rupees in Odisha's Mayurbhanj district today. Prime Minister Modi to release 23rd installment of the PM Kisan to over 9 crore farmers from Hooghly in West Bengal. Senior Indian bureaucrat Vivek Agrawal appointed as Vice President of Financial Action Task Force FATF. New Delhi reiterates its commitment to combat terror financing. NTA to conduct nationwide mock drill today ahead of NEET UG re-examination scheduled for tomorrow. SEBI clears channel for easier transfer of shares to legal heirs of deceased investors. And in men's cricket, India to take on Afghanistan in third and final ODI of series in Chennai this afternoon. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
0: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं शबाना बेगम। पहले इस वक्त की खास खबरें। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू और वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज ओडिशा के मयूरभंज जिले में 47,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत वाले तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे और संगे बुनियाद रखेंगे। वजीर आजम मोदी मगरीब बंगाल के शहर हुगली से 9 करोड़ से ज्यादा किसानों के लिए पीएम किसान स्कीम की 23वीं किस्त जारी करेंगे। भारत के सीनियर अफसर शाह विवेक अग्रवाल को माली एक्शन टास्क फोर्स FATF का नायब सदर मुकर्रर किया गया है। भारत ने दहशतगर्दी को माली मदद फराहम करने की लानत से निमटने के अपने अज़्म को दोहराया है। NTA नीट UG के दोबारा इम्तिहान से पहले आज मुल्कगीर सतह पर मशक करेगी। ये इम्तिहान कल कराया जाएगा। सेबी ने फौतशुदा सरमायाकारों के कानूनी वर्सा को शेयर्स की आसान मुंतकली के तरीकेकार की मंजूरी दे दी है। और मर्दों के क्रिकेट में आज दोपहर चेन्नई में सीरीज के तीसरे और आखिरी ODI में भारत का मुकाबला अफगानिस्तान से होगा। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज सुबह ओडिशा का दौरा कर रहे हैं, जहां वो सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू से उनके आबाई जिले मयूरभंज में मिलेंगे। जनाब मोदी का यह दौरा सदर जमहूरिया के 68वें यौम पैदाइश और ओडिशा सरकार के 2 साल पूरे होने के मौके पर हो रहा है। वजीर आजम मोदी आज देर गए मगरीब बंगाल के शहर हुगली से पीएम किसान स्कीम के तहत 9 करोड़ 44 लाख किसानों के बैंक खातों के लिए 18,880 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम जारी करेंगे। इसमें मगरीब बंगाल के 45 लाख से ज्यादा किसानों के खातों में भेजे जाने वाले 900 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम भी शामिल है। पेश है वजीर आजम के दौरे की खबरें देने वाले हमारे नामानिगार की एक रिपोर्ट।
2: वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज 2 रोजा दौरे पर मगरीब बंगाल पहुंच रहे हैं। रियासत में बीजेपी के इख्तदार के बाद ये उनका पहला दौरा है। अपने क्याम के दौरान वो हुगली में ताराकेश्वर में मगरीब बंगाल के दिन की तकरीबात में शिरकत करेंगे, कोलकाता के रेड रोड पर बैन अल-अक़वामी योग डे प्रोग्राम की क्यादत करेंगे और मुल्क ही में तैयार किए गए 3 जंगी जहाजों INS दोनागरी, INS संशोधक और INS एग्रे को मुल्क के नाम वक्फ करेंगे। वो बहुत से अहम प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे और संगे बुनियाद रखेंगे। जनाब मोदी ज़रात के सूबे के लिए मगरीब बंगाल में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का भी बाकायदा आगाज करेंगे, जिसके तहत तकरीबन 50 लाख किसानों को बीमा फराहम किया जाएगा। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मुजीब अख्तर।
0: वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल दिवस के मौके पर मगरीब बंगाल के अवाम को मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि इस रोज एक ऐसी रियासत का जश्न मनाया जाता है जिसने अदब, मौसीकी, आर्ट, रूहानियत, साइंस, तिजारत और समाजी इसलाह की शक्ल में मुल्क की तारीख में जबरदस्त किरदार अदा किया है। वजीर आजम ने कहा कि मगरीब बंगाल की तारीख में इस दिन की खास अहमियत है। भारत ने पिछले 12 साल में वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क्यादत में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के उसूलों के तहत بہت سی قابل ذکر تبدیلیاں کی ہیں۔

0: इनेकाद के लिए पूरी तरह तैयार है। ये इम्तिहान कल होना है। एक बयान में एनटीए ने कहा कि ये इम्तिहान मुल्क के 551 शहरों और बैरून मुल्क के 14 शहरों में मुनक़द किया जाएगा। तकरीबन 22,79,000 उम्मीदवार इम्तिहान में शरीक होंगे। एजेंसी ने मजीद कहा कि इम्तिहान को मुनसिफाना और शफाफ तौर से कराए जाने को यकीनी बनाने के लिए कसीर सतही सिक्योरिटी निज़ाम नाफिज किया गया है। दोबारा इम्तिहान दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 पर कलम और कागज के तरीक़ेकार के तहत कराया जाएगा। शिवांग की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग।
1: इसके अलावा दिल्ली हाई कोर्ट ने कल दोबारा इम्तिहान से पहले टेलीग्राम को आर्जी तौर पर ब्लॉक करने के मरकज के फैसले को बरकरार रखा और कहा कि प्लेटफॉर्म का निजाम गैर कानूनी मवाद के तेज रफ्तार फैलाव को मुमकिन बनाता है और ये कि महदूद नौयत के दीगर इकदामात इम्तिहान में धोखाधही को रोकने में नाकाम रहे थे। हम अपनी सीरीज आकाशवाणी पर लोगों के पद्म की अगली किस्त में एक सामाजिक कारकुन और कारोबारी जज्बे के हामिल एसकेएम मिलानंदन का जिक्र कर रहे हैं, जिन्हें पद्म भूषण से नवाजा जाएगा। आप ये प्रोग्राम आज 100.1 आकाशवाणी गोल्ड पर सुबह 9:10 से सुन सकते हैं। ये प्रोग्राम आप न्यूज ऑन एआईआर ऐप और न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी सुन सकते हैं। भारत के सिक्योरिटीज और एक्सचेंज बोर्ड सेबी ने कुछ असलाहत की मंजूरी दी है, जिनका मकसद मार्केट की इस्तेदाद में बेहतरी लाना, दरकार दस्तावेजात की फरहमी में आसानी पैदा करना और माली शोबे में जाबता जाती फ्रेमवर्क्स को मुस्तहकम बनाना है। कल मुनदा 214वीं मीटिंग में सेबी बोर्ड ने फौत शुदा सरमायाकार के कानूनी जानशीनों और दावेदारों के लिए सिक्योरिटीज की मुंतकली को आसान बनाया है। ये फैसला छोटी रकम वाले दावों को जल्द निपटाने के मकसद से किया गया है, ताकि इसके लिए कम से कम दस्तावेजात दरकार हों। सेबी ने कुछ मामलों में पैन की लाजमियत को भी खत्म कर दिया है और क्यूआर कोड वाले डेथ सर्टिफिकेट्स को तस्लीम कर लिया है। सेबी ने स्टॉक एक्सचेंजों के जरिए खुली मार्केट में अपने फरोख्त किए गए शेयर्स को वापस खरीदने का निजाम भी दोबारा शुरू करने का फैसला किया है। ये निजाम इस साल 1 अगस्त से दोबारा शुरू हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने बैंकों, असासे की तामीर नौ करने वाली कंपनियों और कर्जा देने वाली कंपनियों के माबेन बकौल उसके गहरी सांठगांठ पर शदीद तशवीश जाहिर की है, जिससे उस तरीके पर शकों को शुबहात पैदा हो जाते हैं जिसके तहत कर्ज नादहिंदगी के मामलात निपटाए जा रहे हैं। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस वी मोहन पर मुश्तमिल एक बेंच ने कल कहा कि बैंक टैक्स दहिंदगान से हासिल किया गया पैसा कर्ज के तौर पर दे रहे हैं, लेकिन इन कर्जों को वापस लेने की अक्सर मौसर कोशिशें नहीं की जा रही। अदालत ने कहा कि उसे सरकारी पैसे के गलत इस्तेमाल पर तशवीश है, जिसे अवाम की बहबूद के लिए खर्च किया जाना चाहिए। योगा का बैनुल अक्वामी दिन 2026 कल पूरी दुनिया में मनाया जाएगा। ये 12वां योगा का बैनुल अक्वामी दिन होगा, जिसका मौजू है सेहतमंद बुढ़ापे के लिए योगा, जो सभी उम्र के लोगों के लिए योगा की अहमियत पर जोर देता है। इस सिलसिले में तकरीबात के हिस्से के तौर पर वजारत सकाफत मुल्क के 100 अहम मकामात पर योगा के बैनुल अक्वामी दिन के ताल्लुक से खुसूसी तकरीबात का एहतमाम करेगी। असल तकरीब वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क्यादत में कोलकाता के तारीखी रेड रोड पर मुनाकिद होगी, जहां वजीर आजम कॉमन योगा प्रोटोकॉल में मुल्क की क्यादत करेंगे। मगरीब बंगाल में खलीज बंगाल से उठने वाले मानसून के सरगर्म बादलों और शदीद रतूबत के सबब हिमालय से मुत्तसिल अजला में आज से इंतहाई शदीद बारिश का इम्कान है। कोलकाता और मजाफात के कई इलाकों ने इस मगरीब बंगाल के कुछ जनूबी जिलों में कल मूसलाधार बारिश हुई, जिसके सबब लोगों को दिन के मसरूफ दफ्तरी औकात में पानी भर जाने की सूरत हाल का सामना करना पड़ा। मर्दों के क्रिकेट में भारत और अफगानिस्तान के दरमियान जारी 3 एक रोजा बैनुल अक्वामी मैचों की सीरीज का तीसरा और आखिरी मैच आज दोपहर चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में खेला जाएगा। ये मैच दोपहर 1:30 शुरू होगा। मेजबान भारत पहले ही सीरीज में 2-0 से सबकत हासिल किए हुए है और अब वो सीरीज के तीनों मैच को जीतने के मकसद से मैदान में उतरेगा। और अब अखबार के आईने के साथ हैं मुजीब अख्तर।
2: शुक्रिया शबाना। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के सभी अखबार ने अलग अलग खबरों को अहमियत दी है। रोना प्रताप ने वजी अजम नरेंद्र मोदी के मगरब बंगाल दौरे की खबर को खसूसी तौर पर शाये किया है, जिसके मुताबिक जनाब मोदी आज वहां के दौरे पर रवाना होंगे, जहां वो मगरब बंगाल दिवस के साथ साथ योगा डे की तकरीब में भी शिरकत करेंगे। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश में बैनुल अक्वामी सिकल सेल डे के मौके पर खिताब करते हुए कहा कि सिकल सेल एनीमिया के खात्मे के मिशन के तहत 7 करोड़ अफराद की स्क्रीनिंग हुई है। इस खबर पर रोना प्रताप ने खसूसी तवज्जो दी है। मुल्क दिफाई शोबे में खुद इंसारी की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा है और 3 लाख करोड़ रुपये की दिफाई पैदावार नीज 50,000 करोड़ रुपये की

0: भारत ने दहशतगर्दी को माली मदद फराहम करने की लानत से निमटने के अपने अज़्म को दोहराया है। एनटीए नीट यूजी के दोबारा इम्तिहान से पहले आज मुल्की सतह पर मॉक ड्रिल करेगी। ये इम्तिहान कल कराया जाएगा। और सेबी ने फौतशुदा सरमायाकारों के कानूनी वर्षा को शेयर्स की आसान मुंतकली के तरीक़ेकार की मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।
1: आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलो हर्ट्ज पर। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
2: कृपया ध्यान दें, डेंगू अपने शहर में पांव पसार रहा है, पर हम सावधानी और स्वच्छता से इसको हरा सकते हैं।
3: डेंगू की रोकथाम के लिए कुछ जरूरी बातों का पालन अवश्य करें। जैसे डेंगू का मच्छर साफ पानी में भी पनपता है, इसीलिए कहीं भी पानी जमा ना होने दें। डेंगू का मच्छर दिन में काटता है, इसीलिए अपने आसपास साफ रखें और अपने शरीर को ढक कर रखें। समय समय पर फॉगिंग करें और मच्छरदानी का प्रयोग करें। बच्चों को बाहर भेजने से पहले मच्छर भगाने की क्रीम लगाएं। खिड़की दरवाजों में मच्छर जाली लगवाएं।
2: जब होगा पूरा प्रयास हमारा, तभी मिलेगा डेंगू से छुटकारा। जीवंत बिहार, सपना हो साकार। अधिक जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 104 पर संपर्क करें। स्वास्थ्य विभाग और सूचना व जनसंपर्क विभाग, बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी।
4: बिहार के सभी अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के भाइयों व बहनों ध्यान दें, जहां हो आपके हक की बात सहायता कॉल सेंटर दे आपका साथ हर बार। अगर आपको चाहिए अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग से जुड़ी किसी भी योजना की जानकारी या अपनी शिकायतों का समाधान, तो डायल करें टोल फ्री नंबर 1800-345-6345।
5: सभी दिवस पर सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक सहायता आपके हक और तरक्की का साथी।
4: अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग व सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी।
6: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।
7: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
8: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
6: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किस्त जारी करेंगे। बिहार के 73 लाख से अधिक किसानों को मिलेगा लाभ। विशेष निगरानी इकाई ने बहुचर्चित टेंडर घोटाला मामले में निलंबित आईएएस अधिकारी योगेश सागर और अभिलाषा शर्मा के कई ठिकानों पर छापेमारी की। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी कल होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले आज राष्ट्रव्यापी मॉक ड्रिल का आयोजन करेगा। और राजधानी पटना समेत प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में बारिश होने से मिली भीषण गर्मी से राहत। वज्रपात की घटनाओं में 7 लोगों की मौत। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किस्त की राशि जारी करेंगे। पश्चिम बंगाल के हुगली में आयोजित कार्यक्रम से श्री मोदी 9,44,00,000 किसानों के बैंक खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि डीबीटी के माध्यम से अंतरित करेंगे। बिहार के 73 लाख से अधिक किसानों के बैंक खाते में योजना की राशि

आएगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव कल जयपुर के खातीपुरा रेलवे स्टेशन से जयपुर दरभंगा अमृत भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। यह नई ट्रेन राजस्थान और मिथिला क्षेत्र के बीच रेल संपर्क को और सुदृढ़ बनाएगी। सप्ताह में 6 दिन संचालित होने वाली यह ट्रेन खातीपुरा से शाम 5:45 पर प्रस्थान करेगी और लगभग 25 घंटे की यात्रा के बाद अगले दिन शाम 6:30 पर दरभंगा पहुंचेगी। वापसी में यह ट्रेन दरभंगा से रात 9:15 पर रवाना होगी और अगले दिन रात 10:30 पर खातीपुरा पहुंचेगी। अपने मार्ग में यह ट्रेन अलवर, मथुरा, कानपुर, बाराबंकी, गोरखपुर, बगहा, नरकटियागंज, रक्सौल और सीतामढ़ी जैसे प्रमुख स्टेशनों पर रुकेगी। विशेष निगरानी इकाई एसवीयू ने बहुचर्चित टेंडर घोटाला मामले में जांच तेज कर दी है। एजेंसी ने निलंबित आईएएस अधिकारियों योगेश सागर और अभिलाषा शर्मा के आवासों समेत कई ठिकानों पर छापेमारी की। साथ ही एसवीयू ने एक निर्माण कंपनी के निदेशक पवन कुमार के आवास पर भी तलाशी अभियान चलाया। छापेमारी के दौरान दोनों आईएएस अधिकारी अपने आवास पर नहीं मिले। यह कार्रवाई ठेकेदार रिशो श्री से पूछताछ में मिले इनपुट के आधार पर की जा रही है। आरोप है कि संबंधित अधिकारियों ने रिशो श्री की कंपनियों को टेंडर दिलाने में मदद की थी। गौरतलब है कि प्रवर्तन निदेशालय ईडी की रिपोर्ट और एसवीयू में दर्ज प्राथमिकी के बाद राज्य सरकार ने दोनों अधिकारियों को निलंबित कर दिया था। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए कल होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले आज राष्ट्रव्यापी मॉकड्रिल का आयोजन करेगा। परीक्षा से पहले मानक तैयारी के निरीक्षण के लिए यह अभ्यास किया जा रहा है। परीक्षा के लिए राज्य के 34 जिलों में 331 केंद्र बनाए गए हैं। राज्य सरकार ने कदाचार मुक्त वातावरण में परीक्षा संपन्न कराने के लिए सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए हैं। परीक्षा में 1,56,000 से अधिक अभ्यर्थियों के शामिल होने की संभावना है। इधर नीट परीक्षा को देखते हुए पटना के बापू परीक्षा परिसर के आसपास आज विशेष यातायात व्यवस्था लागू रहेगी। कुम्हरार मार्ग पर ऑटो, ई रिक्शा और भारी वाहनों के आवागमन पर प्रतिबंध रहेगा। वहीं परीक्षा के मद्देनजर बेली रोड पर मेट्रो कार्य के लिए आज से प्रस्तावित ट्रैफिक ट्रायल भी फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि चिन्हित फुटपाथ पर चलने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है और मोटर वाहनों की आवाजाही की तुलना में इसे प्राथमिकता दी जानी चाहिए। न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि यह अनुच्छेद 21 जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार सहित अनुच्छेद 19 और अन्य मौलिक अधिकारों के अंतर्गत गारंटीकृत आवाजाही के अधिकार का हिस्सा है। न्यायालय ने इस मामले में एक नियामक निकाय बनाने का सुझाव दिया है। न्यायालय ने 5 वर्षीय बच्चे की सड़क दुर्घटना में मौत के मामले में यह फैसला सुनाया। राज्य सरकार ने क्रिकेटर मुकेश कुमार और आकाशदीप को पुलिस उपाधीक्षक यानी डीएसपी पद पर नियुक्ति के लिए अनुशंसित किया है। उत्कृष्ट खिलाड़ियों की सीधी नियुक्ति नियमावली 2026 के तहत यह अनुशंसा की गई है। गोपालगंज निवासी मुकेश कुमार और रोहतास के आकाशदीप तेज गेंदबाज हैं। उन्होंने कई अहम मुकाबलों में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया है। गृह विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार नियुक्ति की तिथि से अगले 5 साल तक दोनों खिलाड़ियों को सक्रिय रूप से प्रतियोगिताओं में भाग लेना अनिवार्य होगा। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। कल मुख्य समारोह कोलकाता में आयोजित होगा, जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इस वर्ष योग दिवस की थीम है स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग। इस अवसर पर राज्य के विभिन्न भागों में भी योग शिविरों और योग जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। पटना के पाटलिपुत्र खेल परिसर में आयोजित मुख्य समारोह में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी समेत राज्य मंत्रिमंडल के कई सदस्य शामिल होंगे। पटना उच्च न्यायालय में भी इस अवसर पर सामूहिक योगाभ्यास कार्यक्रम का आयोजन होगा। राज्य के प्रमुख पर्यटन और सांस्कृतिक स्थलों पर योग सत्र

0: आयोजित किए जाएंगे। वहीं प्रदेश के सभी सरकारी और निजी विद्यालयों में योगाभ्यास सत्र का आयोजन होगा। लोक आस्था के महापर्व छठ का पारंपरिक प्रसाद ठेकुआ का स्वाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति अर्जित कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने हालिया स्लोवाकिया दौरे के दौरान वहां की संसद के स्पीकर रिचर्ड राशी को उपहार स्वरूप ठेकुआ प्रदान किया। प्रधानमंत्री के इस कदम को बिहार और पूर्वांचल की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को वैश्विक पहचान दिलाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ठेकुआ उपहार स्वरूप दिए जाने से राज्य के पारंपरिक खान पान को नई वैश्विक पहचान मिली है। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना को फॉलो कर सकते हैं। राजधानी पटना समेत प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में बारिश होने से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार आज राज्य के पूर्वी हिस्सों में कुछ स्थानों पर बारिश की संभावना है, साथ ही राज्य के दक्षिणी भाग में लू की चेतावनी जारी की गई है।
1: राज्य के पूर्वी भाग एक या दो स्थानों पर वर्षा की संभावना है, जबकि शेष भागों का मौसम आमतौर से शुष्क बने रहने की संभावना है। राज्य के उत्तर पूर्व एवं दक्षिण पूर्व भाग के जिलों में एक दो स्थानों पर मेघ गर्जन वज्रपात के साथ हवा की गति 30 से 40 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम एवं दक्षिण मध्य भाग के जिलों में एक दो स्थानों पर उष्ण लहर होने चलने की संभावना है।
0: इधर पिछले 24 घंटों के दौरान वज्रपात की घटनाओं में 7 लोगों की मौत हो गई। वैशाली में 3, शेखपुरा में 2 तथा नवादा और जमुई में एक एक व्यक्ति की मौत हुई है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने घटना पर शोक व्यक्त करते हुए मृतकों के निकटतम परिजन को 4-4 लाख रुपए अनुग्रह राशि देने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने लोगों से खराब मौसम में सतर्क रहने की अपील की है। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर ने सबौर हर्षित नामक धान की उन्नत किस्म विकसित की है, जो कम बारिश और सीमित सिंचाई की परिस्थितियों में भी बेहतर उत्पादन देने में सक्षम है। कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार सबौर हर्षित धान की फसल लगभग 115 से 120 दिनों में तैयार हो जाती है। इसकी औसत उपज 55 से 60 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है, जबकि अनुकूल परिस्थितियों में इससे 80 से 90 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। यह किस्म सूखा सहनशील होने के साथ साथ कम पानी और उर्वरक की आवश्यकता वाली मानी जाती है। प्रदेश में पिछले 7 महीनों में रोजगार के 63,115 नए अवसरों का सृजन किया गया। वहीं बिहार रोजगार सेतु पोर्टल के माध्यम से 68,822 युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए गए। विकास आयुक्त मिहिर कुमार सिंह की अध्यक्षता में 7 निश्चय 3 की समीक्षा बैठक में ये जानकारी दी गई। उन्होंने अधिकारियों को युवाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण, रोजगार और स्वरोजगार के अवसर बढ़ाने के निर्देश दिए। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग ने दारोगा के 1,799 पदों पर नियुक्ति के लिए आयोजित मुख्य लिखित परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। मुख्य परीक्षा में 10,759 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। सफल अभ्यर्थियों के लिए अब शारीरिक दक्षता परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। अभ्यर्थी अपना परिणाम आयोग की वेबसाइट पर देख सकते हैं। यह परीक्षा 27 मई को आयोजित की गई थी। 2 वर्षीय बीएड प्रवेश परीक्षा का परिणाम

0: घोषित कर दिया गया है। परीक्षा के लिए नोडल संस्थान भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर की ओर से जारी परिणाम के अनुसार वैशाली के हिमांशु अजनबी और कटिहार के रवि कुमार ने संयुक्त रूप से प्रथम स्थान हासिल किया है। दोनों ने 120 में 117 अंक प्राप्त किए हैं। छात्राओं में सीतामढ़ी की अंजना और बेगूसराय की प्रियंका पासवान संयुक्त रूप से पहले स्थान पर रहीं। मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग में अवर निरीक्षक पदों पर नियुक्ति के लिए प्रारंभिक लिखित प्रतियोगिता परीक्षा 12 जुलाई को होगी। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग ने कहा है कि अभ्यर्थियों के ई प्रवेश पत्र 22 जून से आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे। बेगूसराय के चकिया थाना क्षेत्र में पिछले दिनों एक महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म के मामले में थानाध्यक्ष राजीव रंजन को निलंबित कर दिया गया है। निलंबित पुलिस पदाधिकारी पर कर्तव्य में लापरवाही बरतने का आरोप है। इधर बिहार राज्य महिला आयोग ने मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए पुलिस अधीक्षक से अब तक कार्रवाई संबंधी प्रतिवेदन मांगा है। पटना के रामकृष्ण नगर थाना क्षेत्र में पुलिस ने छापेमारी कर 30 लाख रुपए मूल्य की 304 ग्राम मादक पदार्थ ब्राउन शुगर बरामद की है। छापेमारी के दौरान 2,02,000 रुपए, 5 मोबाइल फोन, 1 मोटरसाइकिल और इलेक्ट्रॉनिक तराजू भी जब्त किया गया। छापेमारी के दौरान 2 तस्कर मौके से फरार हो गए। नवादा जिले के वारिसलीगंज थाना क्षेत्र से पुलिस ने साइबर ठग गिरोह के 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके पास से 54,84,000 रुपए, सोने चांदी के आभूषण, लैपटॉप और मोबाइल फोन बरामद किए हैं। रोहतास जिले के कोचस थाना क्षेत्र में मद्य निषेध सिपाही भर्ती परीक्षा के दौरान हाईटेक नकल कराने वाले गिरोह का खुलासा हुआ है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर वॉकी टॉकी, ब्लूटूथ और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद किए हैं। सीतामढ़ी जिले के बैरगनिया थाना क्षेत्र अंतर्गत लाल पक्कैया नदी में नहाने के दौरान डूबने से 2 किशोरों की मौत हो गई। गया जिले के नक्सल प्रभावित लटुआ थाना क्षेत्र में सीआरपीएफ और पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाकर 5 किलो का आईईडी बरामद किया है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के बिहार दौरे से जुड़ी खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, रेल मंत्री और सीएम ने छपरा से आनंद विहार नई ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। दैनिक जागरण ने इसी खबर का शीर्षक दिया है, 5 वर्षों में बिहार को मिलेंगी 200 नई ट्रेन। प्रभात खबर नीट यूजी पुनर्परीक्षा पर लिखता है, एनटीए का परामर्श, डाउनलोड करें नया एडमिट कार्ड, बदल सकते हैं परीक्षा केंद्र। दैनिक भास्कर ने लिखा है, दारोगा भर्ती, अब एक पद के लिए 6 उम्मीदवारों के बीच मुकाबला होगा। राष्ट्रीय सागर ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के हवाले से लिखा है, पटना शहर से बाहर होंगे सारे कोचिंग सेंटर। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किस्त जारी करेंगे। बिहार के 73 लाख से अधिक किसानों को मिलेगा लाभ। विशेष निगरानी इकाई ने बहुचर्चित टेंडर घोटाला मामले में निलंबित आईएएस अधिकारी योगेश सागर और अभिलाषा शर्मा के कई ठिकानों पर छापेमारी की। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी कल होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले आज राष्ट्रव्यापी मॉक ड्रिल का आयोजन करेगा। और राजधानी पटना समेत प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में बारिश होने से मिली भीषण गर्मी से राहत, वज्रपात की घटनाओं में 7 लोगों की मौत। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: जानते हो दोस्तों, जिसे हम सिर्फ चिलचिलाती धूप कहते थे, आज उसी धूप से हम अपनी छतों पर ऊर्जा बना लेते हैं। तभी तो आज लगभग 37 लाख घर पीएम सूर्य घर बने हैं, जिसे देश का बिजली बिल घटा है और आत्मविश्वास बढ़ा है।
2: एक दशक पहले भारत सोलर पावर के मामले में बहुत पीछे था, लेकिन आज सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप 5 देशों में आ गया।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, बिहार सरकार द्वारा

0: द्वारा प्रसारित
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी। फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलो हर्ट्ज पर।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है, कृपया हम

हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी पटना दरभंगा है, पेश है उर्दू प्रोग्राम अंजुमन।

कुछ सिया फातमा से आपने ये सोच समाध किया और लीजिए अगली पेशकश, ये नौहा शाहीन बेगम से।

0: अपनी जमीन को कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं, कभी नहीं।
1: तुम्हें अपनी जमीन छोड़ने की कोई जरूरत नहीं बापू।
0: कौन?
1: ये लो, तुम्हारे कागज में वापस ले आई हूँ।
2: तू साहूकार के यहाँ गई थी?
1: हाँ, मैं उसके मुंह में हड्डी देकर बापू की जमीन छुड़ा लाई हूँ।
2: तू उस बूढ़े खूसट के साथ ब्याह करने का वादा कर रही है?
0: नहीं नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है।
2: कई दिनों से वो चक्कर काट रहा था और मैंने अपने परों पर पानी नहीं पड़ने दिया। मैंने तो आज उसे ये भी कह दिया है कि बेशक जाकर दावा कर ले, जमीन कुर्क करवा ले।
0: हमारी लड़की की तरफ वो आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। तुमने उसे क्या कहा बेटी?
1: मैंने उसे कहा, मैं तेरे बच्चों को पालूंगी, मैं तेरा घर संभालूंगी, तू मेरे बापू का कागज लौटा दे। हमारे बापू को जमीन बहुत प्यारी है।
2: इस बापू को तो जमीन बेटी से भी ज्यादा प्यारी।
0: नहीं नहीं, ये जुल्म मैं कभी नहीं होने दूंगा। मैं साहूकार की जान निकालूंगा।
1: बापू ले, ये कागज तो फट चुका, और इस कागज की कीमत मैं।
0: ऐसा कभी नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं होगा। मैं तो तेरा बाल भी किसी को दिखाने के लिए तैयार नहीं, मैं तो तेरा बाल भी किसी को दिखाने के लिए तैयार।
1: माँ, तू तो मेरे बेटे का सपना है, उसकी हर चिट्ठी तेरी याद की गवाही दे रही। माँ माँ, अब तू ये ना कह। हाँ सच, देवी की चिट्ठी आई है। कहाँ है माँ? पति पत्नी हम दोनों अनपढ़ हैं, मैंने खोली भी नहीं। मेरी प्यारी माँ, मैं बहुत खुश हूँ। वो खुश नहीं, वो क्यों झूठ बोलता है? कोई माँ को भी बहका सकता है, वो बिल्कुल खुश नहीं। माँ वो बहुत खुश है। माँ, उसने रुपया भेज दिया है।
2: क्या? उसने जमीन छुड़ाने के लिए रुपया भेज दिया है?
1: उसको क्या पता था कि जमीन तो सकीना छुड़ा लाई है।
2: नहीं,
1: हाँ, अगर ये चिट्ठी एक घंटा पहले आ जाती।
2: आई थी बेटी, डाकिया देना भूल गया। भगवान कैसे कैसे जुल्म करता है, ये भगवान किस तरह तड़पाता है।
1: मेरे सामने से गुजर कर डाकिया गया था।
2: अगर तब चिट्ठी मिलती तो मैं साहूकार के मुंह पर थप्पड़ मारती, मैं उसके सिर के बाल नोच लेती जब उसने मेरी बेटी का नाम लिया था।
1: माँ, ये रब कैसा है?
2: इसका कुछ पता नहीं बेटी।
1: आज चिट्ठी में लिखा है?
2: हाँ सच, चिट्ठी तो पढ़ के तूने सुनाई नहीं।
1: मेरी प्यारी माँ, मैं बहुत खुश हूँ। आज मुझे पता लगा है कि मैं इतनी मेहनत क्यों करता रहा हूँ। आज मुझे पता लगा है कि मेरे पसीने की धारें बह बह कर कहाँ जाती रही। आज मुझे पता लगा है कि नांगल भाखड़ा की नहर हमारे गांव में से गुजर कर जाएगी और इसका पानी बापू के खेतों को मिलेगा। यहाँ की बिजली पंजाब के घर घर में आएगी और माँ, अब तुम्हें दिए की रोशनी भी टटोल टटोल कर परेशान नहीं होना पड़ेगा।
2: पगला है पगला, माँ का लाडला।
1: और आगे लिखा है उसने कि मैं पैसे भेज रहा हूँ
2: और उससे आगे अभी तो इतनी लंबी चिट्ठी बाकी है।
1: आगे माँ।
2: ओ बस बस, इधर उधर की बातें लिखी होगी। मेरा बेटा पगला है।
1: नहीं नहीं तो माँ।
2: अच्छा, आने को कुछ नहीं लिखा उसने?
1: अब तो वो आ ही जाएगा माँ।
0: खेतों के लिए पानी लेने गया था, खेतों में पानी आएगा तो मेरा बेटा भी आएगा।
1: खेतों में पानी आएगा और बाहर आएगा।

0: बिजली आ गई, बिजली आ गई, माँ बिजली आ गई।
1: अरे ये तो बुझ भी गई।
0: अच्छी है आपकी बिजली, आई भी और चली भी गई।
2: बिजली भी औरत की तरह होती है, आती है और
1: 8 साल पराए देश भी रहकर सही सलामत मुझे मिल गए। नहीं, नहीं, ये मेरी बेटी नहीं, मुझे इसमें बू आती।
0: देवी के पिता, ये तुझे क्या हो रहा है?
1: मैं कहता हूँ मैं इसे अपने घर में कदम रखने नहीं।
3: अच्छा तो फिर इसे अनाथ आश्रम में रखना।

0: है आपकी बिजली, आई भी और चली भी गई।
1: बिजली भी औरत की तरह होती है, आती है और
2: 8 साल पराए देश भी रहकर सही सलामत मुझे मिल गए। नहीं, ये मेरी बेटी नहीं, मुझे इसमें बू आती।
0: देवी के पिता, ये तुझे क्या हो रहा है?
2: मैं कहता हूँ मैं इसे अपने घर में कदम रखने नहीं।
1: अच्छा तो फिर इसे अनाथ आश्रम में रखना।
2: मेरी बेटी थी जैसे 7 पर्दों में ढकी हुई खुशबू, आख्ता की तरह थोड़ी सी प्यारी सी, किन नाजों से मैंने इसे पाला था, क्या मिन्नतें मान कर इसे पाया था। मेरी लाडली, मैं उसे अपने बेटे से ज्यादा प्यार करता था। मेरी बेटी के मुंह में जैसे जबान नहीं थी, कभी किसी ने उसे जोर से बोलते नहीं सुना था। भगवान से डरने वाली बेटी।
1: हमें देर हो रही है, इस फार्म पर आप ही दस्तखत कीजिए। सकीना, अंदर से कलम देना।
2: सकीना, और फिर इस बेटी की याद में मैं कितने कितने दिनों भूखा रहा। मैं अनाज देखता तो मेरी आंखों के सामने अंधेरा सा जाता। आधी रात को उठकर इसकी माँ से अलग चोरी से रोता। मैंने कितनी बार माथा रगड़ा, मेरी बेटी मुझे किसी तरह मिल जाए, मेरी बेटी मुझे किसी तरह मिल जाए। सावित्री, सावित्री, तेरी बेटी, सावित्री, मेरे दिल के टुकड़े, तुझे क्या पता तेरी याद में तेरे बापू पे क्या बीती। बेटियों का दुख जलाकर राख कर देता।
1: ये लीजिए, मैंने फॉर्म पर दस्तखत कर दिए।
0: आपने हम पर एहसान किया है, सबकी बेटियों को भगवान सुखी रखे, आपके बच्चे जी, आपने हम पर बहुत कृपा की है, बहुत कृपा।
2: आज मेरे मन को शांति मिली, आज मुझे तसल्ली हुई है। एक जलन मेरे अंदर रहती थी, मेरे अंदर जहर खुलता था, हर खुशी में मुझे तू याद आती थी और मैं उदास हो जाता था।
0: चलो बेटी, हम अंदर चलते हैं, तू थक गई होगी।
2: मेरी बच्ची, मेरी बच्ची, आप बैठिएगा, चाय पानी पीजिए।
1: अजी नहीं,
2: आप बैठिए तो सही।
1: नहीं, शुक्रिया।
2: नहीं, आपने तो वो एहसान हम पर किया है कि मैं तो कभी नहीं भूल सकूंगा, कभी नहीं भूल सकूंगा।
1: माफ करना, हम एक बात पूछना चाहते हैं।
2: पूछिए, एक नहीं 10 बातें पूछिए।
1: ये लड़की जो आपके घर में है कौन है?
2: ये अपनी ही बेटी है।
1: अपनी ही बेटी?
2: हाँ हाँ,
1: अपनी ही बेटी से आपका क्या मतलब है?
2: मेरा मतलब है ये हमारी बेटी है, हमने इसे पाला है।
1: ये लड़की कब से आपके पास है?
2: ऐसे सवाल करने से आपका मतलब?
1: ये लड़की सावित्री की बहन नहीं, बहन होती तो सबसे पहले उसके गले मिलकर रो पड़ती।
2: ये लड़की सावित्री की।
1: इसका क्या नाम है?
2: मैं पूछता हूँ, ऐसे सवाल करने से आपका मतलब क्या है?
1: जी, इस लड़की का नाम सकीना है।

0: तो फिर क्या?
1: जैसे हम आपकी लड़की को उधर से निकाल कर लाए हैं, ये लड़की भी उधर ही जाएगी।
2: लेकिन लेकिन इंस्पेक्टर साहब, इसके तो सारे वारिस मर चुके हैं।
1: तो क्या, जो लड़की इधर रख ली गई है उसे उधर जाना है।
2: पर ये लड़की भी तो मेरी ही बेटी है।
1: तब भी जाएगी।
0: अगर लड़की ना जाना चाहे तो?
1: कानून उसकी मर्जी नहीं पूछता। अच्छा, हम अभी जाते हैं, आप लोग उतने में तैयारी कर लें।
2: नहीं, नहीं, नहीं, ये कभी नहीं होता, ये कभी नहीं हो सकता। मैं नंबरदार से जाकर बात करता हूँ।

0: मैं नहीं जाऊंगी, मैं यही पैदा हुई हूँ, यही मरूंगी। मुझे इस मिट्टी से मोहब्बत है, और अब तो तुम नहीं खोद कर लाए हो इन खेतों की फरहा, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। ये खेत खलिहान कितने हरे भरे हैं, किस तरह लहरा रहे हैं, इनको छोड़कर मैं नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। तुम बोलते क्यों नहीं देवी, तुम बोलते क्यों नहीं, तू बोलता क्यों नहीं, तेरे दिल पर क्या गुजर रही है? अगर तुम लोग मुझे रखने पर मजबूर हो तो फिर मैं चली जाऊंगी।
1: नहीं नहीं, ये कभी नहीं होगा, कभी
0: नहीं। ए अल्लाह, तूने मुझे एक बार बर्बाद किया था, अब फिर बर्बाद ना कर।
2: हाय, मैं मर गई, लोग सकीना के बारे में क्या कह रहे हैं, सकीना को वो ले जाएंगे, सरकारी मोटर अभी खड़ी है।
3: माँ माँ, सकीना अंदर बेहोश पड़ी है।
2: हाय मेरे बेटे, हाय मेरे बच्चे,
4: मेरे भगवान, मेरे भगवान, एक हाथ से देते हो और एक हाथ से ले लेते।
1: बापू,
4: अंदर लड़की बेहोश पड़ी है बेटा, उसका कुछ कर, उसका कुछ कर।
1: हाँ बापू।
5: चौधरी साहब,
4: आप आ गए, आइए आइए, बैठिए, यहाँ बैठिए चारपाई पे।
6: अब जल्दी कीजिए, रात हो रही है और हमें शहर पहुँचना है।
4: मैंने कहा इंस्पेक्टर साहब, कोई तरीका नहीं, किसी तरह ये लड़की यही नहीं रह सकती।
6: कोई तरीका नहीं चौधरी, हम कानून के हाथों मजबूर हैं।
4: कोई तरीका नहीं
6: जी? नहीं
4: तो फिर ले जाओ, ले जाओ, तुम्हारी अमानत है, ले जाओ, ले जाओ। सुनिए, किसी तरह ये घड़ी टल सके, किसी भी कीमत पे।
6: चौधरी, हमें शर्मिंदा न करो।
4: अच्छा, जैसे आपकी मर्जी, भगवान बड़ा लापरवाह है, बड़ा लापरवाह है।
1: ये भूरा अब नहीं बचेगा, हौसला तो बहुत दिखा रहा है, पर ये सब बाहरी है।
4: मैंने कहा इंस्पेक्टर साहब, मोटर को आंगन में ले आइए।
6: जैसी आपकी मर्जी, अब मैं जाकर लाता हूं।
1: चौधरी ठीक कहता है, बाहर यूं ही लोग इकट्ठे हो जाएंगे।
2: सको के बापू, सकीना के बापू।
4: हाँ, आया आया भाग्यवान, मैं आया, अभी आया।

0: ये बुरा अब नहीं बचेगा।
1: जा बेटी जा, झुक झुक जियो, तेरी ठंडी हवा हमें आती रहे।
2: सावित्री, तू यूं रो क्यों रही है बेटी? वो गीत गाओ ना, चंदन दे ओले, बेटी क्यों पड़ी? काले।
1: देवी बेटा, अंदर से सकीना के कपड़ों के ट्रंक लिया, लाल भी लाना और पीला भी। और सुनो, वो सकीना बेटी की रंगदार पीढ़ी भी ले आना।
0: मैं लाता हूँ बापू।
2: इसको पंखा और इसका कटोरा भी मैं लाती हूँ बाप। ले बेटी, तेरी ये पंखी, रास्ते में गर्मी होगी, और ये तेरा कटोरा है पानी पीने का। आप ही तूने इस पर नाम लिखवाया था।
1: अब चला दो मोटर, चला दो।

0: जाकर देख देवी की माँ, देवी कहाँ है? मेरा बेटा कहीं दिखाई नहीं देता।
1: माँ, भाई सामने खेत में बबूल के तने के साथ खड़ा है, दूर सड़क पर मोटर जा रही है। माँ, माँ अब तो मोटर आंखों से ओझल हो गई। अच्छा तू इधर आ, इधर आ। हाँ माँ।
0: देवी की माँ, मैं जरा गुरुद्वारे से हो आऊं, मुझे मेरी छड़ी ला देना।
1: ले बापू।
0: अच्छा,
1: तेरा बापू अब नहीं बचेगा, इसने छड़ी पकड़ ली है, ये अब नहीं बचेगा बेटी। माँ हाँ बेटी, माँ मुझे पानी का घूंट दो, मेरा गला सूख रहा है। माँ ले बेटी, ये कैसा पानी है माँ, हमारे गांव का पानी कितना मीठा था, कितना ठंडा। नहीं बेटी, ये पानी क्या और वो पानी क्या, ये पानी तो मिश्री की तरह मीठा है, ये पानी तो बर्फ की तरह ठंडा है, मोतियों की तरह साफ है, हमारे अपने इस गांव का पानी।
2: समीन, आप समाप्त कर रहे थे ड्रामा मीठा पानी। इसी के साथ हमारा आज का ये सफ़र यहीं तमाम होता है। कल फिर हमारी मुलाकात होगी। इस वादे के साथ हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।

उर्दू प्रोग्राम अंजुमन अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। हमारा अगला कार्यक्रम बस थोड़ी ही देर में। हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रसमंजरी। कार्यक्रम के आरंभ में सुनिए फिल्म रेड 2 का ये गीत जुबिन नौटियाल की आवाज़ में।

अस्सी इस फिल्म का गीत सुनिए स्वानंद किरकिरे की आवाज में। गीत और संगीत स्वानंद किरकिरे का है।

0: आकाशवाणी पटना से अभी आप सुन रहे हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रसमंजरी। कार्यक्रम का शेष गीत हम आपको सुनवाएंगे एक छोटे से अंतराल के बाद। कहीं जाइएगा मत, बने रहिए हमारे साथ।
1: प्लेटफॉर्म नंबर 2 से चलने वाली सुपर फास्ट एक्सप्रेस के यात्री
2: तुम्हें मोबाइल चार्ज करना,
3: दिमाग चार्ज कर अपना।
4: ऐसे पब्लिक पोर्ट से फोन चार्ज किया तो पर्सनल डेटा होगा पब्लिक।
3: देखा
2: पापा, रुको मैं पे करता हूँ। नो सिग्नल।
4: अब क्या करोगे?
2: फ्री वाईफाई है ना?
3: बुद्धू सुधर जा।
4: पेमेंट्स के लिए नो ओपन वाईफाई,
2: यानी फ्रॉड को करो बाय बाय।
4: आरबीआई कहता है
5: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
0: फिल्मी गीतों के कार्यक्रम रसमंजरी में आपका पुनः स्वागत है। भूत बंगला, आइए अब इस फिल्म का गीत सुनते हैं विशाल मिश्रा, नक्काश अजीज और अंतरा मित्रा की आवाजों में। कुमार के लिखे इस गीत को संगीत

धुरंधर द रिवेंस। इस फिल्म का गीत सुनिए खान साहब शाश्वत सचदेव की आवाज़ों में। नुसरत फ़तेह अली खान की रचना है, संगीत दिया है शाश्वत सचदेव, नुसरत फ़तेह अली खान ने।

धड़क टू। इस फिल्म का गीत सुनिए विशाल मिश्रा की आवाज़ में। रश्मि विराग की रचना है, संगीत दिया है जावेद मोहसिन ने।

लाल सिंह चड्ढा। इस फिल्म का गीत सुनिए अरिजीत सिंह और शिल्पा राव की आवाज़ों में। अमिताभ भट्टाचार्य की रचना है, संगीत दिया है प्रीतम ने।

0: अरिजीत सिंह और शिल्पा राव के गाए इस गीत के साथ ही फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रसमंजरी अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे सुगम संगीत का कार्यक्रम।
1: प्लेटफॉर्म नंबर 2 से चलने वाली सुपर फास्ट एक्सप्रेस के यात्रियों
2: तुम्हें इसे मोबाइल चार्ज करना,
3: दिमाग चार्ज कर अपना।
4: ऐसे पब्लिक पोर्ट से फोन चार्ज किया तो पर्सनल डेटा होगा पब्लिक।
3: देखा
2: पापा, रुको मैं पे करता हूँ। नो सिग्नल।
4: अब क्या करोगे?
2: फ्री वाईफाई है ना।
3: बुद्धू सुधर जा।
4: पेमेंट्स के लिए नो ओपन वाईफाई।
2: यानी फ्रॉड को करो बाय बाय।
4: RBI कहता है
5: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
0: सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज सुनिए अजीत कुमार लाभ के स्वर में गीत और भजन। आइए इनसे पहले सुनते हैं ये गीत।

आकाशवाणी पटना से अभी आप सुन रहे हैं सुगम संगीत का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे अजित कुमार लाभ के स्वर में गीत। अब आइए इनसे सुनते हैं भजन।

कौन मिलावे मोहे जोगिया हो। अजित कुमार लाभ के गाए इस भजन के साथ ही सुगम संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलो हर्ट्ज पर।

आकाशवाणी पटना से प्रस्तुत है फिल्म संगीत। कार्यक्रम के आरंभ में सुनिए फिल्म हम आपके हैं कौन का ये गीत, लता मंगेशकर और राम लक्ष्मण की आवाज़ों में। देव कोहली की रचना है, संगीत दिया है राम लक्ष्मण ने।

धड़कन इस फिल्म का गीत सुनिए नुसरत फतेह अली खान और साथी की आवाज़ों में। समीर के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया है नदीम श्रवण ने।

अर्पण। इस फिल्म का गीत सुनिए, लता मंगेशकर और सुरेश वाडेकर की आवाजों में। आनंद बख्शी की रचना है, संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

आकाशवाणी पटना से अभी आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम।

0: आकाशवाणी एट 90।
1: दिल है तुम्हारा, इस फिल्म का गीत सुनिए अलका याज्ञिक, उदित नारायण और कुमार सानू की आवाजों में। समीर के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया है नदीम श्रवण ने।

Había absolutamente de film sangeet. हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। बिहार का लोक संगीत कार्यक्रम में प्रस्तुत है मगही लोकगीत। कलाकार हैं रमेश कुमार प्रभात और साथी रजनीकांत ओझा मधुकर। तो पहले सुनिए रमेश कुमार प्रभात और साथी से लोक भजन।

बिहार का लोक संगीत कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे मघेल लोकगीत। कलाकार थे रमेश कुमार प्रभात और साथी, और रजनीकांत ओझा मधुकर।

हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है बहनों के लिए कार्यक्रम नारी जगत। नारी जगत सुनने वाली बहनों को राष्ट्रीय का प्यार भरा नमस्कार। बहनों, हर साल जून के तीसरे रविवार को अंतर्राष्ट्रीय पिता दिवस मनाने के पीछे पिता के प्रति स्नेह और कृतज्ञता जताने का भाव है। जहाँ पितृदेवो भव की परंपरा रही हो, वहाँ हम जीवन में पिता के अमूल्य योगदान को नहीं भूल सकते। और एक बात, संतुलित जीवन का अर्थ है काम, आराम और व्यक्तिगत जीवन में ऐसा तालमेल बनाना जिससे तनाव कम हो और जीवन स्वस्थ एवं सुखी रहे। शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक शांति, सकारात्मक सोच, योग, व्यायाम और वर्तमान में जीने पर

ध्यान देकर हम संतुलित जीवन की ओर कदम बढ़ा सकते हैं। अब हम बात करते हैं योग और प्राणायाम के बारे में। तो योग और प्राणायाम का नियमित अभ्यास शरीर और मन के लिए अत्यंत लाभकारी है। ये फेफड़ों की क्षमता बढ़ाता है, तनाव कम करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करता है और पाचन तंत्र को ठीक रखता है। विभिन्न योगासनों से शरीर में लचीलापन आता है और दर्द से राहत मिलती है। साथ ही खुद को चुस्त दुरुस्त रखकर हम अपनी कार्य क्षमता बढ़ा सकते हैं और रात में बेहतर नींद ले सकते हैं। तो बहनों, आज है शनिवार। आज हम आपको थीम आधारित फिल्मी गाने सुनवाते हैं। तो आज थीम है बाबुल, तो सुनिए ये गाना।

छोड़कर बाबुल का घर पिया तेरे घर आई हूँ, तेरी जीवन की डोर से बंधकर मैं तेरी कहलाई हूँ, फिर भी क्यों मैं पराई हूँ।

हम सफ़र कितना ही सच्चा और प्यारा क्यों ना हो, बाबुल के घर से बिछड़ने का दुख एक बेटी ही जान सकती है।

घर की रौनक बनकर जब बेटी मुस्कुराती है, पापा की थकी हुई जिंदगी में भी नई खुशी आ जाती है।

मैंने अभी आप बाबुल थीम पे आधारित फिल्मी गाने सुन रही थी। और अब एक ज़रूरी बात कि अभी बहुत गर्मी पड़ रही है और बेवजह घर से बाहर ना निकले। अगर बहुत ज़रूरी ना हो तो निकले ही नहीं, घर में ही रहे। अगर ज़रूरी है, निकलना है तो छाता और पेट भरा हुआ होना चाहिए, जिससे कि आपको लू ना लगे। तो ये बहुत ही ज़रूरी बात है, अभी बहुत गर्मी पड़ रही है और अब कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है, तो राजश्री को दीजिए अनुमति। नमस्कार, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नारी जगत। हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे हिंदी समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज ओडिशा के मयूरभंज जिले में अपने पैतृक गांव पहाड़पुर पहुंची। ओडिशा के राज्यपाल हरी बाबू कंभमपति, मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी और स्थानीय लोगों ने राष्ट्रपति के आगमन पर उनका स्वागत किया। अपने पैतृक गांव में राष्ट्रपति ने 68वां जन्मदिन भी मनाया। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहाड़पुर गांव पहुंच गए हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ अपने गांव का दौरा किया। वे पवित्र संथाली जहेरा और हो जहेरा उपवनों में पूजा अर्चना करेंगे, साथ ही कौशल विकास केंद्र और पहाड़पुर स्कूल का दौरा भी करेंगे। इसके बाद राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री रायरंगपुर में ओडिशा सरकार के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। वे ऊर्जा, अवसंरचना, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सिंचाई सहित विभिन्न क्षेत्रों में 47,000 करोड़ रुपए से अधिक के विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इस अवसर पर वे जनसभा को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल भी जाएंगे। वे हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंग दिवस समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। वे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त भी जारी करेंगे। इसके अंतर्गत देश के 9,44,00,000 किसानों के बैंक खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे अंतरित की जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंग दिवस पर राज्य के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पर अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि ये दिन पश्चिम बंगाल के भारत का अभिन्न अंग बने रहने के संकल्प और आकांक्षाओं का प्रतीक है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि वर्ष 1947 में इसी दिन एक ऐतिहासिक फैसले में भारत के एक अहम हिस्से के रूप में पश्चिम बंगाल राज्य के गठन का मार्ग प्रशस्त किया गया था। प्रधानमंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल साहित्य, संगीत, कला, आध्यात्मिकता, विज्ञान, व्यापार, वाणिज्य, समाज सुधार के माध्यम से देश के इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान करने वाला राज्य है। गृहमंत्री अमित शाह आज कोल्हापुर और इचलकरंजी के दौरे पर हैं। वे महालक्ष्मी मंदिर परिसर में विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन और कोल्हापुर के पुलिस परेड ग्राउंड में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद वे इचलकरंजी में जनता सहकारी बैंक के नए भवन का उद्घाटन करेंगे तथा सहकारी चीनी कारखाने के नामकरण और विस्तार के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। सरकार के

0: वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी विवेक अग्रवाल को वर्ष 2026-27 के लिए वित्तीय कार्यवाही कार्यबल का उपाध्यक्ष चुना गया है। वे ब्रिटेन के गाइल्स थॉमसन का स्थान लेंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए कल होने वाली नीट यूजी पुनः परीक्षा से पहले आज राष्ट्रव्यापी अभ्यास संचालित कर रहा है। परीक्षा से पहले मानक तैयारी के निरीक्षण के लिए मॉक ड्रिल की जा रही है। एजेंसी ने बताया कि कल होने वाली पुनर्परीक्षा के लिए उसकी तैयारियां पुख्ता हैं। भारतीय सूचना सेवा के पूर्व अधिकारी दीपांकर मुखोपाध्याय का कल रात लंबी बीमारी के बाद कोलकाता में निधन हो गया। वे 77 वर्ष के थे। श्री मुखोपाध्याय ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय के विभिन्न मीडिया इकाइयों में सेवाएं प्रदान की और आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग में भी कार्य किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करते हुए उन्हें मजबूत और प्रभावशाली नेता बताया है। उन्होंने कहा कि श्री मोदी चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के साथ दुनिया के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक हैं। एक साक्षात्कार में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि श्री मोदी के पिछले 12 सालों के नेतृत्व में भारत को मजबूती और स्थिरता मिली है। विश्व भर में कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। इस वर्ष 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय है स्वस्थ आयु के लिए योग। ये विषय हर उम्र में योग के महत्व को रेखांकित करता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर संस्कृति मंत्रालय देश भर में 100 स्थानों पर विशेष कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। इनमें भारत की समृद्ध विरासत और योग परंपराओं को प्रदर्शित किया जाएगा। योग दिवस का मुख्य समारोह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर आयोजित किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मध्य प्रदेश के जबलपुर में योग दिवस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगी। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच आज दोपहर एमए चिदम्बरम स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। किसलिए कार्यक्रम में प्रस्तुत है भेंटवार्ता। विषय छात्र में ज्ञान और नैतिकता जगाने में विद्यालय की भूमिका कितनी अहम है। भेंटवार्ताकार हैं चंद्रभूषण कुमार, भेंटकर्ता रूपेश कुमार रूप।
2: श्रोताओं नमस्कार, किसलिए कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है केंद्रीय विद्यालय हरनौत के प्राचार्य चंद्रभूषण कुमार, जिनसे हम बातें करेंगे कि छात्रों में ज्ञान और नैतिकता जगाने में विद्यालय की भूमिका कितनी अहम होती है, इस विषय पर। सर, हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
3: धन्यवाद
2: जी। तो सर, हम लोग इस चर्चा को शुरू करें तो सबसे पहला जो सवाल है कि विद्यार्थी होते हैं और उनका जो घर के बाद जो सबसे पहला जो आकार देने का जो संस्थान होती है वो विद्यालय होता है, तो उनके सर्वांगीण विकास में विद्यालय की क्या भूमिका होती है।
3: सभी को नमस्कार। ऐसा है, विद्यालय की भूमिका बहुत ही अहम है, लेकिन उससे भी पहले शुरुआत हो जाती है परिवार से। माता पिता, पारिवारिक परिवेश से बच्चे संस्कार लेते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं, और विद्यालय में उसका एक तरह से सामाजिक परीक्षण होता है, जिसमें बच्चे अन्य बच्चों के साथ रहना, सामंजस्य स्थापित करना, एक दूसरे से सीखना, एक दूसरे के साथ कैसा व्यवहार हो, ये सब व्यवहारिक जीवन की चीजें सीखते हैं। शैक्षिक जो शिक्षण होता है उसके साथ साथ जो शिक्षक सिखला पाते हैं और जो बच्चे किताबों से ज्ञान प्राप्त करते हैं, उसके अलावा अन्य बच्चों से सीखने का बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है विद्यालय।
2: जी सर, अब ने बता दिया कि विद्यालय एक उनके चहुमुखी विकास का एक बहुत बड़ा संस्थान है, जहाँ से बच्चे अपने घर के सीखे चीजों को और परिमार्जित करते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं इसमें और ये आपसे जानना चाहते हैं सर कि विद्यालय किस तरह से छात्रों में नैतिक मूल्य का जो विकास होता है उसमें विद्यालय की कितनी भूमिका होती है।
3: नैतिक मूल्य का विकास साथ साथ चलते रहता है, शैक्षिक विकास के साथ साथ नैतिक मूल्यों का भी विकास होता है। जब बच्चा घर पे सीखता है या विद्यालय में कुछ सीखता है, वहाँ जिनको देखता है, चाहे वो शिक्षक हों या अन्य बच्चे हों, उनके व्यक्तित्व को परखता है, खास करके शिक्षक की भूमिका बहुत अहम होती है। बच्चों के लिए शिक्षक रोल मॉडल होते हैं और शिक्षक का जैसा चारित्रिक स्तर होता है, जो व्यक्तित्व होता है, उसको बच्चे अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं। यदि शिक्षक समय पर विद्यालय आते हैं, अपना काम ईमानदारी पूर्वक करते हैं, स्वच्छता का ध्यान रखते हैं, सत्यता का ध्यान रखते हैं, तो ये सब

0: चीजें मूल्य बनकर, नैतिक मूल्य बनकर बच्चों में धीरे धीरे व्यवहारिक जीवन में आ जाता है, उतरता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि शिक्षकों का उत्तरदायित्व बहुत ज्यादा है और विद्यालय एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है बच्चों के नैतिक विकास में।
1: सर, यहाँ पर एक और सवाल आता है कि जो नैतिक विकास है या नैतिक उनके अंदर जो ज्ञान आता है, क्या सिर्फ पाठ्य पुस्तक के पढ़ा देने मात्र से मतलब इन चीजों का विकास हो सकता है या उनको नैतिक शिक्षा दिया जाना चाहिए?
0: किताबों को पढ़ने से नैतिक ज्ञान की सीख उदाहरण मिल सकती है, उदाहरण लिया जा सकता है, लेकिन नैतिक शिक्षा सिर्फ किताबों से पढ़कर प्राप्त करना संभव नहीं है। ये मुख्य रूप से व्यवहारिक जीवन में जो चरित्र उनको देखने को मिलता है, जो व्यक्तित्व और व्यवहार देखने को मिलता है, उसका अनुकरण बच्चे ज्यादा तीव्रता से और शीघ्रता से करते हैं। अतः बुक से, किताबों से बाहर आकर व्यवहारिक जो पहलू है वो ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। कहानियों में अच्छी आदर्श कहानियां जो सत्य पे आधारित हो, ईमानदारी पे आधारित हो, उनका भी योगदान होता है, लेकिन जब तक बच्चे व्यवहारिक रूप से उस चीज को कहीं रूबरू नहीं देखते तब तक उसका गहरा प्रभाव, गहरी छाप उनके जीवन पे नहीं पड़ता। इसीलिए शिक्षक का व्यक्तित्व ज्यादा प्रभावी होता है।
1: सर, एक और सवाल बड़ा अहम है कि इस समय जो छात्रों में नैतिक विकास के जो चीजें हैं उसके सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं, और मुख्य तौर पर आप कौन सी चुनौती देखते हैं और विद्यालय किस तरह से इन चुनौतियों का सामना करने का प्रयास कर रहा है और इनको दूर कर रहा है?
0: अभी जो समाज में सबसे बड़ी चुनौती है बच्चों के नैतिक विकास को लेकर, वो है सोशल मीडिया। डिजिटल जो प्लेटफॉर्म है वो बहुत हद तक सहयोगी भी है, लेकिन उसका दुरुपयोग भी सामने आ रहा है। रील के माध्यम से अनावश्यक सामग्री उपलब्धता के माध्यम से जो बच्चों के जीवन को शून्य करता जा रहा है, बच्चे का शारीरिक और मानसिक विकास एक तरह से अवरुद्ध हो जा रहा है। बच्चे परिवार में, समाज में संवादहीनता का सामना कर रहे हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि आज का जो सोशल मीडिया है बच्चों का जो दैनिक सामाजिक व्यवहारिक जीवन है उससे दूर करता जा रहा है। चाहे लेखन शैली हो या संवाद शैली हो, उसका विकास अधूरा रह जा रहा है और बच्चे आंखों को, कानों को सुन कर देख कर वहीं निश्चिंत हो जा रहे हैं और इस तरह से समय निकलता जा रहा है। तो हमें इस पे नियंत्रण करने की जरूरत है, सामाजिक रूप से विद्यालय में भी और घर पर भी बच्चों को नियंत्रित प्रयोग करें मोबाइल का, सोशल मीडिया का, या जो भी है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, इन चीजों का नियंत्रित प्रयोग बहुत जरूरी है और अभिभावकों की निगरानी जरूरी है। उनकी देखरेख में ही ये संभव हो तो ज्यादा बेहतर है, अन्यथा ये गलत दिशा में बच्चों को ले जाने की कोशिश भर हो गया है आजकल।
1: सर, जब आपने सोशल मीडिया की बात की तो एक और सवाल है कि डिजिटल युग में विद्यालय जो है वो किस तरह से छात्रों को सही और गलत का अंतर समझाने में मदद कर सकते हैं, क्योंकि शिक्षक और विद्यालय बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं उनको सही और गलत बताने में। तो इस डिजिटल युग में हम कैसे बताएं कि गलत क्या है और सही क्या है, उसमें विद्यालय की क्या भूमिका होगी?
0: सही गलत का चयन हम डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ही करने लगे तो हमारी नैतिक मूल्य पे प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। वास्तव में होता ऐसा है कि तथ्यों के विषय में सही या गलत की बात करते हैं, उसका परीक्षण का स्तर अलग है। वो बुक के माध्यम से या गूगल या अन्य प्लेटफॉर्म से हम देखते हैं, मदद लेते हैं, लेकिन नैतिक रूप से सही और गलत का परिचय डिजिटल प्लेटफॉर्म पे करना सही नहीं है। उसका विकास तो परिवार में, समाज में, स्कूल में, पब्लिक प्लेसेस पे इस तरह से होता है कि बच्चों में कितना सहन शक्ति है, कितना सह अस्तित्व की भावना है, कितना सामाजिक दायित्वों को लेने की भावना है, किस तरह से बच्चा एक अच्छा नागरिक की भूमिका निभा पा रहा है, इन चीजों को सीखना परखना ज्यादा जरूरी है, न कि सही और गलत का निर्णय हम यदि डिजिटल प्लेटफॉर्म से करेंगे तो हमारा नैतिक मूल्य की बात अधूरी रह जाएगी।
1: और सर, अभी अभिभावक और विद्यालय के बीच एक बड़ा सहयोगपूर्ण संबंध होता है, तो ऐसे में मतलब ये दोनों लोग किस तरह से बच्चों में नैतिक मूल्य बढ़ाने में अपना योगदान कर सकते हैं, थोड़ा आप इस पे भी प्रकाश डालें।
0: अभिभावक और विद्यालय, ये जो शिक्षण की त्रिकोणीय ढांचा है जिसमें विद्यार्थी

0: भी होते हैं, उसके दो अहम पहलू हैं। अभिभावकों का सहयोग बहुत हद तक बच्चों के विकास में सहयोग करता है। इसमें जरूरी है कि शिक्षक का जो व्यक्तित्व है वो तो प्रभावी होगा ही बच्चों पे। अभिभावक जो व्यवहार घर पे बच्चों के साथ, पत्नी के साथ, भाई के साथ, अपने माता पिता के साथ करते हैं, उन चीजों को देखना होगा अभिभावकों को कि वो किस रूप में करते हैं। प्रायः ये देखने को मिलता है कि कोई उनके घर आया और बच्चा को पेरेंट्स बोल देते हैं कि बोल लो कि पापा घर पे नहीं है। और यदि इस तरह की शिक्षण बच्चों को मिलेगी तो बच्चे व्यवहारिक रूप से गलत ही सीखेंगे। कहा जाता है कि परिवार पहला पाठशाला है, तो परिवार में अभिभावकों को, माता पिता को अपना व्यवहार सोचना पड़ेगा कि कैसा है, उसको सुधारना पड़ेगा, परिमार्जित करना पड़ेगा। और शिक्षकों को भी आना जाना, पहनावा, बच्चों के साथ व्यवहार, अभिभावकों के साथ व्यवहार, इन चीजों का बच्चों के विकास पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। और उन पहलुओं को हम यदि महत्व दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा।
1: जी सर, एक और सवाल है कि भविष्य के लिए अगर हमको एक आदर्श नागरिक तैयार करना हो, इसमें विद्यालय की भूमिका को आप कैसे देखते हैं?
0: आने वाला जो समय है, भीड़ बढ़ रही है। कहा जाता है कि पढ़े लिखे लोगों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन एक अच्छे नागरिक की कमी देखने को मिलती है। हमारा समाज और हम ऐसे नागरिक पैदा कर रहे हैं जो अपने कर्तव्यों के प्रति उदासीन और अधिकारों के प्रति जागरूक होता दिख रहा है, जिसमें संतुलन की बहुत आवश्यकता है। एक अच्छा नागरिक अपने कर्तव्यों के साथ साथ अधिकारों की बात करता है, वो समाज को आगे ले जाएगा, देश को आगे ले जाएगा।
1: तो इसमें सर विद्यालय की भूमिका किस तरह से हो सकती है?
0: विद्यालय की भूमिका इसमें इस तरह मददगार होगी कि शिक्षक और हमारा जो नई शिक्षा नीति है उसमें इन चीजों को स्थान दिया गया है, ज्यादा इन चीजों पे जोर दिया गया है कि अच्छे नागरिक हम बना सकें। इसीलिए जो मूल्यांकन की विधियां हैं, किताबों से हटकर, सामान्य जो पाठ्यक्रम है उससे हटकर, सर्वांगीण विकास की बात करता है और हॉलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करता है, जिसमें बच्चों का अन्य बच्चों के साथ व्यवहार, बच्चों द्वारा बच्चों का मूल्यांकन, पीयर लर्निंग, इन सब चीजों से एक हम कह सकते हैं बहुत सारी चीज हम लोग विद्यालय में करते हैं, जैसे सफाई अभियान, पौधारोपण, बुजुर्गों की मदद करना, ग्रैंड पेरेंट्स डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं जिसमें अपने दादा दादी, नाना नानी को कैसे सम्मानित व्यवहार के साथ उनको समाज में जगह दें। इस तरह का व्यवहारिक पहलू हम लोग सिखलाने की कोशिश करते हैं। और इसमें पेंटिंग, नाटक, नाटिका, एसे, स्पीच, बहुत सारी गतिविधियां करवाया जाता है जिससे बच्चों को सीखने का मौका मिलता है।
1: सर, एक और सवाल ये है कि जो कहा जाता है कि विद्यालय शिक्षा का केंद्र नहीं बल्कि संस्कारों की पाठशाला भी है, तो इस कथन से किस तरह से, मतलब आप सहमत हैं, किस तरह देखते हैं आप इसको?
0: शिक्षा और संस्कार कह सकते हैं एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आदमी जब शिक्षित होता है तो बहुत कुछ सीखता है, लेकिन संस्कार आंतरिक चीज है। वो धीरे धीरे, जैसे कोई काम आप देखते हैं समाज में हो रहा है, कहा जाता है कि कोई चीज कैसे हो रहा है और क्या हो रहा है, ये सब शिक्षण से तो आसानी से हम सीख पाते हैं, लेकिन वो चीजें कब होनी चाहिए, क्यों होनी चाहिए, इन मूल्यों को यदि हम ध्यान दें तो पता चलता है कि संस्कार बहुत जरूरी है, नैतिकता बहुत जरूरी है। और इन चीजों का विकास साथ साथ होते जाता है। जैसे शिक्षक या प्राचार्य या बच्चे विद्यालय में जो अपना व्यवहार करते हैं, किसी बच्चे को कोई समस्या है और बच्चा आकर कहता है और शिक्षक यदि उसको डांट देते हैं तो बच्चा अपनी समस्या को भी नहीं कह पाता। यदि शिक्षक वहां पर पूछते हैं कि क्या परेशानी है, क्या कारण है और बोलो, उसका निराकरण यदि कर देते हैं तो उस शिक्षक के लिए, उस बच्चे के हृदय में लंबे समय तक ये एक दीर्घकालिक प्रभाव छोड़ता है, अमिट छाप छोड़ता है। उस शिक्षक का प्रभाव सकारात्मक पड़ता है बच्चे के जीवन पे और वही चीज वो सीखता है। जब वो अपने जीवन में इस तरह की समस्याओं का सामना कोई कर रहा होता है उस पे वो भी उसी तरह से मदद के लिए खड़ा हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि विद्यालय संस्कार सिखलाने की पाठशाला है और उसमें शिक्षकों, की भूमि

0: भूमिका बहुत ही अहम है, बहुत ही महत्वपूर्ण है।
1: सर, हमारे कार्यक्रम का वक्त खत्म हो रहा है, तो चलते चलते आपसे आखिरी एक सवाल है कि विद्यालयों में नैतिक शिक्षा को और प्रभावी बनाने के लिए आपके क्या सुझाव हैं, आप क्या सुझाव देना चाहेंगे?
0: नैतिक शिक्षा को और प्रभावी बनाने के लिए हम कह सकते हैं शिक्षा के अर्थों को समझना जरूरी है। जैसा कि विष्णु पुराण में कहा गया है, सा विद्या या विमुक्तय, विद्या सभी बंधनों को, अंधकार को खत्म करती है, अंधविश्वास को खत्म करती है। और विद्यालय कहा जाता है कि समाज का आईना होता है। विद्यालय में बच्चों को हम एक नई चीजों को लेकर एक नया भविष्य तय करते हैं और एक नवनिर्माण का, राष्ट्र नवनिर्माण का कार्य करते हैं। उसमें जब हम सह अस्तित्व, आत्म संयम, सहनशीलता, सत्यता, ईमानदारी, इन गुणों को ध्यान में रखकर हम बच्चे को विकसित करते हैं तो राष्ट्र निर्माण के रूप में हमारे सामने आता है। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि विद्यालय राष्ट्र निर्माण में एक अमिट छाप छोड़ सकता है।
1: सर, आपके कुछ सुझाव हों जो कि हम और अच्छे ढंग से, मतलब विद्यालय स्तर पर नैतिकता को बच्चों में बढ़ावा दें?
0: एक कहावत है, आपो दीपो भवा, इसमें सबको सहयोग देना पड़ेगा। एक व्यक्ति से संभव नहीं, सबको मिलकर कार्य करना होगा, चाहे शिक्षक हो, विद्यालय हो, समाज हो, या समाज के किसी भी भाग में लोग हों, सबको मिलकर हम इसका उपाय ढूंढ सकते हैं और एक बेहतर कल का निर्माण कर सकते हैं।
1: सर, आपने बहुत अच्छी तरह से हमारे इस विषय पर गहन चर्चा की और आपने बताया कि विद्यालय और अभिभावक और उनका घर और बच्चे सब एक दूसरे से जुड़े हैं, और अभिभावकों का भी दायित्व विद्यालय से कहीं कम नहीं है। दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं। अगर हम प्रयास करें, दोनों साथ साथ मिलें, दो दो कदम मिलकर चलें, तो हम अपने बच्चों को एक अच्छा भविष्य दे सकते हैं, इस देश को एक अच्छा नागरिक दे सकते हैं और उन्हें सशक्त बना सकते हैं।
0: जी, इसमें कोई शक नहीं।
1: आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने हमें इतनी अच्छी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और सभी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद।
2: किसले कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे भेंट वार्ता, छात्र में ज्ञान और नैतिकता जगाने में विद्यालय की भूमिका कितनी अहम है। भेंट वार्ताकार थे चंद्रभूषण कुमार, भेंटकर्ता रुपेश कुमार रूप। हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए देशगान।

0: अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत। कार्यक्रम के आरंभ में सुनिए अनुराधा पौडवाल और मोहम्मद अजीज को। फिल्म का नाम है दूध का कर्ज़।

लिए सुनी लता मंगेशकर को, फिल्म का नाम है मिट्टी और सोना। गीतकार हैं अनजान, संगीतकार बप्पी लाहिड़ी।

इस गाने के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किस्त की राशि जारी करेंगे। अब से कुछ देर बाद पश्चिम बंगाल के हुगली में आयोजित कार्यक्रम से श्री मोदी 9 करोड़ 44 लाख किसानों के बैंक खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि डीबीटी के माध्यम से अंतरित करेंगे। बिहार के 73 लाख से अधिक किसानों के बैंक खाते में योजना की राशि अंतरित की जाएगी। इस अवसर पर पटना के बामेती सभागार में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित रहेंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए कल होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले आज राष्ट्रव्यापी मॉक ड्रिल का आयोजन कर रहा है। परीक्षा से पहले मानक तैयारी के निरीक्षण के लिए यह अभ्यास किया जा रहा है। इस दौरान पटना में बापू परीक्षा भवन समेत राज्य के प्रमुख केंद्रों पर परीक्षा के आयोजन का पूर्वाभ्यास किया जा रहा है। इसे लेकर यातायात व्यवस्था में भी परिवर्तन किया गया है। नीट पुनर्परीक्षा के लिए राज्य के 34 जिलों में 331 केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा में 1,56,000 से अधिक अभ्यर्थियों के शामिल होने की संभावना है। परीक्षा के मद्देनजर बेली रोड पर मेट्रो कार्य के लिए आज से प्रस्तावित ट्रैफिक ट्रायल भी फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। इधर राज्य सरकार ने कदाचार मुक्त वातावरण में परीक्षा संपन्न कराने के लिए सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए हैं। परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए परिवहन विभाग विशेष बसों का परिचालन करेगा। साथ ही रेलवे की ओर से नीट परीक्षा अभ्यर्थियों के लिए कल विशेष ट्रेनें भी चलाई जाएंगी। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग

0: दिवस के अवसर पर कल देश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इसे लेकर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मध्य प्रदेश के जबलपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में कल आयोजित होने वाले कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता में आयोजित मुख्य समारोह में शामिल होकर नेतृत्व प्रदान करेंगे। इस वर्ष योग दिवस की थीम है स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग। राजधानी पटना समेत प्रदेश के विभिन्न भागों में भी योग शिविरों और योग जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। पटना के पाटलिपुत्र खेल परिसर में आयोजित मुख्य समारोह में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी समेत राज्य मंत्रिमंडल के कई सदस्य शामिल होंगे। वहीं प्रदेश के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में भी योगाभ्यास सत्र का आयोजन होगा। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें नया जोश है। देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। राजधानी पटना समेत राज्य के दक्षिण पश्चिम भागों में भीषण गर्मी का दौर जारी है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान भभुआ, भोजपुर और बक्सर जिले में लू चलने की संभावना को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान कैमूर का भभुआ राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा, जहां का अधिकतम तापमान 42.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इधर विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि आज राज्य के उत्तरी और दक्षिण पूर्वी भागों में कुछ स्थानों पर तेज आंधी के साथ बारिश हो सकती है। राज्य सरकार ने क्रिकेटर मुकेश कुमार और आकाशदीप को पुलिस उपाधीक्षक यानी डीएसपी पद पर नियुक्ति के लिए अनुशंसित किया है। उत्कृष्ट खिलाड़ियों की सीधी नियुक्ति नियमावली 2026 के तहत यह अनुशंसा की गई है। गोपालगंज निवासी मुकेश कुमार और रोहतास के आकाशदीप तेज गेंदबाज हैं। उन्होंने कई अहम मुकाबलों में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया है। शेखपुरा पुलिस ने सोशल मीडिया पर हथियार लहराने वाले वायरल वीडियो के मामले में आरोपी युवक को कुसुम्बा थाना क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया। औरंगाबाद जिले के रफीगंज थाना क्षेत्र से रफीगंज गोह मुख्य मार्ग पर पिकअप वैन और ऑटो रिक्शा की टक्कर में दो लोगों की मौत हो गई, जबकि दो अन्य लोग घायल हो गए। अररिया जिला अंतर्गत सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ बनाने के लिए LIA की बैठक आयोजित की गई। इसमें जिला प्रशासन, SSB और अन्य खुफिया एजेंसियों के अधिकारी शामिल हुए। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अब आप सुनेंगे उर्दू बुलेटिन।
1: आदाब, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप वसीम अहमद से इलाकाई खबरें सुनिए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज PM किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किस्त की रकम जारी करेंगे। अब से कुछ देर बाद मगरबी बंगाल के हुगली में मुनाकिद प्रोग्राम से जनाब मोदी 9,44,00,000 किसानों के बैंक खातों में DBT के जरिए 18,880 करोड़ रुपए से ज़ायद की रकम मुंतकिल करेंगे। बिहार के 73,00,000 से ज़्यादा किसानों के बैंक खातों में इस स्कीम की रकम मुंतकिल की जाएगी। इस मौके पर पटना के बामिती ऑडिटोरियम में मुनाकिद होने वाली तकरीब में वज़ीर आला सम्राट चौधरी समेत कई मुअज्ज़ज़ शख्सियात मौजूद रहेंगी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA कल होने वाले NEET UG री एग्ज़ाम से कबल आज कौमी सतह के मॉक ड्रिल का इनाकाद कर रहा है। इम्तहान से कबल मियारी तैयारी के जायजा के लिए मशक किया जा रहा है। इस दौरान पटना में बापू परीक्षा भवन समेत रियासत के अहम मराकज़ पर इम्तहान का इनाकाद का कबल अज़ वक्त मशक किया जा रहा है। इसके पेश नज़र ट्रैफिक निज़ाम में भी तब्दीली की गई है। नीट री एग्ज़ाम के लिए रियासत के 34 अजला में 331 मरकज़ बनाए गए हैं। इम्तहान में 1,56,000 से ज़्यादा उम्मीदवारों के शरीक होने का इम्कान है। इम्तहान के मद्देनज़र बेली रोड पर मेट्रो काम के लिए आज से

0: जवजा ट्रैफिक ट्रायल भी फिलहाल मुलतवी कर दिया गया है। इधर रियासती हुकूमत ने बदउनवानी से पाक माहौल में इम्तहान मुनाकिद कराने के लिए हिफाजत के बेहतर इंतजाम किए हैं। इम्तहान दहिंदगान की सहूलत के लिए महकमे ट्रांसपोर्ट खसूसी बसें चलाएगा। साथ ही रेलवे की जानिब से कल नीट इम्तहान उम्मीदवारों के लिए खसूसी ट्रेनें भी चलाई जाएंगी। 12वें बैनुल अक्वामी योम योगा के मौके पर कल मुल्क भर में मुतअद्दिद प्रोग्रामों का इनेकाद किया जाएगा। इस सिलसिले में तैयारियों को हतमी शक्ल दी जा रही है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू कल मध्य प्रदेश के जबलपुर में बैनुल अक्वामी योम योगा के प्रोग्राम में बतौर मेहमान खसूसी शिरकत करेंगी। वहीं वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कोलकाता में मुनक़द होने वाली मरकज़ी तकरीब में क़्यादत करेंगे। इस साल योम योगा का थीम है सेहतमंद बुढ़ापे के लिए योगा। राजधानी पटना समेत रियासत के मुख्तलिफ हिस्सों में योगा कैंप और योगा बेदारी के प्रोग्राम मुनक़द किए जाएंगे। पटना के पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में मुनक़द होने वाली मरकज़ी तकरीब में वज़ीर आला सम्राट चौधरी समेत रियासती काबीना के कई अरकान शरीक होंगे। वहीं रियासत के तमाम सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में भी योगा की मशक के सेशन का इनाकाद किया जाएगा। राजधानी पटना समेत रियासत के जनूब मगरबी हिस्सों में शदीद गर्मी का सिलसिला जारी है। महकमे मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान भभुआ, भोजपुर और बक्सर अजला में लू चलने के इम्कान के पेश नज़र येलो अलर्ट जारी किया है। महकमा की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कैमूर का भभुआ रियासत का सबसे गर्म मकाम रहा, जहां का ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 42.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दूसरी तरफ महकमा ने अपनी पेशगोई में कहा है कि आज रियासत के शुमाल और जनूब मशरक़ी हिस्सों में कुछ मकामात पर तेज़ आंधी के साथ बारिश हो सकती है। शेखपुरा पुलिस ने सोशल मीडिया पर असलहा लहराने वाले वायरल वीडियो के मामले में मुलविस मुलजिम नौजवान को कुसुम्भा थाना इलाके से गिरफ्तार कर लिया है। औरंगाबाद ज़िला के रफ़ीगंज थाना इलाके में रफ़ीगंज गोह शाहराह पर पिकअप वैन और ऑटो रिक्शा के दरमियान होने वाले तसादुम में दो अफराद हलाक हो गए, जबकि दो दीगर ज़ख्मी हुए हैं। अररिया ज़िला के सरहदी इलाकों में अमन व अमान और सिक्योरिटी के निज़ाम को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए LIU का एक इजलास मुनक़द किया गया। इसमें ज़िला इंतज़ामिया SSB और दीगर इंटेलिजेंस एजेंसियों के अफसरान ने शिरकत की। इसके साथ ही इलाकाई खबरों का ये बुलेटिन अब ख़त्म होता है।
1: हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए रोजगार सूचना। इलाहाबाद हाईकोर्ट रिव्यू ऑफिसर, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर एवं कंप्यूटर असिस्टेंट के कुल 543 पदों पर भर्ती हेतु योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है। उम्मीदवार भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से कम स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए, साथ ही कंप्यूटर साइंस में डिग्री डिप्लोमा हो या ओ लेवल, CCC लेवल का प्रमाण पत्र हो। योग्यता से संबंधित विस्तृत जानकारी हेतु विज्ञापन देखें।

उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष एवं अधिकतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। कंप्यूटर असिस्टेंट हेतु न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। आरक्षित वर्ग को नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की गणना 1 जुलाई 2026 के आधार पर की जाएगी। आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 21 जून 2026 है। आवेदन से संबंधित विस्तृत जानकारी www.allahabadhighcourt.in से प्राप्त किया जा सकता है।

पर भर्ती हेतु योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है। उम्मीदवार भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से कम किसी भी विषय से स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए। योग्यता से संबंधित विस्तृत जानकारी हेतु विज्ञापन देखें। उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु 32 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की गणना 1 अगस्त 2026 के आधार पर की जाएगी। आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 22 जून 2026 है। आवेदन से संबंधित विस्तृत जानकारी www.ssc.gov.in से प्राप्त किया जा सकता है।

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया अप्रेंटिस के कुल 4500 पदों पर भर्ती हेतु योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है। उम्मीदवार भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से कम स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए। योग्यता से संबंधित विस्तृत जानकारी हेतु विज्ञापन देखें। उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 20 वर्ष एवं अधिकतम आयु 28 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की गणना 31 मई 2026 के आधार पर की जाएगी। आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 22 जून 2026 है। आवेदन से संबंधित विस्तृत जानकारी www.centralbank.bank.in से प्राप्त किया जा सकता है। अभी आप सुन रहे थे रोजगार सूचना। हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे दोपहर समाचार अंक।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ ओडिशा में 47,600 करोड़ रुपए से अधिक के विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं। सरकार ने 16 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन दवाओं के उत्पादन, बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगाया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा कल होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले देश भर में मॉक ड्रिल। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में कुछ स्थानों पर कल तक मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच चेन्नई में जारी। और फीफा विश्व कप में ब्राजील ने हैती को 3-0 से हराकर पहली जीत दर्ज की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ओडिशा के मयूरभंज जिला स्थित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पैतृक गांव पहाड़पुर पहुंचे। राष्ट्रपति मुर्मू अपने 68वें जन्मदिन के अवसर पर अपने गांव में हैं। ओडिशा के राज्यपाल डॉ. हरिबाबू कंबमपति, मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी और स्थानीय लोगों ने उनके आगमन पर गर्मजोशी से स्वागत किया।
1: उड़ीसा के आदिवासी इलाकों तक पहुंचने की एक अहम कोशिश के तहत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मयूरभंज जिले में अपने गांव पहाड़पुर गई। प्रधानमंत्री ने पवित्र सांथाली जोहरा और जो जहरा पूजा स्थलों पर प्रार्थना की और स्थानीय आदिवासी समुदायों के लोगों के बातचीत के, जिससे उन्हें उनकी समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं और जीवन शैली के बारे में जानकारी मिली। प्रधानमंत्री ने स्किल डेवलपमेंट सेंटर और SLS मेमोरियल स्कूल का भी दौरा किया, जहां उन्होंने छात्रों से बातचीत की और उन्हें शिक्षा, कौशल विकास और आत्मनिर्भरता के दिशा में बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। ये दौरा इसलिए भी खास था क्योंकि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति मुर्मू के 68वें जन्मदिन के मौके पर उनके गाँव में उनका साथ शामिल हुए। इन कार्यक्रम से आदिवासी सशक्तिकरण, शिक्षा को बढ़ावा देने और समावेश विकास के प्रति उनकी साझा प्रतिबद्धता को पता चलता है। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री अब रायरंगपुर के डांडा बेस में उड़ीसा

0: सरकार के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित एक बड़े सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। यहां प्रमुख क्षेत्रों में 47,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजना का उद्घाटन और उन्हें राष्ट्र को समर्पित किया जा रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए रंगरंगपुर से मैं प्रकाश दास।
1: इस समय राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ओडिशा सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर रायरंगपुर में आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित हैं। इस अवसर पर ऊर्जा, परिवहन, औद्योगिक ढांचे, स्वास्थ्य, शिक्षा, सिंचाई और पेयजल से जुड़ी 47,600 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। इस समय प्रधानमंत्री एक विशाल जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
2: प्रगति परिदा जी, उड़ीसा के मंत्री गणेश सिंह खुंटिया जी, कृष्णचंद्र महापात्र जी, सांसद नवाचरण माझी जी, मनमोहन सामल जी, बैजन पांडा जी, अन्य महानुभाव भाइयों और बहनों, हमारा ओडिशा इन दिनों उत्सवों के आनंद में डूबा हुआ है। यहां का गण पर्व रज पिछले हफ्ते ही धूमधाम से मनाया गया है। महाप्रभु जगन्नाथ जी की रथ यात्रा की तैयारियां भी पुरजोश चल रही है। मयूरभंज के बारीपदा रथ यात्रा को लेकर भी उत्साह का माहौल है।
1: प्रधानमंत्री मोदी आज पश्चिम बंगाल भी जाएंगे। वे हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंग दिवस समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। वे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त भी जारी करेंगे। इसके अंतर्गत देश के 9 करोड़ 44 लाख किसानों के बैंक खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे अंतरित की जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंग दिवस पर राज्य के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पर अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि ये दिन पश्चिम बंगाल के भारत का अभिन्न अंग बने रहने के संकल्प और आकांक्षाओं का प्रतीक है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि वर्ष 1947 में इसी दिन एक ऐतिहासिक फैसले में भारत के एक अहम हिस्से के रूप में पश्चिम बंगाल राज्य के गठन का मार्ग प्रशस्त किया गया था। प्रधानमंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल साहित्य, संगीत, कला, आध्यात्मिकता, विज्ञान, व्यापार, वाणिज्य के लिए प्रसिद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता में कल स्वदेश में निर्मित नौसेना की 3 जहाजों INS धुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय का अनावरण करेंगे। इन जहाजों का निर्माण भारत में किया गया है। इनका उपयोग समुद्री सुरक्षा सर्वेक्षण और पनडुब्बी रोधी अभियानों में किया जाएगा। ये भारत की रक्षा जहाज निर्माण क्षमता को मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह आज कोल्हापुर और इचलकरंजी के दौरे पर हैं। वे महालक्ष्मी मंदिर परिसर में विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन किया और कोल्हापुर के पुलिस परेड ग्राउंड में एक जनसभा को संबोधित किया।
3: मोदी जी प्रधानमंत्री बने और अयोध्या में भव्य राम मंदिर आज अपनी भगवी ध्वजा के साथ खड़ा हुआ। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जो औरंगजेब ने

0: कॉरिडोर बन रहा है और अब अंबाबाई का कॉरिडोर बनाने का काम भी शुरू हो गया।
1: इसके बाद गृह मंत्री इचल करंजी में जनता सहकारी बैंक के नए भवन का उद्घाटन करेंगे तथा एक सहकारी चीनी कारखाने के नामकरण और विस्तार के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। सरकार ने जनहित में 16 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन एफडीसी दवाओं के उत्पादन, बिक्री और वितरण पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। यह फैसला सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर की गई विशेषज्ञ समिति की समीक्षा के बाद लिया गया। समिति

0: ने पाया कि इन दवाओं के संयोजन का पर्याप्त चिकित्सीय औचित्य नहीं है और इनके उपयोग से स्वास्थ्य संबंधी जोखिम हो सकते हैं। प्रतिबंधित दवाओं में त्वचा दर्द और शरीर में ऐंठन के उपचार तथा कुछ एंटीबायोटिक दवाएं शामिल हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि इसका उद्देश्य केवल सुरक्षित, प्रभावी और वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। मंत्रालय ने राज्य औषधि नियामकों और संबंधित एजेंसियों को इस प्रतिबंध को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी कल होने वाली नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा की तैयारियों के अंतर्गत आज देश भर में मॉक ड्रिल कर रही है। सुबह 9 बजे शुरू हुआ यह अभ्यास पूरे दिन जारी रहेगा। इस अभ्यास में 2.5 लाख से अधिक सुरक्षाकर्मी तैनात हैं। इसका उद्देश्य परीक्षा का सुरक्षित, निष्पक्ष और सुचारू संचालन सुनिश्चित करना है। एजेंसी के अनुसार नीट यूजी पुनर्परीक्षा भारत के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में आयोजित की जाएगी, जिसमें 22,79,000 से अधिक अभ्यर्थी शामिल होंगे। परीक्षा में सीसीटीवी निगरानी, आधार आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन और परीक्षा सामग्री के सुरक्षित परिवहन जैसे विशेष सुरक्षा व्यवस्थाएं की गई हैं। सरकार के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी विवेक अग्रवाल को वर्ष 2026-27 के लिए वित्तीय कार्यवाही कार्यबल का उपाध्यक्ष चुना गया है। वे ब्रिटेन के गाइस थॉमसन का स्थान लेंगे। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस नियुक्ति से आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने और गैरकानूनी वित्तीय नेटवर्क के खिलाफ संघर्ष की भारत की प्रतिबद्धता मजबूत होती है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल दुनिया भर में मनाया जाएगा। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय है स्वस्थ आयु के लिए योग। ये विषय हर उम्र में योग के महत्व को रेखांकित करता है। हमारे संवाददाता ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर संस्कृति मंत्रालय देश भर में 100 स्थानों पर विशेष कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। इनमें भारत की समृद्ध विरासत और योग परंपराओं को प्रदर्शित किया जाएगा।
1: नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने कल मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले रन फॉर योग और एक विशेष जुम्बा सत्र का आयोजन आज किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों को अपने दैनिक जीवन में योग अपनाने के लिए प्रेरित करना था। संस्थान के निदेशक प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि योग केवल एक दिन मनाने की चीज नहीं है, बल्कि इसे पूरे साल नियमित रूप से करना चाहिए।
2: हमारे लिए ये बहुत जरूरी है कि हम 365 डेज योगा करें, और इस बार के योगा के ऊपर ये डिक्लेरेशन भी होने जा रहा है कि हम वर्ल्ड में कम से कम 15 से 20 मिनट अगर योग करते हैं, अपने प्राणायाम करते हैं, तो जो इस तरह की हमारे लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स हैं, उनको हम बहुत अच्छे की तरह से मैनेज कर सकते, और ये प्रूव हो चुका है।
1: अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य राष्ट्रीय कार्यक्रम कल कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आयोजित किया जाएगा। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद और विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों के संयुक्त प्रयासों से इस वर्ष योग दिवस के कार्यक्रम दुनिया भर में लगभग 2,500 स्थानों पर आयोजित किए जा रहे हैं। इनमें 210 से अधिक भारतीय मिशन भाग ले रहे हैं। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: स्लोवाकिया में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। स्लोवाकिया गणराज्य में भारतीय राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव ने आकाशवाणी को बताया कि स्लोवाकिया में योग और आयुर्वेद बहुत लोकप्रिय हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि भारतीय दूतावास और अन्य संगठन राजधानी ब्रातिस्लावा और अन्य स्थानों पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं।
3: स्लोवाक रिपब्लिक में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए भारतीय दूतावास का मुख्य कार्यक्रम ब्रातिस्लावा शहर में आयोजित किया जाएगा। दूतावास मशहूर ब्रातिस्लावा कैसल में भी एक योग कार्यक्रम आयोजित करेगा। स्लोवाकिया में भारत की राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव ने बताया कि दूतावास परिसर में हर दिन 2 योग कक्षाएं आयोजित की जा रही हैं, और अब पूरे स्लोवाकिया में सैकड़ों योग प्रशिक्षण केंद्र संचालित हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाल ही में हुई स्लोवाकिया यात्रा के दौरान आयुष मंत्रालय द्वारा हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन से स्लोवाकिया में योग को और मजबूत करने के रास्ते खुलने की उम्मीद है। स्मृति एस पल्लुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: इस कड़ी में आकाशवाणी समाचार आयुष राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार प्रताप राव जाधव का विशेष साक्षात्कार प्रसारित करेगा। आकाशवाणी FM गोल्ड 100.1 MHz चैनल पर यह साक्षात्कार आज रात 9:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। श्री जाधव ने बताया कि कामकाजी लोगों के लिए सरकार ने वाई ब्रेक ऐप भी शुरू किया है।
4: लोग दिन भर चेयर पे बैठे काम करना पड़ता है, वो लोग भी जब लंच ब्रेक होता है तब तक बहुत सारी थकान वो लोगों में आती है, तो वो थकान दूर करने के लिए भी उनके

0: वाइब्रिक नाम का एक हमने ऐप निकाला है कि उसमें 10 मिनट में तुम चेयर पर बैठे बैठे कौन से आसन कर सकते हो, करने से जो भी तुम्हारा थकान आई होगी वो दूर हो जाएगी।
1: भारत सोमवार से शुरू हो रही 2 दिवसीय ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल करेंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार बैठक में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और प्रतिनिधिमंडल नई सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श करेंगे। बैठक में नई तकनीक से जुड़े सुरक्षा खतरों और आतंकवाद से निपटने के उपायों पर भी चर्चा होगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करते हुए उन्हें मजबूत और प्रभावशाली नेता बताया है। उन्होंने कहा कि श्री मोदी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ दुनिया के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक हैं। एक साक्षात्कार में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि श्री मोदी के पिछले 12 सालों के नेतृत्व में भारत को मजबूती और स्थिरता मिली है। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में कल तक कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में भी बारिश की संभावना व्यक्त की है। भारतीय सूचना सेवा के पूर्व अधिकारी दीपांकर मुखोपाध्याय का कल रात लंबी बीमारी के बाद कोलकाता में निधन हो गया। वे 77 वर्ष के थे। क्रिकेट में चेन्नई में भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरे और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच में ताजा समाचार मिलने तक अफगानिस्तान ने 12वें ओवर में 4 विकेट पर 42 रन बना लिए हैं। उधर फीफा फुटबॉल विश्व कप में ब्राजील ने हैती को 3-0 से हराकर पहली जीत दर्ज की। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ ओडिशा में 47,600 करोड़ रुपए से अधिक के विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं। सरकार ने 16 फिक्स डोज कॉम्बिनेशन दवाओं के उत्पादन, बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगाया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा कल होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले देश भर में मॉक ड्रिल। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में कुछ स्थानों पर कल तक मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच चेन्नई में जारी और फीफा विश्व कप में ब्राजील ने हैती को 3-0 से हराकर पहली जीत दर्ज की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं मीडियम वेव के 483.1 मीटर अर्थात 621 किलो हर्ट्ज पर। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत। फिल्म बटवारा में सुनिए अनुराधा पौडवाल, अलका याग्निक और कविता कृष्णमूर्ति को।

0: अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव के 483.1 मीटर अर्थात 621 किलो हर्ट्ज पर। स्टूडियो की घड़ी में दिन के 3 बज चुके हैं। इसी के साथ हमारी आज की पहली सभा समाप्त होती है। हम फिर आपके लिए कार्यक्रम लेकर उपस्थित होंगे शाम के 4:30 पे। उस समय तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।
1: सबसे पहले एक छोटी सी जानकारी, आज कौन कौन से कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो आज शाम 7 आप सुनेंगे प्रोग्राम सफरनामा और 7:15 पर सुनेंगे प्रोग्राम मेहमान की बातें। कार्यक्रम में हमारे आज के
2: की चिट्ठियों को शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे, पर इसमें समय लग सकता है। कृपया धैर्य बनाए रखें।
3: और हाँ, हस्तलिखित चिट्ठियों को प्राथमिकता दी जाएगी। कृपया सील ठप्पे वाले और छपे हुए पोस्टकार्ड ना भेजें। अंतरदेशीय नहीं, केवल पोस्टकार्ड भेजें। और ये चिट्ठियां आपको भेजनी कहाँ है?
4: कार्यक्रम मन चाहेगी,
2: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
3: पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091।

लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम मन चाहे गीत। पहली पेशकश आपको सुना रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज में। आंखें फिल्म से हमने से लिया है, रवि का संगीत है, साहिर लुधियानवी ने से लिखा।

0: कभी कभी।
1: फिल्म आंखें से लता मंगेशकर की आवाज में गीत अभी आप सुन रहे थे। इस गीत को सुनना चाहा था इंद्रप्रस्थ सदन रुद्री, जिला धमतरी छत्तीसगढ़ से चंद्रकांत सीमा साहू, सूर्यकांत राकेश साहू, शुभम सावित्री साहू ने। साथ ही शेरकोट जिला बिजनौर से मोहम्मद वक्कार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन, परवीन, रोजी, बिट्टू, साजदा और हिना ने। और अहिल्यानगर केड़गांव से भाऊ साहब नवथर, अक्षय, चंदन, जय कुमार और रुचिता ने इस गीत को सुनने की फरमाइश लिख भेजी थी।

0: सुरेश वाडकर की आवाज़ में ये गीत अभी आप सुन रहे थे प्रेम रोग फिल्म से, संतोष आनंद ने इसे लिखा, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी और इसे सुनना चाहा था ककराला बदायूं उत्तर प्रदेश से डॉक्टर मसरूर खान, मोहम्मद सरफराज खान, अमजद अंसारी और समस्त परिवार ने। उल्लास नगर से पुरुषोत्तम शामतकर, ज्योति और चेतन ने। जाखोद राजस्थान से पूजा खटक, बिमला देवी, शंभू दयाल खटक ने।
1: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
2: परेशान हूँ मैं।
1: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
3: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
1: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
3: अगर आप टाइम पे नहीं सो खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
1: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 22 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।

किशोर कुमार की आवाज में गीत अभी आप सुन रहे थे याराना फिल्म से अनजान ने से लिखा राजेश रोशन का संगीत था। इसे सुनना चाहा था कपाई सालपुरा जिला बारा राजस्थान से सतीश श्रीवास्तव श्रीमती प्रेमलता हिमानी हर्षिता और अभिषेक ने। जसपुर उत्तराखंड से रियात हुसैन सिद्दीकी नजमा बेगम रियाज रिफाकत शमरीन परवीन और मोहम्मद रिहान माहिरा नूर ने इस गीत को सुनना चाहा था। गंगानगर बीकानेर से कैलाश सैनी गोविंदा और उत्तम सोनी।

मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में ये गीत अभी आप सुन रहे थे धरती फिल्म से। राजेंद्र कृष्ण ने इसे लिखा था, शंकर जयकिशन की तर्ज थी। इसे सुनना चाहा था रमाकांत शर्मा, मीनाक्षी रवि और अक्षय शर्मा ने जालंधर से, मॉडल टाउन करनाल से सुधीर नूतन, सुनीता शर्मा और माया कुमार ने।

कुमार सानू, अलका याग्निक की आवाज़ों में गीत आप सुन रहे थे हम है राही प्यार के इस फिल्म से। इस गीत को सुनना चाहा था छत्तीसगढ़ देवरी भाटापारा से गन्नूलाल रजक, केआर साहू, अश्विनी कुमार, गणेश राम ने, अमर सिंहपुरा, बीकानेर राजस्थान से सिकंदर अली खान और उनके परिवार ने, और भिलई छत्तीसगढ़ से रोशन लाल देवांगन, कौशल्या हेमलता और डिम्पल देवांगन ने। इसके साथ ही आज का ये प्रोग्राम मन चाहे गीत यहीं समाप्त होता है।

0: यह है विविध भारती।
1: नाट्य तरंग। श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में आपको सुनवाते हैं आलोक भट्टाचार्य के मूल बंगला नाटक का हिंदी अनुवाद, मृत्युहीन प्राण। हिंदी अनुवादक दीप नारायण मिठोलिया, निर्देशक सुदर्शन कुमार। आइए आज सुनते हैं इस नाटक का पहला भाग।

0: सांझ होती जा रही है। इस पार्क में अकेले अकेले लगता है सचमुच बेंजामिन का सिर फिर गया है। पता नहीं उसकी ऐसी कौन सी गुप्त खबर है जिसे वो मुझसे ही भिजवाना चाहता है। आखिर ये गुप्त खबर हो क्या सकती है? अभी तक किसी का भी कोई पता नहीं, और भैया झूठ मूठ। चली ही जाऊं अब।
1: जिनी।
0: हाँ?
1: जिनी।
0: कौन? बेंच।
1: खामोश। आहिस्ता, इधर इस तरफ।
0: लेकिन
1: इस झाड़ी के पीछे।
0: आखिर मामला क्या है बेंच, इतना छिपा? मुझे तो डर लगने लगा है।
1: तुम्हारे डरने की कोई बात नहीं है जिनी। हमारे यहाँ पहुँचने की खबर पुलिस को पहले लग गई है, इसलिए प्रोग्राम में कुछ चेंज करने पड़े हैं।
0: बेंच, डर सिर्फ मेरे लिए ही नहीं, तुम्हारे लिए भी है।
1: जिनी, तुम फौरन उस बेंच पर जाकर बैठ जाओ।
0: अच्छा।
2: जुड़ू, भाई बात क्या है? इसी पार्क के पश्चिम वाले गेट की बाईं ओर उनकी मीटिंग होने की बात है। वक्त शाम के 4 बजे का था, पर अब तो सांझ हो चुकी है, कहीं कोई एक भी बदमाश नजर नहीं आया।
3: सर, फिलिप्स ने कहीं हमें गलत इन्फॉर्मेशन तो नहीं दी?
2: नहीं, फिलिप्स गलत इन्फॉर्मेशन देने वाला आदमी नहीं है। मुझे लगता है जुडू, हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली है शायद उसकी भनक उन्हें पहले ही लग चुकी है।

0: सच, इन्हें गिने कुछ काले कुत्तों पर अभी तक हम काबू नहीं पा सके हैं। दिस डिस्ग्रेसफुल ऑन आवर पार्ट।
1: उस बेंच पर कौन बैठा है? कोई लड़की है शायद, क्यों?
0: हाँ, वही तो देख रहा हूँ।
1: बड़ी हिम्मत वाली मालूम पड़ती है छोकरी।
2: ए लड़की, यहाँ अकेली क्या कर रही हो?
0: लुक छिपकर कुछ प्यार मोहब्बत करने आई हो शायद? हाँ
3: नहीं नहीं, मतलब यूं ही जरा घूमने आई थी, बस मैं घर ही जा रही हूँ।
0: ठहरो, कितनी देर से तुम यहाँ बैठी?
3: जी बस थोड़ी देर से, मतलब सांझ से।
0: सांझ से? बस जी थोड़ी देर से, और अब इस सांझ ठेले तक?
3: जी मैं घर जा रही हूँ।
2: तुमने यहाँ कोई मीटिंग होती देखी है?
3: मीटिंग नहीं तो नहीं देखी।
0: मीटिंग मतलब ऐसी कोई खास बात नहीं है, कुछ लुच्चे लफंगे छोकरों की जमात, और क्या।
3: नहीं नहीं, ऐसा मैंने कुछ भी नहीं देखा यहाँ। अच्छा तो अब मैं चलूं?
0: हाँ हाँ, जाओगी?
3: जी
0: जाओगी, क्यों नहीं। अच्छा क्या तुम कॉलेज में पढ़ती हो?
3: जी हाँ।
0: कविताएं पढ़ती हो? मान लो जैसे बेंजामिन मोलाइज की कविताएं पढ़ती हो?
3: हाँ पढ़ती हूँ, बहुतेरे पढ़ते हैं, बहुत ही अच्छा लिखते हैं।
0: उसे जानती भी हो?
3: बेंजामिन को? अब बेंजामिन को भला जानूंगी कैसे?
1: वो ऐसा कोई खास रिप्यूटेड कवि नहीं है शायद।
3: अच्छा तो अब मैं चलूं?
0: हाँ जाओ जाओ।
1: मिस्टर थॉमसन, बेंजामिन मोलेज क्या बहुत ही डेंजरस एलिमेंट है?
0: आदमी के हिसाब से डेंजरस है कि नहीं नहीं मालूम, बट हिज पेन, उसकी कलम बंदूक से भी ज्यादा खौफनाक है, और कविताएं तो जबरदस्त खतरनाक।

0: हाँ, मृत्यु देती नित्य नूतन आस जीवन की, मृत्यु के अधरों छिपी है, मृत्यु के अधरों छिपी है, सही शब्द नहीं सूझ रहा, मृत्यु के अधरों छिपी। हाँ माँ, माँ।
1: क्यों रे बेंच, क्या बात है, क्यों बुला रहा है?
0: माँ जल्दी से जरा इधर तो आना।
1: सूप उतार कर अभी आती हूँ, जरा रुक।
0: मुझे सही शब्द चाहिए ही, समय बहुत कम है, बस कुछ एक दिनों के बाद सोयोटो दिवस स्मरण का प्रोग्राम है, इसी बीच इसे प्रेस में भी देना है।
1: क्या बात है बेंच, क्यों बुला रहा था?
0: माँ सुनो, मृत्यु देती नित्य नूतन आस जीवन की, मृत्यु के अधूरों छिपी है, ये मृत्यु के अधूरों छिपी है के बाद क्या शब्द होगा?
1: इसके बाद क्या होगा, अरे किसका क्या होगा?
0: माँ सुनो ना, मृत्यु देती नित्य नूतन आस जीवन की, मृत्यु के अधूरों छिपी है, ये छिपी है के बाद क्या शब्द होना चाहिए?
1: मुझे नहीं मालूम, जाने क्या ऊटपटांग बके जा रहा है।
0: ऊटपटांग नहीं है माँ, सुनो, मृत्यु का मतलब नहीं है अंत सृजन का, मृत्यु में है सार्थकता सार जीवन का, मृत्यु देती प्रेरणा प्रतिकार करने की, जुल्म का अन्याय का संहार करने की।
1: चुप कर चुप कर, दीवारों के भी कान होते हैं।
0: नहीं माँ, अब चुप रहने से काम नहीं चलेगा, अब तो मजबूत गले से अपनी आवाज बुलंद करने का वक्त आ गया।
1: नहीं बेंच, ऐसी बातें मुंह से ना निकाल, देखता नहीं देश भर में दिन पर दिन कैसी कैसी घटनाएं घटती जा रही हैं।
0: मैं तो देश के बाहर नहीं हूं माँ, घटनाएं जैसे जैसे आगे बढ़ेंगी वैसे वैसे हमें भी। खैर छोड़ो इन बातों को, पहले मेरी कविता के लिए जरा शब्द तो बताओ।
1: कविता के लिए शब्द?
0: हाँ।
1: अच्छी बात है, तो फिर अपनी लाइन और एक बार बोल।
0: सुनो, मृत्यु देती नित्य नूतन आस जीवन की, मृत्यु के अधरों छिपी है, इसके आगे
1: मृत्यु के अधरों छिपी है श्वास जीवन की।
0: श्वास? कोई और शब्द बोलो माँ, कोई दूसरा शब्द बोलो ना।
1: संतरास।
0: संतरास? इस शब्द में जाने कैसी भीरुता मिश्रित नीचता की गंध है माँ, ये तो कायरों की निशानी।

0: है।
1: अधरों प्यास शब्द जोड़ता है। हाँ तो फिर इसे लिखो, मृत्यु के अधरों छिपी है प्यास जीवन की।
2: और राइट राइट, बिल्कुल बिल्कुल ठीक शब्द है माँ, सच माँ, माँ हो माँ, तुम कभी बेंजामिन मालवेस की सचमुच की माँ हो, एक बहुत बड़ी कवित्री, बहुत बड़ी माँ।
1: अरे अब छोड़ भी, पागल कहीं का।
3: मासी,
0: जीनी,
1: आ बेटी अंदर आ जा। बता क्या खबर है, तेरे माँ बाप सभी अच्छे हैं ना?
3: हाँ मौसी, सभी अच्छी तरह से हैं। वो परीक्षा नज़दीक आ पहुँची है, तभी बेन से इकोनॉमिक्स के चैप्टर को समझने के लिए आई हूँ।
1: अच्छी बात है, तुम लोग पढ़ाई लिखाई करो, मैं जरा रसोई घर में जाती हूँ।
3: जी अच्छा।
0: जीनी, कौन सी परीक्षा तुम्हारे नज़दीक आ पहुँची है?
3: बहुत ही भयंकर परीक्षा बेंच, उसे अग्नि परीक्षा भी कह सकते हो।
0: अच्छा, होगी कोई। पर इतना जरूर है कि तुम्हारी पहेलियों को समझ पाना मेरे लिए टेढ़ी खीर है। खैर, इस कविता को सुनो। मृत्यु देती नित्य नूतन आस जीवन की, मृत्यु के अधरों छिपी है प्यास जीवन की, गीत जीवन का सुनाने की लिए अभिलाष, संधि क्षण में पहुंचकर वे हुए घोर हताश, क्रूर निर्मम दानवी निर्लज्ज पंजों में, जकड़कर सीसा उंडेला गर्म आंखों में, यह नहीं प्रतिवाद या संवाद की वेला, ये असह्य अन्याय हमने किस कदर झेला, रक्त रंजित राह पर बढ़कर करो जय घोष, सुप्त मन में रह न जाए उबलता आक्रोश, मृत्यु देती नित्य नूतन आस जीवन की, मृत्यु के अधरों छिपी है प्यास जीवन की।
3: वाह वाह, क्या बात है बेंच, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। यू आर नाउ अ पोएट And in time, you will be a great poet, Bench.
0: हाँ, वो पढ़ते हैं मेरी कविताओं को, इसीलिए तो मुझे छुप छुप कर भागते रहना पड़ रहा है।
3: हाँ?
0: हाँ, हकीकत यही है। खैर, अच्छा बताओ, इकोनॉमिक्स का कौन सा चैप्टर पढ़ोगी?
3: कोई भी चैप्टर नहीं पढ़ूंगी, पढ़ने नहीं आई हूँ।
0: अरे, पढ़ने नहीं आई हो तो फिर किस लिए आई हो?
3: किस लिए आई हूँ, क्यों आती हूँ, क्या तुम नहीं जानते?
0: नहीं,
3: कुछ भी नहीं समझते।
0: बताओगी नहीं तो समझूंगा कैसे?
3: सारी बातें मुंह से कही नहीं जा सकती बेंच, समझ लेनी पड़ती है। क्यों तुम्हारी बातें सुनने के लिए भागी चली आती हूँ, क्यों तुम्हारी कविताएं मुझे बेचैन कर डालती हैं, क्या तुम मेरी आंखों की भाषा पढ़ नहीं पाते?
0: जिनी, तुम्हारी दृष्टि मेरे सीने में एक अजीब लहर सी पैदा कर देती है, मेरी कविताओं को अनुप्रेरित करती है, पर केवल इस तरह की अनुभूतियों को लेकर झूठ मूठ समय बर्बाद करने का वक्त अभी नहीं है। जीनी,
3: झूठ मूठ समय बर्बाद क्यों करेंगे बेंच? पर इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम एक दूसरे की अनुभूतियों को सच कहकर स्वीकार ही ना करें।
0: देखो, दिल की बात दिल में ही रहे तो ठीक है, क्या जरूरत है उसे बाहर सबके सामने खड़ी कर स्वीकृति जताने की?
3: बेंच,
0: तुम तो जानती हो मैं खतरनाक राहों का राही हूं, मेरी स्वीकृति का मतलब ही है तुम्हारे ऊपर अतिरिक्त खतरे का बोझ लाद देना, सो मैं वैसा कतई नहीं करना चाहता। जीनी,
3: बेंच, तुम्हारे लिए डर से दिन रात मेरा कलेजा कांपता रहता है, भारी बूटों की आवाज कानों में आते ही मैं चौंक चौंक जाती हूँ।
0: मेरे लिए तुम्हारी छाती डर से कांपती है, तभी तो मेरा सीना हिम्मत से फूल उठता है। जिनी,
3: जरा सावधानी के साथ चला फिरा करो, भेड़िए तुम्हारे चारों ओर चक्कर काट रहे हैं। तुम ही तो मेरी आंखें हो बेंच, तुम्हें अगर कुछ हो गया तो मैं बिल्कुल अंधी हो जाऊंगी, मैं बिल्कुल अंधी हो जाऊंगी बेंच।
0: जिनी, हाथ छोड़ो, शायद माँ आ रही हैं।
3: अच्छा, तो मैं जा रही हूँ। मौसी,

0: अब मैं चलती हूँ।
1: लिखाई पढ़ाई हो गई?
0: अब हाँ मौसी हो गई।
1: अरे थोड़ी चाय तो पी कर जा।
0: नहीं आज रहने दो मौसी, कुछ जल्दी में हूँ, मैं चलती हूँ।
1: बड़ी प्यारी लड़की है,

0: सर बहुत ही भला लड़का है। जहां तक मुझे खबर मिली है बेंजामिन मॉलियस जैसा लड़का उस मोहल्ले में दूसरा और कोई है ही नहीं। लिखाई पढ़ाई स्वभाव
1: चरित्र।
0: यस सर, यस मिस्टर थॉमसन, मैं तो
1: कुछ नहीं जानते। तुम उसकी लिखी कविताएं पढ़ी हैं तुमने?
0: नहीं, पर मैं
1: कविताओं का हर शब्द एक एक बुलेट है और इन सब का इस्तेमाल किया गया है श्वेत सरकार यानी हम लोगों के खिलाफ।
0: पर बात ऐसी है सर कि मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली
1: सारी गलत है। बेंजामिन मोलाइज भला लड़का है, उन ब्लैक स्वाइनों के लिए हमारे लिए नहीं, इस बात को याद रखो।
0: यस सर।
1: तुम्हें पता है हमारे सबसे ज्यादा वफादार इन्फॉर्मर फिलिप स्लेपी का इन लोगों ने ही खून किया है।
0: अच्छा, इनकी इतनी हिम्मत? तब तो फौरन इनके खिलाफ कार्रवाई ना करने से दूसरों का मनोबल टूट जाएगा सर।
1: यस, चारों ओर से कॉम्बिंग अभियान शुरू कर दो, कॉले कुत्तों का एक भी पिल्ला बच ना निकले।
0: ओके सर।
1: मेरा नाम थॉमसन है, स्टेट सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के थॉमसन द टेरर को भला कौन नहीं जानता। हमारे लोगों पर हाथ उठाकर सोचा है बच निकलोगे बच्चों? सारा कुछ जलाकर राख कर डालूंगा। कमान चढ़ो।
0: यस सर।

0: जेम्स, इतनी रात में भला कौन आया होगा?
1: मैं तो तुमसे कहना ही भूल गया बापू, आज जोहान्सबर्ग गणतंत्र के फ्रंट की एक मीटिंग होगी यहाँ, लगता है वही सब आए हैं, देखता हूँ।
0: तो जेम्स तुम भी?
1: हाँ बापू, मेरे जैसे हजारों हजार लड़के अपनी जिंदगी को दांव पर लगाए जूझ पड़े हैं जिस स्वाधीनता की लड़ाई में, उस लड़ाई में मैं भी शरीक हूं बापू। आइए आइए मिस्टर जैकब। नमस्कार।
2: नमस्कार।
1: नमस्कार मिस्टर खापरकर।
2: नमस्कार।
1: बेंस, अंदर आ जाओ ना।
2: माँ, हम तुम्हारे वही बेटे हैं, इस बार जीवन की आशा को लौटा लाए हैं, अटल विश्वास का एक कमल खिलाया है माँ।
3: ये क्या तुम्हारी कविता है बेंच?
2: नहीं, एंगोला के प्रसिद्ध कवि ऑगस्टिनो नेटो की है।
1: अरे तुमसे परिचय तो करवा दूं, ये मेरे पिता मिस्टर जोसेफ पिस्से हैं, और आप हैं हमारे संगठन शाखा के नेता टॉम्स जैकब।
2: नमस्कार।
4: नमस्कार।
1: और आप रॉबिन खापड़कर हैं, इनके जिम्मे ही नाटाल प्रदेश का नेतृत्व है।
2: नमस्कार।
4: नमस्कार। खापड़कर माने भारतीय वंश के?
1: हाँ बापू, ये भारतीय वंशोद्भूत हैं।
4: अच्छा अच्छा, बैठिए आप लोग, बैठिए।
1: बाबू जी, बेंजामिन को तो तुम जानते ही हो।
4: अरे इसे वाला नहीं जानूंगा मैं। अच्छी तरह से जानता हूँ। यही तो है हमारा कवि सिपाही, जिसके कलम से फूट निकलती है काले लोगों के रुदन खून पसीने से लिखी कविताएं।
2: नहीं नहीं, ऐसा ना कहिए, भला मुझमें इतनी ताकत कहाँ?
5: अरे भाई, किसकी ताकत कितनी है और वो कहाँ छिपी रहती है, इसे वो खुद भी नहीं जानता।
2: देखिए, आप इस तरह से मुझे ऊपर ना उछालिए मिस्टर जैकब, मैं तो मातृभूमि का एक मामूली अदना सा सेवक हूँ।
4: अच्छा भाई, तुम लोग बातें करो, मैं जरा चाय का पानी चढ़ा।
1: ठीक है बापू। बापू, पानी जरा ज्यादा ले लेना, और भी चार पांच जने आएंगे।
4: अच्छा।

आज भी नहीं आया बेंच। आज 5 दिन होने को आए और बेटे को घर लौटने की फिक्र तक नहीं। इधर शहर भर में पुलिस वालों ने उथल

0: अस्पताल मचा रखी है। ईश्वर जाने बेंज क्या करता है, क्या सोचता है, मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आता, कुछ भी समझ में नहीं आता।
1: मौसी, मौसी
0: जिन्नी, आ बेटी, आ इस कमरे में चलो, आओ बैठो।
2: बेंच की कोई खबर मिली मौसी?
0: अरे मुझे कैसे खबर मिलेगी बेटी, मैं तो तेरे भरोसे ही बैठी हूँ। कोई खबर मिली?
2: मुझे तो कोई खबर नहीं मिली, पर
0: क्या
2: न जाने वो पूछो।
0: जिनी बता बेटी, क्या खबर है मेरे लाल की, बेंच कहाँ है, कैसा है?
2: ऐसी कोई बात नहीं है मौसी, जरूर ठीक ठाक ही होगा। वो एक मीटिंग।
0: मीटिंग? किसकी मीटिंग?
2: अफ्रीका नेशनल कांग्रेस की गुप्त शाखा की एक मीटिंग है, शायद बेंज वहीं गया होगा।
0: ये मीटिंग कहाँ है?
2: अब ये तो नहीं मालूम मुझे मौसी।
0: मीटिंग

0: बैठो।
1: बेंच की कोई खबर मिली मौसी?
0: अरे मुझे कैसे खबर मिलेगी बेटी, मैं तो तेरे भरोसे ही बैठी हूँ। कोई खबर मिली?
1: मुझे तो कोई खबर नहीं मिली, पर
0: क्या
1: न जाने वो पूछो।
0: जिनी बता बेटी, क्या खबर है मेरे लाल की? बेंच कहाँ है, कैसा है?
1: ऐसी कोई बात नहीं है मौसी, जरूर ठीक ठाक ही होगा। वो एक मीटिंग
0: किसकी मीटिंग?
1: अफ्रीका नेशनल कांग्रेस की गुप्त शाखा की एक मीटिंग है, शायद बेंच वहीं गया होगा।
0: ये मीटिंग कहाँ है?
1: अब ये तो नहीं मालूम मुझे मौसी।
0: मीटिंग गुप्त समिति?
1: हाँ।
0: इधर उस पुलिस जासूस फिलिप्स के खून होने के बाद से भेड़ियों की नजरें चारों ओर घूम रही हैं। पता नहीं मेरा बच्चा कहाँ होगा, कैसा होगा।
1: जरूर अच्छा होगा, ठीक होगा मौसी, निश्चित रूप से सही सलामत होगा। उसे कुछ नहीं हो सकता, उसका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जरूर अच्छी तरह से होगा, जरूर राजी खुशी होगा, है ना मौसी?
0: तुम ठीक कहती हो बेटी, मेरा बेंच जरूर राजी खुशी है, राजी खुशी ही रहेगा। हाँ।

0: इस वक्त हमारी स्वाधीनता की लड़ाई जनयुद्ध में बदल चुकी है, और यही वजह है कि स्वाभाविक रूप से हमारी जिम्मेदारी पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई।
1: इसी सिलसिले में मिस्टर जैकब, मेरा यह निवेदन है कि आज अपनी गुप्त शाखा गठन के पूर्व इतिहास की जानकारी सबको दे दी जाए, क्योंकि हमारे बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें इसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम, हालांकि उनके लिए भी ये सब कुछ जानना जरूरी है। मैं समझता हूँ इसी क्षण इस बात को भी निपटा लेना उचित होगा। इस बारे में आप लोगों की क्या राय है?
2: बिल्कुल, मिस्टर रॉबिन खापड़कर का सुझाव एकदम सही है,
3: लेकिन इस बात का भी ख्याल रखना होगा कि हम स्वाधीनता संग्राम के मूल स्रोत से कहीं कट ना जाएं, खासकर आम जनता से कहीं दूर ना हो जाएं।
0: तो फिर सुनिए, सन 1952 में चंद काले लोग पैदल चलकर श्वेत आदमियों के खेलकूद के लिए सुरक्षित इलाके में घुसे थे, रंग भेद नीति के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करने के लिए। उस दिन की उस घटना ने धीरे धीरे आगे चलकर सारे राष्ट्र में अहिंसक प्रतिवाद का रूप ले लिया,
1: और उस प्रतिवाद के कंठों को दबोचने के लिए शार्पेविले की सरकार ने एक जघन्य तरीका अपनाया था।
0: हाँ, 700 राउंड गोली चली, 67 लोग मरे और 186 घायल हुए। उसके बाद ही केवल अफ्रीका की राष्ट्रीय कांग्रेस ने उमखंटो उई सिजुई अथवा राष्ट्रीय बख्तरबंद के नाम से एक सशस्त्र वाहिनी गठित करने का प्रस्ताव पारित किया।
2: कौन कौन कौन हो सकता है? कौन है? कौन कौन है?
3: अरे, ये तो जोन्सबर्ग के नेता मिस्टर रोयंगा की आवाज है। जेम्स, जल्दी से दरवाजा खोलो।
2: अरे, कैसे हुआ ऐसा?
3: क्या बात है?
2: क्या हुआ?
3: खून खून ये क्या? किसने ऐसा किया?
4: पुलिस ने यहाँ आने के लिए निकला था, बाद में मालूम हुआ कि कर्फ्यू लग गया, चक्कर काट कर गलियों से आ रहा था कि अचानक देखा अफसर टॉमसन अपने दल बल के साथ सामने मेरी ओर चला आ रहा है।
2: ओ, तब तो उन्होंने आपको जरूर देख लिया होगा।
4: हाँ, देख ही लिया था, तभी तो चेस किया मुझे। मैं एक ऊंची दीवार फांद कर इस ओर भागाया, लेकिन इसके पहले एक गोली लगी मेरे पैर में।
2: ठहरिए, पहले पहले मैं ये बैंडेज बांध दूं।
3: बांधो बांधो। देखो, जैसे भी हो, रोयंगा को अभी इसी वक्त डॉक्टर मॉरिस के पास ले जाना होगा।
1: कंधे के सहारे चल सकेंगे ना?
4: जरूर चल सकूंगा।
3: तो फिर बस अब चलिए, और देर करना ठीक नहीं। आइए,
5: पीछे वाले दरवाजे से निकलकर बाईं ओर नहर के रास्ते से चले जाइए। देखो, ईश्वर इनकी रक्षा करे। जेम्स, अब हमें क्या करना चाहिए?
2: बाबू बाबू, दरवाजा जरा देर से खोलना।
5: अच्छा, आता हूँ।
6: हैंड्स अप।
2: आप लोग
6: जुड़ो, अंदर देखो, जल्दी क्विक, कहाँ जा रहे हैं सब? तो आप ही जोसेफ पिस्से हैं?
5: जी हाँ सर।
6: ये कौन है? सर, लड़का है, क्या नाम है तुम्हारा?
2: जी, जेम्स पिस्से।
7: टॉयलेट का दरवाजा खुला है, लगता है उसी ओर से भागे।
5: आखिर मामला क्या है सर? कुछ भी तो समझ में नहीं।

0: आ रहा है।
1: हाथ नीचे कीजिए, अभी समझ में आ जाएगा। बताइए, अभी अभी पैरों में गोली खाकर जो छोकरा आया था कहां गया?
0: यहां तो कोई भी नहीं आया सर।
1: शट अप, झूठा कहीं का। किधर है वो शैतान?
2: नहीं सर, उस तरफ कोई नहीं है।
3: मैं सच कह रहा हूं सर, यहां कोई नहीं है।
1: मैं भी तो सच ही जानना चाहता हूं। तुम्हारे दोस्त के खून के दागों ने हमें ठीक जगह पर पहुंचा दिया।
2: मिल गया सर।
1: क्या मिल गया?
2: जात पर पट्टी नहीं बांधी गई है, ये रही खून में सनी रुई, तभी खून के दाग और पीछे की ओर दिखाई नहीं पड़ रहे।
1: यू आर राइट
2: सर। इसके अलावा इस कमरे में इन दोनों को छोड़कर और भी कम से कम 5 जने थे। अभी कुछ एक मिनट पहले उन लोगों ने यहाँ बैठकर चाय की चुस्कियां ली हैं। ये देखिए, चाय के 7 कप पड़े जो अभी भी ठंडे नहीं हो पाए हैं।
1: तो मिस्टर जोसेफ पिस्टे, अब जरा बताइए तो सही, आपने अपने उस मेहमान का कहाँ चालान कर दिया?
0: जी
1: समझ तो रहे हैं, हम सब कुछ जान चुके हैं।
0: नहीं जी, मतलब हाँ सर, अभी थोड़ी देर पहले एक आदमी उधर,
3: हम लोग उसे बिल्कुल नहीं जानते सर।
1: मैंने तुमसे नहीं पूछा है। हाँ, तो आप कहिए।
0: हाथ में बंदूक लिए एक अनजान आदमी अचानक घुस आया सर, उसने हमें डराकर जख्म पर पट्टी बांधने को मजबूर कर दिया।
1: फिर झूठी कहानी करने लगा।
3: सर ये आप क्या कर रहे हैं, एक बूढ़े आदमी को आप लोग क्या हैं?
1: यू रास्कल।
0: सर सर, जेम्स मेरी एकमात्र संतान है, कहिए आप क्या जानना चाहते हैं, क्या जानना चाहते हैं?
4: बाबू, तुम्हारे मुंह से राज की कोई बात निकलने पर भी ये हमें छोड़ेंगे नहीं।
2: इसका ब्लैकी बिल्कुल खत्म कर डालूंगा।
1: ओप चुडो, उसे मेरे पास दो। मिस्टर पिस्से, 1 से 10 गिनने के बीच जो कुछ भी जानते हैं फौरन बता दीजिए, वरना मेरी छोटी सी नली का गरम सीसा जेम्स की खोपड़ी को छेद कर पार हो जाएगा। और
4: बाबू, एक जेम्स के मरने से हजारों हजार जेम्स पैदा होंगे, पर मैं विश्वासघातक का बेटा होकर जीना नहीं चाहूंगा बाबू, कभी नहीं, कभी नहीं।
1: सोच लीजिए, तो फिर आप अपने खानदान के आखिरी चिराग की मौत की वजह खुद ही बन रहे हैं।
0: ये नहीं।
1: वन 2, 3, 4, 5, 6
0: नहीं, रुकिए साहब, रुकिए
4: बाबू, नहीं बाबू,
1: 7, 8, 9
2: ठहरिए, हैंड्स अप। सॉरी बेंजामिन,
1: दैट ग्रेट पोएट, आई सी,
2: बिल्कुल नहीं ना, वरना गोली मार दूंगा।
5: बस रहने दीजिए, ज्यादा बहादुरी ना दिखाइए। टेनरी में कच्ची चमड़ी बदन पर लपेट कर पड़ा था और देख रहा था इन 2 बेगुनाह इंसानों पर की जाने वाली आप लोगों की ज्यादती की उछल कूद। खैर छोड़ दीजिए इन लोगों को, जो कुछ भी आप जानना चाहते हैं मैं बता रहा हूं आपको।
1: जरूर जरूर, आप ही तो बताएंगे, पर हाँ सीधे साधे शब्दों में कहिएगा, कविता में नहीं। हमें ये सब पसंद नहीं है। अब आपको हमारे साथ सरकारी मेहमान होकर जाना होगा। जुड़ू,
2: यस सर।
1: जरा अच्छी तरह से सावधानी के साथ लेकर जाना, इज डेंजरस।
2: यस सर।

मृत्युहीन प्राण। अभी आप इस नाटक का पहला भाग सुन रहे थे। आलोक भट्टाचार्य के मूल बंगला नाटक का ये हिंदी अनुवाद था। हिंदी अनुवादक थे दीप नारायण मिठोलिया, निर्देशक सुदर्शन कुमार। इस नाटक का दूसरा और अंतिम भाग आप सुन सकेंगे कल नाट्य तरंग कार्यक्रम में। केंद्रीय नाटक एकांश दिल्ली

0: की इस प्रस्तुति के साथ ही अब आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त होता है।
1: एक जाने माने पेंटर जो अपने कैनवस और ब्रश से रचते हैं एक जादुई दुनिया, एक सम्मोहक यात्रा।
2: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
1: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प हैं कि आप खो जाएं।
2: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
1: जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बातचीत।
2: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
1: आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: साउंड कैमरा एक्शन।
1: बॉम्बे टॉकीज में आइए आज सुनते हैं कोरियोग्राफर टेरेंस लुविस से अमरकांत दुबे के फिल्मी गपशप। आइए सुनते हैं इस गपशप का तीसरा भाग।
2: दोस्तों नमस्ते, स्वागत है आप सभी का बॉम्बे टॉकीज में। आज फिर एक बार डांस से जुड़े एक बेहद मकबूल फनकार हमारे बीच हैं, डांस रियलिटी शोज के जज, डांस गुरु और कोरियोग्राफर, जिनके साथ होगी फिल्मी गपशप। टेरेंस लुविस। टेरेंस जब सिर्फ 6 साल के थे तभी लहू उनके मुंह लग गया, जी हाँ, और डांस उनकी नस नस में लहू के साथ दौड़ने लगा।

0: मेरे डैडी तो मजदूर हैं, वो पढ़े लिखे भी नहीं। तो पिताजी ने हम सभी भाई बहन को बोला था कि मैं सिर्फ 15 साल की उम्र तक पढ़ाऊंगा, उसके आगे आपको गैराज में काम करना है या नहीं पढ़ना है वो आपकी मर्जी, ओके। मेरी जिम्मेदारी है आपको पाल पोस कर 15 साल तक पढ़ा करना, उसके बाद जो करना है करो। तो मैंने देखा था कि मेरे सभी जो 7 भाई बहन थे वो सब ट्यूशन देते थे मैथ साइंस इंग्लिश, तो मैंने भी ट्यूशन दिया। 14 साल की उम्र से मैं मैथ साइंस इंग्लिश ट्यूशन देता था क्योंकि मैं पढ़ाई में भी होशियार था। हमारे परिवार में डांस एक लग्जरी है, ये अमीर लोगों के लिए शौक है, शौक के लिए कर सकते हो, करियर नहीं बना सकते इसमें।
1: इतनी कठिनाइयों के बावजूद जिंदगी के साथ लड़ाई में आप आगे बढ़ते गए, जीतते गए।
0: मैं जीता नहीं हर बार, मैं कई बार हारा।
1: आप जब कभी हारते थे तो जिंदगी से शिकायत नहीं होती थी? तो फिर क्या किया आपने?

जिंदगी का साथ खूब निभाया। बहुत सी बातें, बहुत से गाने, बहुत सी यादों के साथ आज टेरेंस हैं हमारे बीच।

0: शुक्रिया अमरकांत जी, आपने बहुत प्यार और बहुत सहज रूप में बहुत कुछ कह दिया, बहुत बहुत शुक्रिया।
1: अब टेरेस हम वापस आते हैं उस डायस पर, आपके टीवी का जो डायस वहां हाँ। पे आप जो जब बैठा हुआ देखते हैं हाँ। और जब वहां पे आपको बड़ी शुद्ध हिंदी में बात करते हुए देखते हैं हाँ। तो हमें लगता है कि यार भाई क्या है बात है, टेरेंस ने शायद हिंदी के लिए कुछ अलग से कोचिंग वोचिंग ली है शायद, तो ये हिंदी पे कुछ खास मेहनत की आपने और उसकी वजह?
0: आप चाहे उसे मजाक में ले लीजिए या जब बहुत पैसे मिलते हैं बोलने के लिए तो आपको काम करना पड़ता है, क्योंकि आप उस कुर्सी पर बैठ के कुछ भी नहीं बोल सकते। और मुझे पता है कि अगर मुझे यही मौका मिला अंग्रेजी में बोलने का, अगर मैं उसका विश्लेषण करूं, डांस का विश्लेषण करूं, तो मैं बहुत अच्छी तरह से कर सकता हूं अंग्रेजी में, क्योंकि मैं अंग्रेजी में पला पड़ा हूं, मेरा एजुकेशन वैसा रहा है। तो जब मैं अपने क्लास में, जब मैं एज अ टीचर, मैं बहुत बारीकी में जाके देखता हूं और मैं बच्चों को बहुत डाइसेक्ट करता हूं, तब मेरी जबान फट फट फट फट करके चलती है और मैं बताऊँ कि ये सही नहीं, ये सही है, ये सही है, ये नहीं है, अब ये करना है, ये यहाँ पे सुधार लेके आना है। लेकिन वही चीज़ अगर मैं हिंदी में बोलूँ तो मैं अटक जाता हूँ कि इसका शब्द क्या है। और मैंने लगा कि यार जो मैं बोलना चाहता हूँ मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे शब्द नहीं मिल रहे। और मुझे ये नहीं बोलना है कि मुझे आपका डांस अच्छा लगा, ये कौन कहता है, तुम जज हो भाई, तुम्हें उसका विश्लेषण करना पड़ेगा, तुम्हें उसकी टेक्निकल चीज़ें बतानी पड़ेगी, और वो टेक्निकल चीज़ें मैं अंग्रेजी में जानता हूँ। तो फिर मैंने अपनी हिंदी को सुधारा, फिर बोला कि ये देखते हैं कि क्या है इसका शब्द, अगर मैं ये अंग्रेजी में बोलता, इसको मैं अनुवाद करता हिंदी में, तो इसका अर्थ क्या निकलता। तो फिर मैंने लिखना शुरू कर दिया कि ऐसा ऐसा हो, ये मैं बोलना चाहता हूँ अंग्रेजी में, तो फिर मैं इसको ट्रांसलेट करता था, अपनी लिखता था, समझता था, क्योंकि मुझे पता है कि एक बच्चा जो हमारा डांस कर रहा है वो इतनी मेहनत कर रहा है और वो अपनी जान लगा रहा है, तुम ऐसे ही बोल नहीं सकते कि मुझे अच्छा लगा, बुरा लगा, ये अच्छा था, ये वो नहीं। आपको बताना पड़ेगा ऑडियंस को कि क्या क्या बारीकियां थी, ताकि लोग उसको एक अलग नजर से देखें,
1: उस बच्चे को।
0: हाँ, तभी जाके हमारे बच्चों को वो रिस्पेक्ट मिलेगी।
1: जी बिल्कुल सही।
0: हम जज नहीं है, हम मेंटर है। मैंने कभी अपने आप को जज नहीं समझा, मैंने कभी समझा कि मैं मेंटर हूं, मेरा काम है आपको ये बताना कि आप क्या अच्छा कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, और जो नहीं अच्छा कर रहे हो कैसे इसको सुधार सकते हो।
1: बिल्कुल सही।
0: उसका उपाय भी देना आपका फर्ज बनता है, अदरवाइज क्या अच्छा बुरा है, क्या गलती निकालना है, तो वो नॉर्मल ऑडियंस भी देख सकती है और बोल सकती है यहाँ पे इसने गलती कर दी, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो विश्लेषण आपको करना है एक गाने के बारे में या इसके डांस के बारे में या इसकी टेक्निक या उसकी विधि क्या थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे शब्द, अगर मैं कहूँ कि आपके डांस में आप बहुत क्विक हो, ये क्विक क्या है अंग्रेजी में, गलत है, वर्ड इज एजाइल। अभी एजाइल को क्या बोलूं? तो बोला कि एजाइल का वर्ड क्या है? चपलता। तो बोला कि आप बहुत चपल हो। तो वैसे फ्लेक्सिबिलिटी जो है, अब हमारा जो माध्यम है हिंदी माध्यम है, हमारा जो ऑडियंस है, हमारी जो ऑडियंस है वो हमारी सिटी वाली ऑडियंस नहीं होती। मुंबई दिल्ली वाले देखते नहीं हमारे शो, जो हमारी शो देखते हैं वो बी टाउन या सी टाउन सिटीज से होती है, छोटे शहरों से। वहां पे उनको फ्लेक्सिबिलिटी या स्ट्रेच, अगर मैं ये बोलूंगा तो कभी कभी समझ में नहीं आएगा, तो बात निकल जाती है, तो उसकी जो अहमियत है वो निकल जाती है। तो फ्लेक्सिबिलिटी को क्या बोलते हैं हिंदी में? लचीलापन। तो वो शब्द मैंने इस्तेमाल करना लगा, और फिर मैंने बोला कि अच्छा ये टेक्निकल चीजें हैं, लेकिन हमारे मेंटोरशिप में हमें अगर हमारे बच्चों को ऑडियंस पर लगाव लेके आना, तो टेक्निकल चीजें से नहीं होती है, उनके निजी जीवन में जो चल रहा है और कैसे उनकी परिस्थिति से वो जूझ कर निकल कर उभर कर आ रहे हैं, वो वाली चीज अगर मैं अपने ऑडियंस के सामने रखता हूं, तब जाके ये शो बनेगा, लोगों में इंटरेस्ट आएगा, सिर्फ टेक्निकल चीजों से नहीं। तो मैंने अपनी हिंदी सुधारी ताकि मैं बच्चों के बारे में बोल सकूं अच्छा, ताकि वो लोगों तक पहुंचे, उनका काम लोगों तक पहुंचे। मेरी जिम्मेदारी है इज नॉट टू जज, मेरी जिम्मेदारी है कि जो काम बच्चों ने किया है वो लोगों तक सही मायने में पहुंचाए, और जो नहीं दिखता, क्योंकि डांस ना बड़े बड़े चीजें दिखती हैं, करतब दिखती हैं, लेकिन डांस में कई छोटी छोटी चीजें होती हैं जो बहुत सटल होती है, और वो

0: सटल चीजें लोगों को दिखती नहीं है जब तक आप उनको बताओ कि नहीं। आप थोड़ा रिवाइंड करके देखिए, यहाँ पे इस बच्चे ने एक हल्का सा एक यू नो अपने अपने एक शरीर के अंग से यहां से खेला है, उसमें बहुत ज्यादा खूबसूरती है। तो जब मैं बोलता हूं तो लोगों को भी लगता है हाँ ये सही बात है, ये मुझे बहुत अच्छी लगी। तो ये सब कहना और वो बयां करना ताकि लोगों को और इंटरेस्ट आए। अगर आप अच्छा बोलते हो तो लोगों को सुनने में अच्छा लगता है और लोगों का इंटरेस्ट बढ़ता है। तो ये मेरे बच्चों के फायदे में रहता है एंड मेरे शो के इंटरेस्ट में रहता है।
1: अब टेरेंस, यहाँ पे कुछ इतनी टेक्निकल बातें आपने बताई, इतनी कुछ कठिन गाने
0: हाँ
1: जो आपको डांस के माध्यम से लगता है कि ये गाने बड़े कठिन हैं, यानी कि
0: हाँ
1: डांस इसका जो है
0: हाँ
1: बड़े कठिन रहे हैं, वो कौन-कौन से गाने आपके शोज में रहे हैं?
0: लेकिन एक गाना है संजय लीला भंसाली, ये सभी जो गाने होते हैं ना वो बहुत कठिन होते हैं, बिकॉज एक
1: उनका
0: बेंचमार्क कितना सेट किया ना
1: उनकी
0: उन्होंने।
1: एक फिल्म आपने की हुई है।
0: हाँ रामलीला, तो उनके गाने मुझे बहुत कठिन लगते हैं। जैसे जो ऐश्वर्या जी का हम दिल दे चुके सनम में ओपनिंग सॉन्ग है
1: अच्छा
0: मनमोहिनी,
1: अच्छा मनमोहिनी,
0: उसके जो अल्फाज चल रहे ना इतने फास्ट है, उनको मैच करना डांस में लाइव स्टेज में। फिल्मों में क्या है कट कट करके कर सकते हो आप, हर एक शब्द को लेके फिल्म कर सकते हो, लेकिन स्टेज पर कैसे हर एक शब्द को वो, और वो इतने फटाफट बोल रहे हैं, और वो लड़की का मतलब एक औरत क्या होती है, एक लड़की क्या होती है, उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं, हीरोइन का डिस्क्रिप्शन है, पहला शॉट है। सो आई थिंक इट्स वेरी डिफिकल्ट सॉन्ग टू यू नो कोरियोग्राफ ऑन स्टेज।

معصومية.

0: तो वो गाना मुझे बहुत डिफिकल्ट लगा, लाइक ब्रेथलेस ऑल्सो भी जो गाना है वो बहुत डिफिकल्ट है. और कभी कभी जो ऐसे गाने होते हैं जिनके यू नो म्यूजिक बहुत ही डिफिकल्ट होता है, वो बहुत वेरिएशंस होते हैं.
1: मसलन
0: जैसे इन्हीं लोगों ने, इन्हीं लोगों ने, इन्हीं लोगों ने, तो मैं चाह रहा था कि इन्हीं लोगों में मैं कथक ना करूं, मैं सोचा कि ये गाने पे मैं जैज करूंगा, विदेशी स्टाइल, तो बॉब फॉसी वाला स्टाइल. तो मेरे लिए बहुत कठिन था, क्योंकि हमारा चैलेंज था कि एक पुराने गाने को लेकर आप नए अंदाज में इसको पेश करोगे, फिरंगी अंदाज में पेश करोगे इसको. तो अभी इन्हीं लोगों ने वो गाना सेट है सब लोगों के दिमाग में, किस तरीके से वो किया गया है उसको, अभी जैज बॉब फॉसी हैट टेल कोट वैसा वाला चमकीला वाला कॉस्ट्यूम पहना के वो कराना है, तो जो इसके बीट थे टक ठक ठक ठक, हर एक बीट होता है तो वो पकड़ना पड़ता है. तबला है उसके अंदर, इंस्ट्रूमेंटेशंस हैं, तो वो इंस्ट्रूमेंट पकड़ना बहुत जरूरी है. अगर वो नहीं पकड़े तो फिर वो आपकी कमजोरी है.

कि आपको समझ नहीं है एज अ कोरियोग्राफर कि वो आपने छोड़ दिया। आप सब कुछ नहीं पकड़ सकते हैं हर बीट को, लेकिन कुछ चीज़ें बहुत प्रोमिनेंट होती हैं, और अगर आपने नज़रअंदाज कर दिया वो एक प्रोमिनेंट बीट को, तो ये आपकी कोरियोग्राफिक गलती है। तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है जब आप ऐसे गाने को लेते हो जहाँ पे इंस्ट्रूमेंटेशन बहुत ही कमाल का हो, एंड देन यू हैव टू बी वेरी केयरफुल।

0: आपने बात की कि संजय लीला भंसाली की फिल्म का ये गाना जो है वो बड़ा डिफिकल्ट था,
1: हाँ
0: लेकिन फिर आपने संजय लीला भंसाली जैसे डिफिकल्ट म्यूजिक डायरेक्टर की फिल्म भी की है, वो एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? मैं रामलीला की बात कर रहा हूँ।
1: देखिए मेरा उसमें, मैं सही में कह रहा हूँ कि जब आप दूसरों का पता नहीं, लेकिन मैं खुद का जरूर कहूँगा कि जब आप संजय लीला भंसाली सर के साथ काम कर रहे हैं, यू हैव टू रियलाइज कि वो एक कमाल के टेक्नीशियन है और वो खुद एक कोरियोग्राफर है। उनको डांस की जो समझ है ना, वो हमसे भी ज्यादा है। सो यू लर्न मोर फ्रॉम हिम। वो बोलेंगे कि आपने ये छोड़ दिया, ये तो है, ही इज दैट गुड। सो दैट इज वन। दूसरी बात ये कि ही इज नॉट जस्ट टेक्निकल, उनका जो विजुअल रिप्रेजेंटेशन है वो कुछ और ही लेवल का है। थर्ड लेवल, वो एक ऐसे डायरेक्टर है जो यू कैन प्लीज हिम वेरी इजीली, और उनका बहुत क्लियर विजन है। अगर किसी का विजन क्लियर है तो उनका है। मोस्टली जब गाने शूट होते हैं तो डायरेक्टर रिलैक्स करता है, ले लो कोरियोग्राफर, काम करो तुम लोग, और हम पांच

0: दिन के लिए लगातार काम करते हैं। डायरेक्टर कोहली बोलते हैं कि आपको ये अच्छा लगा सेट, ये शॉट अच्छा लगा। वो तो कभी कभी कोरियोग्राफी भी दिखते नहीं है, उनको उनको पता है, वो ट्रस्ट बेच जाता है कि हाँ कमाल का ही काम करेंगे। लेकिन संजय लीला बंसाली जी नहीं, उनको हर एक शॉट का डिटेल्ड स्टेप बाय स्टेप ब्रेकडाउन चाहिए, फिर वो उस पर विश्लेषण करेंगे कि क्या सही है क्या नहीं है, फिर वो सुझाव देंगे, उस पर हमें काम करना पड़ेगा। जो डिस्कशन होती है बिफोर वी इवन टीच द आर्टिस्ट, वो 5 दिन की होती है। सो इट इज़ सो डिटेल्ड। मैं बताऊं रामलीला के बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब मैं गया था सेट पे शूट करने के लिए, तब कॉस्ट्यूम ब्लैक वाला था, ब्लैक एंड रेड। हमने 2 दिन शूट कर दिया, फिर 2 बजे रात को संजय सर का मैसेज आया, आर यू अवेक? तो मैंने पढ़ लिया, सर हाँ सर मैं, सर ओके कॉल मी। सो मैंने कॉल किया, सर देखिए मुझे गाना मज़ा नहीं आ रहा। सर मैं तो मुझे डर गया कि मेरा काम पसंद नहीं, कुछ चेंज करें। सर नहीं, तुम्हारा काम ठीक है, मुझे कॉस्ट्यूम में मज़ा नहीं आ रहा। दीपिका वो नहीं लग रही है जो मैं चाह रहा हूँ, जो मेरा विजन था वो नहीं आ रहा, तो हम फिर से शूट करेंगे कल। ऐसे कॉस्ट्यूम रातों रात हो जाएगा, मैं आपको अभी भेजता हूँ, आप बोलो एज अ कोरियोग्राफर क्या ये कॉस्ट्यूम ज़्यादा बेटर लगेगा। तो रातों रात दीपिका की जो कॉस्ट्यूम है वो हम लोग शॉट पे, उसने वाइट कपड़ा चढ़ाया है उसी ब्लाउज पर, काले ब्लाउज पर, और उसने मुझे फोटोग्राफ भेजा कि डू यू थिंक वाइट विल लुक बेटर, एंड फॉर मी वाइट इज़ माई फेवरेट कलर। आई सेड सर दिस विल लुक फिनोमिनल, बिकॉज ब्लैक में वो थोड़ा यू नो इट इज़ लुकिंग लाइक, इट वॉज लाइक अ वेरी राजस्थानी कालबेलिया काइंड ऑफ अ कॉस्ट्यूम, बट ये व्हाइट में एक एक अलग ही एक एक यू नो एक
1: ग्रेस
0: हाँ।
1: है।
0: एंड प्लस सी वो ही थिंग्स मेटाफोरिकली। अच्छा ये सॉन्ग अंग लगा दे, इस सुहागरात वाला सॉन्ग, वो अभी भी शादी करके आए हैं, दोनों के परिवार ने दोनों के भाइयों को मार डाला है, दोनों शोक मना रहे हैं, और इस माहौल में दीपिका को यू नो रणवीर को रिझाना है और उसको बोलना है कि सब भूल जाओ और हम लोग अपनी दुनिया बनाते हैं। सो इट्स ऑल्सो द सुहागरात वाला सीन, एंड येट इट हैज बी डन वेरी टेस्टफुली। तो फॉर हिम इट वॉज लाइक नॉट ब्लैक, ब्लैक इज ऑलरेडी फर्स्ट
1: वैसे
0: टाइम
1: भी
0: एक
1: ब्लैक
0: लड़की,
1: जो है।
0: हाँ सो वाइट, इट शुड बी वाइट, उनके दिमाग में वो चलने लगा कि विजुअल। सो ही थिंक्स उनके हर सीन में ना एक कलर स्कीम होता है। तो वी शॉट द सॉन्ग ऑल ओवर अगेन, 2 डेज वापस शूट किया हम लोग ने। तो एक अलग ही लेवल का एक यू नो कमिटमेंट है और डिटेलिंग होता है, और एक इंसान सामने से इतना इंटरेस्ट ले रहा है ना, तो हमें भी बहुत रुचि होती है कि यार कुछ अच्छा ही बन रहा है।
1: जाहिर है,
0: हाँ
1: जहाँ आपकी काम की सराहना भी हो रही है
0: हाँ।
1: और आपको समझ में आ रहा है कि अगला बंदा भी आपके साथ उतना ही डूब
0: डूब
1: चुका
0: चुका
1: है।
0: है, तो मजा आता है काम
1: मजा
0: करने
1: आता
0: का,
1: है।
0: और हम भूल जाते हैं कि अभी टाइम हो चुका है, कैसे वक्त निकलता है पता ही नहीं चलता हमें, मुझे पता ही नहीं चला कब।

0: सेकेंडली भाई एक और मजे की बात करूंगा, यू नो एक चलने का शॉट है, वो लेके धूप लगाती है ओके तन्वी के सर पे, और फिर उसको चल के वापस आना है और बिस्तर पे लेटना है। तो मैंने दिखाया था कि ऐसे जाके ऐसे बैठना है, तो दीपिका ने समझ लिया, लेकिन उनका जो घाघरा था वो सही रूप में बिस्तर पर नहीं आ रहा था। अब हम दीपिका के चेहरे और एक्सप्रेशन पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, मैंने वहां पे फोकस ही नहीं की कि घाघरा किस तरीके से यू नो बिस्तर पर फैलेगा। उन्होंने एटलीस्ट 10 कट लिए, क्योंकि दीपिका ने सभी एक्सप्रेशन लिया लेकिन वो घाघरा बराबर नहीं आया बेड पे। He's that detail. फिर वो दूसरा शॉट जो धनुची है उससे जो धुआं निकलता है वो सीजी में नहीं किया है, वो एक्चुअली धुआं निकला है। तो there was a assistant only for the धनुची कि तुम्हें धनुची, और वो सबसे घबरा हुआ इंसान था क्योंकि अगर उन्होंने बोला कि धनुची अगर वो नहीं है और उसका जो धुआं नहीं निकला तो उसको मार पड़ती थी। तो वो सबसे डरा हुआ इंसान हमारे सेट पे वही वाला था कि अगर वो धुआं नहीं निकला धनुची से, क्योंकि वो शॉट था कि वो अपने बालों वो धनुची को अंदर रखती है, वो धूप अपने फेस पे लेती है और वो गा रही है और वो फेस से फिर वो अपना बालों को यू नो सरकाती है और वहीं से बालों से निकलता हुआ उसको वो धुआं चाहिए था। तो वो शॉट वो भी वो इस तरीके से ताकि वो जले नहीं, और वो कोयला है और मेकअप मेकअप भी
1: नहीं से चिंगारी निकल जाए
0: मेकअप क्रैक भी नहीं होना चाहिए। इट वाज सच अ ट्रिकी शॉट। तो बहुत ही वाज समडी लाइक दैट डिटेल कि मुझे वो चाहिए, मुझे वो सीजी करवाना नहीं है, मैं लेके रहूंगा।

मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में संध्या के 4:30 होने को हैं। आरंभ होती है हमारी आज की दूसरी सभा। इस सभा में सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युवा वाणी।

0: तुम अपनी खूबियां ढूंढो, खामियां निकालने के लिए लोग हैं ना। अगर रखना है कदम तो आगे रखो, पीछे खींचने के लिए लोग हैं ना। सपने देखने हैं तो ऊंचा देखो, नीचा दिखाने के लिए लोग हैं ना। प्यार करना है तो खुद से करो, नफरत करने के लिए लोग हैं ना। तुम अपनी अलग पहचान बनाओ, भीड़ में चलने के लिए लोग हैं ना। तुम कुछ करके दिखाओ दुनिया को, तालियां बजाने के लिए लोग हैं ना। जय हिंद दोस्तों, मैं नीलिमा
1: और मैं सुनंदनी
0: आपके रेडियो दोस्त लेकर आए हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी।
1: नीलिमा, आज शनिवार है ना?
0: हाँ सुनंदनी, ये तो सबको पता है, लेकिन ये बताएं क्या खास है आज?
1: आज हम अपने लिसनर्स के लिए कुछ खास बातें करेंगे।
0: और वो बातें कौन सी होगी सुनंदनी?
1: नीलिमा, हम अपने लिसनर्स को बताएंगे रचनात्मकता बढ़ाने के उपाय, और फिर बात करेंगे वर्ल्ड रिफ्यूजी डे के बारे में।
0: देन आज एक खास उत्सव है जिसके बारे में हम प्रोग्राम में आगे आपको बताएंगे, ये थोड़ा सरप्राइजिंग एलिमेंट है आपके लिए।
1: देन आज है सैटरडे, और आज के दिन युवाणी में आपके लिए लाता है स्टार्टअप सैटरडे का सेगमेंट। तो आज के सेगमेंट में क्या खास है नीलिमा?
0: आज हम लाए हैं आकाशवाणी पटना की भूतपूर्व असिस्टेंट डायरेक्टर मिसेज नंदिनी वर्मा मैम से हमारी बातचीत। फिर बताएंगे आपको चौंका देने वाले रोचक तथ्य, इसके साथ देंगे आपको स्पोर्ट्स अपडेट्स।
1: तो दोस्तों, इन्फॉर्मेशन के साथ हम आपके लिए एंटरटेनमेंट भी लेकर आएंगे, क्यों नीलिमा?
0: बिल्कुल सुनंदनी। तो दोस्तों, इस शनिवार को करिए हम पर थोड़ा एतबार, लेकर चलते हैं आपको एंटरटेनमेंट की दुनिया में होकर युववाणी की ट्रेन पर सवार, जो करवाएगा आपको रेडियो से प्यार, क्योंकि आकाशवाणी है आपका परिवार।
1: बिल्कुल, इसी के साथ वक्त हो चला है आपके लिए हमारे प्रोग्राम का पहला गाना सुनवाने का। तो आइए सुनते हैं ये ट्रैक।

0: वेलकम बैक टू आवर प्रोग्राम। आप सुन रहे थे सुनंदनी और नीलिमा को आपके पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी के जरिए, और आप सुन रहे थे फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस से सुनिधि चौहान की आवाज में ये गाना। जैसा कि हमने आपको कहा था कि रचनात्मकता कैसे बढ़ाएं, उसके बारे में हम बात करेंगे।
1: बिल्कुल सुनंदनी, मैं इसकी चर्चा करने ही वाली थी। रचनात्मकता यानी क्रिएटिविटी, इनोवेशन, आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन और ह्यूमैनिटी एडवांसमेंट के पीछे की एक इल्यूसिव ड्राइविंग फोर्स है।
0: क्या क्या क्या नीलिमा, आपने इतने भारी भरकम शब्द इस्तेमाल कर दिए कि मेरा तो सर ही चकरा गया। आई एम प्रिटी मच श्योर कि हमारे लिसनर्स का भी यही हाल हुआ होगा, तो थोड़े आसान शब्दों में

0: बताइए प्लीज।
1: हाँ ठीक है सुनंदिनी, बता रही हूँ। हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारे आसपास कई ऐसी चीज़ें होती हैं जिन पर हमारा ध्यान नहीं जाता है, यानी हम उन्हें यूज़लेस समझते हैं। ऐसे में उस यूज़लेसनेस में यूज़फुलनेस को ढूंढना ही क्रिएटिविटी है।
0: हाँ नीलिमा, मैंने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई बार ऐसी चीजें देखी हैं, जैसे पुराने कंटेनर्स को क्रिएटिव लुक देकर फिर फ्लावर पॉट बना देना, घर के पड़े वेस्ट प्रोडक्ट्स को अपनी क्रिएटिविटी के जरिए डोर डेकोर के होम डेकोर के लिए यूज़ करना, और फिर पुराने कपड़ों से शॉपिंग बैग स्टिच करना या उसका डोरमैट बनाना।
1: मतलब तमाम सी चीजें हैं करने को, डिपेंड आपकी क्रिएटिविटी पर करता है।
0: बिल्कुल नीलिमा, क्रिएटिविटी हमारे माइंड को कंफर्ट जोन से निकालकर सिक्के के दूसरे पहलू के भी तरफ लेके जाता है।
1: बिल्कुल, इससे हमारे अंदर के आर्टिस्टिक एक्सप्रेशंस का प्लेटफॉर्म मिल जाता है। इसके साथ साथ हमारी सोच जो है वो सही डायरेक्शन में चैनलाइज हो जाती है। हमारे पर्सनल, प्रोफेशनल और एथिकल एडवांसमेंट में भी क्रिएटिविटी काफ़ी मदद करता है। बात करें अगर उपाय की, तो अगर आप क्रिएटिविटी बढ़ाना चाहते हैं तो सबसे पहले आप वॉक पर जाएं, क्योंकि रेगुलर फिजिकल एक्टिविटीज़ हमारी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ यानी बौद्धिक क्षमता को बूस्ट करने में काफ़ी मदद करती है। इसके बाद दूसरा उपाय है कि अपने आप को रिवॉर्ड करें। जहाँ भी रिवॉर्ड की बात आती है, हमारे रिफ्लेक्सेस काफ़ी डिस्क्रीट हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम फोकस्ड होकर अपना काम कर पाते हैं। तीसरा उपाय है इंश्योर साइकोलॉजिकल डिस्टेंस। जब आप क्रिएटिव रूप से अटक जाते हैं तो हमेशा पॉज लेने की सलाह लोग देते हैं। इसका मतलब ये होता है कि खुद को थोड़ा सा डिस्टेंस करें, खुद को सोचें कि मैं इस प्रॉब्लम में नहीं हूँ, और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करें। फिर पांचवा उपाय है ड्रीम्स। आज के हाईटेक कनेक्टेड दुनिया में ध्यान भटकाने वाली कई चीज़ें हैं आपके पास, बस एक क्लिक की दूरी पे। हर खाली पल एप्स, गेम्स, ईमेल या वेबसाइट्स पर बिताने के बजाय खुद को बोरियत का अनुभव करने दें। इसी बोरियत में आपको क्रिएटिविटी का रास्ता दिखेगा। जैसे कि दुनिया की सबसे एक अच्छी यूट्यूबर है जो सबसे ज़्यादा कमाती हैं, तो उन्होंने बोरियत में ढूंढा, वो बहुत ज़्यादा बोर हो रही थी उस समय, उन्होंने ढूंढा कि मैं क्या करूं कि मेरी बोरियत में कमी आए, और उन्होंने कुकिंग चैनल शुरू किया और वो सबसे ज़्यादा अर्न करने वाली यूट्यूबर बन गई। तो दोस्तों, अब हो चला है वक्त आपको दूसरा ट्रैक सुनाने का, तो आइए सुनते हैं अब ये ट्रैक।
2: पता है शेखर, इंसान को तकलीफ कब होती है? जब वो कोई सपना देखता है और वो पूरा नहीं होता। इसलिए मैंने सोच लिया है कि आज के बाद कोई सपना ही नहीं देखूंगी।
3: बस हार गई। अपनी आंखें बंद करो संजना। बंद आंखों से इंसान सिर्फ सपना ही नहीं, कभी कभी उस हकीकत को भी देख लेता है जिसे खुली आंखें कभी नहीं देख पाती। आंखें बंद करो संजना।

0: अभी आप सुन रहे थे प्यार तो होना ही था फिल्म से, आशा भोसले और उदित नारायण की आवाज़ में ये गाना। तो चलते हैं हमारे अगले सेगमेंट की ओर। नीलिमा, मैं देख रही हूँ कि आज आप काफ़ी खोई खोई सी हो।
1: सुनंदिनी, मैं दरअसल सोशल मीडिया पर एक लेख पढ़ रही थी। आज यानी 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस यानी वर्ल्ड रिफ्यूजी डे है ना, उसी के बारे में कुछ जानकारियां देख रही थी।
0: अच्छा, विश्व शरणार्थी दिवस। सच बताऊं तो मुझे इसके बारे में बहुत ज्यादा तो नहीं पता। यह दिवस क्यों मनाया जाता है?
1: देखिए सुनंदिनी, दुनिया भर में लाखों ऐसे लोग हैं जिन्हें युद्ध, हिंसा, उत्पीड़न या प्रकृति आपदाओं के कारण अपना घर बार, अपनी जमीन और अपना देश छोड़कर किसी दूसरे देश में शरण लेनी पड़ती है। उन्हीं लोगों के साहस, संघर्ष और शक्ति को सम्मान देने के लिए संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशंस ने हर साल

0: 21 जून को यह दिवस मनाना शुरू किया।
1: ओह, यह तो बहुत ही संवेदनशील विषय है। अपना घर छोड़ना कितना दर्दनाक होता होगा ना। हम तो 2 दिन के लिए भी कहीं बाहर जाते हैं तो घर की याद आने लगती है कि जल्दी से जल्दी घर पहुंचे। अब
0: बिल्कुल सही कहा आपने। सोचिए उन पर क्या गुजरती होगी जिन्हें एक रात में अपना सब कुछ मतलब अपना बचपन, अपनी यादें, अपनी कमाई, ये सब छोड़कर सिर्फ जान बचाने के लिए भागना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात, उन्हें ये भी नहीं पता होता कि वे आगे कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे, उनका भविष्य क्या होगा।
1: सच में ये विषय सोचकर ही मेरे तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन नैनेमा, जब ये लोग दूसरे देशों में जाते हैं तो क्या वहाँ इन्हें आसानी से अपना अपना लिया जाता है?
0: नहीं, ये इतना आसान नहीं होता है सुनंदिनी। शरणार्थियों को बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। भाषा की समस्या, संस्कृति

0: हैं तो क्या वहाँ इन्हें आसानी से अपना अपना लिया जाता है?
1: नहीं, ये इतना आसान नहीं होता है सुनंदिनी। शरणार्थियों को बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। भाषा की समस्या, संस्कृति का अलग होना, रोजगार न मिलना और कई बार तो स्थानीय लोगों का उनके प्रति नज़रिया भी अच्छा नहीं होता है। उन्हें बुनियादी सुविधाएं जैसे साफ पानी, इलाज और बच्चों के लिए शिक्षा भी मुश्किल से मिलती है।
0: ये तो बहुत दुखद है। वे पहले से ही इतने परेशान होते हैं और ऊपर से ये सब मुश्किलें। क्या हमारा देश और सरकार इनके लिए कुछ भी नहीं कर सकती?
1: सरकारी और कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जैसे UNHCR इनके लिए काम करती हैं। उन्हें कैंप में रहने की जगह, खाना और दवाइयाँ देती है, लेकिन शरणार्थियों की संख्या इतनी ज़्यादा है कि संसाधन हमेशा कम पड़ जाते हैं। इसलिए इस दिवस का एक बड़ा मकसद ये भी है कि दुनिया भर के लोगों में इस मुद्दे के प्रति जागरूकता पैदा की जा सके।
0: तो एक आम नागरिक या हमारे जैसे सामान्य लोग इसके इसमें क्या भूमिका निभा सकते हैं? हम तो बहुत दूर हैं इन सब चीज़ों से।
1: हम बहुत कुछ कर सकते हैं सुनंदिनी। सबसे पहले तो हमें उनके प्रति अपनी सोच में सहानुभूति और दया लानी होगी। हमें उन्हें किसी बोझ या खतरे के रूप में नहीं, बल्कि इंसान के रूप में देखना चाहिए जो मदद की गुहार लगा रहे हैं। हम सोशल मीडिया के जरिए इसके बारे में बात कर सकते हैं, जागरूकता फैला सकते हैं और जो संस्थाएं इनके लिए काम करती हैं उन्हें छोटी मोटी आर्थिक मदद या कपड़े सामग्री दान कर सकते हैं। इससे उन्हें काफ़ी मदद मिल सकती है।
0: हाँ, तुमने बहुत अच्छी बात कही नीलिमा। इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है। अगर हम किसी की मजबूरी में उनके काम नहीं आ सकते तो कम से कम उनके प्रति नफरत या गलत भावना भी नहीं रखनी चाहिए।
1: हाँ, और इस साल की थीम है सुनंदिनी जो हमारे लिए और हम जनता के लिए रखी गई है ताकि हम सजग हो सके इस विषय पर, और इस बात पे ये उसकी थीम जो है वो इस बात पर जोर देती है कि शरणार्थियों को सुरक्षा, सम्मान और आगे बढ़ने के अवसर मिलने चाहिए। और ये तभी पॉसिबल है जब हम सबका साथ होगा। जब हम सबका साथ होगा, सबका विश्वास होगा, सबका प्रयास होगा, तब जाकर ये सपना साकार होगा।
0: आज तुमने बात करके मुझे इस विषय की गंभीरता समझ आ गई। मैं भी अब इसके बारे में पढ़ूंगी और अपने परिवार व दोस्त से भी इस पर चर्चा करूंगी। धन्यवाद नीलिमा, मुझे इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए।
1: शुक्रिया इसके लिए सुनंदिनी। हमारा काम ही है युववाणी के जरिए सबको एंटरटेनमेंट, इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन और भी बहुत सारी चीज़ें लोगों को बताना और लोगों तक पहुंचाना। तो दोस्तों, वक्त हो चला है हमारे अगले ट्रैक का, क्योंकि हम सिर्फ इन्फॉर्मेशन ही नहीं देते, एंटरटेनमेंट का भी पूरा स्कोप रहता है। तो आइए एंजॉय करते हैं हमारा अगला ट्रैक।

0: अभी आप सुन रहे थे फिल्म के खट्टा मीठा के और सुनिधि चौहान की आवाज़ में ये गाना। तो जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, आज सैटरडे है और आज हम लोग करते हैं स्टार्टअप सैटरडे। तो आज के स्टार्टअप सैटरडे में आप सुनेंगे नीलिमा से आकाशवाणी पटना के भूतपूर्व असिस्टेंट डायरेक्टर नंदिनी वर्मा जी की बातचीत।
1: मीरा की अमर भक्ति जहर से मर नहीं सकती। झांसी वाली रानी है, किसी से डर नहीं सकती। मदर टेरेसा, कल्पना हो या सानिया मैरी, असंभव क्या है दुनिया में जो नारी कर नहीं सकती। आज हम अपने इस सेगमेंट में एक ऐसी नारी की बात करने वाले हैं जिन्होंने सारी फिजिकल, साइकोलॉजिकल, जियोग्राफिकल एंड स्टीरियोटिपिकल बाउंड्रीज को तोड़ सफलता, बल्कि ना सिर्फ सफलता, जबरदस्त सफलता हासिल की। शी इज नन अदर देन असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ आकाशवाणी नंदिनी वर्मा मैम। वड़कम मैम।
2: वनकम।
1: आज तक सब आपको आकाशवाणी के एडी के तौर पर जानते थे। जब आप रिटायर हो गई हैं तो आपकी कहानी और आपकी जर्नी से लोग आपको जानेंगे। वैसे तो आपको अपना परिचय देने की जरूरत नहीं है, फिर भी एक फॉर्मेलिटी है, तो प्लीज अपना परिचय हमारे श्रोताओं को दें।
2: नमस्कार सभी श्रोताओं को। मैं नंदिनी वर्मा, और शादी से पूर्व मेरा नाम नंदिनी राजन था, और मेरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है कि मैं ग्रेजुएट हूँ, साथ में कंप्यूटर्स का कोर्स भी की हूँ और जर्नलिज्म में मास्टर्स भी की हूँ। और मेरा फैमिली बैकग्राउंड है कि मैं एक तमिलियन हूँ, तमिलनाडु की हूँ। पढ़ाई लिखाई सब जो है

0: ब्लेयर में हुआ, अंडमान निकोबार में।
1: मैम जैसा कि आपने बताया कि आप साउथ से हैं, फिर भी स्टेट बिहार में कैसे आना हुआ, और यहाँ आने के बाद इतने साल यहाँ काम करने के बाद अभी जो छवि बनी है वो कैसी है?
0: हाँ, बिहार आना का मेरा मकसद ये था कि मेरा लव मैरिज है, मेरे हस्बैंड जो है मेरे कॉलेज मेट हैं, और इसी चक्कर में मैं बिहार, मेरा टारगेट था कि किसी भी तरह बिहार पहुंच जाना है, शादी हो नहीं हो वाज अ सेकेंडरी थिंग, क्योंकि साउथ के एंड मैं क्रिश्चियन भी हूँ। तो उसी के सिलसिले में मतलब एग्जाम्स दी, और जो एग्जाम दी वो ये है कि रोजगार सूचना आता है आकाशवाणी और दूरदर्शन पे, तो उसी में ये रोजगार सूचना आया था, उसको सुन के मैंने अप्लाई किया था, नौकरी मिली, और वहां से मैं फिर शादी हुई, शादी के बाद बिहार आई।
1: जी बिल्कुल, हमारा बिहार है ही इतना प्यारा, हर किसी को अपना लेता है मैम। और मैम यहाँ मैं अपने श्रोताओं को बताना चाहती हूँ, बहुत लोग हैं जो ऐसा कहते हैं कि लव जो है वो डिस्ट्रैक्ट करती है, बट यहाँ लव ने आपको एक जरिया दिया और आप इतनी ज्यादा कॉन्सेंट्रेट हुई कि उसके चक्कर में आपने इतना बड़ा एग्जाम क्लियर किया एंड यू बिकेम असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ आकाशवाणी।
0: लव इज नॉट डिस्ट्रैक्शन, लव को अगर आप सही मायने में देखेगा, इट गिव्स यू अ डायरेक्शन। ठीक है, परिवार एग्री नहीं करता है, सब चीज है, लेकिन अगर आप समझाएंगे और खुद को एक दिशा दिखाएंगे और एक सोच के साथ चलेंगे तो सक्सेस तो मिलेगा ही, प्यार में भी और काम में भी और देश की उन्नति में भी।
1: तो मैम आपने जो देश की उन्नति की बात कही, तो वो उन्नति आपने आकाशवाणी को ज्वाइन करके हमारे देश की उन्नति कराई, तो इसके लिए आपकी इंस्पिरेशन कहाँ से मिली, तो आपके साथ इन दोनों चीजों में से क्या हुआ?
0: डेस्टिनी चोज मी, ये आना था बिहार, तो इसलिए मैंने वो एग्जाम दिया और पहला ऑप्शन बिहार पटना लिखा था।
1: मैम प्रेपरेशन फेज बहुत टर्मोइल फेज होता है, यू टेंड टू टेक सो मेनी एग्जाम्स, आपकी प्रेपरेशन फेज कैसी रही है?
0: आकाशवाणी के लिए मेरा कोई प्रेपरेशन नहीं था, बस बिहार टारगेट था, इसके चलते मैं बैंक के एग्जाम भी दी, उसमें भी मेरा हो गया था। हम ज्वाइन नहीं किए थे क्योंकि कलकत्ता मिला था, जो भी पोर्ट ब्लेयर में देते थे वो लोग को कलकत्ता जोन मिलता था या पोर्ट ब्लेयर, तो मेरे को कलकत्ता जोन मिला, तो हम ज्वाइन नहीं किए वहाँ पे। दो और एग्जाम दिए उसमें भी हो गया था, फॉरेस्ट के एग्जाम दिए थे उसमें भी हो गया था, लेकिन बिहार नहीं मिल रहा था कैडर, तो तब फिर ये वाला एग्जाम दिए और फिर जब पटना मिला उसके बाद पटना आई, तो प्रिपरेशन वॉज पटना पहुंचना है किसी भी हाल में। और इस नौकरी से पहले मैं 2 साल एक सेंट्रल गवर्नमेंट स्कूल में टीचर के तौर पर भी नौकरी की हूँ।
1: तो मैम आपने जैसा कहा कि आपने प्रेपरेशन नहीं की, फिर आपने एग्जाम्स कैसे क्लियर किया? आई मीन वाज यू ब्यूटी विद ब्रेन, या क्या था एग्जाम में, क्या लिखना था, क्या पढ़ना था, कैसे तरीके के क्वेश्चन आए थे और आपने उनको कैसे?
0: देखिए, जब आप टीचिंग जॉब में होते हैं ना, तो आप करंट अफेयर्स बच्चों को पढ़ाने में आपका प्रिपरेशन वहीं पे हो जाता है, तो उस तौर पे प्रिपरेशन हो गया था। एंड हाँ, एग्जाम का जब फॉर्म भरता आदमी तो थोड़ा बहुत देख लेता है, एंड हमारे जमाने में इतना ट्यूटोरियल्स ये सब नहीं था, खाली बुकलेट्स आते थे जिस एग्जाम को आप देते हैं, एक सैंपल क्वेश्चन टाइप्स का आता है, उसको देख के फिर आदमी प्रिपेयर करता है।
1: ये तो बात आपने बिल्कुल सही कही मैम कि टीचर इज नॉट ओनली द वन हु टीचेस, ही लर्न्स एज वेल, क्योंकि ये वैसा है,
0: क्योंकि हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ाती थी तो बच्चे बहुत सारे क्वेश्चन पूछते थे, उस टाइम बहुत सारा एंटरटेनमेंट भी नहीं होता था, तो आप टीवी देखोगे या रेडियो सुनोगे तो न्यूज सुनते ही सुनते थे आदमी, तो उसी से प्रिपरेशन हो जाता।
1: मैम जब बच्चे सपना देखते हैं तो उन सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करते हैं, उस समय बैक स्टेज एज लीडिंग एक्टर्स उनके माँ बाप उनको हर पॉसिबल सपोर्ट देते हैं, आपकी लाइफ के सपोर्ट सिस्टम जिन्होंने एक साधारण सी नंदिनी को एडी नंदिनी बनाया, उनके बारे में बताइए।
0: बहुत जब छोटी थी और स्कूल एज में थी तो मेरी माँ बोलती थी कि लाइफ में क्या करना है, पढ़ाई लिखाई कर लेना है, कॉन्वेंट एजुकेटेड हूँ, बस पढ़ाई लिखाई कर लेना, एक अच्छा मतलब हाई क्लास आदमी से शादी करनी है और थर्ड से हाउसवाइफ बन के रहना है और घूमना है गाड़ी में, मतलब ऑफिसर ग्रेड के आदमी के साथ शादी होके। तब मेरी माँ ने एक सेंटेंस बोला कि अपनी पहचान बनानी चाहिए, और मेरी एक आंट थी वो बोलती थी कि एक अन्नम्मा करके एक आंटी थी, बोले अन्नम्मा को कौन जानता है, सब मुझे मिसेज वर्गीस या शर्ली की मम्मी के नाम पे जानते हैं, लेकिन अन्नम्मा को कोई नहीं जानता, इसलिए अपनी जिंदगी में अपना नाम कमाओ और वो नाम कोई तुमसे छीन नहीं सकता है। और मेरे लाइफ के पीछे मेरे मदर का बहुत बड़ा हाथ।
1: पर्सनल रिलेशंस तो सपोर्ट करते ही है, प्रोफेशनल रिलेशंस, क्योंकि मैं आपकी टीचर्स की कंट्रीब्यूशन की बात कर रही हूँ, उनका

0: भी बहुत अहम रोल होता है, तो उनकी भूमिका बताएं आप।
1: मैं कॉन्वेंट एजुकेटेड हूँ, तो मेरे टीचर्स ने मुझे एक चीज सिखाया, कभी झूठ नहीं बोलना और किसी को डिसीव नहीं करना, वो जरूर आगे बढ़ेंगे।
0: मैम आपकी प्रोफेशनल लाइफ आकाशवाणी में कैसे शुरू हुई, कैसे आपने पहले दिन ज्वाइन किया, वो सारी चीज बताएं।
1: हाँ, मैं टीचिंग जॉब छोड़ के आई। जब मैं आई, मेरे स्टेशन डायरेक्टर मुझे बहुत ज्यादा पसंद नहीं किए, मतलब सोचे कि साउथ की है, हिंदी है, नहीं उतना हो सकता है, नहीं बोल पाएंगी ये वो। लेकिन फिर 3 महीने में हम लोग सबको एक प्रोग्राम बनाने मिला था, मतलब रेडियो रिपोर्ट टाइप्स का, तो उसमें मैंने बहुत अच्छा किया। तब उन्होंने काम को देखा, बहुत तारीफ, तो वहां से मेरी नौकरी शुरू हुई। और जिस दिन मैं ज्वाइन करने गई थी, तो वो जो स्टेशन डायरेक्टर थे, उन्होंने बोला कि यहाँ ज्वाइन की मकसद क्या है और आगे तुम्हारा लाइफ में तुम क्या चाहते। बस मेरे एक ही सेंटेंस था, सर मैं आज ज्वाइन की हूँ, मैं टेबल के इस पार हूँ, मैं चाहती हूँ जिंदगी में टेबल के उस पार आऊँ, मीन्स आई बी समबडी एज अ बिग ऑफिसर। वो था मेरा कि टेबल के उस पार जाऊं।
0: जब आपको एक डेजिग्नेशन मिलती है तो काफी एक्साइटमेंट होती है, साथ साथ डर लगता है कि मैं इस डेजिग्नेशन को जस्टिफाई कर पाऊंगी या नहीं। और सबसे बड़ी बात, मेरे पेरेंट्स जो प्राउडली हर किसी को बोलते होंगे कि मेरी बेटी इस डेजिग्नेशन पर है, उनकी प्राइड को मैं संभाल पाऊंगी, उनकी एक्सपेक्टेशंस पर खड़ी उतरूंगी या नहीं, क्या आपके मन में ये सारी चीजें चल रही थी? और अगर चल रही थी तो आपने अपने मन को कैसे शांत किया?
1: कोई भी जॉब मिलता है ना, तो उथल पुथल मन में रहता है। मैं ज्वाइन की थी एज ए ट्रेक्स ट्रांसमिशन एग्जीक्यूटिव ऑल इंडिया रेडियो में, तब लगता था कि इस प्रोग्राम को सुन रही हूँ, चूक ना हो जाए, सुनने में सही हो, उसके ग्रेडिंग सही से करे और प्रोग्राम जो बना रही हूँ वो सही करे। और सबसे मेन चीज मेरा था कि पंक्चुअल रहना है, तो और एक्सपेक्टेशंस ऐसा था मेरा नौकरी के प्रति, इतना अच्छा से मैं दूं कि वो डिपार्टमेंट जो है और ऊंचाइयों पर जाए।
0: मैम जैसा कि आपने कहा कि आप डिपार्टमेंट को बहुत सपोर्ट करना चाहती थी, लेकिन कई बार ऐसी चीज देखी गई है कि यू एज अ वुमन, बहुत बार ऐसा देखा गया है कि किसी औरत से ऑर्डर्स लेना मेन के लिए वो ईगो तक कंसर्निंग हो जाता है, तो डिड यू फील समथिंग लाइक दैट, ईगो क्लैशेस हुए, तो ऐसी कोई इंसिडेंट बताइए।
1: ये तो बहुत ऑफिस में तो होता ही है, एंड स्पेशली बिहार में टाइम पे, कि ऐसा फीलिंग आता था कि लोग सोचते हैं कि मतलब लेडीज लोग जो बाहर जाती हैं उनकी इज्जत नहीं होती है, क्योंकि कुछ बोलते तो लोग बोलते थे अरे इनको मत दो कि ये नहीं कर पाएंगी, लेडी है। तब चैलेंज के तौर पर मैं लेती थी और बोलती थी कि क्यों नहीं कर पाएंगे, नौकरी करने आए हैं, 1 रुपया कम नहीं ले रहे हैं, तो बराबरी का नौकरी क्यों नहीं करेंगे, चाहे नाइट ड्यूटी हो, नाइट ओबी हो, बाहर टूर पे जाना हो। इंसल्ट फील होती थी कि एक लेडी है इसलिए लोग अलग कर दे रहे हैं, तो लड़ के मैंने ड्यूटी ली कि कोई मुझे आपसे कम ना समझे।
0: तो हमारे श्रोताओं को यहाँ पर एक मैसेज जाता है कि कई बार आपको लगेगा, लोग आपसे कहेंगे कि आपसे नहीं होगा, लेकिन आपको रिबेलियस एटीट्यूड रखना है कि बिल्कुल होगा। आपने अपनी प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज कैसे पूरी करी?
1: मेरे पति ने बहुत सपोर्ट किया और इस सपोर्ट ने मुझे आज इस मुकाम पर पहुंचाया। और बच्चों के साथ ये हुआ कि वो लोग सुबह के स्कूल है यहाँ बिहार में, तो मैं अधिकतर मॉर्निंग ड्यूटीज लेती थी। अब ड्यूटीज तो सबकी सुबह शाम दोपहर लगती थी, वहां तो रोटेशन में चलता है ना शिफ्ट सिस्टम, रिक्वेस्ट करती थी कि मॉर्निंग ड्यूटी देना, तो थोड़ा आसान हो जाता है कि बच्चे घर आने से पहले मैं घर पहुंच जाऊं। और इसके लिए मैं सुबह 3:30 बजे उठ जाती थी, 3:30 बजे उठ के खाना बनाना, सुबह का ब्रेकफास्ट बनाना, लंच का थोड़ा बहुत तैयारी करके रख देना, और फिर 4:30 बजे गाड़ी आती थी और मैं 4:45 बजे ऑफिस पहुंच जाती थी सुबह, क्योंकि मॉर्निंग ड्यूटी 5 बजे स्टार्ट होती। क्रम में मैं बताना चाहती हूँ कि मेरा जो इन लॉज है वो लोग तो जानते थे कि ये नौकरी वाली है, तो सपोर्ट मिला है।
0: ये बहुत अच्छी बात कही आपने मैम।
1: अच्छा, इसी बात में मैं कहना चाहती हूँ कि हर लड़की सोचती है कि सास ससुर ठीक नहीं होते हैं, मेरे बच्चे को कैसे पालेंगे। मेरा दिमाग में तब एक ही बात था कि जब वो अपने बेटे को इतने लायक बनाए कि मैं उसको चुन के शादी की, तो वो क्या उनके पोता को ठीक से नहीं देख पाएगी, पोता या पोती को। इसीलिए ससुराल वालों को कभी कम नहीं समझना, जब उनका बेटा आपके लायक है तो नेचुरली आपके बच्चों को भी वो लायक ही बनाएंगे।
0: बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात कही मैम, बात गई है तो उस पर मैं जाना चाहूंगी कि जब आप खुद को खुद से कंपेयर करती हैं 10th स्टैंडर्ड की नंदिनी वर्सेस अब की नंदिनी वर्मा, तो आप क्या चेंजेस खुद में ऑब्जर्व करती हैं?
1: प्राउड फील करती हूँ कि जो मैं चाहती थी day 1 में, कि जब ट्रांसमिशन एग्जीक्यूटिव बनी तो मैं उस पर आना चाहती थी एज अ हेड ऑफ द प्रोग्राम, एंड वो मैं बन गई। लेकिन जो प्यार और जो इज्जत मिली है मुझे, आई थिंक आई गेट 10/10।
0: बिल्कुल सही बात है अपने आप को ग्रेड करना, क्योंकि ये प्यार और मोहब्बत में अगर आप पूरे मार्क्स ले रहे हो तो यही सबसे बड़ी अचीवमेंट है आपके लिए। हर किसी की लाइफ में

0: शायद एक ऐसा फेज होता है जब आपको लगता है कि जिंदगी का पता शायद खो गया है। क्या आपकी लाइफ में ये सिचुएशन आई?
1: जिंदगी का पता तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ खोई हूँ मैं, मतलब लॉस्ट द प्लेस वेर आई स्टे। मैं पोर्टब्लेयर से हूँ और पोर्टब्लेयर इतना सुंदर आज तक मतलब देखा मैंने। स्विट्जरलैंड को देखती हूँ तो नहीं लगता है कि पोर्टब्लेयर कहीं भी कम है। स्विट्जरलैंड मेरे को उतना भाया नहीं जितना कि पोर्टब्लेयर। तो पोर्टब्लेयर को मैं आज भी मिस करती हूँ और डर लगता है कि कभी जाऊंगी वहां पे तो वापस ना आ पाऊँ।
0: जी, वो होम टाउन की कनेक्शन ही ऐसी होती है मैम। हर कोई फाइनल प्रोडक्ट देखता है, बट उसके पीछे देर आर सो मेनी मोर इयर्स ऑफ ऑनेस्ट इन्वेस्टमेंट। तो आपने आकाशवाणी में अपने कितने इयर्स दिए?
1: मैंने आकाशवाणी में 34 साल दिए टोटल। तो 34 साल में एक लंबा सफर चला है, लॉन्ग जर्नी, अ वेरी ऑनेस्ट जर्नी एंड अ वेरी ट्रूथफुल जर्नी। मेन चीज है कि मैंने अपना काम को बहुत प्यार किया। आप अपने काम को प्यार करेंगे तो को अच्छा लगेगा और काम करने में मन लगेगा और तब जाके आप एक गवर्नमेंट सर्वेंट या कॉर्पोरेट सर्वेंट बन पाओगे आप।
0: नजर और नजरिया, ये दोनों चीजें आपकी लाइफ की नजर में सक्सेस को लेकर क्या नजरिया है?
1: सक्सेस तभी आती है जब आप ऑनेस्ट रहोगे, मेहनत करोगे, एकदम सच्चाई के साथ रहोगे और सबसे ज्यादा आप अपना काम को और अपने आसपास के लोगों को जब तक प्यार नहीं करोगे तब तक आपको सक्सेस नहीं मिलेगा।
0: बिल्कुल मैम। यहाँ पर मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगी मैम कि आप राजा तभी बन सकते हो जब प्रजा आपकी बात को माने। और आपने ये बहुत बड़ी बात कही कि प्यार करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप किसी भी इंसान को ऑर्डर देने के डेजिग्नेशन पर हो, बट समटाइम्स ऐसा होता है कि चीजें आपके फेवर में नहीं होती है, उस वक्त आप प्यार से ही सामने वाले से काम करवा सकती हैं।
1: हाँ, और वो भी जब आप एक ही ऑफिस में आपने लोअर जॉब मतलब किए हैं एंड देन यू बिकम द उसी जगह पे आप बॉस भी बनते हो, तब बहुत सारी मुश्किलें आती हैं क्योंकि आपके कलीग्स हैं जो कल आपके साथ एक समकक्ष में बैठते थे, आज उनको बताना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, तो आपको एक नया रोल प्ले करना पड़ेगा। तो उसमें आपको पोताही नहीं करनी है। पर्सनल रिलेशन अलग है और प्रोफेशनल रिलेशन अलग है और दोनों को आपको ईमानदारी से निभाना है और दोनों एक दूसरे के साथ आप टक्कर नहीं दे सकते हो।
0: मैम, यू हैव सर्व्ड 34 इयर्स इन आकाशवाणी। आप उस एक दिन का वर्किंग एक्सपीरियंस बताएं जब आपको लगा हो कि आज आप ऊपर हैं और आसमान नहीं, दिन लगा हो आपको कि यू हैव लिव्ड योर लाइफ टू द फुलेस्ट।
1: हाँ, ये बात है, आई लिव माई लाइफ टू द फुलेस्ट उस दिन ये प्रोग्राम हेड के कुर्सी पे बैठी और साथ साथ जब आप लोग सब आए बधाई देने के लिए एंड जिस दिन मैं रिटायर की सारे लोग आए थे एंड सारे लोग मिले, सेल्फी लेना, फोटो लेना, गले मिलना, उस दिन लगा कि जिंदगी पूर्ण हो गई।
0: मैम, व्हाट लेगेसी वुड यू लाइक टू लीव बिहाइंड?
1: मैं अपने विरासत में ये छोड़ना चाहती हूँ कि ऑनेस्टी, अपने नौकरी को प्यार करना, अपने साथियों को प्यार करना, सबसे मेन पंक्चुअलिटी। अगर आप समय पर रहोगे आपके साथ भी सब चीज समय पे होगा, एकदम निश्चित है। ऐसा काम करो जैसे कि आज आपकी जिंदगी की आखिरी दिन है और सारा ताकत उसमें लगा देना, कुछ होएगा ही।
0: थैंक यू सो मच मैम आपके कीमती वक्त से हमारे श्रोताओं के लिए थोड़ा वक्त निकालने के लिए। लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम आकाशवाणी मैम।
1: बहुत बहुत धन्यवाद और सुनने वाले सभी युवाओं को ढेर सारा प्यार, ढेर सारा आशीर्वाद।
2: अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी पटना की भूतपूर्व असिस्टेंट डायरेक्टर नंदिनी वर्मा जी की बातचीत नीलिमा से। अब सुनेंगे फिल्म सूर्यवंशम से कुमार सानू और अनुराधा पौडवाल की आवाज में ये गाना।

0: नीलिमा, आज हमारे साथ स्टूडियो में इतनी रौनक है, इसके पीछे एक बहुत बड़ी खुशी की बात है ना, जो कि हमारे श्रोताओं के लिए अभी तक सस्पेंस है।
1: बिल्कुल सनंदनी, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, तो मैं जैसा कि पहले बता चुकी थी कि आज आपके लिए एक उत्सव हम लोग मनाने वाले हैं और जिसको मैंने सरप्राइज रखा था, तो बता दूं आज आपको कि आज है पीएम किसान उत्सव दिवस। आज का दिन हमारे देश के उन लोगों के नाम है जो दिन रात खेतों में पसीना बहाकर हमारे लिए अन्न उगाते हैं। आज हम बात कर रहे हैं पीएम किसान उत्सव के बारे में। ये दिन हमारे अन्नदाताओं की मेहनत और उनकी खुशहाली को मनाने का दिन है।
0: अरे वाह, पीएम किसान उत्सव दिवस सुनना ही एक अपने आप में कितना अच्छा लगता है ना नीलिमा। लेकिन जो

0: दोस्त आज हमें पहली बार सुन रहे हैं या इसके बारे में थोड़ी कम जानते हैं, उन्हें सरल शब्दों में बताओ कि यह असल में है क्या।
1: देखिए सुनंदिनी, सरकार की एक बहुत बड़ी योजना है जिसका नाम है पीएम किसान सम्मान निधि। इस योजना के तहत देश के करोड़ों छोटे और सीमांत किसानों को हर साल 6,000 रुपये की आर्थिक मदद दी जाती है। ये पैसा सीधे उनके बैंक खाते में भेजे जाते हैं बिना किसी मीडिएटर के। और इसी योजना की सफलता और किसानों के योगदान को सम्मान देने के लिए इस उत्सव को मनाया जाता है।
0: यह तो वाकई कमाल की बात है। 6,000 भले ही सुनने में कुछ लोगों को कम लगे, लेकिन एक किसान के लिए जिसे सही समय पर बीज, खाद या दवाई खरीदनी होती है, उसके लिए यह रकम बहुत बड़ी ताकत बनती है। मैंने देखा है कि जब ये पैसे किसानों के खातों में आते हैं, तो उनके चेहरों पर एक अलग सा सुकून होता है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने सुनंदिनी। खेती में सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि फसल आने से पहले ही बहुत सारे खर्चे सामने खड़े होते हैं। कभी ट्रैक्टर का किराया, कभी पानी का इंतज़ाम, कभी फर्टिलाइजर्स, तो कभी वीडिंग करवाना, निकलवाना वीड्स को। ऐसे समय में जब सीधे बैंक में आपके फार्मर्स के किसानों के अकाउंट में पैसे आते हैं, किसी साहूकार या कर्ज देने वाले के आगे उन्हें हाथ नहीं फैलाना पड़ता और खर्चे के लिए वो खुद पे आत्मनिर्भर बनते हैं।
0: बिल्कुल, और सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है कि इस योजना में कोई भेदभाव नहीं होता। देश के हर कोने से, चाहे वह उत्तर हो, दक्षिण हो या पूर्वी पश्चिम हो, हर छोटे किसान को इसका लाभ मिल रहा है। नीलिमा, क्या तुम्हें पता है कि अब तक कितने किसानों के को इसका फायदा मिल चुका है?
1: हाँ सुनंदिनी, आंकड़ों की बात करें तो देश के लगभग 11 करोड़ से भी ज़्यादा किसान परिवार इस योजना से सीधे जुड़े हुए हैं। अब तक लाखों करोड़ रुपए सीधे किसानों के खातों में भेजे जा चुके हैं। इसलिए तो आज का दिन सिर्फ एक तारीख नहीं बल्कि करोड़ों किसानों के घरों में आई खुशहाली का उत्सव है।
0: वाकई यह एक बहुत बड़ी बदलाव है। पहले के समय में सरकारी मदद किसानों तक पहुंचते पहुंचते बहुत कम हो जाती थी या बहुत समय लगता था, लेकिन आज की तकनीक की वजह से एक बटन दबाते ही पूरे देश के किसानों के पास पैसे पहुंच जाते हैं। यह डिजिटल इंडिया का भी एक बेहतरीन उदाहरण है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। तो इसी खूबसूरत सोच के साथ आज के इस सफ़र को हम आज के इस टॉपिक को थोड़ा विराम देते हैं और सुनते हैं नया अगला ट्रैक।

0: अभी आपने सुना ये गाना फिल्म जन्नत से केके की आवाज़ में। दोस्तों अब बारी है स्पोर्ट्स अपडेट्स की।
1: हाँ बिल्कुल, मिडिल लाओ नौकरी पाओ योजना में बड़ा बदलाव। बिहार कैबिनेट ने दी उत्कृष्ट खिलाड़ी सीधी भर्ती संशोधन नियमावली 2026 को मंजूरी।
0: भागलपुर में रचा गया इतिहास, 19 वर्षीय अक्षरा गुप्ता ने जड़ा नाबाद 13 शतक, 126 गेंदों में कूट डाले 306 रन। दोस्तों अब बारी है हमारे अगले सेगमेंट की, जिसमें हम आपको बताते हैं रोचक तथ्य।
1: आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ ऐसे दिलचस्प बातें जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी हैं, लेकिन हम शायद ही उन बातों पर कभी ध्यान देते हैं। क्या आप जानते हैं कि जब हम सो रहे होते हैं तो हमें किसी भी गंध या खुशबू का पता नहीं चलता?
0: अरे वाह, यानी अगर कमरे में कोई अच्छी खुशबू आ रही हो या कोई बदबू हो तो सोते हुए इंसान को मालूम नहीं पड़ेगा?
1: हाँ बिल्कुल, साल 2004 में हुई एक रिसर्च में पाया गया है कि गहरी नींद में होने पर इंसानी का दिमाग गंध को महसूस नहीं कर पाता।
0: दोस्तों तो ये था हमारा

जगता थे। घड़ी की सुइयों ने अब कर दिया है इशारा, तो वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। तो जहाँ न पहुँचे पानी वहाँ पहुँचे वाणी, इसी संदेश के साथ लेते हैं आपसे विदा। फिर मिलेंगे आपसे नई सोच, नई आवाज़, नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे वाशोदाओं का कार्यक्रम युववाणी। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, आइए सुनते हैं मगही कार्यक्रम मागधी।

मागधी सुन्निहार के निलाद्री के प्रणाम। त सुन्निहार लोगन के गोर लगाहियन आ देखथिन हमने आय हन सनिचर त आगलियन है कार्यक्रम के लेके। सबसे पहले जैसे कि बताबहियन कि आय कौनची कौनची पर जानकारी देवन बातचीत करबन ओकर बारे में बता दहियन। त हमने आय चर्चा वाला जे विषय होतन कल्हे है योग दिवस, तो योग से संबंधित बातचीत करबे, प्राणायाम पर बातचीत करबे। आ कल्हे विश्व संगीत दिवस भी है, तो संगीत के सामाजिक आ सांस्कृतिक महत्तम पर लोकगीत सुनबे कलाकार अखौड़ी नागेंद्र नारायण सिन्हा से। आ सुनबे एगो कहानी पाठ करीमन काका के बेटी कहानीकार होथिन अनुपमानंद। योग जे है खाली शारीरिक कसरते नहीं है, ई एगो कथिन की संपूर्ण जीवन शैली है। हमने सब के आजकल के जो खान पान खराब हो गए हैं, आराम तलबी हो गए हैं, हरदम जो है तनाव में रह है लोग, तो आर एकरा सबसे जो मोटापा हो जा है, चिन्नी की बीमारी हो जा है, ब्लड प्रेशर बढ़ जा है, आजकल थायराइड होवे लगले हैं बहुत, तो ई सब के जो है संहारे में अगर पहले से योग करल जाए, आसन करल जाए, प्राणायाम करल जाए, ध्यान के अभ्यास करल जाए, तो माने हार्मोन जो होबे है हमनी के देह में ओकरा में संतुलन बनल रहते। आ जे हमनी सब खाइए पिए हिए उचित मात्रा में, जितना खाइए उतना पचइए, इस सब के भी बढ़ावा मिलते, मन शांत रहतन। अब जैसे एगो पश्चिमोत्तासन आसन है, तो एकरा से पेट के चर्बी घटे है, त्रिकोणासन से डांह के चर्बी घटे है, पेट के जे अंग होबे है वो सक्रिय होबे है, मंडुकासन से जेकरा चलते चिन्नी की बीमारी हो जाए है तो वो अगर न्यासे सक्रिय होबे है, भ्रामरी प्राणायाम से तनाव राहत मिले है, तनाव में जे हार्मोन प्रबल रह है ओकरा में कमी आवे है, सब आसन नाड़ी शोधन प्राणायाम से करेजा के धड़कन स्थिर रह है आ नस के आराम मिले है। बातचीत हमने सबके चलते रहते, तो पहले कहे नहीं एगो हमने शिव गीत सुन लही, कलाकार तो है ये थी अखौड़ी नागेंद्र नारायण सिन्हा।

अभी अपने सुनलखिन शिव भजन। जैसन कि अपने जाना हथिन, कल्हे है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। तो इस साल के जे योग दिवस के मुख्य विषय है उ है स्वस्थ आयु के लेल योग। कोलकाता में ऐतिहासिक रेड रोड पर अबरी जे है मुख्य कार्यक्रम होते, राष्ट्रीय कार्यक्रम। आ जे हमनी के केंद्र में आयुष मंत्रालय है, ई राष्ट्रव्यापी योग संगम पहल पहले से चला रहले हैं। आ इमें सामान्य योग जे नियम कानून होवे है ओकरा पर आधारित सामूहिक प्रदर्शन भी होते। योग से तन मन दुनू के शुद्ध आ स्वस्थ रखे में बहुत सहायता मिले है। योग खाली शारीरिक कसरते नहीं है, ई एगो संपूर्ण जीवन शैली है। आ योगे से जुड़ल एगो आर बात कहबन कि हमने योग ध्यान प्राणायाम करे है। तो प्राणायाम से श्वसन प्रणाली है जे फेफड़ा के मजबूत करे है। आ फेफड़ा के नीचा जे डायफ्राम रहे है ओकर काम के बढ़ावे में मदद करे है। ई सांस लेवे के रास्ता के साफ कर दे है, खून के

0: बहाव में मदद करे है। हमनी के जे तंत्रिका तंत्र है, मने जे सूचना लावे ले जाए के दर्द या कोई तरह के जे सूचना होवे है एकरे द्वारा मस्तिष्क में पहुँचे है, तो ई तंत्र के भी शांत रखे है आ करे जाक स्वास्थ्य के बेहतर बनाबे लेल समर्थित भी है। हमनी अनुलोम विलोम के कर सके हिए, नारी शोधन प्राणायाम कर सके हिए, एकरा से हमनी के खून में ऑक्सीजन के स्तर बढ़ा है, तो इससे फेफड़ा के कार्य क्षमता बढ़ा है। कपाल भाति नियर प्राणायाम से दूषित हवा बाहर निकल है, सांस के तंत्र मजबूत होबा है, तनाव कम होबा है, तो ऐसी है भ्रामरी भस्त्रिका ई सब भी मन मस्तिष्क के शांत रख के हृदय पर दबाव के कम करे है आ सांस के लेके नियमित बनाबे है। तब बिना देन कहने हमनी बढ़े कहानी सुने लेल करीमन काका के बेटी कहानीकार हथिन अनुपमन।
1: मुन्ना के पापा अभी ले सुतले हा, 8 बज गेल बा, अपने तो रोज 4 बजे उठ जा हला, आज इतना देर तक काहे सुतल हा, कोई बात है? हाँ जी, अभी तो सुते के कारण है, काहे कि देर रात तक नींद ना आयल। बड़का बेटा बिंदा के पढ़ावे लिखावे में ढेर खर्च भेल हल, ओकरा बीटेक करवावे ला देहरादून भेज ली हल, ओकरा 4 साल के पढ़ाई में बड़ा खर्च भेल हल, आज उ पूना में नौकरी कर रहल है, शादी करला भी 3 साल हो गेल, पोता लेके मात्र 3 गो प्राणी है, ओकरा 60,000 वेतन मिला है, लेकिन 1 रुपया अब न भेजे, शादी के पहले हरदम रुपया भेजित रहल, जेकरा से कर्जा के पूर्ति होइत रहल, और परिवार चलावे में हमरा कोई दिक्कत न होबल, लेकिन आज ऐसन समय गुजरित है कि हम कर्ज में फंस गेली। छोटका बेटा चंदा और बेटी कविता के पढ़ाई लिखाई जारी है, दोनों के खर्च और तोर बीमारी के खर्च से हम तबाही। बिंदा के पढ़ावे में 1 बीघा खेत इजारा रखल गेल से आज तक न छूटल, लगित है कि वो खेत सदा ला बिक ही जात। सुनी था जी, चिंता करे के कोई बात न है, चिंता करे से शरीर पर बुरा प्रभाव पड़ा है, हमनी जितना में ही उतने में रह, बिंदा के कोई चिंता न है तब हमनी का करम। उ बीटेक कैले है, खुद समझदार है, ओकरा समझावे के जरूरत है, ओकरा 60,000 रुपया 3 गो में खर्च हो जा है, उ अपन पत्नी के फेर में है, जे उ कहत से उ सुनत, हमनी के बात पर ओकरा कोई असर न है, समय के फेरा है, पर ओकरा कोई असर न है, समय के फेरा है, शादी के बाद मर्द पत्नी के बाद ज्यादे मान है, परिवार लोगन के कम आदमी स्वार्थी हो गेल है, उ परिवार के लेके आगे बदल न चाह, उ परिवार के अपना बाधक समझा है, ओकरा लग है कि परिवार के लेके चले में हम पीछे पड़ जा, बिंदा अपन पत्नी और बउआ के ही परिवार समझा है, भाई बहन माय और बाप परिवार में गिनती न करे, जौन परिवार तोरा बीटेक करवा देल शादी विवाह करवा देल ओकरा परिवार में गिनती न है, समय के फेरा है न। मुन्ना के पापा चिंता मत कर, आगे के बात सोचल जाए, अब का करे के चाही, हमर तो राय है कि कविता और चंदा दोनों के पढ़ाई बढ़िया से करावल जाए, खेत बिके तब बिके, बात तू सही कही था, लेकिन सभे तो खेत बिकी जात तब का करम, पढ़ाई लिखाई करावे से काम न चलत, पढ़ाई लिखाई के बाद कविता के शादी में ढेर खर्च होत, एकरा बारे में सोची था जी? अपने ढेर बात सोचही, वर्तमान देख, भविष्य के चिंता करे के जरूरत न है, वर्तमान अगर ठीक हो जात तब भविष्य भी ठीक हो जात, वर्तमान के हाथ से न जाए, पढ़ाई लिखाई बड़का धन है कि आगे पढ़े के माध्यम है, यही माध्यम में से सफलता के अंतिम शिखर तक चढ़ल जा सका है। कविता के माय तू हमर दिमाग के पट खोल देला, अब हम कोई चिंता न करम, कविता के और चंदा के जरूर पढ़ा, चाहे जितना खर्च होवे, चाहे जितना हमनी के कष्ट सहे पड़े, माय बाप के फर्ज होवे कि बेटा बेटी आगे पढ़े, सुख में जीवन व्यतीत करे, बेटा बेटी खुशहाल रहे। बिंदा के पढ़ावे में 1 बीघा खेत इजारा रखल गेल हल, अगर ये दोनों

पढ़ावे में खेत बिक भी जाए तब कोई चिंता के बात न है। कविता आईएससी में और चंदा मैट्रिक में पढ़ रहा है। दोनों भाई बहन पढ़े में तेज तरार हत। दोनों के प्रतिभा देख के गांव के लोग अचरज कर रहत। सब कह हत कि करीबन काका के बेटी और बेटा प्रतिभा वाला हत। गांव में तो ढेर अमीर के बाल बच्चा हत, लेकिन ऐसन प्रतिभा कोई में नहीं। गांव घर में करीबन काका के बड़ चर्चा होवा है। लोग कह हत कि करीबन काका के दिल दरिया है, उनकर सोच महान है। अपन बच्चा के पढ़ावे ला खेत भी बेच देलन, पढ़ाई लिखाई पर विशेष ध्यान देवत। गांव के लंद फंद से कोसो दूर रहत। खेती बाड़ी जम के करहत, 3 कट्ठा खेत में सब्जी लगावहत। तरह तरह के मौसम के अनुसार सब्जी लगावहत। सालों अपने खेत के अपने उपजावल सब्जी खात, बचला पर बेच भी देहत। चंदा और कविता भी समझा है कि हमर माय और बाबू आर्थिक स्थिति से गुजरी थत। हमनी के पढ़ाई लिखाई में खर्च से बाज ना आवी थत। ई लेल दोनों भाई बहन मन लगा के पढ़ाई करी थत। ई भी समझ रहल है कि बड़का भाई के पढ़ावे लिखावे में ढेर खर्च भेल है। नौकरी लगला के बाद भी पापा के पास पैसा न भेजी थत। यही कारण है कि पापा आर्थिक स्थिति से कमजोर हो गया। कविता इंटर के परीक्षा में जिला टॉपर आये। ई समाचार समूचे गांव में फैल गया। कविता के माय और बाबू के खुशी के ठिकाना न रह। दोनों व्यक्ति कविता के बधाई देलन। बेटी आज हमर खुशी के ठिकाना न है, तोर उपलब्धि से हम बड़ खुशी। अब तोर आगे के भी पढ़ाई जारी रहत। कविता के नाम पटना कॉलेज में अंग्रेजी ऑनर्स में लिखा गया। पढ़ाई लिखाई चलते रहल। कविता के पापा करीबन 3 साल तक पूरा खर्च जुटाबित रहलन। खर्च जुटाबे में तनिको पीछे न रहलन। कविता मन लगा के पढ़ाई करल, जेकरा परिणाम भेल कि पटना कॉलेज में अंग्रेजी ऑनर्स में टॉपर रहल। कविता के प्रतिभा देख के लोग कायल हल। वही कॉलेज में गुंजन नाम के एगो छात्र हल, जे अंग्रेजी ऑनर्स में 2nd टॉपर हल। गुंजन अपन माय बाप के दुलरुआ बेटा हल। रंग रूप सहन के साथ साथ प्रतिभा वाला विद्यार्थी हल। लंद फंद से लाखों दूर रहा हल। गुंजन के पिताजी अमीर आदमी हलन, उनका कोई चीज में कमी न है। जर जमीन से तो भरपूर तो है ये हत, साथे साथे सरकारी स्कूल के काम भी कर। मुन्ना के पापा कविता के पढ़ाई लिखाई तो होते है, लेकिन शादी विवाह के बारे में भी सोचित है। लड़का खोजे में भी समय लगा है, वहीं से ध्यान रख। अगर कहीं योग्य लड़का मिल जाए तो कविता के हाथ पियर कर ही देवे के जरूरत है। काहे कि जवान बेटी के समय के अनुसार शादी कर देवे के जरूरत है। पैसा कौड़ी के भी व्यवस्था करे पड़त, काहे कि हमनी के हाथ में एको पैसा कौड़ी न है। जितना पैसा कौड़ी है सब पढ़ाई लिखाई और घर चलावे में खत्म हो जाते। भगवान हमनी के कैसे इज्जत बचेतन, ये तो भगवान के हाथ में है। कविता के माय चिंता करे के कोई जरूरत न है, सब इज्जत भगवान के हाथ में है। हमनी के काम है कर्म करना, फल तो भगवान के हाथ में है। बेटी कविता मेहनत करके पढ़ी थे, पटना कॉलेज में अंग्रेजी प्रतिष्ठा में टॉपर करना कोई आसान है। ओकरा मेहनत के परिणाम है। हमारा पूरा विश्वास है कि बेटी आगे चल के कोई पदाधिकारी बनत और हमनी के दुख बलाय खत्म हो जाए। हम यहू जानी थी कि कविता के माय कि तोरा गांव घर के लोग कह भी होत कि कविता के शादी कहिया करम। वो बीए पास कर गेल। समय बड़ा खराब है, जमान बेटी ढेर दिन तक रखना ठीक न है। गांव घर के लोग तरह तरह के तोरा कुछ कह होतन, तोरा खराब भी लगा होत। तोर बेटी कविता होनहार है, तोर कहला पर जर जमीन बेचकर ओकरा पढ़ा रहली है। चाहे कविता होवे या चंदा, दोनों के एके समान देखी थी। बेटी के बेटे समझी थी, जितना बेटा के दुलार उतने बेटी के भी दुलार दी थी। दोनों भाई बहन के कोई भी कमी न होवे देली।

बिहार सेवा आयोग से नियुक्ति निकलल, जेकरा में कविता और गुंजन दोनों फॉर्म भरलन। कविता और गुंजन दोनों मिल के प्रतियोगिता के तैयारी जम के कैलन। परीक्षा भेल, कुछ दिन के बाद परीक्षा के परिणाम आयल, दोनों के सफलता मिलल। कविता इंटरव्यू भेल, इंटरव्यू में भारी सफलता मिलल और प्रखंड विकास पदाधिकारी के पद पर नियुक्ति भेल। गुंजन भी प्रखंड विकास पदाधिकारी के पद पर नियुक्ति भेल। कविता और गुंजन खुशी के ठिकाना न रह, कविता और गुंजन दोनों एक दूसरे के पूरक हत, दोनों में अटूट संबंध हो गया, लेकिन दोनों के माए बाप के पता न है। दोनों अलग अलग प्रखंड में नियुक्ति हो गेलन। कविता के गांव में शोर मचल है, करीमन काका के बेटी कविता प्रखंड विकास पदाधिकारी हो गेल, ई गांव के शान शौकत बढ़ा दे। बेचारे करीबन काका बड़का बेटी

0: और प्रखंड विकास पदाधिकारी के पद पर नियुक्ति भेल। गुंजन भी प्रखंड विकास पदाधिकारी के पद पर नियुक्ति भेल। कविता और गुंजन खुशी के ठिकाना न रह। कविता और गुंजन दोनों एक दूसरे के पूरक हत, दोनों में अटूट संबंध हो गया, लेकिन दोनों के माए बाप के पता न है। दोनों अलग अलग प्रखंड में नियुक्ति हो गेलन। कविता के गांव में शोर मचल है। करीमन काका के बेटी कविता प्रखंड विकास पदाधिकारी हो गया। ई गांव के शान शौकत बढ़ा दे। बेचारे करीमन काका बड़का बेटा के पढ़ा लिखा के नौकरी लगा दिल, लेकिन वो बेटा अपन परिवारे देखे में रह गेल। आर्थिक संकट गरीबन काका के ढेर भेल, लेकिन पढ़ाई लिखाई में पीछे न हटल। भले पढ़ाई लिखाई के चलते कुछ खेत भी हटावे पड़ल, लेकिन पीछे न हटल। गांव के ढेर लोग सोचे लगलन कि बेटा रहे या बेटी, सबके पढ़ावे के जरूरत है, सभे में प्रतिष्ठा है। आज इनकर बेटी प्रखंड विकास पदाधिकारी बन के दिखा दिल कि बेटी में भी प्रतिभा है। समूचे गांव के आंख खोल दिल।
1: करीमन काका के बेटी ई कहानी के कहानीकार हलखिन अनुपम आनंद, हिनका दही धन्यवाद। आ सुनिहार सब, कल्हे 21 जून के विश्व संगीत दिवस मनवल जा है। एकरा जे है पहिल बेर 1982 में फ्रांस में एकर शुरुआत होले हल। एखने कुल 110 गो देश में एकरा मनावल जा है। आ ई दिवस के जे उद्देश्य है वो है कि अलग अलग तरीका से लोगन के अपन स्थानीय पारंपरिक संगीत के जानकारी रहे, शास्त्रीय संगीत से परिचित होथिन, जागरूक होथिन, आ जिनका मने मन लगा है गावे बजावे में उनका अपना इस करला से भी संतुष्टि मिले है। कहबो करे है कि संगीत से ईश्वर के प्राप्ति होवे है। अभी हमनी सब अपन कार्यक्रम में भी लोक संगीत बजबहिए, ओकर बाद सुगम संगीत बजेलों, सिनेमा गीत बजेलों, तो संगीत के जो संबंध है वो हर व्यक्ति से कोनन कोनो रूप में जुड़ल रहे है। लोग संगीत के हृदय मन के शांत अवस्था के ठीक रखे लेल भी सुना हथिन, मनोरंजन लेल भी सुना हथिन। तो संगीत के माध्यम से हर समाज के संस्कृति के मजबूती मिले है, विकास होबे है, फैलाव होबे है संस्कृति के। संगीत के प्रचार प्रसार लेल विशेषज्ञ आ नया कलाकार के इकट्ठा करके एक मंच पर लाना भी ई दिवस के उद्देश्य है। संगीत प्रेमी, संगीतकार आ जे बजबे हथिन रंग बिरंग के बाजा, हुनका प्रति सम्मान बढ़ाना ई दिवस के सार्थकता के साबित करे में मददगार होवे है। तो उम्मीद करिए कि हमने अपने सब भी फिर गाना बजाना सुनबे आ जब बैठबे गांव के चौपाल पर या पीपर गाछ तर त गाना बजाना करबे भी। तो ई गीत हमने सुनिए पूर्वी, एक बेर कलाकार फिर से हथिन अखौड़ी नागेंद्र नारायण सिन्हा।

अभी अपने सुनलखिन ई पूर्वी कलाकार अखौड़ी नागेंद्र नारायण सिन्हा से हिनका दही आय के लोकगीत लेल धन्यवाद। आ अब जे समय हो गलन है कि समसामयिक के मने अखने आजकल की चल रहले हैं, कल्हे है योगा दिवस, तो हमनी के पटना में गुरु गोविंद सिंह सदर अस्पताल में होम्योपैथिक चिकित्सा सत्यापन इकाई के तरफ से कल्हे के दिन योग से संबंधित एगो कार्यक्रम होले, जेकरा में योग अपनाथिन स्वास्थ्य बढ़ाथिन इस संकल्प के लेके रन फॉर योगा के आयोजन करल गेले, माने योगा के बढ़ावे के संदेश लेके लोग वे दौड़लखिन ताकि दोसर लोग भी एकरा से प्रेरणा प्राप्त करथिन। आ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले डॉक्टर जितेंद्र सिंह एगो पुस्तिका जारी करलखिन हैं, इमें बतावल गेले हैं कि योग से मधुमेह के खतरा 40% तक घट जाए। आ एकर बाद चूंकि हमनी के संगीत से संबंधित जे बातचीत है ओकरा पर भी ध्यान देवे के चाहिए, तो एकदम अपन जे आकाशवाणी हन मने जहाँ से हमनी सब अपने से जुड़ल रहे हिए, आकाशवाणी के जे गेट है ओकर ठीक सामने में है भारतीय नृत्य कला मंदिर, तो ये पटना के एगो बहुत महत्तम कार्यक्रम के संस्थान है, तो एकरा में कला संस्कृति विभाग जे है विश्व संगीत दिवस पर मने कल है सांझ 6 बजे शास्त्रीय संगीत, सुगम संगीत आ लोकगीत आ वादन के प्रस्तुति के आयोजन करलखिन हैं विशिष्ट अतिथि के रूप में कला संस्कृति विभाग के।

माननीय मन्त्री रहथिन श्री प्रणव कुमार सचिव आ श्रीमती रूबी रहथिन त अब हमनी के समय ओरिया रहलन है एकरे साथ विदा दथिन फेर मिलवन प्रणाम।

अभी आप सुन रहे थे मघी कार्यक्रम मागधी, ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज पर। श्रोताओं, आइए आपको इस सभा में आगे प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी दे दें।

6:05 पर आप सुनेंगे भोजपुरी बुलेटिन। छह बजकर दस मिनट पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत। छह बजकर तीस मिनट पर आप सुनेंगे ग्रामीण कार्यक्रम चौपाल। इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे चर्चा विश्व रिफ्यूजी दिवस, सुनेंगे भेंटवार्ता, योग और आसन के। साथ ही सुनेंगे पारंपरिक लोकगीत। सात बजे का वक्त होगा किसान भाइयों के कार्यक्रम खेती गृहस्थी का। इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे चर्चा मक्का में कीट एवं नियंत्रण, सुनेंगे लोकगीत, कलाकार होंगे राम विनय शर्मा कमल। सात बजकर बावन मिनट पर आप सुनेंगे सामयिक चर्चा। इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे बिहार के तीन हस्तशिल्प उत्पादों को जीआई टैग मिलने के विषय पर विशेष चर्चा। आठ बजकर दस मिनट पर आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान। आठ बजकर तीस मिनट पर आप सुनेंगे सुगम संगीत। इस कार्यक्रम में आप सुन सकेंगे गीत, कलाकार होंगे अनूप कुमार। नौ बजकर तीस मिनट पर आप सुनेंगे राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका पर आधारित कार्यक्रम चित्र भारती। इस कार्यक्रम को हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित करेंगे। रात्रि 10 बजे आप सुनेंगे संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे ठुमरी और दादरा गायन। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया जाएगा। ये इंदौर आकाशवाणी की प्रस्तुति होगी। ग्यारह बजे आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। श्रोताओं, ये थी इस सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा।

0: श्रोताओं, अब वक्त हो चला है अगले कार्यक्रम का। आइए सुनते हैं भोजपुरी बुलेटिन।
1: क्लब में दिखती थी और वो बहुत ही अमेजिंग डांसर थी और उस समय
2: प्रणाम। ई आकाशवाणी के पटना केंद्र है। अब रहुआ सूर्य प्रकाश उपाध्याय ले भोजपुरी में समाचार सुनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पीएम किसान सम्मान निधि योजना के 23वीं किस्त के जारी राशि जारी कैले। श्री मोदी पश्चिम बंगाल के हुगली में आयोजित कार्यक्रम ले 9,44,00,000 किसानन के बैंक खाता में 18,880 करोड़ रुपया से बेसी के राशि डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर कैले। बिहार के 73,00,000 से बेसी किसानन के बैंक खाता में योजना के राशि ट्रांसफर कैल गेल। यही अवसर पर पटना के बामेती सभागार में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी समेत कई गो गणमान्य लोग उपस्थित रहले। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA काल होखे वाला नीट UG पुनर्परीक्षा से पहले आज देश भर में मॉकड्रिल के आयोजन कर रहा बिया। परीक्षा से पहले मानक तैयारी के निरीक्षण खातिर अभ्यास कैल जा रहा बा। यही बीच पटना में बापू परीक्षा भवन समेत राज्य के प्रमुख केंद्रन पर परीक्षा के आयोजन के पूर्वाभ्यास कैल जा रहा बा। एकरा के लेके यातायात व्यवस्था में भी बदलाव कैल गेल बा। नीट पुनर्परीक्षा खातिर राज्य के 34 जिला में 331 केंद्र बनावल गेल बाड़े। परीक्षा में 1,56,000 से ज्यादा परीक्षार्थी लोग के शामिल होके के संभावना बा। परीक्षा के दिक्कत बेली रोड पर मेट्रो काम आज से प्रस्तावित ट्रैफिक ट्रायल भी फिलहाल स्थगित कर दिया गेल बा। इन्हें राज्य सरकार कदाचार मुक्त माहौल में परीक्षा संपन्न करावे खातिर सुरक्षा के कड़ा इंतजाम कैले बिया। इन्हें परीक्षार्थी लोग के सुविधा खातिर राज्य सरकार के ओर से परिवहन विभाग विशेष बस चलाई। साथ ही रेलवे की ओर से भी नीट परीक्षा के परीक्षार्थी लोग खातिर विशेष ट्रेन चलावल जाई। मुख्यमंत्री चौधरी आज भरत तिवारी के मौत मामला के जांच के निर्देश देले बाड़न। भोजपुर जिला के शाहपुर थाना क्षेत्र के बिलौटी गांव में 17 जून के भयल पुलिस मुठभेड़ के स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच खातिर उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश से न्यायिक जांच करावे के फैसला लिहल गेल। न्यायिक जांच के मकसद घटना के सब पहलुओं के निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ जांच पक्का कैल बा। काल 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौका पर देश भर में कईन गो कार्यक्रम के आयोजन कैल जाई। एकरा के लेके तैयारी के अंतिम रूप दिहल जा रहा बा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू काल मध्य प्रदेश के जबलपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई हैं। ओहिजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता में आयोजित मुख्य समारोह में शामिल होकर के नेतृत्व करी हैं। इस साल के योग दिवस के थीम बा स्वस्थ वृद्धावस्था खातिर योग। राजधानी पटना समेत प्रदेश के अलग अलग हिस्सन में भी योग शिविर आयोग जागरूकता कार्यक्रम के आयोजन कैल जाये। पटना के पाटलिपुत्र खेल परिसर में आयोजित मुख्य समारोह में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी समेत राज्य मंत्रिमंडल के कई अन्य सदस्य शामिल हुई हैं। ओहिजा प्रदेश के सब सरकारी और निजी स्कूलन में भी योगाभ्यास सत्र के आयोजन कैल जाये। जनता दल यूनाइटेड के राज्य परिषद और राष्ट्रीय परिषद के बैठक काल पटना में आयोजित कैल जाये। जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा बतौलन की जदयू अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में पार्टी के आगामी रणनीति पर चर्चा कैल जाये। वहां के बतौनी की बैठक में मंत्री सब सांसद विधायक और MLC मौजूद रही हैं। राजधानी पटना समेत राज्य के दक्षिण पश्चिम हिस्सा में भीषण गर्मी के दौर जारी बा। मौसम विभाग अगले 24 घंटा के दौरान भभुआ भोजपुर बक्सर जिला में लू चले के आशंका के लेके येलो अलर्ट जारी कैले बा। विभाग के रिपोर्ट के मुताबिक पिछला 24 घंटा के दौरान कैमूर के भभुआ राज्य के सबसे गर्म जगह रहल, जहां के अधिकतम तापमान 42.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज कल गेल। एने विभाग अपन पूर्वानुमान में कहले बा कि आज राज्य के उत्तरी या दक्षिण पूर्वी हिस्सा में कुछ जगह पर तेजी आंधी के साथ पानी बरस सकेला। राज्य सरकार क्रिकेटर मुकेश कुमार आकाशदीप के पुलिस उपाधीक्षक यानी DSP पद पर बहाली खातिर अनुशंसा के लिए बिया। उत्कृष्ट खिलाड़ी सीधे नियुक्ति नियमावली 2026 के तहत यह अनुशंसा कल गिल बा। गोपालगंज के रहे वाला मुकेश कुमार और रोहतास के आकाशदीप तेज गेंदबाजन बाड़न। वहां लोग कईन गो खास मैचन में भारतीय टीम के प्रतिनिधित्व कैले बानी। गृह विभाग से मिलल जानकारी के मुताबिक नियुक्ति के तारीख से अगला 5 साल तक दोनों खिलाड़ी लोग के सक्रिय रूप से खेल प्रतियोगिता में भाग लेहल जरूरी हुई।

बिहार लोक सेवा आयोग ने 17वीं संयुक्त परीक्षा के परिणाम आज जारी कल गई बा। आयोग के अध्यक्ष रवि मनुभाई परमार ने आज परिणाम परीक्षा जारी कैले। हजार नियुक्ति के वर्ष 2024 में परीक्षा का आयोजन किया गया था। औरंगाबाद जिला के रफीगंज थाना क्षेत्र में रफीगंज गो मुख्य मार्ग पर पिकअप वैन ऑटो रिक्शा के टक्कर में 2 लोगों के मौत हो गई, जबकि 2 गो और लोग घायल बड़न। भोजपुरी अंचल के अत्यंत प्राचीन लोक कला पीढ़िया पेंटिंग के भारत सरकार से भौगोलिक संकेत GI टैग मिलल एगो बड़ उपलब्धि मानल जा रहा बा। खाली भोजपुरी के एगो कला शैली नहीं बल्कि भोजपुरी अस्मिता लोक परंपरा आ भोजपुरी विकास के बड़ समान हा। एक साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित भोजपुरी समाचार के ई अंक एजा समाप्त भेल।

अभी आप सुन रहे थे भोजपुरी बुलेटिन। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं आइए सुनते हैं फिल्म संगीत। इस कार्यक्रम में सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं कुमार सानू की आवाज़ में प्यार तो होना ही था फिल्म का ये गीत। विनोद महेंद्र की लिखी इस रचना को तर्ज दिया है जतिन ललित ने। तुमसे बात

0: शेखर, क्या तुमने कभी किसी से प्यार किया है?
1: हाँ, है एक लड़की बिल्कुल तुम्हारे जैसी, बहुत सुंदर, बहुत भोली और थोड़ी पागल भी, लेकिन मेरे प्यार की खबर सिर्फ मेरे दिल को है।
0: उसे बताया क्यों नहीं?
1: ये प्यार भी अजीब चीज है संजना, जहां इकरार की पूरी उम्मीद हो वहां भी दिल कहने से डरता है, और मुझे तो इनकार का पूरा यकीन है। अब तुम ही कहो, उसे कैसे बताऊं? वो किसी और को चाहती है।

श्रोताओं, लता मंगेशकर और कुमार सानू की आवाज़ में आइए सुनते हैं दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे फिल्म का ये गीत। शब्द है आनंद बख्शी के और संगीत जतिन ललित का।

0: गाइस गीत के साथ ही फिल्म संगीत समाप्त होता है। यह आकाशवाणी का पटना केंद्र है। आइए सुनते हैं संस्कृत समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: इयम आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। आदौ मुख्य वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी राष्ट्रपतिना द्रौपदी मुर्मू इत्यनया सह ओडिशा राज्ये 6,47,000 करोड़ रूप्यकाणां परियोजनानां उद्घाटनम् अकरोत्। सर्वकारः सार्वजनिक हिताय 16 निश्चित मात्रा औषध संयोजनानां निर्माणं विक्रयणं वितरणं च निषेधितवान्। श्वः निर्धारितायाः नीट यूजी इति पुनः परीक्षायाः प्राक् एनटीए इत्यनेन राष्ट्रव्यापी मॉक ड्रिल इत्याभ्यासः आयोज्यते। ऋतुविज्ञान विभागेन श्वः पर्यन्तम् उपहिमालयीय पश्चिम बंगस्य सिक्किमस्य च पृथक् पृथक् स्थानेषु अत्यधिक वृष्ट्यै रेड अलर्ट इति रक्तवर्णीया संचेतना प्रदत्ता अस्ति। अपि च फीफा विश्व कप इति क्रीडायां ब्राजील देशः हैती देशं 3-0 पराजय्य प्रथमवारं विजयम् अलभत। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना अद्य ओडिशा राज्यस्य प्रगतेः प्रशंसा कृता, यत्र मुख्यमन्त्रिणः मोहन चरणमाझिनः नेतृत्वे राज्येन वर्षद्वयं पूरितम्। सः अवदत् यत् एतत् राज्यं द्रुतगत्या विकासस्य मार्गे अग्रे गच्छति तथा च पूर्वी भारतस्य विकासाय महत्वपूर्णं योगदानं प्रददाति। मयूरभंज जनपदस्य रायरंगपुरे जनसमूहं संबोधयता प्रधानमन्त्रिणा राष्ट्रपतेः जन्मदिनस्य शुभाशयाः प्रदत्ताः। तस्याः पैतृक ग्रामे पहाड़पुरे आगमनं सौभाग्यम् अस्तीति उक्तवान्। सः अघोषयत् यत् पहाड़पुरं सूर्यग्रामरूपेण अथवा सौरग्रामरूपेण विकसितः भविष्यति, यत्र पुनर्नवीकरणीय ऊर्जा आधारित संरचनाः आधुनिक सार्वजनिक सेवाः च भविष्यन्ति। प्रधानमंत्री बहुविध क्षेत्रेषु प्रायः 47,000 करोड़ रूप्यकाणां विकास परियोजनानां उद्घाटनं शिलान्यासं च कृतवान्। सः अवदत् यत् केन्द्रस्य पूर्वोदय दर्शनस्य उद्देश्यं पूर्वी भारतस्य द्रुतगत्या विकासस्य माध्यमेन भारतस्य विकासं प्रवर्तनीयमिति।
2: साथियों, हमारी सरकार ओडिशा के संसाधनों को ओडिशा की संभावनाओं में बदल रही है। ओडिशा में बड़ा निवेश आए, यहाँ नए उद्योग लगे, इसके लिए उत्कर्ष ओडिशा जैसे अभियान चलाए जा रहे हैं। इसके तहत अब तक करीब 20,00,000 करोड़ रूपये के निवेश प्रस्ताव मिल चुके हैं। 3,50,000 करोड़ रूपये से ज्यादा की अनेक मेगा परियोजनाओं पर भी काम चल रहा है।
1: राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मू इत्येषा प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः नेतृत्वस्य प्रशंसाम् अकरोत्। सः स्वस्य दूरदर्शी शासनस्य विश्वनेतृभिः सह रचनात्मक सहभागित्वस्य च माध्यमेन वैश्विकमञ्चे भारतस्य प्रतिष्ठां प्रभावं च महत्वपूर्णरूपेण वर्धितवान् इति उक्तवती। एकां जनसभां सम्बोधयन्ती राष्ट्रपतिवर्या अवदत् यत् प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः नेतृत्वे भारतं निरन्तरं शान्तेः संवादस्य सहकारस्य च स्वररूपेण उद्भूतमस्ति। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना श्वः कोलकाता नगरे स्वदेशीरूपेण निर्मित त्रयाणां भारतीय नौसेनायाः मञ्चीभूतानां INS दुनागिरि, INS संशोधक, INS अग्रय इत्येतेषां समायोजनं करिष्यति। सर्वकारेण तक्षण प्रभावेण समानोपयोगाय 16 निश्चित मात्रा संयोजन औषधानां निर्माणं विक्रयणं वितरणं च प्रसिद्धम्। उपक्रमोऽयं सर्वोच्च न्यायालयेन निर्देशिते औषध तांत्रिक परामर्श मण्डलेन स्थापितया विशेषज्ञ समित्या समीक्षायाः अनन्तरम् अभवत्, यस्मिन् ज्ञातं यत् औषध संयोजनानां चिकित्सात्मक समर्थनस्य अभावः अस्ति, अथ स्वास्थ्य संकटानि भवितुमर्हन्ति इति। प्रतिबन्धितेषु उत्पादकेषु कतिपयानि त्वक् रोग निवारकानि, वेदना निवारकानि, एंटीस्पास्मोडिक एंटीबायोटिक आधारितानि च औषधानि सन्ति। श्वः भविष्यमाणायाः नीट यूजी

ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, आइए सुनते हैं किसान भाइयों का ग्रामीण कार्यक्रम चौपाल और खेती गृहस्थी।

0: प्रणाम उदय भैया।
1: प्रणाम निमिषा बहन। कहीं का हाल चाल? सब बढ़िया बा।
0: हाल चाल एकदम निमन है। और देखा काहे न निमन रहते, जब हमनी के देश इतना निमन से सब कुछ हमनी के व्यवस्थित है। और हमनी के देश हाल चाल के बात करिए, अपन नागरिक ला तो है ही, दूसर देश ला भी आगे रहते हैं, और दूसर देश के लोगन ला भी। काहे कि हमनी के देश हमेशा वसुधैव कुटुम्बकम के भावना के पालन करे है। और आज के दिन देखा भैया, पूरी धरती पे एगो परिवार के भावना के बल देवे वाला आज के दिवस भी है। काहे कि आज विश्व रिफ्यूजी दिवस है,
1: शरणार्थी दिवस।
0: हाँ, और ई दिवस उन लोगन के साहस, शक्ति और संकल्प के सम्मान करे है, जे युद्ध, हिंसा या उत्पीड़न के कारण अपन घर, अपन देश छोड़े के मजबूर हो गए थे। और इस दिवस के प्रस्ताव के बात करें भैया, तो इस दिवस के प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2000 में देवल गए। और इस दिवस के पहलका बार 20 जून 2001 में मनावल गए।
1: निमिषा बहन, अभी पूरा विश्व के अंदर लगभग 11 करोड़ लोग
0: हाँ
1: विस्थापन के दंश से झेल रहल बड़ा।
0: हाँ, एक तो हाँ।
1: जो जहाँ रहल है वहाँ से वो विस्थापित हो गए बड़ा, दूसरा जगह रह रहल बाल ऐसा लोग। विस्थापन में कई तरह के कारण होला, कई बार प्राकृतिक आपदा भी
0: हाँ।
1: होला, कई बार ऐसा होला कि कोनो जाति, धर्म, राष्ट्रीयता, कोनो विशेष सामाजिक समूह से संबद्धता या राजनीतिक मत, जैसे कहो ना कि फलना दल के तो फलना दल के, तो यह तरह के जे विचार होला वो में जे असहिष्णुता पैदा हो जाला, वो से जे विस्थापन होला।
0: हाँ।
1: तो ये सब जे बा दुनिया के अंदर अभी इतना ज्यादा लोग जे बा वो अपन घर बार बार छोड़ के, आ घर बार का होला ये बतावे के आवश्यकता नहीं के, जेकर जे कहीं से घर छोड़
0: हाँ।
1: जाए, ओकर घर से दूर चल जाए, या फिर ओकरा अपन जमीन जायदाद सब छोड़ के चल जाए के पर, तो वर्सोली ओकरा खातिर दुनिया शून्य हो जाला, काहे कि वो तो वह एक दुनिया बनावे ला।
0: एकदम थोड़ा दिन हम नहीं अपन घर से बाहर निकले तो कब लगे कि कब अपन घर वापस पहुंचे।
1: हाँ, घर वापस पहुंचे है लगभग ओकरा खातिर, यदि ओकरा जीवन जिए के कुछ जे आधार बा,
0: हाँ
1: खेत बा, ओकर घर बा, ओकरा घर के अंदर
0: हाँ।
1: जो सामान बा, वो सब कुछ छोड़ के वो कहीं दूसरा जगह चल गई, तो ई वास्तव में बड़ा बुरा स्थिति हो जाला एक जीवन खातिर। ऐसे 1951 से इस बारे में बात होत रहे,
0: हाँ।
1: और तब 1951 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में तरह के प्रस्ताव आये कि तब भी कुछ लोग, ओबरे इतना बड़ संख्या ना रहे, कुछ लोग जे बा कुछ सामाजिक समूह भी विस्थापन के दंश झेलत रहे। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रस्ताव आयल कि एकरा के यह रूप में कइल जाओ कि कहीं वो बाहर भी रहस तो दूसर का देश में भी उनका सम्मानजनक जीवन जिए खातिर उनका के व्यवस्था कइल जाओ, जिनमें बहुत
0: हाँ
1: चीज रहे सम्मानजनक जीवन।
0: कहें
1: तो
0: कि एक उद्देश्य यही है कि उनका जो शरणार्थी, उनका अधिकार, सुरक्षा, उनका सामने आवे वाला चुनौती के बारे में लोगों के जागरूकता फैलावा जाए, जागरूक। और देखिए शरणार्थियों के प्रति सहानुभूति और सम्मान के भावना के बढ़ावे ला भी ई दिन के मनावल जाए, जिकरा से उनका के एक सुरक्षित और गरिमापूर्ण जीवन मिल सके। और दुनिया भर के देशन में अपन नीतियों में सुधार लावे के, जिकरा से शरणार्थी के सुरक्षित आश्रय, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसर प्रदान कर जा सके। और देखा हमनी के देश भारत अपन विश्व शरणार्थी के मानवीय

0: सहायता और अपन राष्ट्रीय सुरक्षा दोनों के बीच एगो संतुलन के भावना रखे है। भारत शरणार्थी के स्वागत करे है लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा के ख्याल रख के। ऐसे तो भारत 1991 के शरणार्थी कन्वेंशन के हस्ताक्षर करता ना है, ना ही एक अलग कोई विशिष्ट कानून हमने के देश में है, लेकिन फिर भी पड़ोसी देश के शरणार्थी के स्वागत करे है, द्विपक्षीय समाधान स्वदेशी वापसी के नीति के पालन करे है। और हमने के देश में कई ऐतिहासिक कार्य भी होलक एकरा ला, जैसे कि भारत में तिब्बती और श्रीलंका के तमिल जैसन बड़ समूह के ऐतिहासिक रूप से शरण भी देवल गल और उनका के बसावे में मदद भी कर गल। और संयुक्त
1: देखिए हमने कि यहाँ विशेष प्रस्ताव तो नहीं है, लेकिन पहले के जो हम कहनी है चर्चा भइल पहले और 2020 में तो बजाबता संयुक्त राष्ट्र महासभा प्रस्ताव पारित कर लेलस, और जे भी विश्व के देश बा वो प्रस्ताव से बंधल बा। हमनी का वह बारे में ज्यादा उदार बने, हमनी का बांग्लादेशी शरणार्थी लोग के भी हमने का वो हिसाब से शरण देनी, तिब्बती शरणार्थी लोग के भी हमने का शरण देनी, म्यांमार के भी कुछ लोग जो हमने के यहाँ रह लुकड़ा के शरण देनी, और भारत के मामले में उदार रहल बा। लेकिन हर चीज़ के एक सीमा बा, यदि हमने का शरण दे देवे के एह तरह से हमने के जो प्रवृत्ति बा वसुदेव कुटुम्बकम के जो हमने के सूत्र वाक्य है जौना पर भारत के
0: हमेशा
1: सनातन आधारित बा, जो सनातन हमने के संस्कृति बा, तो ये बात भी आवश्यक बा कि आज के दुनिया में हमने का यो देखे के पड़ी कि यह तरह के यदि प्रवृत्ति के हमने का ज़्यादा रखी तो वो हमने खातिर कहीं घाटक के तो सौदा निखे हो जात, चाहे वो कह जलन कि घर वाला घर बेघर वाला बाहर वाला घर तर
0: हाँ। लेकिन फिर भी देखा भैया हमने के देश में बहुत लोगों के शरण मिली है, और इस साल के जो हमने के विषय है विश्व शरणार्थी दिवस पे, इस साल के विषय है यूनिटिल एवरीवन इज सेफ, मतलब अंटिल एवरीवन इज सेफ, मतलब कि जब तक कोई हर कोई सुरक्षित ना हो। तो साल 2026 के ई अवसर पे ये जो विषय है बहुत खास है, क्या कि ई शरणार्थी के अधिकार के रक्षा करे वाला 1991 के जेनेवा कन्वेंशन के 75वीं वर्षगांठ के रूप में देवल गए, मतलब आज जो हमने के मनावे जा रही है 75वीं वर्षगांठ के। और इस साल के थीम हमने के याद दिलाव है कि सुरक्षा कोई देश या वर्ग के विशेषाधिकार ना है, बल्कि इस सबके बुनियादी अधिकार है। ये अभियान दुनिया भर के सब लोगों से अपील कर रहे हैं कि सब शरणार्थी के संग एकजुटता दिखाथिन, उनका के सुरक्षित रखे के और उनका पुनर्वास के सार्थक कदम उठाथिन।
1: निश्चित संकल्पना ये जरूर होके के चाहे, और संकल्पना यह रूप में होके के चाहे कि ओ में कोनो देश कोनो राष्ट्र के अपन सुरक्षा और अपन समृद्धि बहुत ज्यादा प्रभावित ना होके, यह भावना के साथ हमने का निश्चित रूप से लोगन के स्वागत करे के चाहिए। और भारत कर भी रहल बा, हमने का जे भी शरणार्थी बा लोग वहाँ के जीवन वहाँ के आश्रय दे रहल बनी, वहाँ के जीवन जिए खातिर जे आवश्यक संसाधन बा वो भी उपलब्ध करा रहल बनी, तो भावना यह बा हमने का मूल भावना के सम्मान के साथ आगे बढ़ रहल बने
0: एकदम। और देखिए इतना चीज अच्छा बातचीत हो ले, इतना बढ़िया विषय पे आज कहल ना जाए है कि बात के कभी छोट खत्म ना होवे है, तो हम आगे बढ़े ही अपने कार्यक्रम में और अपने के लोगन के सुनावे ही लोक भजन। आज के कलाकार हथिन राम विनय शर्मा कमल।

0: निमिषा बहन, अभी हम निका एक गीत सुनत रही है, कलाकार रही है राम विनय शर्मा कमल।
1: हाँ।
0: आगे भी यहाँ से गीत सुनल जी
1: जरूर।
0: अभी अपना कार्यक्रम में एगो भेंट वार्ता बा, योग और आसन के फायदे। भेंट वार्ता कर बने डॉक्टर अजीत कुमार और वहाँ से बातचीत कर रहा बने श्री श्रीनिवास है। सुने के
1: अजन का ही लेवल जाए।
2: नमस्कार। योग आसन और प्राणायाम के बारे में काफ़ी आप लोगों ने सुना होगा, लेकिन योग कौन सी क्रिया है, प्राणायाम कैसे किया जाता है, आसन कैसे लगाया जाता है, इन सब बातों की जानकारी के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर अजीत कुमार को। आप योग गुरु हैं। डॉक्टर अजीत कुमार जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि योग आसन और प्राणायाम क्या है, कौन सी क्रिया है।
3: योग एक संयुक्त शब्द है। योग का अर्थ सामान्य रूप से होता है जोड़ना। तो जब हम योग को विभक्त करते हैं तो आसन और प्राणायाम, इसके दो भाग हो गए
2: जी।
3: प्राणायाम जो प्राणों का व्यायाम है, आसन जिसे हम क्रियात्मक

0: रूप से, शारीरिक रूप से, फिजिकली हम जिस अभ्यास को करते हैं वो हमारा आसन है, और जिसे हम प्राणों की साधना करते हैं वो प्राणायाम है।
1: अब बात आती है कि योग जो है उसको करने से कौन-कौन से फायदे होते हैं।
0: शरीर सामान्यतः आज के समय में, ये जो भौतिकवादी युग है,
1: जी
0: इसमें ज़्यादातर लोगों को तनाव, जहाँ तक मूल कारण है हाई बीपी का, मूल कारण है डायबिटीज़ का, मूल कारण है हमारे सोशल और हमारे व्यवहार के तौर पर अगर देखें तो यह एंजाइटी, डिप्रेशन, सिजोफीनिया, डिमेंशिया, ये सब मेटाफिजिकल रोग है,
1: जी
0: और ये हमारे प्राणायाम से काफ़ी हद तक इसमें हम लाभ हमें मिलता है। जहाँ तक लीवर की बात है, किडनी की बात है, गॉल ब्लैडर की बात है, किडनी में स्टोन की बात है, हमारे लीवर फैटी होने की बात है, उसमें हमारे आसन बहुत फायदा करते हैं।
1: अब योग और आसन करने के लिए कौन-कौन से नियम हैं जिन्हें कि पालन करना आवश्यक होता है?
0: जी, बहुत अच्छा प्रश्न रहा आपका, क्योंकि सामान्यतः लोग इसको समझ नहीं पाते हैं। योग और प्राणायाम करने का जो सबसे उचित समय है वो प्रातः काल शौच से निवृत्त हो करके खाली पेट में करने से इसका काफ़ी लाभ मिलता है। और अगर हम वैचारिक रूप से, मानसिक रूप से अगर हम स्थिर होकर करें, कंसंट्रेट होकर करें, तो इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिलता है। लेकिन हाँ, इस बात का ध्यान रखना होगा कि इसको करने के पहले हमें पूर्ण रूप से पेट खाली होना चाहिए, कम से कम 4 से 5 घंटा पेट खाली रहे, और हमें साफ सुथरे जगह पर खुले वातावरण में करें तो इसका ज़्यादा लाभ मिलेगा।
1: और इसमें उम्र की भी कोई बात है कि किस उम्र के व्यक्ति को कब करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए?
0: जहाँ तक उम्र की बात है तो प्राणायाम तो किसी उम्र के लोग कर सकते हैं।
1: जी
0: हाँ, आसनों के लिए यह निर्धारित है, जो वरिष्ठ हैं, जिनकी उम्र 50-60 से ज़्यादा हो गई है, वो कठिन आसन नहीं करेंगे। बाकी सभी सभी आसनों को और सभी प्राणायामों को वो कर सकते हैं, उम्र की कोई सीमा नहीं है। लेकिन कठिन आसनों को, जैसे शीर्षासन है, जैसे मयूर आसन है, इन कठिन आसनों को ज़्यादा उम्र के लोग न करें, ये मेरा सुझाव है।
1: और एक और बात यह है कि जब महिलाएं आसन करें, योग करें, तो कौन-कौन सी बातें अपने जेहन में रखें, कौन सी बातें ध्यान में रखें, यदि गर्भावस्था है तो करें या नहीं करें?
0: महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए प्राणायाम, आसन, योग में कोई बहुत अधिक विभाजन नहीं है। लेकिन हाँ, माता और बहनें जो है ना, जब पीरियड के समय रहें उस समय कोई आसन न करें, कपालभाति न करें। सामान्य तौर पर श्वासों की जो छोटे छोटे अभ्यास हैं, जैसे भस्त्रिका है, अनुलोम विलोम, ये तो कर सकते हैं,
1: जी
0: लेकिन पीरियड के समय कपालभाति या कोई आसन न करें, ये महिलाओं के लिए विशेष निर्देशित रहता है। विशेष तौर पर जब माताएं गर्भवती होती हैं उस समय मंजरी आसन और गर्भ विकास के जो आसन हैं वो अवश्य करें। बाकी अन्य किसी कठिन आसनों को या कपालभाति को कदापि न करें।
1: जी अब बात यह आती है कि विभिन्न रोगों के लिए कौन-कौन से आसन उपयुक्त होते हैं। जैसे कि आपने बताया कि उच्च रक्तचाप जो है, ब्लड प्रेशर जो हाई ब्लड प्रेशर है, उसके लिए भी कुछ आसन योग हैं, तो ये कौन-कौन से हैं और कब करना चाहिए?
0: अभी तो भारत में उच्च रक्तचाप काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। बच्चों में यह पहले बड़ों में देखा जाता था, बच्चों में भी यह देखा जाने लगा है। तो उच्च रक्तचाप के लिए हमें अनुलोम विलोम कम से कम 10 से 15 मिनट, भस्त्रिका कम से कम 5 मिनट, प्राणायाम में और भ्रामरी, उद्गीत और प्रणव, ये तीन अभ्यास जरूर करें। कम से कम 5 5 बार भ्रामरी, 5 बार उद्गीत, 5 बार प्रणव जरूर करें, और साथ में 5 मिनट भ्रस्तिका और 10 मिनट अनुलोम विलोम करने से हमें उच्च रक्तचाप में काफ़ी लाभ मिलता है। जहाँ तक आसनों की बात है तो आसनों में बहुत सरल आसन, जैसे कंधों का सूक्ष्म व्यायाम, कलाई का सूक्ष्म व्यायाम, उंगली

0: का सूक्ष्म व्यायाम, और साथ में आसन की बात मैं करूं तो मरकटासन और विशेष तौर पर शलभासन, ये अगर करें तो हमें बहुत लाभ मिलता है उच्च रक्तचाप में।
1: ये उच्च रक्तचाप जो है इसका एक आज के समय में सहचर भी हो गया है, साथ चलने वाला रोग भी है जिसे कि डायबिटीज, मधुमेह या शुगर कहते हैं। तो इसमें भी कुछ यौगिक क्रियाएं और आसन आवश्यक होंगे, वे कौन से हो सकते हैं?
0: मधुमेह की जहाँ तक बात है, भारत तो अब लोग ऐसा कहने लगे हैं कि भारत राजधानी बन गई है मधुमेह की, और वैसे मधुमेह मेटाबॉलिक प्रॉब्लम है, चयापचय का रोग है,
1: जी
0: लेकिन हमें केवल थोड़ी और दूरदर्शिता के कारण यह रोग पूरी तरह से पांव पसार रहा है। मधुमेह अगर हम चाहें तो अपने आहार की चर्या को नियंत्रित करके, कुछ आसन व्यायाम और प्राणायाम करके कुछ हद तक, काफी हद तक हम इसे रोक सकते हैं।

0: यह रोग पूरी तरह से पांव पसार रहा है। मधुमेह अगर हम चाहें तो अपने आहार की चर्या को नियंत्रित करके, कुछ आसन व्यायाम और प्राणायाम करके कुछ हद तक, काफी हद तक हम इसे रोक सकते हैं। जैसे हम कपालभाति और मंडूकासन, ये बहुत महत्वपूर्ण आसन है। मंडूकासन में अगर जाकर हम कपालभाति करें, अगर हम पवन मुक्त आसन में जाकर कपालभाति करें, और अगर गोमुख आसन करते हुए कपालभाति करें, साथ में अगर हम पवन मुक्त आसन, गोमुख आसन, शलभासन, विशेष तौर पर इन आसनों में कपालभाति करें, मंडूकासन में करें, और आहारचर्या हमारी जरूर शुद्ध होनी चाहिए। हमें क्या खाना और क्या नहीं खाना है, जो नहीं खाना है उसे बिल्कुल नहीं लेना है, इस बात का अगर ध्यान रखें तो काफी हद तक हम मधुमेह को नियंत्रित कर सकते हैं और अंततः मुक्ति भी पा सकते हैं।
1: जी, इसके अलावा भी कुछ और बातें होती हैं, जैसे कि हम कैसे फिट रहें, कैसे ठीक रहें। हम कोई रोग से ग्रसित नहीं हैं, स्वस्थ हैं, लेकिन रोग हमें आगे चल कर के नहीं जकड़े, रोग हमें नहीं हो, इसके लिए कैसी दिनचर्या होनी चाहिए, कैसे योग और आसन प्राणायाम होने चाहिए?
0: जी, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। योग और आसन व्यायाम प्राणायाम के बारे में लोग बोलते हैं कि अगर आप बीमार हैं
1: जी
0: तो इससे बीमारी में लाभ मिलेगा, और नहीं है तो करने से आप सदा फिट रहेंगे। फिट रहने के लिए आप अपने 24 घंटे में से केवल 20 मिनट से आधा घंटे के बीच का समय आप दें। नियमित रूप से सुबह उठें, शौच जाएं, निवृत्त होकर आएं, 5 मिनट भस्त्रिका करें, कम से कम 10 मिनट कपालभाति, 10 मिनट अनुलोम विलोम और सूर्य नमस्कार। जी हाँ, सूर्य नमस्कार कम से कम 10 बार करें, और कुछ सूक्ष्म जैसे कंधों के, कलाई के आसन, और अगर हम पवन मुक्त आसन करें, गोमुख आसन करें, शलभासन करें, ये छोटे छोटे आसन 20 से 25 मिनट में ये पूर्ण हो जाते हैं, अगर हम करें तो निश्चित तौर पर व्यक्ति हमेशा स्वस्थ और अपने को ऊर्जावान महसूस करेगा।
1: एक और बात है कि लोग टीवी देख करके, मोबाइल देख करके भी आसन करने लगते हैं, तो क्या इससे नुकसान भी हो सकता है क्या?
0: आसन प्राणायाम से तो कोई नुकसान नहीं हो सकता है, लेकिन जहाँ तक आसन की बात है तो निश्चित तौर पर किसी वैसे योगा ट्रेनर के माध्यम से अगर हम आसन करें तो हमारे ज़्यादा लाभ होगा और नुकसान कम होगा, क्योंकि कुछ ऐसे आसन हैं जो बिना किसी इंस्ट्रक्टर के अगर करें तो नुकसान होगा, लेकिन प्राणायाम हम टीवी देखकर करें उसे कोई नुकसान नहीं होगा।
1: डॉक्टर अजीत कुमार जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
2: हाँ, तो अभी हमने सब सुन रही है भेंट वार्ता। भेंट वार्ता के विषय है योग और आसन के फायदे। भेंट वार्ता कर रहे थे डॉक्टर अजीत कुमार, और इनका से बातचीत कर रहे थे भेंट करता रहे श्रीनिवास सहाय। तो दोनों जन के बहुते बहुते धन्यवाद। और भैया, जब इतना निमन जानकारी भेंट तक कहने को निमन से गीत
1: हाँ हाँ
2: सुना
1: सुने
2: जाए,
1: के
2: ई पूर्वी गीत राम विनय शर्मा कमल के आवाज में।
1: सुने के।

0: ओते नीमन गीत
1: बढ़िया लगल नो।
0: बहुत राम विनय शर्मा कमल के आवाज में रहा।
1: निमिषा बहन, आज का पीढ़ी का पता ना होई जे गौना शादी होखे, फिर ओकरा बाद गौना होखे, गौना का होखे। आज के पीढ़ी तो ब्याह कैलस बहुत ज्यादा उम्र में, चाहे ओह बेरा के समय के हिसाब से हम कहते नहीं कि आज के समय में एक जरा प्रौढ़ता के बाद शादी ही होला। पहले लड़काई में ब्याह हो जाए
0: हाँ।
1: और ओकरा बाद जे है से
0: विरह के बात रहे कि कब मिलन हो कब हम
1: अंग्रेजी में बोले हाँ। सेकंड मैरिज कह देला, लेकिन एक तरह के भाव रहे कि हाँ। उतना दिन लोग जेबा ब्याह करके फिर जेबा
0: एक दूसरे के इंतजार रहे
1: तो इंतजार के दर्द तो कोनो इंतजार के दर्द जेबा तो दर्द थोड़ा झलकी। और शर्मा जी के स्वर में वो और भी बढ़िया लगल है। कल निमिषा बहन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस
0: हाँ।
1: और माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रयास से 21 जून के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित कैल गेल। यहाँ का ये प्रस्ताव वर्ष 2014 के सितंबर महीना में संयुक्त राष्ट्र महासभा में रखने की योग के एकरा के दिवस घोषित हाँ। कर जाओ, एगो दिन घोषित होके जौना दिन हमनी का योग मनाई। पहले ही हमनी के यहाँ भारतवर्ष में योग के हमनी के
0: हाँ,
1: प्रिवेंटिव रहे, एगो जेकरा के कह जाला कि पहले ही से ओकरा के रोके खातिर कोनो बीमारी के, योग के माध्यम से हमनी का बहुत सारा बीमारी के रोके के क्षमता अपन विकसित करी, शारीरिक श्रम के और सारे योग केंद्रित
0: ऋषि मुनि कितने लोग हमने के योग से ही कितना 100-100 साल से ज्यादा उम्र तक जीवित रहल थीन। और योग हमने के प्राचीन काल से ही चल रहा है, जगह तपस्या कहे या चाहे कोई
1: कहा जाला कि जौना काम में मन केंद्रित हो जाए वो ज्यादा बढ़िया हो जाला। जैसे योग में ये बा कि शारीरिक जे राउड श्रम बा, जे रुआ

0: व्यायाम करतनी, ओकरा के सीधा तौर पर मन से जोड़ लेवे के,
1: एकदम
0: और मन से जोड़ के ओकरा के जे माने मानस से जुड़ल जे व्यायाम होखे,
1: हाँ,
0: तो उ जे बा धीरे धीरे योग में परिवर्तित परिवर्तित हो जाला। और आज दुनिया के अंदर लगभग 180 गो देश में 21 जून के
1: योग दिवस,
0: हाँ योग दिवस मनाओ जला।
1: हमनी के शारीरिक रहे या मानसिक रहे, मन के रहे स्वास्थ्य के बाद या शरीर के मन के, तो ये योग जो है दोनों तरह से फायदा करे है
0: निश्चित। और कहे के चाहे कि निवारक स्वास्थ्य के रूप में योग जे बा वैकल्पिक एक विकल्प के रूप में उभर रहल बा,
1: तो आवश्यकता
0: बा कि काल के दिन हमनी के जरूर जे भी हमनी के श्रोता लोग सुने वाला बानी वहाँ सभे के निवेदन करे। दिन तो कोनो ऐसा ना होला, लेकिन दिन के मतलब कुछ
1: जैसे देखना
0: दिन के मतलब होला कि हमने का वह दिन से जैसे कुछ बात भुला जाए तो वह दिन से याद करी ले, तो उकड़ा बाद उकड़ा के निरंतरता में याद करी। और योग के अपना ही समय हमनी के कार्यक्रम के संपन्न हो गई बा, थोड़ा देर के बाद खेती गृहस्थी के बातचीत के लिए।
2: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।
1: हाँ तो देव भैया, देखिए हमने के जो देश है तो हम जानवे करें कि कृषि प्रधान देश है, और हम ही के देश में हर घड़ी कोई ना कोई फसल के लगते रहे खेत में, और चाहे मुख्य फसल में हमने के धान और गेहूँ है, लेकिन बीच बीच में कई तरह के फसल भी लगे हैं जैसे कि मक्का। तो मक्का जो होवे है एकरा के हमने के सबसे प्रमुख और व्यापक रूप से उगाए जाए वाला अनाज के फसलों में से एक है। एकरा के अनाज के रानी भी कहा जाए। ई तो ऐसे खास करके खरीफ के फसल कहलावे है, लेकिन ई हमनी के बरसात में भी लगे हैं और रबी में भी लगे हैं और खरीफ में भी। तो ई एक फसल के जब हमनी करे ही तो हमनी के जो मांग है बाजार में खूब है। एकरा के कई तरह के हमनी के बने भी है सामान, जैसे मक्का के अपने आजकल कॉर्नफ्लेक्स रहे है, कई तरह के सामान हमनी के हमने उत्पाद हमनी के बाजार में मिल रहा है। तो एक मांग जितना है उतने हमने अगर फसल कर जाए, हमनी के खेती कर जाए, तो ये बहुत फायदेमंद है। और जब खेती हो तो देखा कई तरह के हमनी के ऐसा रोग व्याधि लगे है, कीटाणु भी लगे है, जेकरा से फसल में नुकसान भी हो जाए। तो कई तरह के हमनी के मक्का के में कीट लगे है, जैसे कि फॉल आर्मी बार में, तना छेदक, पत्ती लपेटक और दीमक, इस तरह के कीट है जो मक्के के खेती में ला नुकसानदायक है। एक शुरुआती चरण में अगर पहचान कर ले बजाय तो हमने जैविक या रासायनिक नियंत्रण से इस फसल के एक बचा सके है एक कीट से। अब फॉल आर्मी बार में की बात करी तो ई मक्का के सबसे खतरनाक कीट मानल जाए। एक सूढ़ी जो वह है पत्ता के खा के छलनी कर दे है, और पौधन के बीच के हिस्सा जगह के भोंगे भी कहा जाए ओकरा के नुकसान पहुंचावे है। एक नियंत्रण ला बुआई घड़ी बीच में के इमामेक्टिन वेंजो 8 या थायोमेथोक्सम के से उपचारित कर लेवे चाहिए। अब प्रकोप दिखे पे स्पिनोसाइड या इमेमेक्टिन वेंजोएट से छिड़काव करे के चाहिए।
0: ये बात सही बा कि ये फॉल आर्मी वर्म, आर्मी लागल बा तब बुझ जाए जो क्वेश्चन हो,
1: हाँ।
0: सब एकदम समूह में जा करके मकई का पौधा पर हमला कर लो,
1: हमला कर दे।
0: और मकई जेबा हमने किए अब तो तनी जेबा मकई ज़्यादा मैंने थोड़ा सा होकर बिहार में थोड़ा खेती थोड़ा सा ये भइल बा, लेकिन पहले हमने कि हाँ मकई बड़ पैमाना पर होके और आज भी लगातार जे बा मकई के मांग बा, और यह मांग से हमनी का यदि प्रेरित होके खेती बढ़ाई तो हमनी का ज़्यादा फायदा में रह सकीले। थोड़ा सा ध्यान देवे के बाद जैसे ये सब जे सामान्य जे कीट के बाद तना छेदक वगैरह ये सब पर नियंत्रण हमनी का करी। एक और कीट जो है हमनी के कटुआ कीट, यो मकई में बहुत लागेला, ओकरा पत्ता पर जो है से बैठ जाला, काला भूरा रंग के होला, आ ई जे बा धीरे धीरे जे बा जमीन का दरार में छिप

0: रहेला आ पौधा के काट देवेला
1: अच्छा
0: जमीन के भीतरे से।
1: ओ
0: तो ई सब जे बा यदि मकई के खेती करत तनी तो ई सब पर ध्यान यदि दिया तो हमनी का बेहतर। और अब मकई से हमनी का यदि ओकरा से जुड़ जाई मकई से तो अब बाजार बहुत बा। पहले तो हमनी के सामान्य भोज्य पदार्थ के रूप में मकई के ली, लेकिन अब जैसा तू बतौलू है कि कॉर्नफ्लॉक्स के रूप में दूसर भी अब मकई के अन्य उपयोग में भी ओकरा से जे है कृषि उत्पाद में अन्य चीज भी बन रहल बा, ओकर बाजार बा, तो आवश्यकता बा कि एकरा के अपनावे के।
1: आ देखा जैसा तना छेदक के बात कर भैया तो ई कीट ई जो कीट होवे है तना के अंदर ही छेद करके ओकरा के खोखला कर दे है जेकरा से पौधा सूख जा है और या बीच से टूट जा है। एकर नियंत्रण भैया ध्यान देवे के चाहिए कि गर्मी में खेत के गहरी जुताई कर देवे के चाहिए। आ जो पौधा में ई रोग लग गई है मतलब ग्रसित पौधन जो है ओकरा के उखाड़ के नष्ट कर देवे के चाहिए जेकरा से का होवे कि प्रकोप ज्यादा फैले ना। और ज्यादा प्रकोप हो जाए तो कार्बोफ्यूरान या क्लोरपाइरीफॉस के इस्तेमाल करे के चाहिए। आ माहू या पत्ता लपेटक ला ई कीट सबन पत्ता के रस चूसे है और ओकरा के मोड़ देवे है जेकरा से क्या होवे कि प्रकाश संश्लेषण ही बंद हो जाए मतलब रुक जाए। तो एकर नियंत्रण ला इमेगा क्लोराइड क्लोप्रिड या रोटार जैसन दवाई के छिड़काव करे के चाहिए।
0: तब बुझौल बुझे के मिली बताई हम बुझौल हरी थी मन भरी थी 9 लाख मोती जरी थी राजा जी के बाग में दोशाला और हे खड़ी थी। बता बुझ तो गेले हो।
1: तो दीमक भी ध्यान देवे के चाहिए कि दीमक जो है खास करके रेतीली मिट्टी में लग जा रहा है पहले ही काट दे। तो हमने के नियंत्रण बुआई से पहले खेत के मिट्टी में क्लोरोपाइरीफॉस के छिड़काव करके चाहिए और जैविक नियंत्रण भी अपना सकते हैं ये जो बहुत बढ़िया रहे। तो हमने के खेती पे ध्यान दी और खेती जब बात चल रही है तो कहा नहीं वो गीत सुनल जाए ये गीत राम विनय शर्मा कमल के आवाज में।

0: वाह, बहुत ही
1: अभी हमने
0: बढ़िया
1: क्या
0: झूमर
1: ये
0: गीत।
1: गीत सुनत रहनी है, कलाकार रहनी है राम विनय शर्मा कमल। यहाँ से एक आध गीत और यदि समय रही तो सुन ले। अभी एगो वार्ता सुने के अपना कार्यक्रम में, पशुओं में खुरपका एवं मुंहपका रोग। वार्ताकार बने डॉक्टर
0: अजीत
1: अजीत
0: को
1: कुमार।
2: भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि एवं पशुपालन है। शहरीकरण होने के कारण कृषि योग्य भूमि कम होते जा रहे हैं, लेकिन देश की जनसंख्या लगातार बढ़ते जा रही है, जिसके चलते लोग पशुपालन को व्यवसाय के रूप में अपना रहे हैं। पशुपालन के द्वारा किसानों को आर्थिक लाभ मिलने के साथ साथ उच्च गुणवत्ता के पौष्टिक आहार जैसे दूध, मांस आदि मिलता है। पशुपालन को व्यवसाय के रूप में अपनाकर किसान स्वयं को एवं अपने परिवार को स्वस्थ रख सकते हैं और जीवन स्तर को ऊपर उठा सकते हैं। पशुओं के दूध उत्पादन की क्षमता, प्रजनन क्षमता, कार्य करने की क्षमता एवं मांस उत्पादन क्षमता पर पशुओं को दिए जाने वाले आहार के अलावे पशुओं में होने वाले जीवाणु, विषाणु एवं परजीवी जनित रोगों का बहुत बड़ा दुष्प्रभाव पड़ता है। यदि पशुपालक को पशुओं में होने वाले संक्रामक रोगों के बारे में विस्तृत जानकारी हो तो पशुपालक तुरंत रोकथाम के उपाय को अपनाकर एवं पशु चिकित्सक से संपर्क कर अपने पशुओं के उत्पादक क्षमता में होने वाले अत्यधिक हानि को कम कर सकते हैं एवं अपने पशु को भी अकाल मृत्यु से रोक सकते हैं। पशुओं में खुरपका मुंहपका रोग एक अत्यंत संक्रामक विषाणु जनित रोग है। खुरपका मुंहपका रोग, जिसे अंग्रेजी में फूट एंड माउथ डिजीज या FMD के नाम से जाना जाता है, यह एक संक्रामक विषाणु जनित अर्थात वायरस के द्वारा होने वाला रोग है, जो प्रायः खुरबटे या कह सकते हैं खुरफटे पशुओं अर्थात जिस पशु का खुर दो भाग में बटा होता है, जैसे गाय, भैंस, भेड़, बकरी, सुअर तथा अन्य जंगली पशुओं को काफ़ी प्रभावित करता है। खुरपका मुंहपका रोग काफ़ी तेजी से फैलने वाला एक बीमारी है, जो किसी भी उम्र के पशुओं एवं उनके बच्चों में हो सकता है। इस रोग को खुरहा, भंजहा, FMD, चमसिया, चपचपिया, आभा आदि क्षेत्रीय नामों से भी जाना जाता है। पशुओं में खुरपका मुंहपका रोग का कारण एक अत्यंत सूक्ष्म प्रकार का RNA विषाणु है, जो पिकोरना समूह के अंतर्गत आता है। इस विषाणु के 7 प्रकार और अनेकों प्रकार हैं, जिसमें AOC, Asia 1, Asia 2 एवं SAT मुख्य हैं। हमारे देश में AOC एवं Asia 1 विषाणु के प्रकार के द्वारा खुरपका मुंहपका रोग होता है। इस रोग के विषाणु का प्रसार संक्रमित पशु के सांस एवं रोगी पशु का जूठा

या चारा तथा पानी के ग्रहण करने पर दूसरे पशु के शरीर में इस रोग के विषाणु प्रवेश कर रोग पैदा करता है। संक्रमित पशु को देखरेख करने वाले मनुष्य के शरीर एवं कपड़ों के द्वारा भी इस रोग के विषाणु का फैलाव होता है। इस रोग के होने में नम वातावरण, पशु दुर्बलता, संक्रमित पशु का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, आसपास के क्षेत्रों में रोग का प्रकोप का इतिहास आदि सहायक कारक जो रोग के तेजी से प्रसार में मदद करता है। खुरपका मुंहपका रोग से प्रभावित पशु में सर्वप्रथम तीव्र बुखार 104 डिग्री से 105 डिग्री फारेनहाइट तक होता है। संक्रमित पशु के जीभ, मसूड़ों, नथनों, होठों, तालू आदि पर छाले हो जाते हैं। पशु खाना पीना कम कर देता है। छाले होने के कारण संक्रमित पशु के मुंह से झागदार लार गिरता है एवं होठों से चपचपाहट की आवाज आती है। खुरों के बीच भी छाले हो जाने के कारण पशु लंगड़ा कर चलता है और बार बार अपना पैर जमीन पर झटकता है। इस रोग के होने के कारण दुधारू पशुओं के दूध उत्पादन में अत्यधिक कमी हो जाती है। गर्भधारण किए हुए पशुओं में गर्भपात होने की पूरी संभावना इस रोग के होने के बाद होती है। थनों पर छाले पड़ जाने पर दुधारू पशुओं में थनैला रोग का खतरा बहुत बढ़ जाता है। खुरपका मुंहपका रोग की पहचान पशुपालक प्रभावित पशु के मुंह एवं खुरों के बीच घाव एवं अन्य लक्षणों के आधार पर कर सकते हैं। चूंकि यह एक विषाणु जनित छुआछूत का रोग है जिसका कोई सटीक इलाज नहीं है, अतः रोगी पशु को स्वस्थ पशु से अलग रहने एवं खाने पीने की व्यवस्था जरूर करनी चाहिए। पशुओं को देखरेख करने वाले व्यक्ति को भी हाथ पांव अच्छी तरह साफ कर ही दूसरे पशुओं के संपर्क में जाना चाहिए। मुंह में बने घावों के साफ करने में 2% पोटासियम परमैंगनेट के घोल या बोरिक एसिड एवं ग्लाइसरीन या बोरेक्स एवं नारियल तेल या शुद्ध एलम के घोल आदि का उपयोग करना चाहिए। मुंह के छाले पर बोरोग्लिसरीन हल्दी युक्त घी या मक्खन लगाने से मुंह में चिकना हो जाता है और पशु को चबाने में आराम होता है। खुरों एवं थनों पर बने घाव को 1% पोटासियम परमैंगनेट या फिनाइल के घोल से धोना चाहिए एवं फिर जीवाणुनाशक स्प्रे का उपयोग करना चाहिए। रोगग्रस्त पशु के पैर को नीम एवं पीपल के छाल का काढ़ा बनाकर दिन में 2-3 बार धोना लाभदायक होता है। खुर के घावों को शीघ्र ठीक करने के लिए पशु को 2% तूतिया के घोल से धोना चाहिए तथा पैर में पड़े कीड़े के होने से बचाने के लिए आइवरमेक्टिन नामक सुई का 0.2 मिलीग्राम प्रति किलो शरीर वजन के आधार पर त्वचा में लगाना चाहिए। मुंह, पैर अथवा थन के घावों के इलाज के लिए ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन अथवा एनरोफ्लोक्सासिन की सुई 5 मिलीग्राम प्रति किलो शरीर वजन के आधार पर मांस में 3 से 5 दिन तक पशु चिकित्सक के सलाह पर लगवानी चाहिए। अति तीव्र अवस्था में बुखार की दवा तथा कभी कभी सीरा मार्ग से पानी भी चढ़ाया जा सकता है। बी कॉम्प्लेक्स और खनिज मिश्रण सहायक दवा के रूप में देने से रोग को कम समय में ठीक किया जा सकता है। प्रभावित पशु के मुंह से गिरने वाले लार एवं पैर के घाव के संसर्ग में आने वाले वस्तुओं, पुआल, भूसा आदि को जला देना चाहिए या जमीन में गड्ढा खोदकर चूना के साथ गाड़ देना चाहिए। रोगी पशुओं को खाने में नरम एवं आसानी से पचने वाले आहार जैसे हरा चारा या घास देनी चाहिए। मुंह में घाव रहने के कारण पशु को कड़ा आहार देने पर खाने में दर्द होता है, अतः ऊर्जा युक्त द्रव्य आहार जैसे गुड़, खोया का घोल पिलाना फायदेमंद साबित होता है। जिस जगह पर रोगग्रस्त पशु को रखे वहां पर ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव कर दें। रोगग्रस्त दुधारू पशुओं से दूध निकालने के बाद दूध दुहने वाले भी अपने हाथ एवं मुंह को साबुन से धो लेना चाहिए। रोगग्रस्त पशु का इलाज सदैव पशु चिकित्सा से सलाह लेकर करनी चाहिए। इस रोग में यद्यपि व्यसक पशुओं की मृत्यु नहीं होती है, लेकिन रोग के ठीक होने के बाद पशु के शरीर पर के बाल एवं खुर
बड़े बड़े हो जाते हैं, पशु के धूप सहने की क्षमता घट जाती है एवं दुधारू पशु का दूध उत्पादन

0: उत्पादन रोग होने के पहले के जैसा नहीं हो पाता है। प्रभावित पशु स्वस्थ होने के उपरांत भी महीनों हाफते रहता है। इन सब कारणों से पशुपालक को आर्थिक क्षति उठानी पड़ती है। चूंकि यह एक विषाणु जनित रोग है जिसकी कोई विशिष्ट चिकित्सा नहीं है, अतः इस रोग के इलाज की अपेक्षा बचाव पर ज़्यादा ध्यान देकर खुरपका मुंहपका रोग से पशुपालक अपने पशुओं को बचा सकते हैं। टीकाकरण ही इस बीमारी से बचाव के लिए सर्वोत्तम उपाय है। खुरपका मुंहपका रोग से बचाव हेतु बछड़े को सर्वप्रथम 4 माह की उम्र पर प्रथम टीका लगवानी चाहिए। फिर उसके बाद प्रत्येक 6 महीने के अंतराल पर टीका फरवरी एवं सितंबर के महीने में लगवाते रहें। अगर बगल वाले गांव में खुरपका मुंहपका रोग फैलने की सूचना मिले तो अपने पशुओं को बाहर चरने के लिए नहीं जाने देना चाहिए। इसके अलावे बीमार पशुओं के आवागमन पर रोक लगा देनी चाहिए। इस रोग से प्रभावित क्षेत्र से पशु को नहीं खरीदना चाहिए। पशुपालक पशुशाला को सदैव साफ सुथरा रखनी चाहिए। संक्रमित पशु को पूर्ण आहार देना चाहिए जिससे खनिज एवं विटामिन की मात्रा पूर्ण रूप से पशु को मिलती रहे। इस बीमारी से मरे पशु को इधर उधर ना फेंकें, बल्कि जमीन में गहरे गड्ढे में मृत पशु को डालकर मिट्टी से अच्छी तरह से ढक देनी चाहिए और समय समय पर पशु चिकित्सक से परामर्श लेते रहना चाहिए।
1: बहुत सारे ऑर्गन से जिसको आप देख नहीं सकते, उसको सुलझा नहीं सकते, ठीक नहीं कर सकते, वो उससे काम करती
2: है। तब भाई अभी हमने सब सुन रहे हैं बहुत ही उपयोगी वार्ता। वार्ता के विषय हले पशुओं में खुरपका और मुंहपका रोग। और वार्ता कर रहे थे डॉक्टर अजीत कुमार। देखा कितना नियम से हमने के फरिया फरिया के बता थी। अगर हमने के पशुपालक जो हथिन, अगर उनका पशु में कोई रोग हो जाए तो हमने के जो दवा है ओकरा से ज्यादा बचाव बहुत जरूरी है। काहे कि ई रोग विषाणु से होवे है और ई रोग बहुत संक्रमित भी होवे है। तो हमने के ध्यान देवे के चाहिए पशुपालक भाई के कि वो अपन पशु के जब रोग हो जाए तो उनका के दूसरे पशु से अलग रखे के चाहिए। और जैसे उनकी सुरक्षा पे ज्यादा ध्यान देवल जाए तो ध्यान देवे के चाहिए। और हमने के पशुधन जो है बहुत कृषि लोग ला, हमने के खेती बाड़ी के बात रहे, कृषि के बात रहे, तो हमने सब खेती बाड़ी के संगे संगे पशु पालन भी कर रही जगह से फायदा भी रहे। तो फायदा जब रहे तो हमने के पशु स्वस्थ कैसे रहे इस सब पे ध्यान देवे के चाहिए। और स्वस्थ की बात करी तो देखा आज के हमने के कल के बात कर ली कि योग है, तो हम अपन स्वास्थ्य की बात करी या पशु के तो स्वास्थ्य की बात करी, हमने के हर तरह से ध्यान देवे के चाहिए कि अपन पशु के अपन स्वास्थ्य के या पशु के स्वास्थ्य पे कैसे ध्यान दी, सफाई पे, स्वच्छता पे, और पशु के कैसे खान पान रहे। खान पान पे भी बात करी तो भाई हमने के पशु के का खिलावे चाहिए, उनका चारा कैसे रहे के चाहिए, कितना देर धूपा में रखे के चाहिए, कब उनका के हरा चारा देवे के चाहिए, समय समय पर हम लोग बताते रहे।
3: सबसे बड़ा आवश्यकता होला कि पशुधन के साफ सफाई, उनका के उचित उनकर पोषण, यदि इस सब हमनी का ध्यान दें तो हमनी का बेहतर लाभ पशुपालन से ले सकीले। और रोग पर तो ध्यान दे वहीं के पड़ी, जे भी रोग व पशु में होखे वाला वो सब पर हमनी का बेहतर नज़र रख के बढ़िया से यदि हमनी का ध्यान दे तो हमने का ज़्यादा लाभ ले सकेले। और ये हमने खातिर कृषि के अनुसंगिक कार्य के रूप में पशुपालन बहुत लाभकारी हो सकेला। समय अपना कार्यक्रम के अब संपन्न हो गई बा, तो अब
2: तो चले के समय में कहे कि आज जब तभी कल गए। प्रणाम उदय भाई।
3: प्रणाम निमिषा बहन।

अभी आप सुन रहे थे किसान भाइयों का ग्रामीण कार्यक्रम चौपाल और खेती गृहस्थी। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलो

0: श्रोताओं, कुछ ही पल में हम सुनते हैं प्रादेशिक समाचार, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: जानते हो दोस्तों, जिसे हम सिर्फ चिलचिलाती धूप कहते थे, आज उसी धूप से हम अपनी छतों पर ऊर्जा बना लेते हैं। तभी तो आज लगभग 37 लाख घर पीएम सूर्य घर बने हैं, जिसे देश का बिजली बिल घटा है और आत्मविश्वास बढ़ा है।
2: एक दशक पहले भारत सोलर पावर के मामले में बहुत पीछे था, लेकिन आज सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप 5 देशों में आ गया।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, बिहार सरकार द्वारा प्रसारित।

0: स्वस्थ रहे, मस्त रहे।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य के 73 लाख किसानों समेत देश के 9 करोड़ से अधिक किसानों के खाते में पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किस्त की राशि अंतरित की। प्रदेश भर के 331

0: केंद्रों पर कल नीट यूजी पुनर्परीक्षा का होगा आयोजन। एनटीए के निर्देश पर आज सभी केंद्रों पर हुआ मॉक ड्रिल। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भोजपुर के शाहपुर में 17 जून को हुई पुलिस मुठभेड़ मामले की न्यायिक जांच के आदेश दिए। और 70वीं बीपीएससी संयुक्त परीक्षा का परिणाम जारी, श्रद्धा पांडे बनी टॉपर, शशांक गौरव को दूसरा स्थान। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किस्त की राशि जारी की। पश्चिम बंगाल के हुगली में आयोजित कार्यक्रम में श्री मोदी ने 9 करोड़ 44 लाख किसानों के बैंक खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि डीबीटी के माध्यम से अंतरित की। बिहार के 73 लाख से अधिक किसानों के बैंक खाते में योजना की राशि अंतरित की गई है। इस अवसर पर पटना के बामेती सभागार में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए कल होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले आज राष्ट्रव्यापी मॉक ड्रिल का आयोजन कर रहा है। परीक्षा से पहले मानक तैयारी के निरीक्षण के लिए यह अभ्यास किया गया। इस दौरान पटना में बापू परीक्षा भवन समेत राज्य के प्रमुख केंद्रों पर परीक्षा के आयोजन की तैयारियों को परखा गया। इसे लेकर यातायात व्यवस्था में भी परिवर्तन किया गया। नीट पुनर्परीक्षा के लिए राज्य के 34 जिलों में 331 केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा में 156,000 से अधिक अभ्यर्थियों के शामिल होने की संभावना है। इधर राज्य सरकार ने कदाचार मुक्त वातावरण में परीक्षा संपन्न कराने के लिए सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए हैं। परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए राज्य सरकार की ओर से परिवहन विभाग विशेष बसों का परिचालन करेगा। साथ ही रेलवे की ओर से नीट परीक्षा अभ्यर्थियों के लिए विशेष ट्रेनें भी चलाई जाएंगी। नीट यूजी पुनर्परीक्षा को लेकर पटना में कुम्हरार स्थित बापू परीक्षा भवन के आसपास विशेष यातायात व्यवस्था लागू की गई है। कई मार्गों पर वन वे ट्रैफिक लागू रहेगा। ट्रैफिक डीएसपी अनिल कुमार ने बताया कि परीक्षार्थियों को समय पर परीक्षा केंद्र तक पहुंचाने और शहर में यातायात व्यवस्था सुचारू बनाए रखने के लिए कई मार्गों पर डायवर्जन भी लागू किया जाएगा।
1: जो बापू परीक्षा सेंटर खास करके है, जहां पर जाम की समस्या प्राय हो जाती है, उसके मद्देनजर हम लोग कल ट्रैफिक की व्यवस्था में कुछ डायवर्जन प्लान बनाए हैं। जो धनकी की तरफ से चाहे जो पहाड़ी की तरफ से जितने पिकअप हैं, टेम्पू हैं, ई रिक्शा हैं, 8 बजे के बाद हम उसको डाइवर्ट किए हैं। अगर उनको टाउन में आना ही है तो बिस्कुमान ऊपर है, बिस्कुमान से होके जो कुम्हरार वाला पुल है उससे फिर जा सकते हैं टाउन में। जो भी बस धनकी पर आएंगे, जो गांधी सेतु की तरफ से आते हैं, चाहे जो पूर्वी दिशा से टोल प्लाजा की ओर से आते हैं, न्यू बाईपास होकर, मीठापुर होकर, गांधी मैदान, चाहे कहीं भी अन्यत्र जाना है तो जाएंगे। धनकी से या बिस्कुमान से कोई भी बस नीचे, चाहे कोई भी कॉमर्शियल गाड़ी, जब तक एग्जाम होगा उस पीरियड में जाने की अनुमति नहीं होगी।
0: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भोजपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत बिलौटी गांव में 17 जून को हुई पुलिस मुठभेड़ मामले की न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं। श्री चौधरी ने कहा कि इस मामले की जांच उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश द्वारा की जाएगी। सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री ने कहा कि न्यायिक जांच का उद्देश्य घटना के सभी पहलुओं की निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से जांच सुनिश्चित करना है। गौरतलब है कि पिछले दिनों भोजपुर जिले के शाहपुर में भरत तिवारी नाम के एक व्यक्ति की कथित पुलिस मुठभेड़ के बाद मौत हो गई थी। पुलिस ने अपने बयान में मृतक युवक के आपराधिक घटनाओं में शामिल होने की बात कही थी, जिससे आक्रोशित मृतक के परिजनों ने विरोध प्रदर्शन किया था। बिहार लोक सेवा आयोग ने 70वीं संयुक्त परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। इस परीक्षा में 2027 अभ्यर्थियों ने सफलता प्राप्त की है। आयोग के अध्यक्ष रवि मनुभाई परमार ने आज परीक्षा परिणाम जारी करते हुए बताया कि 593 अंक प्राप्त कर श्रद्धा पांडे टॉपर बनी हैं। वहीं 592 अंकों के साथ शशांक गौरव सेकंड टॉपर बने हैं, जबकि आयुष विजय ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है। वर्ष 2024 में आयोजित 70वीं बीपीएससी संयुक्त परीक्षा के पीटी में 4 लाख से अधिक अभ्यर्थी शामिल हुए थे। जनता दल यूनाइटेड की राज्य परिषद और राष्ट्रीय परिषद की बैठक कल पटना में आयोजित की जाएगी। जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने बताया कि बैठक में जदयू अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में पार्टी की आगामी रणनीति पर चर्चा की

0: जाएगी। उन्होंने बताया कि बैठक में मंत्री, सभी सांसद, विधायक और एमएलसी मौजूद रहेंगे।
1: यहाँ जो है बिहार प्रदेश जनता दल कार्यालय में राष्ट्रीय परिषद का राज्य परिषद का बैठक होने जा रही है, उसको लेकर हम लोग काफी उत्साहित सब हमारे राज्य के जो भी प्रदेश के स्तर के जो भी कार्यकर्ता है नेता है सब उत्साहित है। बिहार में पहली बार जो है, पहली बार इसके पहले भी हुआ है लेकिन बिहार में जो है राष्ट्रीय परिषद की बैठक हो रही है, परिषद के सभी डेलीगेट सभी प्रदेश से आ रहे हैं, उनको यहाँ गर्मजोशी से स्वागत किया जाएगा।
0: राष्ट्रीय लोक मोर्चा की नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की घोषणा कर दी गई है। पार्टी अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने आज पार्टी पदाधिकारियों की सूची जारी की। नई कार्यकारिणी में 8 उपाध्यक्ष, 5 महासचिव और 6 सचिव बनाए गए हैं। मधुबनी से विधायक माधव आनंद को एक बार फिर प्रधान महासचिव बनाया गया है। अरविंद वाजपेयी को राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता सह मीडिया प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई है। पार्टी प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों को बधाई देते हुए कहा है कि नई टीम सामाजिक न्याय, सुशासन और विकास के एजेंडे को संकल्प के साथ आगे बढ़ाएगी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने विधानमंडल में अपने विभाग से संबंधित सवालों के जवाब देने के लिए 3 मंत्रियों को अधिकृत किया है। इनमें उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र प्रसाद यादव तथा नीतीश मिश्रा के नाम शामिल हैं। श्री चौधरी ने गृह विभाग के सवालों का जवाब देने के लिए विजय कुमार चौधरी को, कार्मिक विभाग, मंत्रिमंडल सचिवालय और सिविल विमानन विभाग से संबंधित सवालों का जवाब देने की जिम्मेदारी उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव को दी है। वहीं निगरानी विभाग और निर्वाचन विभाग से जुड़े सवाल, ध्यानाकर्षण सूचनाओं का जवाब नगर विकास एवं आवास मंत्री नीतीश मिश्रा देंगे। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
4: आकाशवाणी एट 90, 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना को फॉलो कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल दुनिया भर में मनाया जाएगा। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय है स्वस्थ आयु के लिए योग। यह विषय हर उम्र में योग के महत्व को रेखांकित करता है। हमारे संवाददाता ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर संस्कृति मंत्रालय देश भर में 100 स्थानों पर विशेष कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। इनमें भारत की समृद्ध विरासत और योग परंपराओं को प्रदर्शित किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
1: नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने कल मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले रन फॉर योग और एक विशेष जुम्बा सत्र का आयोजन आज किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों को अपने दैनिक जीवन में योग अपनाने के लिए प्रेरित करना था। संस्थान के निदेशक प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि योग केवल एक दिन मनाने की चीज नहीं है, बल्कि इसे पूरे साल नियमित रूप से करना चाहिए।
2: हमारे लिए ये बहुत जरूरी है कि हम 365 डेज योगा करें, और इस बार के योगा के ऊपर डिक्लेरेशन भी होने जा रहा है कि हम वर्ल्ड में कम से कम 15 से 20 मिनट अगर योग करते हैं, अपने प्राणायाम करते हैं, तो जो इस तरह की हमारे लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स हैं उनको हम बहुत अच्छे की तरह से मैनेज कर सकते, और ये प्रूव हो चुका है।
1: अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य राष्ट्रीय कार्यक्रम कल कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आयोजित किया जाएगा। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद और विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों के संयुक्त प्रयासों से इस वर्ष योग दिवस के कार्यक्रम दुनिया भर में लगभग 2500 स्थानों पर आयोजित किए जा रहे हैं। इनमें 210 से अधिक भारतीय मिशन भाग ले रहे हैं। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश के जबलपुर में आयोजित कार्यक्रम

0: कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेंगी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता में आयोजित मुख्य समारोह में शामिल होकर नेतृत्व प्रदान करेंगे। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने हुगली में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि वे स्वयं बंगाल में योग दिवस का हिस्सा बनेंगे।
1: कल देश और दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी मनाया जाना है। इस बार मैं बंगाल में ही योग दिवस का हिस्सा बनूंगा। स्वामी विवेकानंद और महर्षि अरविंद जैसे योगियों की भूमि, यहां से जो संदेश जाएगा उससे पूरे विश्व का मार्गदर्शन होगा।
0: इधर प्रदेश भर में कई स्थानों पर योग शिविरों और जागरूकता कार्यक्रमों के आयोजन की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पटना के पाटलिपुत्र खेल परिसर में आयोजित मुख्य समारोह में शामिल होंगे। इस अवसर पर राज्य मंत्रिमंडल के कई सदस्य भी उपस्थित रहेंगे। विभिन्न योग संस्थानों, सार्वजनिक और निजी संस्थानों, सभी सरकारी और निजी स्कूलों समेत विभिन्न स्थानों पर योगाभ्यास सत्र का आयोजन किया जाएगा। राज्य के पूर्वी और दक्षिण पूर्वी भागों में आंधी बारिश की स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि आज राज्य के उत्तरी और दक्षिण पूर्वी भागों में कुछ स्थानों पर तेज आंधी के साथ बारिश हो सकती है। विभाग ने नवादा और पश्चिम चंपारण जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है।
2: राज्य के पूर्वी भाग के कुछ स्थानों पर जबकि शेष भागों के एक या दो स्थानों पर वर्षा की संभावना है। राज्य के मध्य एवं पश्चिमी भाग के जिलों में एक दो स्थानों पर मेघ गर्जन वज्रपात के साथ हवा की गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के पूर्वी भाग के जिलों में एक दो स्थानों पर मेघ गर्जन वज्रपात के साथ हवा की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के नवादा एवं पश्चिम चंपारण जिलों में भारी वर्षा होने की संभावना है।
0: इधर राजधानी पटना समेत राज्य के दक्षिण पश्चिम भागों में भीषण गर्मी का दौर जारी है। मौसम विभाग ने भभुआ, भोजपुर और बक्सर जिले में लू चलने की संभावना को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। पिछले 24 घंटों के दौरान कैमूर का भभुआ राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा, जहां का अधिकतम तापमान 42.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। लखीसराय जिले के कवैया थाना क्षेत्र अंतर्गत संसार पोखर के पास खुदाई में मिले काले पत्थर की दुर्लभ प्रतिमा को संग्रहालय में स्थानांतरित किया गया है। जिला कला एवं संस्कृति पदाधिकारी सह सहायक संग्रहालय अध्यक्ष मृणाल रंजन को आज प्रतिमा सौंप दी गई। 2 फीट ऊंची अत्यंत प्राचीन और दुर्लभ प्रतिमा 9वीं से 12वीं शताब्दी के बीच पाल काल से जुड़ी मानी जाती है। राज्य सरकार ने क्रिकेटर मुकेश कुमार और आकाशदीप को पुलिस उपाधीक्षक यानी DSP पद पर नियुक्ति के लिए अनुशंसित किया है। किशनगंज जिले के ठाकुरगंज थाना क्षेत्र से पुलिस ने 157 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार कर लिया। बेगूसराय जिले की पुलिस ने FCI थाना क्षेत्र से छिनतई मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। मधुबनी जिले की एक स्थानीय अदालत ने अपनी मां की हत्या के मामले में दोषी पुत्र लाल बाबू यादव को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने 22,000 रुपए का आर्थिक दंड भी लगाया है। 18 अगस्त 2024 को हरलाखी थाना क्षेत्र में इस जघन्य हत्या को अंजाम दिया गया था। सीवान के प्रसिद्ध व्यवसायी सुनील कुमार श्रीवास्तव ब्लड डोनर क्लब के संरक्षक बने हैं। श्री श्रीवास्तव को दधीची देहदान समिति की जिला इकाई का भी संरक्षक मनोनीत किया गया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य के 73 लाख किसान समेत देश के 9 करोड़ से अधिक किसानों के खाते में पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किस्त की राशि अंतरित की। प्रदेश भर के 331 केंद्रों पर कल नीट UG पुनर्परीक्षा का होगा आयोजन। NTA के निर्देश पर आज सभी केंद्रों पर हुआ मॉक ड्रिल। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भोजपुर के शाहपुर में 17 जून को हुई पुलिस मुठभेड़ मामले की न्यायिक जांच के आदेश दिए। और 70वीं BPSC संयुक्त परीक्षा का परिणाम जारी। श्रद्धा पांडे बनी टॉपर, शशांक गौरव को दूसरा स्थान। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
3: यार कोई ऐसी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बताओ जिसमें कम प्रीमियम हो, बोनस भी अच्छा मिले और भरोसे वाला भी हो।
4: PLI है ना?
5: सरकारी कर्मचारी के साथ साथ सभी प्रोफेशनल, ग्रेजुएट और डिप्लोमा होल्डर्स ले सकते हैं PLI पॉलिसी का फायदा, और साथ में पोस्टल डिपार्टमेंट का भरोसा भी। अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से आज ही संपर्क करें या लॉगिन करें indiapost.gov.in पर।

0: आकाशवाणी एट 90। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है पूर्णिया जिले की हलचल। इसे प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे संवाददाता होमी चंदन।
1: जिले में कल 12 परीक्षा केंद्रों पर नीट पुनर्परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। परीक्षा केंद्रों पर परीक्षार्थियों के प्रवेश का अंतिम समय अपराह्न 1:30 बजे तक निर्धारित है। NTA के निर्देश पर आज विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। जिला अधिकारी अंशुल कुमार ने तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने बैठक में नीट पुनर्परीक्षा 2026 से संबंधित केंद्र अधीक्षक, स्टैटिक दंडाधिकारी, जोनल दंडाधिकारी और पुलिस पदाधिकारियों को कदाचार मुक्त और शांतिपूर्ण परीक्षा के आयोजन को लेकर आवश्यक निर्देश दिया। विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए अनुभवी पदाधिकारियों को सभी परीक्षा केंद्रों पर सशस्त्र बल के साथ स्टैटिक दंडाधिकारी सह परीक्षक के रूप में प्रतिनियुक्त किया गया है। साथ ही जिला स्तरीय वरीय पदाधिकारियों को जोनल दंडाधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्त किया गया है। जिला पदाधिकारी ने पत्रकार वार्ता में बताया कि सभी परीक्षा केंद्रों पर CCTV और वीडियोग्राफी के द्वारा कड़ी निगरानी की जाएगी। वहीं सभी केंद्रों पर बायोमेट्रिक व जैमर का इंतजाम भी किया गया है। जिला साइबर सेल भी सोशल मीडिया पर लगातार कड़ी नजर रख रही है। केंद्रीय पंचायती राज मत्स्य पशुपालन एवं डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने जिले के सहारा वृद्धाश्रम का विशेष निरीक्षण किया और संवाददाता कार्यक्रम में भाग लिया। केंद्रीय मंत्री श्री सिंह ने आवासीय कक्ष, भोजनालय, स्वास्थ्य सुविधा केंद्र एवं मनोरंजन कक्ष समेत वृद्धा आश्रम के विभिन्न भागों का अवलोकन किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने सभी वृद्धजनों को सम्मान स्वरूप शॉल भेंट किया और उन्हें फल एवं अन्य खाद्य सामग्री के पैकेट प्रदान। श्री सिंह ने कहा कि वृद्धजन समाज की अमूल धरोहर है और उनकी सेवा करना हम सभी का नैतिक कर्तव्य है। इस अवसर पर राज्य सरकार की मंत्री लेसी सिंह, कस्बा विधायक नीतीश कुमार सिंह, वरिष्ठ पदाधिकारी समेत गणमान्य लोग मौजूद थे। आपदा प्रबंधन मंत्री सह पूर्णिया जिला के प्रभारी मंत्री रत्नेश सदा की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित महानंदा सभागार में जिला स्तरीय कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले में संभावित बाढ़ सुखाड़ की पूर्व तैयारी, जल जीवन हरियाली और 20 सूत्री कार्यक्रम के क्रियान्वयन की समीक्षा की गई। बैठक में भवन निर्माण मंत्री लेसी सिंह, पूर्णिया सांसद पप्पू यादव और सभी सातों विधानसभा क्षेत्र के विधायक उपस्थित थे। इस अवसर पर प्रभारी मंत्री ने आपदा में मृत लोगों के परिजनों को चेक प्रदान किया। उन्होंने दिव्यांग लोगों के बीच ट्राईसाइकिल का वितरण किया। श्री सदा ने कहा कि उन्होंने अधिकारियों को जिले में सभी कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा करने का निर्देश दिया है। कृषि विभाग एवं कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंध अभिकरण पूर्णिया की ओर से एक दिवसीय जिला स्तरीय शारदीय महाअभियान सह प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिला पदाधिकारी अंशुल कुमार ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि इसका मुख्य उद्देश्य किसानों को कृषि हितकारी योजनाओं की जानकारी प्रदान कर उन्हें लाभान्वित करना है और खरीफ मौसम में नवीन कृषि तकनीकों एवं नवाचारों को बढ़ावा देना है। जिला पदाधिकारी ने कहा कि जलवायु परिवर्तन वर्तमान समय की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है, जिसका प्रतिकूल प्रभाव कृषि उत्पादन पर पड़ रहा है। जिलाधिकारी ने किसानों से कृषि एवं कृषि कल्याण विभाग, भारत सरकार द्वारा संचालित राष्ट्रव्यापी खेती बचाओ अभियान से जोड़ने की अपील की। उन्होंने कहा कि किसान सॉइल हेल्थ कार्ड के अनुशंसा के अनुरूप उर्वरकों का संतुलित उपयोग कर अधिक लाभ ले सकते हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि सभी प्रखंडों में 10 जून से 22 जून तक प्रखंड स्तरीय

शारदीय महाअभियान का आयोजन किया जा रहा है। वहीं 11 जून से 30 जून तक कृषि जन कल्याण चौपाल सह खेत बचाओ अभियान भी चलाया जा रहा है। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में 9 जून को जिला अस्पताल से लेकर अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों तथा आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसके तहत जिले के सभी स्वास्थ्य केंद्रों में आयोजित शिविर में गर्भवती महिलाओं का स्वास्थ्य जांच किया गया। लाभार्थियों को चिकित्सकीय

0: इसके तहत जिले के सभी स्वास्थ्य केंद्रों में आयोजित शिविर में गर्भवती महिलाओं का स्वास्थ्य जांच किया गया। लाभार्थियों को चिकित्सकीय सहायता भी दी गई। इसे लेकर सिविल सर्जन डॉक्टर प्रमोद कुमार कनौजिया ने बताया कि 2016 में शुरू प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत गर्भवती महिलाओं को गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध प्रसवपूर्ण जांच सेवाएं उपलब्ध कराया जाता है। पूर्णिया जिले में लगातार आंधी बारिश से आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। लगातार बारिश और तेज आंधी से कई स्थानों पर बड़े पेड़, घर और बिजली के खंभों को नुकसान हुआ है।
1: अभी आप सुन रहे थे पूर्णिया जिले की हलचल। पूर्णिया जिले की हलचल को प्रस्तुत कर रहे थे हमारे संवाददाता होमी चंदन। आकाशवाणी पटना से प्रस्तुत है साप्ताहिक कार्यक्रम सामयिक चर्चा। इसके तहत आप सुनेंगे हाल ही में बिहार से 3 हस्तशिल्प उत्पादों को GI टैग मिलने पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं जाने माने कला और हस्तशिल्प विशेषज्ञ अशोक कुमार सिन्हा। उनसे बातचीत कर रही हैं आकाशवाणी समाचार संपादक डॉक्टर सविता पारीक।
2: नमस्कार श्रोताओं, सामयिक चर्चा में मैं सविता पारीक आपका स्वागत करती हूं। बिहार की धरती सदियों से कला, संस्कृति और शिल्प की अनमोल परंपराओं को संजोए हुए है। यही वह भूमि है जहां नालंदा की विरासत से प्रेरित 52 बूटी साड़ी के धागों में इतिहास और सौंदर्य एक साथ बुने जाते हैं। पत्थरकट्टी शिल्पकला में कठोर पत्थरों को कलाकार अपनी कल्पना से जीवंत रूप देते हैं और ग्रामीण जीवन की भावनाओं, लोक आस्थाओं और पारिवारिक परंपराओं को पीढ़िया पेंटिंग के रंगों में अभिव्यक्ति मिलती है। दोस्तों, हाल ही में इन तीनों पारंपरिक कलाओं को GI टैग मिलने से बिहार की सांस्कृतिक पहचान को एक नई ऊंचाई मिली है। यह टैग न केवल इन कलाओं का सम्मान है बल्कि इन पीढ़ियों का भी अभिमान है जिन्होंने अपनी मेहनत, कौशल और समर्पण से इन विरासतों को जीवित रखा है। श्रोताओं, क्या है GI टैग और इन तीनों कलाओं का यह रुतबा मिलने से क्या फायदा होगा और वो क्या खास बात है जिस वजह से इन कलाओं को इस GI टैग से नवाजा गया है? ऐसे ही पहलुओं पर बात करने के लिए आज हमारे साथ आकाशवाणी स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने कला और हस्तशिल्प विशेषज्ञ अशोक कुमार सिन्हा। आप बिहार और पटना संग्रहालय अपर महानिदेशक हैं और आपका बिहार की लोक कलाओं पर खासा काम है। इन विषयों पर आप 1 दर्जन से ज्यादा किताबें लिख चुके हैं। सिन्हा जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत, अभिनंदन।
3: नमस्कार।
2: कार्यक्रम की शुरुआत में सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे बिहार की इन तीनों कलाओं को GI टैग मिलने से आप हमारी सांस्कृतिक विरासत के लिए इसे कितना महत्वपूर्ण मानते हैं?
3: सविता जी, बिहार की लोक कलाएं अगर हस्तशिल्प की बात करें तो अतीत से ही, पुरातन काल से ही बहुत ही समृद्ध रही है, लेकिन GI टैग के मामले में, जो भौगोलिक संकेतक जिसको हिंदी में हम लोग जानते हैं, उस मामले में हम लोग थोड़ा सा पीछे हैं। तो अभी जो 3 लोक कलाओं को GI टैग मिला है उससे एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान जो है बिहार की लोक कलाओं को अंतर्राष्ट्रीय पहचान में बढ़ोतरी मिली है। उससे दूसरा जो सबसे बड़ा फायदा है कि उससे रोजगार में वृद्धि होगी, उसकी जो कीमत मिलनी चाहिए कलाकारों को उसमें इजाफा होगा।
2: जी, अब आपसे जानना चाहेंगे 52 बूटी साड़ी फैब्रिक के बारे में, क्या है इसकी खासियत जो इसे विशिष्ट और अनोखा बनाती है?
3: 52 बूटी शिल्प जो है, अगर उसके अतीत में जाएं तो ये बौद्ध काल से चला आ रहा है। बौद्ध काल में हम सब जानते हैं कि बिहार बौद्ध धर्म का एक प्रमुख केंद्र रहा है। महात्मा बुद्ध बार बार बिहार आते थे और उनका बहुत ज्यादा समय राजगीर में बीता था। स्वाभाविक है कि चूंकि बुद्ध से राजगीर का संबंध रहा है तो बड़ी संख्या में वहाँ बौद्ध बिहार थे, बौद्ध भिक्षु भिक्षुणियां बड़ी संख्या में रहते थे। तो हम सब जानते हैं कि बौद्ध धर्म से जुड़े लोगों का एक अलग ड्रेस रहता है, वो ज्यादा चीवर पहनते थे। तो उनके लिए आवश्यकता महसूस हुई कि उनके पहनने के लिए उस खास किस्म के वस्त्र को तैयार किया जाए। तो उसके लिए नालंदा का जो बसवन बिहा गांव है वह केंद्र बना और वहां पर बौद्ध धर्म से जुड़े जो लोग हैं उनके लिए वस्त्र बनने लगे। चूंकि बौद्ध धर्म की प्रधानता थी तो उसमें बौद्ध धर्म के जो प्रतीक चिन्ह है, त्रिशूल है, शंख है, पीपल का पत्ता है, कमल का फूल है, इत्यादि को चिन्हित करने लगे लोग कारीगरी हैंडलूम के माध्यम से। देखिए, आजकल तो हैंडलूम में कई तरह का पावर लूम और कई तरह के जौकी, कई तरह के करघे आ गए हैं, लेकिन 52 बूटी की सबसे बड़ी खूबी है कि आज भी हथकरघा का इस्तेमाल होता है। इसमें कोई जो यांत्रिक प्रयोग है वो नहीं होता है, इसलिए हथकरघा से जो बने वस्त्र हैं वो

0: बहुत ही मुलायम होते हैं और पहनने में भी आसान होते हैं।
1: जी, तो इसी खूबी की वजह से इसे भौगोलिक संकेतक
0: जी
1: दिया गया है। तो
0: जी
1: एक बिहार के लिए एक नई पहचान, एक नई विशेषता जो कि देश और विदेश में इसे विख्यात करेगी। अब रुख करते हैं पत्थरों की दुनिया का और बात करते हैं गया के पत्थर कट्टी शिल्प कला की। इसकी क्या कहानी है और आप हमारे श्रोताओं को साथ ही साथ ये भी बताएं कि इन पत्थरों के जो कारीगर हैं उनके हाथों में कौन सा वो तिलिस्म है, कौन सी वो खूबी है जो इस कला को विशेष बनाती है।
0: पत्थरकट्टी जो गांव है वो स्टोन क्राफ्ट के लिए देश दुनिया में विख्यात है। अगर पत्थरकट्टी की बात करें तो आम धारणा यही है कि इसका अतीत में जो संबंध है राजस्थान से रहा है। अहिल्याबाई होलकर 1770-80 के दशक की बात हम बता रहे हैं, तो उस समय वो हम सब जानते हैं कि अहिल्याबाई के पुत्र और पति दोनों की युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए थे, तो अपने श्राद्ध करने के लिए आई थी, बेटों और पति का श्राद्ध करने के लिए बोध गया आई थी। तो खुले मैदान में उन्होंने देखा फल्गु नदी के किनारे कि विष्णु का जो चरण चिन्ह है वो खुले मैदान में खुले आसमान में रखा हुआ है, तो उनको तकलीफ हुई कि इतना पवित्र जगह और इसकी सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। तो कहा जाता है कि जयपुर से 1000 कारीगरों को लेकर अहिल्याबाई बोध गया आई और विष्णु पद मंदिर जो है उसका उन्होंने निर्माण कराया। उसी क्रम में जो वहां से 1000 कारीगर आए थे उनको बसने के लिए एक गांव विकसित हुआ। वो गांव पहाड़ की तलहटी में है, ग्रेनाइट पहाड़ वहां है, उसकी तलहटी में जो गांव बसा वो पत्थरकट्टी के नाम से विख्यात हुआ। बाकी उसमें से 50% जो आर्टिजन हैं वो वापस चले गए, लेकिन कुछ वहीं बस गए, वही पत्थरकट्टी गांव है। ऐसे कुछ लोगों का यह भी कहना है इतिहासकारों का कि पाल काल से ही उस गांव का जुड़ाव रहा है।
1: जी।
0: पाल काल में नालंदा में बौद्ध विहार की संख्या ज्यादा थी, राजगिरी में थी, इसके अलावा उदंतपुरी हिंदू धर्म का भी एक केंद्र था बिहार शरीफ, तो इन दोनों केंद्रों के वजह से भी बड़ी संख्या में मूर्तियों का निर्माण होता था और वे मूर्तियां पत्थरकट्टी में ही बनती थी।
1: जी, बहुत ही खूबसूरत जानकारी पत्थरकट्टी के बारे में आपके जरिए हमारे श्रोताओं को ये जानने को मिली। अब बात करते हैं हम लोक अभिव्यक्ति का जो सशक्त माध्यम है, भोजपुरी की पीढ़िया चित्रकला। आपसे हम यहाँ जानना चाहेंगे कि ये पीढ़िया क्या है, शब्द के मायने क्या है और इस कला की खासियत क्या है।
0: पीढ़िया कला भोजपुरी इलाके में, भोजपुरी का जो भूभाग है बहुत बड़ा है, उसमें बिहार भी है, झारखंड भी है, उत्तर प्रदेश के भी कुछ इलाके हैं और नेपाल का जो तराई क्षेत्र है वो भी भोजपुरी इलाका है। उस इलाके में जो भोजपुरी वासी लोग हैं, भाषा के लोग हैं, उनके परिवारों में सदियों से प्रिया लेखन की परंपरा चली आ रही है। प्रिया लेखन जो है ये गोधन पूजा के दिन से शुरू होता है। महिलाएं प्रिया मूल रूप से भाई बहन के प्यार का प्रतीक पर्व है। बहने भाई के भविष्य के लिए, सुखद भविष्य के कामना के उद्देश्य से प्रिया लेखन करती हैं। यह पर्व जो है प्रिया लेखन एक महीने तक चलता है, गोधन पूजा के दिन से शुरू होता है और एक महीने के बाद उसका समाप्ति होती है। इस दौरान महिलाएं दीवाल को, मिट्टी की दीवालें होती थी पहले, मिट्टी की दीवालों को उसमें गोबर से लेपती थी, उसके ऊपर गोबर से छोटी छोटी पिंडी बनाती थी और उस पिंडी में गेहूं का, जौ का, आंख, दांत, ये सबका चित्रण करती थी और प्रतिदिन शाम में वहाँ एक सामूहिक रूप से गीत का आयोजन होता था। महिलाएं गीत गाती थी, उसमें भाई के लिए, पति के लिए भी प्रेम उसमें दिखाई देता था उन गीतों में। इस तरह से लगभग एक महीने तक सामूहिक कहिए कि उल्लास का प्रतीक है। तो लोग सामूहिक आनंद की अभिव्यक्ति प्रिया लेखन के माध्यम से करते थे। धर्म तो था ही, धर्म, अध्यात्म और भाई के सुरक्षा, भविष्य की कामना, इन सब उद्देश्य से प्रिया लेखन होता था। तो प्रिया लेखन को हाल के वर्षों में कुछ ज्यादा ख्याति मिली कि जब से बिहार में लोक कलाओं के प्रति जागरूकता बढ़ी 2010 के दशक से
1: जी।
0: तो लोगों का ध्यान उस कला की ओर गया और फिर से प्रिया लेखन को कागज पर लोगों ने उतारना शुरू किया और उसी का परिणाम है कि आज प्रिया लेखन को GI मिला है भारत सरकार से।
1: जी, मिथिला कला है, उस चित्रकला को, पेंटिंग को पहले ही हमारे यहाँ से GI टैग मिल चुका है और विश्व लेवल पर यह विख्यात है। क्या आप मानते हैं कुछ और ऐसी कलाएं हैं या फिर पीढ़िया को इतना समय क्यों लगा GI टैग मिलने में?
0: देखिए, मिथिला पेंटिंग या मधुबनी पेंटिंग जिसको कहते हैं, इसको GI 2007 में मिला
1: जी,
0: क्योंकि मिथिला जो क्षेत्र है बिहार का वो ज्यादा जागरूक है और मिथिला कला के प्रति वहाँ के जो कलाकार हैं वो ज्यादा सक्रिय हैं। उनकी सक्रियता का परिणाम है कि वो लोग अपने धर्म को, संस्कृति को पालन करते आ रहे हैं। भोजपुर के साथ वैसा नहीं हुआ। भोजपुर हमेशा, जो भोजपुर क्षेत्र है, हमेशा विदेशियों का, मुगलों का, अंग्रेजों का शिकार रहा। हमेशा कोई ना कोई घटनाएं, ऐतिहासिक युद्ध, बक्सर का युद्ध हो या पलासी का युद्ध हो, हमेशा घटनाएं होती रही। तो वहां के लोगों का पलायन होते गया।

0: और आप समझ सकती हैं कि पहले पेट की भूख जरूरी है, तो उस स्थिति में वहां आर्थिक संकट हमेशा रहा। तो जहां आर्थिक संकट हो, पेट की भूख हो, वहां कला पीछे हो जाती है। तो
1: जी
0: धीमे धीमे लोग पलायन करते गए और उसके साथ ही संस्कृति का भी ह्रास होते गया। और भोजपुर के जो क्रिया लेखन है, एक उसका एक और कारण है उसके ठहराव में, कि पहले मिट्टी की दीवारें होती थी, क्रिया लेखन मिट्टी के दीवारों पर होती थी, लेकिन अब सभी जगहों पर अब मिट्टी की जगह
1: जी
0: सीमेंट और स्टोन का
1: हाँ
0: उपयोग होने लगा। तो परंपरा के प्रति कम हुआ झुकाव, इसके चलते क्रिया लेखन को गति नहीं मिल पाई। लेकिन जैसा मैंने पहले बताया कि 2010 के दशक से फिर से पुरानी परंपरा के प्रति भोजपुर के लोगों का ध्यान गया है और फिर से क्रिया लेखन की ओर लोग आकृष्ट हुए हैं।
1: जी, लोगों में जागरूकता आई है और देर आए लेकिन दुरुस्त है। अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जीआई टैग के मामले में उत्तर प्रदेश पूरे देश में शीर्ष पर है, आपकी नजर में सिन्हा जी बिहार के पास और कितनी संभावनाएं हैं और कौन सी वो कलाएं हैं जिनको मशहूरियत तो हासिल है लेकिन उनको जीआई टैग या फिर पहचान उतनी नहीं मिल पाई है?
0: बिहार में कुल मिलाकर 13 उत्पादों को, जिसमें लोक कलाएं भी शामिल है, 8 लोक कलाएं और शेष जो हैं उत्पाद हैं,
1: खान
0: जर्दालू
1: पान को
0: आम है,
1: लेकर
0: खान पान का चीज है, उनको जीआई टैग मिला है। निश्चित रूप से अन्य राज्यों की तुलना में, विशेषकर अगर यूपी से तुलना करें तो उसके तुलना में हम लोग का जीआई टैग कम है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि बिहार हैंडीक्राफ्ट्स के क्षेत्र में, हस्तकलाओं के क्षेत्र में देश के अधिकांश राज्यों से बहुत आगे है। यहाँ अगर भारत सरकार का आंकड़ा हम लोग लें तो 1 लाख की संख्या में रजिस्टर्ड कारीगर हैं बिहार में, और सिर्फ मिथिला पेंटिंग में 60,000 कारीगर हैं, 40,000 जो हैं अन्य कलाओं में हैं। और बिहार में आपको आश्चर्य होगा कि 16 पद्मश्री कलाकार हैं जो लोक कलाओं से निकले हैं।
1: जी
0: इतनी बड़ी संख्या देश के किसी दूसरे राज्य में नहीं है। तो बिहार लोक कलाओं के क्षेत्र में निश्चित रूप से समृद्ध है, लेकिन हम लोग जीआई के मामले में थोड़ा सा पिछड़े रहे हैं। इसमें इसका कारण हम देखते हैं तो देखते हैं कि हमारे जो कलाकार हैं गांवों में रहते हैं, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, उससे जीआई के प्रति उनमें उतनी जागरूकता नहीं आ पाई। लेकिन हाल के वर्षों में भारत सरकार, नाबार्ड और बिहार सरकार की एजेंसियां भी सक्रिय हुई हैं और उसी का

0: नाम है कि अभी जो 13 जीआई टैग मिले हैं सब 2007 के बाद के हैं। 2007 से जागरूकता बढ़ी, अब आने वाले दिनों में अभी भी कई कलाएं पाइपलाइन में है। अभी टिकुली पेंटिंग जो पटना की इतनी फेमस पेंटिंग है और भी कई लोक कलाएं, वुड क्राफ्ट है, बम्बू क्राफ्ट है जिसमें बिहार बहुत आगे है, पेपर मैसी है, पेपर मैसी में पद्मश्री भी मिल चुका है, टिकुली पेंटिंग में भी पद्मश्री मिल चुका है बिहार को, लेकिन वो जीआई में नहीं आ पाई है। लेकिन सरकार प्रयासरत है, बहुत सारी एजेंसियां लगी हुई हैं, आने वाले समय में और ज्यादा विषयों को जीआई टैग मिलने की संभावना है।
1: जी, उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में बिहार के जो जीआई टैग नंबर है उसमें और इजाफा होगा। प्रोग्राम के आखिरी सवाल की ओर हम पहुंच चुके हैं। यहाँ हम आपसे जानना चाहेंगे, आधुनिक दौर में एक तरफ जहाँ हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए, लोक कलाओं को बढ़ावा देने के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं, बावजूद इसके आप इन कलाओं के विकास में किस तरह की चुनौतियां देखते हैं?
0: अभी जो बाजारवाद का युग है, आधुनिक तकनीक का युग है, इस दौर में बहुत एक सबसे बड़ी चुनौती हस्तकलाओं के प्रति, लोक कलाओं के प्रति सामने है, डिजिटल होना। देखिए, उदाहरण के तौर पर हम आपको बताएं कि एक मिथिला पेंटिंग की साड़ी बनाने में एक कलाकार को 15 से 20 दिन लगता है, लेकिन जब से तकनीक एआई और डिजिटल आ गया है, अब मशीन से ही लोग साड़ी की पेंटिंग करने लगे हैं, स्टॉल की पेंटिंग करने लगे हैं, यहाँ तक कि पेंटिंग भी जो दीवारों पर सजती है उसको भी लोग डिजिटल करने लगे हैं। तो इससे कलाकारों की रोजी रोटी भी खत्म हो रही है और जो खुशबू है, हाथों की जो खुशबू होती है वो नहीं आ रही। तो डिजिटल जीआई में डिजिटल पर रोक है, तो हम लोग को प्रयास करना होगा सरकार को और सभी संस्थाओं को कि डिजिटल होने से बिहार की लोक कलाओं को बचाएं, हाथों की खुशबू को बरकरार रहने दें।
1: लेकिन इसमें कहीं ना कहीं एक चीज ये होती है, जैसे कि हस्तशिल्प जो हैंडीक्राफ्ट के जो कारीगर हैं, ये अगर अपने हाथों से बनाते हैं, आपने भी बताया कि एक मिथिला साड़ी को बनाने में 10 से 15 दिन लग जाते हैं, तो उतनी ही उसकी लागत भी बढ़ जाती है, तो कहीं ना कहीं ये आम लोगों से प्रोडक्ट दूरी बनाने लग जाते हैं। तो इसके लिए क्या कुछ प्रयास है, क्योंकि ये खास वर्ग तक, जैसे कि कश्मीर का पश्मीना है उसका प्राइस देखिए, मधुबनी साड़ी है उसका भी प्राइस अगर हम देखें, अगर रियल हैंडीक्राफ्ट है, तो आम लोगों तक ये कैसे पहुंच पाएगा, इसकी तरफ क्या कोई प्रयास हो रहे हैं?
0: देखिए, समय समय पर बहुत से डिजाइन के ट्रेनिंग दी जाती है कलाकारों को, चूंकि आज का जो युग है डिजाइन का युग है, जब तक हम अपने प्रोडक्ट में डिजाइन में वेरिएशन नहीं लाएंगे लोगों तक तो नहीं पहुंच पाएंगे। तो भारत सरकार और बिहार सरकार समय समय पर ट्रेनिंग देती है डिजाइन की। और जहां तक प्राइस की बात आपने कही, प्राइस में आप सही हैं कि प्राइस को ज्यादा होता है, लेकिन इसमें बिचौलियों की भूमिका ज्यादा हो जाती है।
1: जी,
0: मार्केट तक सीधे हमारे कलाकार पहुंच सके तो स्वाभाविक रूप से जो रेट है, दर है, कम होगा। बिचौलिये ज्यादा उसको मुनाफे पर बेचते हैं, उस पर रोक लगाने की जरूरत है।
1: जी, बहुत बहुत शुक्रिया अशोक कुमार सिन्हा जी, आप हमारे इस कार्यक्रम में शामिल हुए और इतनी उपयोगी जानकारी हमारे श्रोताओं के साथ आपने साझा की, धन्यवाद।
2: इसके साथ ही आज का सामयिक चर्चा कार्यक्रम संपन्न होता है। यह कार्यक्रम आकाशवाणी पटना के प्रादेशिक समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत किया गया।
3: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है, मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज़ पर। अगला कार्यक्रम थोड़ी देर में प्रसारित किया जाएगा, कृपया प्रतीक्षा करें।

आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: चन कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज पर। श्रोताओं, आइए सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं आर्किड बिजनेस कॉलेज, राजेंद्र नगर और सगुना मोड़ पटना।
3: उड़ान उड़ान उड़ान कार्यक्रम के साथ एक बार फिर से राजेश आप सबों के बीच आ गया। अति उत्साहित हूँ, हाँ, क्योंकि पिछले सप्ताह जो कार्यक्रम बजा था उसमें ढेर सारे फोन कॉल इस बार आए हैं। उसको सुनने के बाद क्या बक्सर, क्या भागलपुर, क्या बेतिया और क्या कटिहार, क्या आरा, पटना, छपरा, सिवान, हर जगह से हाँ फोन कॉल आए और उन्होंने कहा कि इंतजार था आपके इस कार्यक्रम का। जब आपका कार्यक्रम सुनते थे तो उस वक्त हमने इंटरमीडिएट नहीं किया था और आज आपने आकर हमें फिर से मार्गदर्शन किया। एक ही बात कहना चाहता हूँ पूरे बिहार वालों कि भैया टेक्निकल पढ़ाई का जमाना है। अगर टेक्निकल पढ़ाई किसी अच्छे इंस्टीट्यूशन से आपने कर लिया, हाँ, जिसमें कि बीसीए और बीबीए, कंप्यूटर से और मैनेजमेंट से बीसीए और बीबीए की पढ़ाई जो आपने कर ली तो रास्ता सहल हो जाता है। और अच्छा संस्थान इसलिए कहा कि वैसा संस्थान जिसका अपना इंफ्रास्ट्रक्चर हो, टीचर अच्छे हों, जॉब प्लेसमेंट अच्छा हो, किसी यूनिवर्सिटी से मान्यता प्राप्त हो। तो आपको जैसा कि हम हमेशा बताते रहे कि आर्किड बिजनेस कॉलेज आर्य कुमार रोड राजेंद्र नगर और सगुना मोड़ पटना में जो संस्थान है जिसके तरफ से ये कार्यक्रम हम लेकर आते हैं, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी से स्थायी मान्यता प्राप्त संस्थान है और 27 वर्षों से ध्यान से सुनिए, आप युवाओं के साथ इस क्षेत्र में काम करने का अनुभव है। सगुना मोड़ हो या राजेंद्र नगर आर्य कुमार रोड, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, अपना विहंगम कंप्यूटर लैब और बहुत ही उत्तम शिक्षक की व्यवस्था है। और जो डायरेक्टर हैं, हाँ, आशीष आदर्श जी, हमेशा उनसे आप मिल सकते हैं, जानकारियां ले सकते हैं, पूछ सकते हैं। हम नंबर बता रहे हैं, अगर बीसी और बीबीए करना होना तो कम से कम आर्किड बिजनेस कॉलेज में एक बार फोन जरूर कर लीजिएगा। नंबर है 7520800800। अगर ऐसे कहें 7520800800, वाह वाह क्या बात है, 7520800800, ये याद हो गया ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर से बताते हैं कि पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी का ये एकमात्र संस्थान है जिसे बीसी और बीबीए के लिए स्थायी मान्यता दी गई है।
4: मेरे कॉलेज की मान्यता समाप्त हो गई है।
5: क्या तुमने स्थायी मान्यता वाले कॉलेज में दाखिला नहीं लिया था?
4: स्थायी मान्यता का कौन सा कॉलेज है बिहार में?
5: आर्किड बिजनेस कॉलेज, जहाँ से बीसीए या बीबीए कोर्सेज कर सकती हो।
4: फिर तो आर्किड से ही बीसीए या बीबीए करना सेफ है। आर्किड बिजनेस कॉलेज, राजेंद्र नगर एवं सगुना मोड़ पटना। कॉल करें 7520800800, याद रखें 7520800800।
3: और अब बुलाते हैं आशीष आदर्श जी से और थोड़ा बातचीत का सिलसिला बढ़ाते हैं। पीसीएम जो करते हैं ना, खास करके लड़के, उनकी पहली इच्छा होती है कि हम इंजीनियरिंग करें, लेकिन आज सवाल पूछते हैं आशीष जी से कि उनके लिए क्या बेहतर होगा। तो आशीष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और सबसे पहले आप

0: हमें बताइए, पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ किए हुए युवा साथियों के लिए क्या ऑप्शन हो सकता है इंजीनियरिंग के अलावा, क्योंकि पीसीएम से पढ़ने वाले बच्चे जो है ना, युवा जो है ना, वो सोचते हैं कि 4 साल में हम इंजीनियरिंग कर लेंगे और उसके बाद हमको नौकरी मिल जाएगी। उनके माता पिता भी यही सोचते हैं और आगे क्या होता है ये हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं और उनको भी पता चलता है। तो क्या इंजीनियरिंग के अलावा भी पीसीएम के युवा साथियों के लिए बीसीए, बीबीए या इस तरीके के कोई और कोर्सेज हैं, या आपका एक्सपीरियंस यानी 27 वर्षों का अनुभव क्या कहता है?
1: देखिए, ऐसा है कि अगर आप एक डेटा, मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ यहाँ पर, आज के डेट में एक डेटा कहीं मैंने पढ़ा था, उसमें लिखा हुआ था कि आज हमारे देश में जो इंजीनियर्स की जो संख्या, है वो लगभग 14 लाख के आसपास में है। मैं ये 14 लाख उनको बोल रहा हूँ जिनके पास बीटेक की डिग्री है। इस 14 लाख में से मात्र 4 लाख के पास जॉब है, मात्र 4 लाख के पास। उसके अतिरिक्त 3 लाख ऐसे हैं जिन्होंने अपना इंजीनियरिंग छोड़ दिया, उसके बाद वो कहीं बैंक में काम कर रहे हैं या कोई इंश्योरेंस बेच रहा है कहीं, या किसी ने बिजनेस कर लिया, और बाकी 7 लाख लोग निकल गया। बाकी 7 लाख आज भी रोड पर जॉब के लिए ढूंढ रहे, घूम फिर रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, वो टहल रहे हैं, उतना पैसा लगा करके, इतना समय लगा करके। मेरा यही कहना है, यदि आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स अगर आपका मजबूत नहीं है तो केवल इंजीनियरिंग का कोर्स करने के लिए इंजीनियरिंग मत कीजिए। उसके अतिरिक्त अगर आपको लगता है कि आपकी आपका जो जो टैलेंट है वो एवरेज है, तो आपके लिए एक बहुत अच्छा कोर्स मैं बताता हूँ, जिस कोर्स को आप ज़रूर करिए और आप देखिए उसका कितना फ़ायदा आपको मिलता है। उस कोर्स का नाम है बीसीए, बैचलर्स इन कंप्यूटर्स एप्लीकेशन। 3 साल का कोर्स है। 3 साल का कोर्स करने के बाद आप 2 साल आप एमसीए कहीं से कर लीजिए, फिर आपको देखिए कितने सारे एवेन्यूज। एमसीए करने के बाद में बैंक से लेकर के इवन के जो आईटी कंपनी से लेकर के जितनी बड़ी कंपनियां हैं, आप टीसीएस का, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज का या विप्रो का विज्ञापन उठा करके देखिए, उसमें लिखा रहता है जो मिनिमम क्वालिफिकेशन एमसीए, वो एमसीए आप कीजिए बीसीए करने के बाद में, या बीसीए करने के बाद भी इवन बहुत सारी आईटी कंपनीज वो आपको एंट्री लेवल जॉब के लिए आपको अब्सॉर्ब कर लेती है, जैसे हमारे यहाँ भी हो रहा है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि बीसीए एक अच्छा कोर्स है, इस कोर्स को आप करिए और करने के बाद आपको लगेगा आगे चल करके कि हमने इंजीनियरिंग से बेहतर किया। हाँ, अगर आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बहुत मजबूत है, एकदम आप उसमें टॉपर्स में हैं, तो फिर आपको जरूर इंजीनियरिंग की तरफ जाना चाहिए। अन्यथा मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके की मैं देख रहा हूँ कि बेरोजगार इंजीनियरों की भीड़, बीटेक स्टूडेंट्स की भीड़, तो मुझे लगता है आप कंपेयर कर दीजिए दोनों को, बीसीए करने के बाद स्टूडेंट्स की भीड़, जो बेरोजगारों की भीड़, और इंजीनियरिंग करने के बाद बेरोजगारों की भीड़। आपको ये लगेगा कि इंजीनियरिंग में बेरोजगारों की भीड़ ज़्यादा है और बीसीए करने के बाद कम है। तो मेरा समझना यही है कि आप बीसीए करिए और उसका आप लाभ लीजिए, आगे चल के एमसीए कीजिए, बाकी सब मतलब बहुत अच्छा होगा।
0: क्या बात है आशीष जी, आपसे बात करना हमेशा एक नया अनुभव होता है। डाटा जो है ना, आंकड़े आपके जुबान पर रहते हैं। 27 वर्षों का आपका अनुभव और 27 वर्षों का आर्केड बिजनेस कॉलेज का अनुभव निश्चित रूप से युवाओं के लिए एक नया रास्ता खोलता है। यदि आप पीसीएम किए हैं, है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के साथ आपने किया है इंटरमीडिएट, तो बीसीए और बीबीए कीजिए और एक बार जरूर नॉक कीजिएगा हाँ आर्केड बिजनेस कॉलेज को, क्योंकि 27 वर्षों का अनुभव है। आशीष जी खुद एक करियर काउंसलर हैं, हम नंबर बता रहे हैं वही एकदम रिदम में, 7520800800, हाँ 7520800800, यानी 7520800800, और ये उड़ान कार्यक्रम हम लेकर आ रहे हैं। अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का निर्वाह करते हैं आर्केड बिजनेस कॉलेज वाले, समाज में युवाओं को अवेयर करना चाहते हैं। चलिए वापस चलते हैं आशीष जी के पास। आशीष जी, आपने पीसीएम वालों को तो बता दिया, आर्ट्स वाले जो युवा साथी हैं हमारे जिन्होंने कला क्षेत्र से इंटरमीडिएट किया है, उनके लिए भी अगर थोड़ा मार्गदर्शन कर दें तो ज्यादा अच्छा होगा।
1: देखिए, आर्ट्स से जिसने किया है, वैसे तो देखिए अभी कई विश्वविद्यालय बीसीए के कोर्स के लिए मैथमेटिक्स जरूरी मांगते हैं 10+2 में, लेकिन कईयों ने रिलैक्स भी कर दिया है। लेकिन मेरा समझना यही है कि यदि आपने आर्ट्स से अगर 10+2 किया है, तो फिर बीबीए कोर्स, बैचलर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कोर्स बहुत बेहतर हो। तो मैं समझता हूँ कि आपको किसी ऐसे फील्ड की तरफ जाना चाहिए जहाँ पर आपका निश्चित जॉब मिले। वैसे स्थिति में बीबीए कीजिए, बैचलर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, और उसके बाद अगर आपने किसी अच्छी जगह से एमबीए कर लिया तो फिर पीछे मुड़ करके देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और यही सेम मैसेज मैं उन स्टूडेंट्स के लिए भी देना चाहूंगा जिन्होंने 10+2 कॉमर्स के साथ किया है, क्योंकि कॉमर्स के बहुत सारे पेपर्स ऐसे होते हैं जो पेपर्स उनको

0: बी बी ए में फिर से दोबारा पढ़ने पड़ते हैं, तो उनको बहुत सुविधा होगी। कॉमर्स करने के बाद अगर आप बीबीए करते हैं उसके बाद एमबीए करते हैं तो आपको फिर पीछे मुड़के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
1: तो आर्ट्स और कॉमर्स वालों, आपके लिए भी आशीष जी ने दो बातें कही है, उस पर सोच विचार करना अब आपकी जिम्मेदारी है। हम तो कहेंगे बीसीए और बीबीए बहुत ही वाइब्रेंट है और इसको हमने देखा है, हमने देखा है, एक लंबा अनुभव है हमारे पास भी, कि जो युवा बीसीए और बीबीए किए किसी अच्छे संस्थान से लाइक आर्किट बिजनेस कॉलेज और इस तरीके से, तो उनका करियर बहुत आगे गया है, उड़ान चल रहा है। उड़ान कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आते हैं, करियर गाइडलाइन है ये, है ना, और खास करके टेक्निकल पढ़ाई पर एम्फेसाइज करता हूँ, जिससे कि कल को बेरोजगारी नहीं हो, आपको रोजगार मिल जाए। एंड ऑफ द डे, अंत में तो एक ही मोटो होता है, अच्छा पैसा कमाना, और अच्छा पैसा तभी मिलेगा जब अच्छा रोजगार या नौकरी होगी, और अच्छी नौकरी तभी होगी जब किसी अच्छे संस्थान से आपने टेक्निकल पढ़ाई की होगी, जिसमें बीसीए और बीबीए बहुत ही अव्वल है। हम एक बार आर्किट बिजनेस कॉलेज का नंबर बता रहे हैं, वही 7520800800 7520800 7520800। पूरे बिहार में हम ये कार्यक्रम लेकर आ रहे हैं, आकाशवाणी के 6 केंद्र से इसका प्रसारण हो रहा है। हम नहीं चाहते कि कोई भी युवा छूट जाए और कल को कहे कि मुझे तो पता ही नहीं था, तब हम कैसे अपनी सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्वहन कर पाएंगे। इसीलिए आप भी फोन कीजिए दिए गए नंबर पर, एडमिशन लेना हो ना लेना हो, जानकारियां लेना ही चाहिए। जी हाँ, और अब आशीष जी एक बात बताइए, अगर बीसीए और बीबीए में से किसी एक कोर्स को चुनना होगा तो युवा किसको चुने?
0: देखिए, मैं यही कहूंगा कि अगर आपका 10+2 में पीसीएम रहा है और मैथमेटिक्स अगर आपका ठीक है, अच्छा है, तो फिर आपको बीसीए करना चाहिए। और अगर आपका ठीक है, आपने पीसीएम भी कर लिया है उसके बाद भी, लेकिन मैथमेटिक्स भी एवरेज है, तो आप बीबीए चुन सकते हैं। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एमसीए, बीसीए और एमसीए करने के बाद एक आप प्रोग्रामर बनते हैं, और ऐसा माना जाता है कि जो आदमी जिसका मैथमेटिक्स और फिजिक्स जितना बेहतर होता है वो उतना ही अच्छी एनालिसिस कर सकता है, और एनालिसिस अगर आपकी जो आपकी स्किल अगर है तो आप उतने अच्छे प्रोग्रामर बन सकते हैं। तो मेरा समझना यही है कि कुल मिलाकर के अगर आपका, आपको खुद आकलन करना है, अब मार्क्स के हिसाब से मैं चलिए बोल देता हूँ, अगर आपको पीसीएम में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स में अगर आपको 70% से ज़्यादा मार्क्स है या 60% से भी ज़्यादा मार्क्स है तो आप बीसीए ले सकते हैं, लेकिन अगर उससे कम है, 60-70% से कम अगर है, तो फिर आपको बीबीए की तरफ जाना चाहिए। और वैसे ही आर्ट्स के स्टूडेंट्स और कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए भी यही थ्योरी में कहूँगा कि अगर आपको आपके अपने सब्जेक्ट में, अगर मान लीजिए कॉमर्स को, तो मैं बोलूँगा कि वो बीसीए की तरफ ना जाएं, बेहतर है वो बीबीए ही लें, क्योंकि उनका ऑलरेडी उनका कॉमर्स का एक बैकग्राउंड रहा है और आगे चल करके उससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें उनको पढ़ने में सुविधा होगी बीबीए कोर्स में, और फिर आगे एमबीए में भी वही सारी चीज़ें विस्तार से पढ़ना होगा उनको।
1: एक बहुत ही सेंसिटिव सवाल है आशीष जी आपसे, आपका अनुभव है, आप बता पाएंगे कि जो बच्चे बीसीए और बीबीए करके आगे पढ़ना नहीं चाहते हैं, है ना, तो उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटी है, क्या रोजगार मिल जाएगा, कहाँ जा सकते हैं वो?
0: देखिए, आप आर्किट बिजनेस कॉलेज में आइए अगर आप ऐसा समझते हो, बेहतर समझते हो तो, और फिर आप केवल अपना समय दीजिए हमें, आपको प्रॉपर आप क्लासेस करिए, आप प्रॉपर जो भी जितने भी वर्कशॉप्स होते हैं, जो भी अभी मोटिवेशनल सेशंस होते हैं, उन सबों को अटेंड कीजिए। आपको हम आर्किट बिजनेस कॉलेज में वो चीज़ देते हैं जो नॉर्थ इंडिया में कोई दूसरा नहीं देता। कारण क्या है कि जितने बड़े बड़े जो वर्कशॉप्स होते हैं यहाँ पे, अब जैसे कि अवध ओझा आते हैं, सोनू शर्मा आते हैं, चेतन भगत आते हैं, सारे के सारे, इन सबों के वर्कशॉप को अगर आप दिल्ली जाकर के अगर अटेंड करेंगे तो एक एक वर्कशॉप का 10-10, 15-15 रुपए उसका शुल्क है, जो सब कुछ हम यहाँ पे फ्री आपको देते हैं। मनोज वाजपेयी ये भी बीच में आए थे, उनका सेशन हुआ, फिर अभी बहुत सारे जितने भी सेशन आप गौड़ गोपाल दास आए, मतलब जो भी इंडिया के जो टॉप जो इंस्टीट्यूशन जो मोटिवेटर्स हैं वो सारे हमारे यहाँ आते हैं बच्चों को कुछ सीख देने के लिए। डॉक्टर किरण बेदी कई बार आ चुकी हैं। तो कुल मिला के मेरे कहने का मतलब यही है कि आप ज़रूर आइए और आकर के यहाँ पे जो भी जितने भी वर्कशॉप्स होते हैं सबको आप अटेंड कीजिए और आप खुद देखिए कि आप किस प्रकार बन करके 3 साल के बाद यहाँ से निकलते हैं।
1: आशीष जी, पेरेंट्स के लिए क्या कहना चाहते हैं बताइए, माता पिता का क्या रोल होना चाहिए?
0: देखिए, ऐसा है कि मैं समझता हूँ कि जो पेरेंट्स से बेहतर करियर काउंसिलर्स और कोई नहीं होते बच्चों के, क्योंकि वो अपने बच्चों के सारे लिमिटेशंस को जानते हैं कि मेरा बच्चा क्या कर सकता है क्या नहीं। मैं समझता हूँ कि उनको इस बारे में ज़रूर सोचना चाहिए और अपने बच्चे को वही ऑप्शन सेलेक्ट करने की छूट देनी चाहिए जो करना चाहता है। देखिए, हमेशा

0: के चलिए कि एक थर्ड क्लास इंजीनियर से एक फर्स्ट क्लास चार्टर्ड अकाउंटेंट हमेशा ज्यादा बेहतर है। तो जो उसका फील्ड में जिसमें वो जाना चाहता है उसमें जरूर जाए, और उसके लिए पूरा जो पेरेंट्स का सपोर्ट उसको होना चाहिए।
1: आशीष जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए, बने रहिए, अगले एपिसोड में आपसे आगे बातचीत करेंगे। फिलहाल आशीष जी चले गए, आपको बताएं वैसे युवा साथियों, अगर आपके मन में झिझक है कि मैं गांव का रहने वाला हूं कैसे क्या कर पाऊंगा, तो आपके लिए बताएं आर्किड बिजनेस कॉलेज में अलग से क्लासेस यहां लिए जाते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट के। क्रेडिट कार्ड से यानी पैसे की समस्या है तो आप पढ़ाई कर सकते हैं, और ये जो संस्थान है ना आर्किड बिजनेस कॉलेज जिसकी तरफ से ये कार्यक्रम हम लेकर आ रहे हैं उड़ान, ये पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी से स्थायी मान्यता प्राप्त संस्थान है।
2: मेरे कॉलेज की मान्यता समाप्त हो गई है।
3: क्या तुमने स्थायी मान्यता वाले कॉलेज में दाखिला नहीं लिया था?
2: स्थायी मान्यता का कौन सा कॉलेज है बिहार में?
3: आर्किड बिजनेस कॉलेज, जहां से BCA या BBA कोर्सेज कर सकती हो।
2: फिर तो आर्किड से ही BCA या BBA करना सेफ है। आर्किड बिजनेस कॉलेज, राजेंद्र नगर एवं सगुना मोड, पटना। कॉल करें 7520-800-800, याद रखें 7520-800-800।
1: तो बस आज के लिए चलने से पहले नंबर है 7520-800-800, 7520-800-800 जरूर डायल करें BCA और BBA के लिए आर्किड बिजनेस कॉलेज को। नमस्कार।
4: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे आर्किड बिजनेस कॉलेज राजेंद्र नगर और सगुना मोड़ पटना।
5: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान, ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है, मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज पर। श्रोताओं, अगला कार्यक्रम थोड़ी देर में प्रसारित किया जाएगा, कृपया प्रतीक्षा करें।

ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज पर। श्रोताओं आइए सुनते हैं सुगम संगीत। इस कार्यक्रम में प्रस्तुत है गीत, कलाकार है अनूप कुमार।

सुगम संगीत कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे गीत अनूप कुमार के स्वर में। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है, मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, थोड़ी देर में हम सुनते हैं समाचार संध्या आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जागृति शर्मा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत को शांति और सहयोग का पक्षधर बताया। कहा, वैश्विक संकटों और युद्ध जैसी परिस्थितियों का समाधान संवाद और कूटनीति से ही संभव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जनजातीय समुदाय देश के विकास में महत्वपूर्ण भागीदार बन रहा है। ओडिशा में 47,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शुभारंभ। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किश्त जारी की। 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि किसानों के खातों में अंतरित। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री कल कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर राष्ट्रीय समारोह का नेतृत्व करेंगे। नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा कल, परीक्षा केंद्रों पर कड़े सुरक्षा प्रबंध। ईरान ने युद्ध विराम उल्लंघन के बाद होर्मुज जल डमरू मध्य फिर से बंद किया। और चेन्नई में तीसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 9 विकेट से हराकर श्रृंखला 3-0 से जीती। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत हमेशा शांति और सहयोग का पक्षधर रहा है, क्योंकि जटिल वैश्विक मुद्दों और युद्ध जैसे संकटों का समाधान केवल संवाद और कूटनीति से ही संभव है। राष्ट्रपति ने मोहन चरण मांझी सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर ओडिशा के मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में एक जनसभा में ये बात कही। राष्ट्रपति ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व नेताओं के साथ अपने दूरदर्शी शासन और संपर्क के जरिए वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाया है।
1: देशर प्रधानमंत्री भव्य दायित्व ग्रहण करिवा दिनरु
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना पदभार संभालने के बाद से राष्ट्रीय हित में कई कदम उठाए हैं। इस महीने उन्होंने लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल पूरा करने का रिकॉर्ड बनाया। मैं सभी नागरिकों की तरफ से इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए उन्हें बधाई देती हूं। मैं कामना करती हूं कि वे देश के लोगों के हित के लिए निरंतर काम करते रहें और भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का सपना साकार करने में राष्ट्र का नेतृत्व करते रहें।
1: यह मोर आंतरिक कामना।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं से सशक्त होकर जनजातीय समुदाय भारत के विकास में सक्रिय योगदान दे रहे हैं। उन्होंने पूर्वी भारत के विकास में तेजी लाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार के पूर्वोदय दृष्टिकोण का भी उल्लेख किया।
3: ओडिशा में आर्थिक गतिविधियां, निवेश और उद्योगों को आकर्षित करने का सामर्थ्य आज नजर आ रहा है। केंद्र सरकार का विजन है पूर्वी भारत के विकास से भारत का विकास। इसलिए हम पूर्वोदय की नीति पर काम कर रहे हैं। जिस पूर्वी भारत को कांग्रेस के दौर में पिछड़ेपन का पर्याय बना दिया गया था,

0: द्वार बन रहा है।
1: इस दौरान ओडिशा में 47,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया। बाद में प्रधानमंत्री हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंगाल दिवस समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं से राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किश्त के रूप में 18,880 करोड़ रुपए जारी किए। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे देश भर के 9,44,00,000 से अधिक किसानों को लाभ मिलेगा।
0: साथियों, आज पीएम किसान सम्मान निधि के तहत देश भर के 9 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में पैसे भेजे गए हैं और पश्चिम बंगाल के किसानों के लिए एक और खुशी की खबर है, आज से राज्य में पीएम फसल बीमा योजना शुरू की जा रही है।
1: प्रधानमंत्री कोलकाता में कल आईएनएस दुनागिरी, आईएनएस संशोधक और आईएनएस अग्रय का अनावरण करेंगे। इन पोतों में 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल विश्व भर में मनाया जाएगा। इस वर्ष का विषय है बढ़ती उम्र के प्रभाव को रोकने के लिए योग। मुख्य कार्यक्रम कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम में योगाभ्यास के दौरान राष्ट्र का नेतृत्व करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि रेड रोड पर राष्ट्रीय कार्यक्रम सुबह 5 बजे शुरू होगा।
2: संस्कृति मंत्रालय द्वारा देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक स्थलों और योग परंपराओं को जोड़ते हुए देश भर के 100 विशेष स्थानों पर योग के विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस पहल के तहत 12 प्रमुख स्थलों पर बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिनमें नई दिल्ली में लाल किला, उत्तराखंड में हरिद्वार, उड़ीसा में कोणार्क, कर्नाटक में हम्पी, तमिलनाडु में महाबलीपुरम, महाराष्ट्र में मुंबई, बिहार में नालंदा, गुजरात में अहमदाबाद, उत्तर प्रदेश में सारनाथ, लद्दाख में लेह, तेलंगाना में हैदराबाद और असम में सिलचर शामिल है। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के साथ मिलकर विदेशों में मौजूद 210 से ज्यादा भारतीय मिशन लगभग 2,500 स्थानों पर योग कार्यक्रम आयोजित करेंगे। वहीं दिल्ली में शांति पथ, यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, कर्तव्य पथ

0: राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का नेतृत्व करेंगे। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में विशेष योग दिवस समारोह आयोजित करेगा। इस आयोजन में लगभग 1500 वरिष्ठ नागरिकों के शामिल होने की संभावना है। इसी कड़ी में आकाशवाणी समाचार आयुष राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार प्रताप राव जाधव का विशेष साक्षात्कार प्रसारित करेगा। आकाशवाणी एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज चैनल पर यह साक्षात्कार आज रात 9:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। श्री जाधव ने बताया कि कामकाजी लोगों के लिए सरकार ने वाई ब्रेक ऐप भी शुरू किया है।
1: लोग दिन भर चेयर पे बैठे के काम करना पड़ता है, वो लोग भी जब लंच ब्रेक होता है तब तक बहुत सारी थकान वो लोगों में आती है, तो वो थकान दूर करने के लिए भी उनके लिए वाई ब्रेक नाम का एक हमने ऐप निकाला है कि उसमें 10 मिनट में तुम चेयर पर बैठे बैठे कौन से आसन कर सकते हो, करने से जो भी तुम्हारा थकान आई होगी वो दूर हो जाएगी।
0: दुनिया भर में भारतीय दूतावास और राजनयिक मिशन कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए पूरी तरह तैयार हैं। आज नेपाल में भारतीय दूतावास ने लुम्बिनी में योगासन कार्यक्रम आयोजित किया। चीन में भारतीय दूतावास ने पेचिंग में आयोजित योग कार्यक्रम की झलकियां साझा की। उधर जापान में भारतीय दूतावास ने कल सुकिजी होंगन जी मंदिर में योग दिवस कार्यक्रम आयोजित करने की घोषणा की है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले संयुक्त अरब अमीरात में भी कई कार्यक्रम आयोजित हुए। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा कल आयोजित की जाएगी। परीक्षा देश के 551 शहरों और विदेश में 14 शहरों में होगी। इसमें 22,79,000 से अधिक परीक्षार्थी शामिल होंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी पुनर्परीक्षा की तैयारियों के अंतर्गत आज राष्ट्रव्यापी मॉक ड्रिल आयोजित की। एक रिपोर्ट।
2: परीक्षा के सुरक्षित पारदर्शी और सुचारू संचालन के लिए पर्यवेक्षकों समन्वयकों पुलिस बलों और प्रशासनिक अधिकारियों सहित 2,00,000 से अधिक कर्मियों की तैनाती की गई है। निष्पक्ष और पारदर्शी परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है। एनटीए भ्रामक सूचनाओं पर रोक लगाने और किसी भी प्रकार की अनियमितता को रोकने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की भी सक्रिय रूप से निगरानी कर रहा है। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक आयोजित की जाएगी। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा कल संयुक्त अरब अमीरात में 3 निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव आया है। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम का प्रसारण कर रहा है। आज जानकारी सशक्त भारत के संकल्प को साकार करने वाली सरकार की परिवर्तनकारी पहलों के बारे में।
3: पिछले 12 वर्षों में सरकार ने भारत के हाईटेक क्षेत्र में बड़ा बदलाव लाने का काम किया है। सशक्त भारत के 2 महत्वपूर्ण आधार हैं सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का विकास और स्पेस स्टार्टअप्स की तेजी से बढ़ती संख्या। सरकार की नीतियों और फैसलों से सेमीकंडक्टर क्षेत्र में सिर्फ योजनाएं ही नहीं बनी बल्कि अब निर्माण और डिजाइन से जुड़े कई इकाई भी काम कर रहे हैं। दिसंबर 2021 में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन शुरू किया गया। इसके लिए 76,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया। इस योजना के तहत सिलिकॉन फैब कंपाउंड सेमीकंडक्टर इकाई असेंबली और टेस्टिंग सुविधाओं तथा चिप डिजाइन के लिए 50% तक वित्तीय सहायता दी गई। साल 2026 में सरकार ने सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 शुरू किया जिसके लिए 1,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य उद्योगों के सहयोग से शोध और प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करना नई तकनीकों का विकास करना और भविष्य के लिए कुशल मानव संसाधन तैयार करना है। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मिशन 1.0 ने इस जटिल उद्योग की मजबूत नींव रखी है।
4: We have been able to achieve that in the first.
5: हम अपने सेमीकंडक्टर मिशन के पहले चरण में ये हासिल कर पाए हैं। 75,000 से ज्यादा इंजीनियर इस क्षेत्र में प्रशिक्षित हो चुके हैं। 300 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज छात्रों को चिप डिजाइन करना सिखा रही हैं और भारत में 2 नैनोमीटर चिप्स डिजाइन की जा रही हैं, जो दुनिया की सबसे एडवांस चिप्स हैं। इनमें एनवीडिया और इंटेल की चिप्स भी शामिल हैं और ये सभी अब भारत में ही डिजाइन की जाती हैं।
4: They are all designed in India now.
3: वहीं वहीं भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 ने निजी कंपनियों को अंतरिक्ष क्षेत्र में पूरी तरह काम करने की अनुमति दी है। अब निजी संस्थाएं रॉकेट लॉन्च, उपग्रह निर्माण और संचालन, डेटा संग्रह और वितरण तथा ग्राउंड स्टेशन जैसी गतिविधियां कर सकती हैं। इस नीति के बाद भारत में स्पेस स्टार्टअप्स की संख्या 2014 में केवल एक से बढ़कर

0: 400 से अधिक हो गई है। इससे देश की निजी अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को नई गति मिली है। भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था वर्तमान में लगभग 8 अरब डॉलर से अधिक की है और अगले 8 से 10 वर्षों में इसके 4 से 5 गुना बढ़कर 40 से 45 अरब डॉलर तक पहुंचने की संभावना है। आकाशवाणी के साथ बातचीत में अनिल प्रकाश, स्पेस इंडस्ट्री एसोसिएशन ऑफ इंडिया के महानिदेशक ने बताया कि भारत में अब 400 से अधिक स्पेस टेक स्टार्टअप्स हैं।
1: नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में स्पेस सेक्टर रिफॉर्म, स्पेस की स्थापना और प्राइवेट पार्टिसिपेशन में को बढ़ावा देने वाली नीतियों ने एक नई क्रांति की शुरुआत की है। आज भारत में 400 से अधिक स्पेस टेक स्टार्टअप कार्यरत है जो सैटेलाइट, लॉन्च व्हीकल, अर्थ ऑब्जर्वेशन और डाटा सर्विस जैसे क्षेत्रों में इनोवेशन कर रहे हैं।
0: सेमीकंडक्टर मिशन की उपलब्धियों और तेजी से बढ़ती निजी अंतरिक्ष क्षेत्र के माध्यम से भारत विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। ईरान की संयुक्त सैन्य कमान ने आज घोषणा की है कि होर्मुज जलडमरू मध्य को एक बार फिर बंद कर दिया गया है। ये फैसला लेबनान में इसराइल की सैन्य कार्रवाई का हवाला देते हुए लिया गया है। सरकारी टेलीविजन पर प्रसारित बयान में ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर इसराइल के हमले जारी रहे तो वह और कड़े कदम उठा सकता है। उधर दक्षिणी लेबनान में इसराइल के हवाई हमलों में 2 बच्चों सहित 16 लोगों की मौत हो गई। ये हमले संघर्ष विराम की खबरों के कुछ ही घंटों बाद हुए। कैलाश मानसरोवर यात्रा के तीर्थयात्रियों का पहला जत्था आज नाथुला दर्रे से होते हुए चीन में प्रवेश कर गया। इस दल में 47 लोग हैं। चेन्नई में भारत ने तीसरे और अंतिम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 9 विकेट से हराकर श्रृंखला 3-0 से जीत ली है। भारत ने 29वें ओवर में एक विकेट पर 224 रन बनाकर जीत हासिल की। 5 विकेट लेने वाले प्रसिद्ध कृष्णा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत को शांति और सहयोग का पक्षधर बताया। कहा, वैश्विक संकटों और युद्ध जैसी परिस्थितियों का समाधान संवाद और कूटनीति से ही संभव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जनजातीय समुदाय देश के विकास में महत्वपूर्ण भागीदार बन रहे हैं। ओडिशा में 47,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शुभारंभ। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किश्त जारी की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री कल कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर राष्ट्रीय समारोह का नेतृत्व करेंगे। नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा कल। परीक्षा केंद्रों पर कड़े सुरक्षा प्रबंध। और चेन्नई में तीसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को हराकर श्रृंखला 3-0 से जीती। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: Good evening. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. President Draupadi Murmu says India has consistently emerged as voice of peace, dialogue and cooperation as it believes issues can only be resolved through mutual discussion and not war. Prime Minister Narendra Modi asserts tribal communities are emerging as active participants in India's development journey, launches development projects worth more than 47,000 crore rupees in Odisha. Prime Minister releases 23rd installment of PM Kisan Samman Nidhi scheme of over 18,000 crore rupees. Prime Minister to lead International Day of Yoga 2026 celebrations at Kolkata's historic Red Road tomorrow. NEET UG 2026 re-examination to take place tomorrow under strict vigil. Iran closes Strait of Hormuz over ceasefire violation. And in cricket, India clean sweep 3-match series against Afghanistan 3-0, defeating the visitors by 9 wickets in third ODI at Chennai. President Draupadi Murmu today lauded Prime Minister Narendra Modi's leadership, stating that he has significantly enhanced India's prestige and influence on the global stage through his visionary governance and constructive engagement with

0: बिहार में नालंदा, गुजरात में अहमदाबाद, उत्तर प्रदेश में सारनाथ, लद्दाख में लेह, तेलंगाना में हैदराबाद और असम में सिलचर शामिल है। सकाफती राबतों के भारतीय कौंसल के साथ इश्तराक में बैरून मुल्क 210 से ज़्यादा भारतीय मिशन दुनिया भर में तकरीबन 2500 मकाम पर योगा तकरीबात का इनेकाद करेंगे। दिल्ली में अहम आवामी मकाम पर योगा तकरीबात का अहतमाम किया जाएगा, जिनमें शांति पथ के लॉन, यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, कर्तव्य पथ, सीपी सेंट्रल पार्क और तालकटोरा गार्डन शामिल हैं। दिल्ली से आनंद कुमार की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं मोहम्मद आजम खान।
1: ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल कोलकाता में मुल्क में ही बनाए गए भारतीय बहरिया के 3 बहरी जंगी जहाजों को पानी में उतारने की रस्म अंजाम देंगे। इनमें INS दुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रे शामिल हैं। इनका डिजाइन बहरिया के जंगी बहरी जहाजों के ब्यूरो ने तैयार किया है और गार्डन रीच शिप बिल्डर्स और इंजीनियर्स ने इन्हें तामीर किया है। इसका मकसद मुकाबला करने की सलाहियत को मुस्तहकम बनाना, हाइड्रोग्राफिक सर्वे और आपदोज शिकन निजाम को मजबूत बनाना है। भारत ने पिछले 12 साल में वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क्यादत में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के उसूलों के तहत बहुत सी काबिल जिक्र तब्दीलियां की हैं। आकाशवाणी का खबरों का शोभा आपके लिए एक खसूसी फीचर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के पेश कर रहा है। आज हम एक बाख्तियार भारत के तस्वुर के लिए यकसर तब्दीली लाने वाले इकदाम का जिक्र कर रहे हैं।
2: गुज़श्ता 12 बरस के दौरान हुकूमत ने मुल्क में जदीद टेक्नोलॉजी के सिलसिले में बड़े पैमाने पर ढांचा जाती इकदाम किए हैं। बाख्तियार भारत के 2 सबसे अहम सतून सेमीकंडक्टर इको निज़ाम की तश्कील और खला से मुतालिक स्टार्टअप्स की ज़बरदस्त तरक्की हैं। 76,000 करोड़ रुपए के बड़े अखराज के साथ दिसंबर 2021 में भारतीय सेमीकंडक्टर मिशन का आगाज किया गया था। 2026 तक हुकूमत ने सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे मरहले का आगाज किया, जिसका मकसद सनत की क्यादत में तहकीक, टेक्नोलॉजी के फरोग के लिए तरबियती मराकज और मुस्तकबिल के लिए हुनरमंद अफरादी कुव्वत की तश्कील पर जोर देना है। सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 के बारे में बात करते हुए इलेक्ट्रॉनिक्स और IT के वजीर अश्विनी वैष्णव ने इस बात को उजागर किया कि मिशन 1.0 ने इस अहम सनत के लिए बुनियाद फराहम की और मिशन 2.0 इको निजाम को मुस्तहकम करने पर तवज्जो मरकूज करेगा।
3: The first mission was to start the industry in our country. It's an extremely complex industry. We have now talent, more than 75,000 engineers are trained in this. More than 300 universities are teaching the students to design chips. 2 nanometer chips are designed in India, the most advanced chips in the world, including NVIDIA chips, including Intel chips. They are all designed in India now. The world today recognizes India as a country which will become a major semiconductor designing and manufacturing country in the coming years.
2: भारत की खलाई पॉलिसी 2023 के तहत प्राइवेट कंपनियों को खलाई सरगर्मियां अंजाम देने की इजाजत दी गई, जिससे सैटेलाइट को खला में भेजा जाना भी आसान हुआ। इसके बाद खला से मुतालिक रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स की तादाद में इजाफा हुआ। आकाशवाणी से बात करते हुए भारत की खलाई सनत की एसोसिएशन के डायरेक्टर जनरल अनिल प्रकाश ने कहा कि ये कंपनियां इख्तराई तौर पर सरगर्म हैं।
4: नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में स्पेस सेक्टर रिफॉर्म, स्पेस की स्थापना और प्राइवेट पार्टिसिपेशन में को बढ़ावा देने वाली नीतियों ने एक नई क्रांति की शुरुआत की है। आज भारत में 400 से अधिक स्पेस टेक स्टार्टअप कार्यरत है, जो सैटेलाइट, लॉन्च व्हीकल, अर्थ ऑब्जर्वेशन और डाटा सर्विस जैसे क्षेत्रों में इनोवेशन कर रहे हैं।
2: सेमीकंडक्टर मिशन और प्राइवेट खलाई शोबे की पेशरफ्त की शक्ल में एक तरक्की याफ्ता मुल्क की जानिब भारत का सफर जारी उसारी है। अमन यादव की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए अर्जुमंद अली खान।
1: अहलियत और दाखिले से मुताल्लिक कौमी इम्तिहान नीट UG 2026 का कल दोबारा इम्तिहान होगा। कल होने वाले इस दोबारा इम्तिहान में मुल्क भर के 551 शहरों और बैरून मुल्क 14 शहरों में 22,79,000 उम्मीदवार शामिल होंगे। ये इम्तिहान अंग्रेजी और 12 भारतीय जबानों में होगा। इम्तिहान से कबल इम्तिहानात के इनेकाद से मुताल्लिक कौमी एजेंसी NTA ने आज मुल्क भर में मॉक ड्रिल्स अंजाम दी, जिनके तहत सभी सिस्टम जैमर्स, CCTV, अमले की तलाशी और बायोमेट्रिक की जांच की गई। एनटीए ने कहा है कि वो बिला रुकावट मुनसिफाना और शफाफ इम्तिहान के लिए पूरी तरह तैयार है। मजीद तफसील हमारे नामा

नमस्कार, राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती के जून महीने के अंक में आपका स्वागत है। चित्र भारती के इस अंक में संपादकीय शास्त्रीय संगीत के दिग्गज फिल्म संगीत की

मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह पर एक रपट और स्मृति शेष में नमन जानी मानी गायिका सुमन कल्याणपुर को। सबसे पहले संपादकीय शास्त्रीय संगीत के दिग्गज फिल्म संगीत की दुनिया में 21 जून को मनाया जाता है विश्व संगीत दिवस। इस दिन को मनाने की शुरुआत हुई थी सन 1982 में। 21 जून का ही दिन इसलिए चुना गया था क्योंकि इस दिन होता है समर सोल्स्टिस यानी ग्रीष्म संक्रांति, साल का एक सबसे लंबा दिन, ताकि आप संगीत की

और लहरियों का ज्यादा मजा ले सकें। संगीत सिर्फ एक कला नहीं, संगीत जीवन का सुकून है। संगीत न होता तो कितनी सूनी होती ये दुनिया। आज चित्र भारती के संपादकीय में हम विश्व संगीत दिवस पर लाए हैं एक खास पेशकश, ऐसे कलाकारों की बातें जो वैसे तो शास्त्रीय संगीत में सक्रिय रहे पर जब वो फिल्म संगीत के मैदान में आए तो उन्होंने अपनी और ज्यादा चमक बिखेरी और हमें दिए कुछ अनमोल गाने, यानी कुछ ऐसे गायक और संगीतकारों की बातें जो शास्त्रीय संगीत की दुनिया से आते हैं। शास्त्रीय संगीत और फिल्म संगीत हमेशा दो अलग अलग ध्रुव रहे हैं। एक लंबे समय तक शास्त्रीय संगीत की दुनिया में फिल्म संगीत को कमतर माना जाता रहा और शास्त्रीय संगीत के कलाकारों ने फिल्म संगीत से बाकायदा दूरी बनाकर रखी। पर फिर ऐसा वक्त आया जब शास्त्रीय संगीत की दुनिया के दिग्गजों ने फिल्म संगीत की जमीन पर अपने कदम रख ही दिए। अगर शुरू से बात करें तो बेगम अख्तर जैसी दिग्गज गायिकाओं ने फिल्मों में काम भी किया और गाने भी गाए। सन 1930 के जमाने में उन्होंने एक दिन का बादशाह, नल दमयंती और जवानी का नशा जैसी फिल्मों में अभिनय किया था। सन 1942 में उन्होंने महबूब खान की फिल्म रोटी में संगीतकार अनिल बिस्वास के निर्देशन में गाना भी गाया। इसके अलावा सत्यजीत रे ने सन 1958 में एक फिल्म बनाई जलसा घर। इस फिल्म में उस्ताद विलायत खान साहब का संगीत था। ये फिल्म अपने लाजवाब संगीत के लिए जानी जाती है। बेगम अख्तर ने इस फिल्म में

ऐसे मौकों पर फिल्म संगीत अपनी अप्रतिम ऊंचाई तक पहुंच जाता है। शास्त्रीय संगीत के कई दिग्गजों ने फिल्म संगीत में अपना योगदान दिया है। सन 1952 में विजय भट्ट ने एक फिल्म बनाई बैजू बावरा। इस फिल्म के लिए संगीतकार नौशाद ने राजी किया मालवा घराने के संस्थापक उस्ताद अमीर खान साहब को। कितना सुखद था कि इस फिल्म का एक गाना पंडित डी वी पलुस्कर और उस्ताद अमीर खान साहब ने साथ में

अब आते हैं हिंदी सिनेमा की एक अजीम शान फिल्म की ओर। ये फिल्म थी के आसिफ की मुगले आजम। इस फिल्म में एक खास सिचुएशन ऐसी है जिसके लिए के आसिफ को चाहिए थी पटियाला घराने के दिग्गज गायक उस्ताद बड़े गुलाम अली खां की आवाज। किसी तरह उन्हें मनाया गया। कहते हैं कि

0: ने के आसिफ से एक बड़ी रकम की मांग की थी, जिसे आसिफ साहब ने फौरन मान लिया था। और इस तरह से मुगल आजम में उस्ताद बड़े गुलाम अली खां की आवाज में दो गाने रिकॉर्ड हुए। एक गाना था ये
1: जो गाना बना,
0: और दूसरा गाना था

1960 में आई फिल्म कोहिनूर। इस फिल्म में एक गाने में सितार बजाया था उस्ताद अब्दुल हलीम जाफर खान साहब ने। कहते हैं कि इस गाने में अभिनय के लिए दिलीप कुमार ने महीनों उस्ताद जी से सितार की तालीम ली थी। इसी तरह से फिल्म मेरी सूरत तेरी आंखें के इस गाने में तबला बजाया था बनारस के बेमिसाल तबला वादक गुदई महाराज यानी पंडित सामता प्रसाद जी ने। वी शांताराम ने सन 1964 में बनाई फिल्म गीत गाया पत्थरों ने। इस फिल्म में संगीत था रामलाल जी का, जो खुद एक सिद्ध शहनाई वादक थे। इस फिल्म का शीर्षक गीत गाया था जयपुर घराने की दिग्गज गायिका विदुषी किशोरी अमोनकर जी ने।

0: यहाँ हमने रामलाल जी की शहनाई का जिक्र किया तो इसी बहाने याद कर लें जाने माने शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्ला खान साहब को। सन 1959 में आई विजय भट्ट की फिल्म गूंज उठी शहनाई। इस फिल्म के बैकग्राउंड म्यूजिक में शहनाई बजाई थी उस्ताद बिस्मिल्ला खान साहब ने, पर गानों में बजी शहनाई रामलाल जी ने खुद बजाई थी। सन 1966 में एक फिल्म आई थी लड़की सह्याद्री की। वी शांताराम के निर्देशन वाली इस फिल्म में मेवाती घराने के प्रसिद्ध गायक पंडित जसराज ने एक गीत गाया था।
1: वंदना करो अर्चना करो,
0: ये गीत राग अहीर भैरव पर आधारित था। गीतकार थे भरत व्यास और संगीतकार थे वसंत देसाई। बहुत बाद में पंडित जसराज ने फिल्म 1920 में ये गाना गाया। सन 1976 में आई फिल्म कादंबरी। इस फिल्म में संगीत दिया था उस्ताद विलायत खान साहब ने। उन्होंने इस फिल्म में आशा भोसले से अमृता प्रीतम की ये रचना गवाई थी।

0: जानी मानी गायिका विदुषी बेगम परवीन सुल्ताना ने भी कई फिल्मी गाने गाए हैं। उनका सबसे मशहूर गाना है फिल्म कुदरत का वो गीत, जिसे आर डी बर्मन ने स्वरबद्ध किया था। इस गाने के गीतकार थे मजरूह सुल्तानपुरी।
1: हाँ।

पर उन्होंने इसके अलावा भी कई फिल्मों में गाया है। विदुषी परवीन सुल्ताना ने फिल्म गदर में ये गीत गाया। इस गाने में उनके साथ थे पटियाला घराने के जाने माने गायक पंडित अजय चक्रवर्ती।

सन 1985 में अमोल पालेकर ने फिल्म अनकही बनाई। इस फिल्म का संगीत जयदेव ने दिया था। पंडित भीमसेन जोशी ने इस फिल्म में दो गाने गाए थे।

1985 में फिल्म आई सुरसंगम, जिसके जरिए शास्त्रीय संगीत की दुनिया के अनमोल पंछी उतरे फिल्म संगीत के मैदान पर।

0: माननीय बांसुरी वादक पंडित हरि प्रसाद चौरसिया और जाने माने संतूर वादक पंडित शिव कुमार शर्मा ने ऐसे तो कई फिल्मी गानों में अपने अपने साजों का कमाल दिखाया है, पर आगे चलकर उन्होंने जोड़ी बनाई शिव हरि की जोड़ी और कई फिल्मों में संगीत दिया। ऐसी ही एक फिल्म थी सिलसिला
1: जो तुम तोड़ो पिया, मैं ना ही तोड़ूं रे।
0: जाने माने सितार वादक पंडित रविशंकर ने कई फिल्मों में संगीत दिया, जैसे नीचा नगर, पाथेर पांचाली, अपराजितो वगैरह। पर उन्होंने ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म अनुराधा में क्या कमाल के गाने बनाए थे।

सन 1997 में सई परांजपे ने फिल्म साज बनाई। इस फिल्म में उस्ताद जाकिर हुसैन ने न केवल अभिनय किया था बल्कि कुछ गाने भी बनाए थे। चूंकि जिक्र चला है तो आपको बता दें कि उस्ताद जाकिर हुसैन के पिता उस्ताद अल्लाह रखा खान साहब ने भी कई फिल्मों में संगीत दिया था। यह है उनका संगीतबद्ध किया एक गाना।

शास्त्रीय संगीत की दिग्गज हस्तियों ने फिल्म संगीत का हाथ कभी कभी पकड़ा है। जब शास्त्रीय संगीत की बड़ी हस्तियां फिल्मी गानों से जुड़ती हैं, तो फिल्म संगीत और ज्यादा निखर जाता है। ये था विश्व संगीत दिवस के मौके पर चित्र भारती का संपादकीय शास्त्रीय संगीत के दिग्गज फिल्म संगीत की दुनिया में। और अब मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह पर एक रपट। मुंबई में 15 जून से 21 जून तक आयोजित किया जा रहा है 19वां मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। इस फिल्म समारोह का आयोजन नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और भारत सरकार का सूचना और प्रसारण मंत्रालय करता है। ये एक ऐसा फिल्म समारोह है जिसमें डॉक्यूमेंट्री, शॉर्ट फिक्शन और एनिमेशन फिल्में दिखलाई जाती हैं। ये दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा और सबसे पुराना डॉक्यूमेंट्री फिल्म समारोह है। आपको बता दें कि मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आरंभ सन 1990 में हुआ था। ये फिल्म समारोह हर दूसरे बरस आयोजित किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र को गोल्डन कॉन्च पुरस्कार दिया जाता है और 10 लाख रुपए नगद मिलते हैं। इस समारोह में इस बरस कुल मिलाकर 55 लाख रुपए के पुरस्कार दिए जाएंगे। प्रतियोगिता श्रेणी के सभी पुरस्कारों का निर्णय अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय जूरी के द्वारा किया जाता है। प्रतियोगिता फिल्मों के अलावा AIFF जूरी रेट्रोस्पेक्टिव, बेस्ट ऑफ द फेस्टिवल्स, MIFF प्रिज्म, कंट्री फोकस डॉक्यूमेंट्री और रीस्टोर्ड क्लासिक्स जैसे कई विशेष पैकेज इस फिल्म समारोह का हिस्सा हैं। इस फिल्म समारोह के दौरान पैनल चर्चा, एक खुला मंच, सेमिनार और डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माण पर कार्यशालाएं भी आयोजित की जाएंगी। ये फिल्म निर्माताओं और फिल्म प्रेमियों के लिए एक अनूठा मंच है, जहां आकर वो अपने विविध दृष्टिकोण साझा कर सकते हैं और आगे बढ़ने के अवसरों का पता लगा सकते हैं। इस फिल्म समारोह में एक सेक्शन है प्रिज्म, जिसमें भारत और दुनिया भर की चोटी की शानदार डॉक्यूमेंट्री फिल्में दिखाई जाएंगी। इस फिल्म समारोह में वेव्स डॉक बाजार का भी आयोजन किया जा रहा है। ये एक ऐसा मंच है जो फिल्म निर्माण की यात्रा को पोषित करेगा और गति प्रदान करेगा। इसमें है एक व्यूइंग रूम जहां

रजिस्टर्ड रिप्रेजेंटेटिव को एक समूह के सामने अपनी डॉक्यूमेंट्री, लघु फिल्म या एनिमेशन फिल्म प्रदर्शित करनी होगी। इस तरह से ये जगह वितरण सौदे हासिल करने, सह निर्माताओं को आकर्षित करने और फिल्म महोत्सव स्क्रीनिंग के लिए पैसे जुटाने का एक लॉन्च पैड बनेगा। इसके अलावा एक इमर्सिव मार्केट भी है जो पहली बार शामिल किया जा रहा है। इसमें इमर्सिव कंटेंट क्रिएटर्स, प्रोड्यूसर्स और टेक्नोलॉजी पार्टनर्स के लिए एक मिलन स्थल होगा, जहां आकर वो आपस में कोलैबोरेट कर पाएंगे। वीआर, एआर, एक्सआर और इंटरएक्टिव अनुभवों पर केंद्रित ये मार्केट नई परियोजनाओं को प्रदर्शित करने और सहयोग को बढ़ावा देने का काम करेगा। इस बार के फिल्म समारोह में कई मास्टर क्लासेस भी आयोजित की जाएंगी, जैसे फास्ट फिल्म क्या माइक्रो ड्रामा, सिनेमा का फास्ट फैशन है, या फिर विचार से रूपरेखा तक एक दृश्य की संरचना। ये थी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह पर एक रपट। और अब स्मृति शेष में आज हम नमन कर रहे हैं जानी मानी पार्श्व गायिका सुमन कल्याणपुर को। 31 मई को सुमन कल्याणपुर हमारे बीच नहीं रही।

0: कम लोग जानते हैं कि सुमन कल्याणपुर का जन्म 28 जनवरी 1937 को भवानीपुर बंगाल में हुआ था। ये जगह अब बांग्लादेश में है। पांच बहनों में सबसे बड़ी सुमन की परवरिश मुंबई में हुई। ये वो जमाना था जब लड़कियों को बाहर खेलने की इजाजत नहीं थी। ऐसे में उनकी दिलचस्पी गायन में हो गई।
1: 1953 में जब मैं आर्ट स्कूल में थी, मुझे किसी फिल्म के लिए गाने का मौका मिला, मगर केवल गाने ही रिकॉर्ड हो पाए, फिल्म नहीं बनी। उसके बाद एक मराठी फिल्म में गाना गाया, उसका नाम था शुक्राची चांदनी। लेकिन बात यह है कि उस फिल्म की चांदनी भी स्टूडियो के सेट पर भी उतरी नहीं, वो भी नहीं बन पाया। फिर उसके बाद शेख मुख्तार की फिल्म बनी मंगू, जिसका संगीत मोहम्मद शफी साहब ने दिया है। इस फिल्म के लिए मेरा गाना जब रिकॉर्ड हो रहा था तो मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। ये देख कर के लता दीदी स्वयं वहां आई हैं और बहुत देर तक मुझसे बात करती रही, बिल्कुल सगी बहन की तरह।

के बाद उन्हें कुछ और गाने मिले, जैसे मियां बीवी राजी, बात एक रात की।

और राजकुमार। सुमन कल्याणपुर के जीवन का सबसे बड़ा दुख ये रहा कि उनकी आवाज लता मंगेशकर से मिलती जुलती थी, तभी तो उनके गानों को लता मंगेशकर के गाने समझ लिया जाता था।

0: बहुत बरस पहले सुमन कल्याणपुर विविध भारती के स्टूडियो में आई थी और उन्होंने फौजी भाइयों के लिए जयमाला कार्यक्रम पेश किया था।
1: कई बरसों के बाद आज फिर से मुझे आपसे बात करने का मौका मिला है। आप हमें सुरक्षित जीवन प्रदान करते हैं, देश की आन बान के लिए अपने प्राणों की आहुति तक देने में पीछे नहीं हटते, लेकिन ऐसा मत सोचिए

देश की आन बान के लिए अपने प्राणों की आहुति तक देने में पीछे नहीं हटते, लेकिन ऐसा मत सोचिए कि हम आपके लिए कुछ नहीं सोचते। हम कलाकार अपनी कला से आपका मनोरंजन करते हैं, अपने गीतों से आपके हर क्षण में सहभागी बनते हैं। आप युद्ध में हों या शांति में, सुख में हों या दुख में, परिवार के साथ हों या अकेले, भीड़भाड़ वाले शहर में हों या सीमा के एकांत मोर्चे पर, हर जगह हर पल हम अपनी कला से अपने गीतों के जरिए आपके आसपास ही रहते हैं। आप सुन पाएं या ना सुन पाएं, मगर यकीन मानिए, हम आपको ही आवाज़ देते रहते हैं।

मुझे बचपन से ही गाने का बड़ा शौक था। मेरे पिताजी और माताजी को भी संगीत का शौक था और इसीलिए हम सब बहन भाई संगीत में रुचि रखते हैं। जब मैं स्कूल में पढ़ती थी तो उस जमाने में कुछ लोकप्रिय गीत गाया करती थी। उस जमाने के गायिकाओं में से नूरजहां जी और लता दीदी के गीत मुझे बहुत ही अच्छे लगते थे। जिन गीतों ने मुझे बहुत आकर्षित किया वो गीत एक से बढ़कर एक मधुर हैं और ऐसे कई गीत हैं जो मुझे बहुत ही पसंद हैं। जब भी कोई नया गीत हमें मिल जाता तो मैं और मेरी सहेली शारदा बल से हमारे छत पर बैठकर अक्सर वो गीत गाया करते थे। उनमें से कुछ गीतों की शुरुआत मैं आपको गाकर बताती हूँ। नूरजहां जी का ये गाना मुझे बहुत पसंद है।

0: मुझे याद है, लता दीदी एक बार हमारे पड़ोस में आई थी। तब मैं स्कूल में पढ़ती थी। मैं बार बार इधर से उधर, उधर से इधर आ जा रही थी, बस लता दीदी को देखने के लिए, कुछ बोलने के लिए। मगर बोलना तो क्या, उनको देख भी ना पाई। खैर, धीरे धीरे समय बीत गया, मैं भी बड़ी हो गई।
1: एक समय ऐसा आया जब लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी के बीच रॉयल्टी को लेकर मनमुटाव हो गया था। ऐसे में लता जी ने रफी साहब के साथ गाना बंद कर दिया था। इस पूरे दौर में सुमन कल्याणपुर ने मोहम्मद रफी के साथ कई युगल गीत गाए। फिल्म दिल ने फिर याद किया।
0: फिर कोई

सुमन जी के गीतों में शामिल हैं कुछ भोजपुरी गाने भी। सुमन कल्याणपुर चली गई लेकिन उनकी आवाज हमेशा कायम रहेगी और हमारे मन की वादियों में यादों के फूल खिलाती रहेगी।

ये था राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती का इस महीने का अंक। शोध, आलेख, स्वर और संपादन यूनुस खान, प्रस्तुति अनुश्री पाठक। राष्ट्रीय प्रसारण के लिए फिल्म पत्रिका चित्र भारती का निर्माण विविध भारती मुंबई में किया गया।

0: संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं डॉक्टर विवेक करमहे का शास्त्रीय गायन।
1: नमस्कार। इन टुडेज नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक वी आर गोइंग टू ब्रॉडकास्ट अ क्लासिकल वोकल परफॉर्मेंस बाय डॉक्टर विवेक करमहे।
0: सुरों के प्रति अगाध समर्पण और रागों की शुद्धता जब किसी साधक के कंठ से प्रस्फुटित होती है तो संगीत का एक नया अध्याय जन्म लेता है। भारतीय शास्त्रीय संगीत के आकाशदीप पर ऐसा ही एक दैदीप्यमान नाम है डॉक्टर विवेक करमहे। 15 से अधिक वर्षों के अनवरत रियाज और देश विदेश के प्रतिष्ठित मंचों पर अपनी मंत्रमुग्ध कर देने वाली प्रस्तुतियों से आपने शास्त्रीय संगीत जगत में अपनी एक अमिट छाप छोड़ी है।
1: When profound dedication of musical notes and the purity of ragas spring forth from the voice of a devotee practitioner, a new chapter in music is born. One such radiant name shining on the firmament of Indian classical music is Dr. Vivek Karmahe. With over 15 years of relentless practices and spellbinding performances on prestigious stages in India and abroad, he has left an indelible mark on the world of classical music.
0: स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर स्वर्ण पदक विजेता तथा संगीत में डॉक्टरेट की उपाधि से विभूषित डॉक्टर विवेक ने पद्मश्री पंडित उल्हास कशालकर, विदुषी गिरिजा देवी, श्री ओंकार दादरकर और श्रीमती कुमुदिनी मुंदकुर जैसे महान संगीत मनीषियों के सानिध्य में इस कला की सूक्ष्मताओं को आत्मसात किया है। आकाशवाणी के ए ग्रेड प्राप्त कलाकार डॉक्टर विवेक जब तानसेन समारोह और पंडित कृष्णराव शंकर पंडित समारोह जैसे ऐतिहासिक मंचों पर अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं तो श्रोता भाव विभोर हो उठते हैं। भूटान, नेपाल, श्रीलंका से लेकर

0: दक्षिण अफ्रीका, मॉरिशस और संयुक्त अरब अमीरात तक भारतीय संस्कृति का परचम लहराने वाले डॉक्टर विवेक आज के दौर में शास्त्रीय गायन की एक प्रखर और प्रेरक आवाज है।
1: A gold medalist at both the undergraduate and postgraduate levels and honored with a doctorate in music, Dr. Vivek assimilated a subtle nuances of this art under tutelage of great musical maestros such as Padma Shri Pandit Ulhas Kashalkar, Vidushi Girija Devi, Shri Omkar Dadarkar and Shrimati Kumudini Mundukur. An A-grade artist of All India Radio, when Dr. Vivek showcases his art of historic stages like the Tansen Samaroh and Pandit Krishnarao Shankar Pandit Samaroh, the listeners are left utterly spellbound. Proudly flying the flag of Indian culture from Bhutan, Nepal and Sri Lanka to South Africa, Mauritius and United Arab Emirates. Dr. Vivek is a brilliant and inspiring voice of classical vocal music in today's era.
0: Dr. Vivek Karbahe apni gayan ki shuruaat raag shri se kar rahe hain. Vilambit rachna tilwada taal mein nibaddh hai jiske bol hain vaari jaun re tum pe. Drut rachna teen taal mein hai jiske bol hain chalo re mai ram siya darshan. Aapke saath harmonium par sangat kar rahe hain रविंद्र किल्लेदार और तबले पर निशांत शर्मा।
1: डॉक्टर विवेक करमहे इज कमेंसिंग हिज रिसाइटल विद राग श्री। द विलंबित कंपोजिशन इज सेट टू तिलवाड़ा ताल विद द लिरिक्स वारी जाऊं रे तुम्पे। द द्रुत कंपोजिशन इज इन तीन ताल विद द लिरिक्स चलो रे माई राम सिया दर्शन। Accompanying him on the harmonium is Ravindra Killedar and on tabla is Nishant Sharma.

0: 3 में अभी आपने सुना डॉक्टर विवेक करमहे का गायन। डॉक्टर विवेक करमहे अब प्रस्तुत करने जा रहे हैं राग बागेश्री। विलंबित रचना एक ताल में है जिसकी बोल है कौन गत भई। द्रुत रचना भी एक ताल में निबद्ध है जिसकी बोल है बेग बेग बेग बेग आओ।
1: You were just listening to Dr. Vivek Karmahe's rendition in Raga Shri. Dr. Vivek Karmahe is now going to present Raga Bageshri. The Vilambit composition is in Ektal with the lyrics Kaun Gat Bhai. The Drut composition is also set to Ektal with the lyrics Beg Beg Beg Beg Aao.

0: डॉक्टर विवेक करमहे का गायन राग बागेश्री। डॉक्टर विवेक करमहे अपने गायन का समापन राग सोहिनी से कर रहे हैं। मध्य लय तीन ताल में निबद्ध रचना की बोल है देख देख मन ललचाई, और द्रुत तीन ताल में निबद्ध रचना की बोल है रंग न डारो श्याम जी।
1: That was Dr. Vivek Karmahe's vocal rendition in Raag Bageshri. Dr. Vivek Karmahe is concluding his recital with Raag Sohini. The Madhyalaya composition set to Teen Taal has the lyrics Dekh Dekh Man Lalchai. And the Drut composition set to Teen Taal has the lyrics Rang Na Daro Shyamji.

0: डॉक्टर विवेक करमहे के द्वारा प्रस्तुत ये था राग सोहिनी। आपके साथ हारमोनियम पर संगत कर रहे थे रविंद्र किल्लेदार और तबले पर निशांत शर्मा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर की प्रस्तुति थी। इसके साथ ही आज की अखिल भारतीय संगीत सभा संपन्न होती है।
1: That was Rag Sohini presented by Dr. Vivek Karmahe. Accompanying him were Ravindra Killedar on harmonium and Nishant Sharma on tabla. This program was presentation of Akashwani Indore. With this, today's national program of music comes to an end.

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। अब से कुछ ही देर बाद समाचार होंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत हमेशा शांति और सहयोग का पक्षधर रहा है, क्योंकि जटिल वैश्विक मुद्दों और युद्ध जैसे संकटों का समाधान केवल संवाद और कूटनीति से ही संभव है। राष्ट्रपति ने मोहन चरण मांझी सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर ओडिशा के मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में एक जनसभा में ये बात कही। राष्ट्रपति ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक नेताओं के साथ अपने दूरदर्शी शासन और संपर्क के जरिए वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाया है।
2: देशर प्रधानमंत्री भव्य दायित्व ग्रहण करिवा दिनरु
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना पदभार संभालने के बाद से राष्ट्रीय हित में कई कदम उठाए हैं। इस महीने उन्होंने लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल पूरा करने का रिकॉर्ड बनाया। मैं सभी नागरिकों की तरफ से इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए उन्हें बधाई देती हूं। मैं कामना करती हूं कि वे देश के लोगों के हित के लिए निरंतर काम करते रहें और भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का सपना साकार करने में राष्ट्र का नेतृत्व करते रहें।
2: यह मोर आंतरिक कामना।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं से सशक्त होकर जनजातीय समुदाय भारत के विकास में सक्रिय योगदान दे रहे हैं। उन्होंने पूर्वी भारत के विकास में तेजी लाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार के पूर्वोदय दृष्टिकोण का भी उल्लेख किया।
4: ओडिशा में आर्थिक गतिविधियां, निवेश और उद्योगों को आकर्षित करने का सामर्थ्य आज नजर आ रहा है। केंद्र सरकार का विजन है पूर्वी भारत के विकास से भारत का विकास, इसलिए हम पूर्वोदय की नीति पर काम कर रहे हैं। जिस पूर्वी भारत को कांग्रेस के दौर में पिछड़ेपन का पर्याय बना दिया गया था, आज वो प्रगति का प्रवेश द्वार बन रहा है।
1: बाद में प्रधानमंत्री हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंगाल दिवस समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं से राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किश्त के रूप में 18,880 करोड़ रुपए जारी किए। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे देश भर के 9,44,00,000 से अधिक किसानों को लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री कोलकाता में कल INS दुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय का अनावरण करेंगे। इन पोत में

75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है। 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल विश्व भर में मनाया जाएगा। इस वर्ष का विषय है बढ़ती उम्र के प्रभाव को रोकने के लिए योग। मुख्य कार्यक्रम कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर आयोजित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में योगाभ्यास के दौरान राष्ट्र का नेतृत्व करेंगे। रेड रोड पर राष्ट्रीय कार्यक्रम सुबह 5 बजे शुरू होगा। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 की पुनः परीक्षा कल आयोजित की जाएगी। ये पुनः परीक्षा भारत के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में होगी। इस पुनः परीक्षा में 22,79,000 से अधिक परीक्षार्थी शामिल होंगे। महाराष्ट्र के परभणी जिले के मनवथ तालुका में आज एक निर्माणाधीन मंदिर का एक हिस्सा गिरने से कम 5 श्रद्धालुओं की मौत हो गई और लगभग 40 अन्य घायल हो गए। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस त्रासदी पर गहरा दुख व्यक्त किया। उन्होंने प्रत्येक मृतक के परिवार को 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की। चेन्नई में भारत ने तीसरे और अंतिम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 9 विकेट से हराकर श्रृंखला 3-0 से जीत ली है। भारत ने 29वें ओवर में 1 विकेट पर 224 रन बनाकर जीत हासिल की। 5 विकेट लेने वाले प्रसिद्ध कृष्णा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। और मौसम विभाग ने कल पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्र और सिक्किम में अत्यधिक तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने अगले 2 दिनों तक असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।